0: வந்தே மாத்ரம்.
1: வந்தே மாத்ரம் சுஜலா சுஃபலா மலய ஜ சீதலா சஸ்ய

फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओ, आज मंगलवार है। शाक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की पांचवी तिथि, तदनुसार 26 मई सन 2026। इस समय हमारी स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:58 हुए हैं। आरंभ होती है हमारी आज की ये सभा। आप सभी को सुप्रभात।

हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के स्वागत केंद्र से एफएम एंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर सुबह के 6 बजने को हैं। अब से थोड़ी देर में हिंदी में समाचार हम रिले करेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज नई दिल्ली में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे।

0: बैठक में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने, विभिन्न पहलों की प्रगति की समीक्षा करने और हिंद प्रशांत क्षेत्र से जुड़े ताज़ा घटनाक्रमों पर चर्चा होगी। खुले और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र के क्वाड के दृष्टिकोण के अंतर्गत विदेश मंत्री पिछले वर्ष वाशिंगटन में हुई चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन की सिक्किम यात्रा पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज शाम गंगटोक में नामग्याल तिब्बत विज्ञान संस्थान जाएंगी। श्रीमती मुर्मू का कल नाथुला दर्रे का दौरा करने का कार्यक्रम है। यात्रा के अंतिम दिन राष्ट्रपति गंगटोक में सिक्किम पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान करेंगी। श्रीमती मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। गृह मंत्री अमित शाह अगले कुछ दिन सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करेंगे। श्री शाह 2 दिन की यात्रा पर आज राजस्थान के बीकानेर पहुंच गए हैं। इस दौरान उनका सशस्त्र बलों से बातचीत करने और उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं का उद्घाटन करने का कार्यक्रम है। 29 मई को श्री शाह गुजरात जाने का कार्यक्रम है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया। श्रीमती सीतारामन ने मुंबई में लघु उद्योग विकास बैंक की 37वीं वर्षगांठ समारोह में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के व्यवस्था को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पोर्टल और पहलों का शुभारंभ किया। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि सरकार योग और प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से चिकित्सा सेवाओं को मजबूत कर रही है। नई दिल्ली में आयुष मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक में श्री जाधव ने कहा कि योग और प्राकृतिक चिकित्सा भारत की प्राचीन पद्धति है और अब ये वैश्विक स्वास्थ्य अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा बन रहे हैं। श्री जाधव ने बताया कि देश भर में प्राकृतिक चिकित्सा और योग विज्ञान के 70 से अधिक कॉलेज तथा 5000 से ज्यादा योग प्रशिक्षण संस्थान हैं। नागर विमानन महानिदेशालय ने कांगो और युगांडा में इबोला संक्रमण फैलने के बाद एयरलाइन के लिए नई SOP जारी की है। महानिदेशालय ने कहा है कि इन देशों से आने वाले यात्रियों के लिए विमान से उतरने से पहले यात्री जानकारी फॉर्म भरना अनिवार्य होगा। उड़ान के दौरान यात्रियों को बुखार, कमजोरी, उल्टी या दस्त जैसे लक्षण होने पर तुरंत विमान कर्मियों और भारत पहुंचने पर स्वास्थ्य अधिकारियों को जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं। एयरलाइन को मास्क, PPE किट, दस्ताने और सैनिटाइजर जैसी जरूरी सामग्री का पर्याप्त भंडार रखने को कहा गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने नई ग्राम पंचायतों के गठन तक निवर्तमान ग्राम प्रधानों को ग्राम पंचायतों का प्रशासक नियुक्त किया है। राज्य की ग्राम पंचायतों का कार्यकाल आज समाप्त हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर ये प्रधान कल से प्रशासक के रूप में काम करेंगे। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। IPL क्रिकेट के क्वालिफायर 1 मुकाबले में आज मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से होगा। मैच धर्मशाला में शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इस मुकाबले की विजेता टीम सीधे फाइनल में पहुंचेगी, जबकि हारने वाली टीम को क्वालिफायर 2 में एक और मौका मिलेगा। मोहाली में कल एलिमिनेटर मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। और भारत ने कल गोवा में सैप महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के ग्रुप बी मुकाबले में मालदीव को 11-0 से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आपके अपने रेडियो सेट पर आकाशवाणी सागर FM एंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर सुबह के 6:05 हुए हैं। लीजिए अब सुनिएगा भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना। इसमें आइए सबसे पहले हम आपको सुनवाते हैं समूह स्वरों में ये मातृ वंदना।

अभी आप समूह स्वरों में ये मातृवंदना सुन रही थी। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र FM बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर, जिस पर आप इस वक्त ट्यून किए हुए हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना। और आइए इस कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवाते हैं ये भजन मन्ना डे की आवाज में। इसको लिखा है प्रेमानंद स्वामी ने और संगीतबद्ध किया है दिलीप ढोलकिया ने।

यह आकाशवाणी का सागर केंद्र एफएम 102.6 मेगाहर्ट्ज पर, जिस पर आप इस वक्त सुन रहे हैं कार्यक्रम अर्चना और आइए। इस कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवाते हैं समूह स्वरों में ये हमद। इसे लिखा है जफर ने।

सुन रहे हैं आकाशवाणी सागर एफएम 102.6 मेगाहर्ट्ज पर, जिस पर आप इस वक्त ट्यून किए हुए हैं कार्यक्रम अर्चना, जिसमें हम आपको सुनवा रहे हैं भक्ति संगीत। और आइए अब हम आपको सुनवाते हैं ये भजन। स्वर और संगीत जगदीश सिंह का, और इस भजन को शब्द दिए हैं रविंद्र पठानिया ने।

और श्रोता, इसी वजन के साथ ही कार्यक्रम अर्चना यहीं पर संपन्न होता है। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के सागर केंद्र से एफएम 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 6:25 हुए हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। आइए श्रोताओं, कार्यक्रम विवरण के तहत हम आपको बता दें हमारे केंद्र से आज दिन भर प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों के बारे में।

सुबह 6:30 पर आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस का संगीत में पाठ। इसका आज हम आपको 407वां भाग सुनवाएंगे। गायक स्वर होगा सुरेश वाडेकर का। भूले बिसरे गीत कार्यक्रम आपके रेडियो सेट तक पहुंचेगा सुबह 6:40 पर। सुबह सुबह हमारा दैनिक वैचारिक चिंतन का ये कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 7 बजे। कृषि संकेत कार्यक्रम में आज हमारा विषय होगा मोरिंगा यानी मूंगा की उन्नत खेती। इस विषय पर हमें जानकारी देंगे विशेषज्ञ श्री आरडी चौबे जी। सुबह 7:20 पर कार्यक्रम मनचाहे गीत में हम अपने श्रोताओं के पसंद के फिल्मी गीत सुनवाएंगे। सुबह 7:45 पर सुनिएगा गीत गजल और कव्वाली का कार्यक्रम संगीत सरिता।

सुबह 8:15 पर कार्यक्रम लोक संगीत में सुनिएगा कुछ बुंदेली लोकगीत। सुबह 8:30 का समय होगा पॉडकास्ट विद आकाशवाणी सागर, विषय होगा ताप घात यानी लू से बचाव व इलाज। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर राजेंद्र चौदा, वरिष्ठ जो कि मेडिकल विशेषज्ञ हैं, आपसे भेंट करेंगे दीपक निषाद। फिल्मी गीतों से सजा कार्यक्रम चित्र पर संगीत आप सुनेंगे सुबह 8:45 पर। सुबह 10 भोपाल केंद्र से हम रिले करेंगे जिले की चिट्ठी। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रागिनी में सुनिएगा सुबह 10:05 पर उस्ताद बिस्मिल्ला खां से। शहनाई सुबह 10:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आपकी पसंद। एनसीआरडी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग हम आपको सुनवाएंगे सुबह 11:00। 11:30 पर सुनिएगा विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम मुंबई केंद्र से। शाम 5:30 पर सुनिएगा काव्य पाठ। आमंत्रित कवि होंगे क्रांति जबलपुरी, नई माहिर, मुकेश सोनी और आबिद राहतगढ़ी। शाम 6:30 का समय होगा फिल्मी गीतों से लबरेज कार्यक्रम सदाबहार गीत का। कार्यक्रम लोकरंग सुनिएगा शाम 6:45 पर। खेती गृहस्थी पर आधारित कार्यक्रम किसान वाणी होगा शाम 7:20 पर। रात्रि 8:00 चित्रपट संगीत आपके रेडियो सेट तक पहुंचेगा। रात्रि 8:15 पर सुनिएगा कार्यक्रम संगीत सरिता। रात्रि 8:30 पर स्वरचित काव्य पाठ में सुनिएगा गंगा दशहरा पर विशेष, रचनाकार होंगे चंद्रशेखर नामदेव। रात्रि 9:00 का समय होगा मंचाए गीत का। और रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे मुंबई केंद्र से विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम। तो श्रोताओं, ये थे हमारे केंद्र से आज दिनभर प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की जानकारी, और इसी के साथ कार्यक्रम विवरण यहीं पर संपन्न होता है।

यह आकाशवाणी का सागर केंद्र है, एफएम एंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। लीजिए अब सुनिए श्री रामचरित मानस का संगीत में पाठ। इसका आज हम आपको 407वां भाग सुनवा रहे हैं। गायक स्वर है सुरेश वाडेकर का।

पक्षीराज गरुड़ काक भुशुंडी से ज्ञान और भक्ति का निरूपण सुनकर वैकुंठ को जा चुके हैं। भगवान शिव गरुड़ काक भुशुंडी संवाद की कथा पार्वती को सुनाते हुए उसका समापन करते हैं। हे उमा, वो कुल धन्य है जिसमें श्री राम के अनन्य भक्त का जन्म होता है। तुम्हारा अनुराग देखकर मैंने ये कथा तुम्हें सुनाई है। ये आख्यान धूर्त व्यक्ति को नहीं सुनाना चाहिए, नहीं उन हठधर्मियों को जो प्रभु लीलाओं का गान मन लगाकर और श्रद्धा के साथ नहीं सुनते। ये कथा लोभी, क्रोधी तथा कामी लोगों को भी नहीं सुनानी चाहिए। इसे सुनने के अधिकारी वे होते हैं जिनकी गुरु चरणों में प्रीति होती है और जो नीति के मार्ग पर चलते हैं। इस कथा को सुनने मात्र से जन्म मरण की व्याधि से सदा के लिए मुक्ति मिल जाती है। जो इसे कहते सुनते और इसकी प्रशंसा करते हैं, उन्हें भव सागर पार करने में कोई कठिनाई नहीं होती। भरद्वाज मुनि को शिव पार्वती के माध्यम से राम कथा याज्ञवल्क्य जी ने सुनाई, कहा, शंभु और उमा का ये कल्याणकारी संवाद शोक का नाश कर जन्म मरण से मुक्ति दिलाने वाला है।

अभी आप श्री रामचरितमानस का संगीत में पाठ सुन रहे थे। इसका आज हमने आपको 407वां भाग सुनवाया। गायक स्वर था सुरेश वाडेकर का। आकाशवाणी का सागर केंद्र एफएम मंडी 102.6 मेगाहर्ट्ज पर सुबह के 6:40 हुए हैं। लीजिए अब सुनिएगा गुजरे जमाने से लबरेज फिल्मी गीतों का कार्यक्रम भूले बिसरे गीत।

0: कार्यक्रम भूली बिसरी गीत का ये पहला खूबसूरत गीत अभी आपने सुना शमशाद बेगम की आवाज में। इस गीत को हमने चुना था अनोखी अदा फिल्म से। गीत लिखा था शकील बदायूनी ने, संगीतबद्ध किया था नौशाद ने और महबूब प्रोडक्शन का ये फिल्म थी और ये रिलीज हुई थी 1948 में।
1: हो गया इंतजाम।
2: किसका?
1: गुड्डी की फीस का।
2: दिखा। 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही ले और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
3: आरबीआई कहता है
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
0: ये आपके अपने रेडियो सेट पर आपका अपना पसंदीदा रेडियो चैनल आकाशवाणी सागर FM 102.6 मेगाहर्ट्ज पर, जिस पर आप इस वक्त कार्यक्रम भूले बिसरे गीत का आनंद ले रहे हैं। और आइए एक और भूला बिसरे गीत बादल फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज में। शैलेंद्र ने इस गीत को शब्द दिए हैं और शंकर जयकिशन का ये संगीत है।

0: Daily Log app, website www.daily-log.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी सागर FM 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर, जिस पर आप इस वक्त ट्यून किए हुए कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। और आइए, भूले बिसरे गीतों में एक गीत है दिल देके देखो फिल्म से, लता मंगेशकर और उनके साथियों की आवाजों में। हसरत जयपुरी के बोल हैं, शंकर जयकिशन का ये संगीत है।

102.6 MHz पर। लीजिए, इस कार्यक्रम के अंत में अब हम आपको सुनवाते हैं शहनाई फिल्म में मीना कपूर और चितलकर की आवाजें। इस गीत को पीएल संतोषी ने लिखा है और संगीतबद्ध किया है श्री राम चंद्र ने।

और श्रोता, इसी के साथ कार्यक्रम भूले बिसरे गीत यहीं पर संपन्न होता है। आकाशवाणी के हम सागर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह की 6:55 होने को है, अब से थोड़ी देर में दिल्ली केंद्र से हम रिले करेंगे संस्कृत में समाचार।

0: अपि पद्मविभूषणसम्मानेन सुपूजितः। अस्मिन् अलङ्करणसमारोहे उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन्, प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी, केन्द्रीयमन्त्री अमितशाहः, गजेन्द्रसिंहशेखावतः, HD कुमारस्वामी च उपस्थिताः आसन्। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः अद्य आरभ्य सिक्किम राज्यस्य त्रिदिवसात्मिकां यात्रां विधास्यति। सिक्किम प्रवासकाले सा विविधेषु कार्यक्रमेषु भागं ग्रहीष्यति, अनेकानि स्थानानि च द्रक्ष्यति। राष्ट्रपति महोदया सायंकाले गंगटोक नगरे स्थिते नाइमनॉल इंस्टीट्यूट ऑफ टिबेटोलॉजी इति संस्थां प्रति गमिष्यति। सिक्किम सर्वकारेण तस्याः स्वागताय विपुलाः प्रबन्धाः विहिताः। विश्व स्वास्थ्य संघटनेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो अथ युगांडा देशेषु इबोला संक्रमणं अंतरराष्ट्रीय चिंतायाः सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकालत्वेन घोषितम्। एतदंतरं नागर विमानन महादेशालयेन विमान विपणीनां कृते एका मानक संचालन प्रक्रिया प्रसारिता। अत्रावधेयस्पदं वर्तते यत् विमानेषु अनिवार्य रूपेण पदक्षेपाः विहितव्याः भविष्यन्ति। यथा इबोला संकटं दृष्ट्वा यदि कस्यापि यात्रिणः ज्वरः, दौर्बल्यं, पीड़ा, शिरोवेदना, कंठदाहः, वमनम् इत्यादीनि लक्षणानि दृश्यन्ते तर्हि सः सद्यः एव विमान कर्मचारिभ्यः आगमानन्तरं चिकित्सा विभागेभ्यः सूचयेत्। महानिदेशालयेन स्पष्टीकृतं यत् भारते आगमनात् एकविंशतिदिनानां मध्ये यदि एतादृशानि लक्षणानि उत्पद्यन्ते तर्हि यात्रिणः निर्दिष्टचिकित्सालयेभ्यः चिकित्सासाहाय्यं प्राप्नुयुः। भारतीय ऋतु विज्ञान विभागेन अद्य यावत् मध्यप्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, विदर्भ क्षेत्रेषु उष्णस्थितिमुद्दिश्य रेड अलर्ट इति रक्तवर्णीय संचेतना प्रसारिता। विभागेन आगामी द्वित्री दिनेषु हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान राज्येषु तीव्र उष्ण तरंगस्य पूर्व सूचना प्रख्यापिता। एतादृशी एव स्थितिः अद्य यावत् छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, उत्तराखंड राज्येषु अपि भवितुं संभाव्यते। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधवः अवदत् यत् सर्वकारः योग प्राकृतिक चिकित्सा माध्यमेन कृत्स्ने ही देशे निवारक स्वास्थ्य सेवाः सुदृढीकरोति। नवदिल्ल्याम् आयुष मंत्रालयस्य संसदीय परामर्शदात्री समित्याः चतुर्थ उपवेशने अध्यक्षतां कुर्वन् श्री जाधवः अवचत् यत् योगः, प्राकृतिक चिकित्सा च समग्र निवारक स्वास्थ्य सेवायै भारतस्य शाश्वतं योगदानं वर्तते। अस्मिन् उपवेशने भारते योग प्राकृतिक चिकित्सा क्षेत्रस्य विस्तारे, स्वास्थ्य संवर्धन संबद्धेषु प्रयासेषु च तथा च पारंपरिक चिकित्सा पद्धतीनां वैश्विक प्रसारे च विस्तरेण चर्चा अभवत्। सः अग्रे सूचितवान् यत् सम्प्रति विश्वस्य 90+ देशेषु अन्ताराष्ट्रिय योग दिवसः समारोहः आचर्यते। इति वार्ताः।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी सागर FM 102.6 MHz पर। सुबह के 7 बजे हैं, लीजिए अब प्रस्तुत है हमारा दैनिक वैचारिक चिंतन का कार्यक्रम सुबह सुबह। एक और नई सुबह के साथ आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। श्रोताओ, शिक्षा मानव जीवन का एक अभिन्न अंग है। यह व्यक्ति को न केवल ज्ञान प्रदान करती है बल्कि उसे जीवन में सही दिशा दिखाने और समाज में एक जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए तैयार करती है। शिक्षा केवल पुस्तकी ज्ञान तक ही सीमित नहीं है बल्कि यह मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास का साधन भी है। शिक्षा वो प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति न केवल अपने विषय में जानकारी प्राप्त करता है बल्कि उसे समझकर समाज के विकास में योगदान देने योग्य बनाता है।

0: शिक्षा का अर्थ केवल औपचारिक शिक्षा संस्थानों में दी जाने वाली शिक्षा तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अनौपचारिक और व्यवहारिक ज्ञान भी इसका हिस्सा है। यदि शिक्षा के इतिहास पर हम नजर डालें तो ये स्पष्ट होता है कि शिक्षा का महत्व प्राचीन समय से ही रहा है। भारतीय सभ्यता में गुरुकुल प्रणाली एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी, जहां विद्यार्थी गुरु के सानिध्य में रहकर न केवल शास्त्रों का अध्ययन करते थे बल्कि जीवन के विभिन्न पहलुओं का भी ज्ञान प्राप्त करते थे। शिक्षा का यह प्रारूप समाज को नैतिक, धार्मिक और सामाजिक मूल्यों से जोड़ता था। शिक्षा व्यक्ति के व्यक्तित्व को संवारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह हमें जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक कौशल और जानकारी प्रदान करती है। एक शिक्षित व्यक्ति समाज में अपने अधिकारों और कर्तव्यों को अच्छी तरह से समझ सकता है। शिक्षा हमें आत्मनिर्भर बनाती है और जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करती है। शिक्षा केवल व्यक्ति विकास तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका समाज के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान है। एक शिक्षित समाज में लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होते हैं और वे अन्याय और अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने में सक्षम होते हैं। शिक्षा सामाजिक असमानताओं को कम करती है और समाज में शांति, सद्भाव और समानता की भावना को बढ़ावा देती है। शिक्षा सामाजिक समस्याओं जैसे बाल श्रम, दहेज प्रथा, क्षेत्रवाद और लिंग भेद जैसी समस्याओं को समाप्त करने में भी मददगार साबित होती है। एक शिक्षित समाज में लोग इन बुराइयों को समझते हैं और उन्हें समाप्त करने के लिए प्रयासरत भी रहते हैं। इसके अलावा शिक्षा लोगों को स्वास्थ्य जीवन जीने में के लिए आवश्यक जानकारी प्रदान करती है, जिससे वे अपने स्वास्थ्य का ख्याल रख सकते हैं और बीमारियों से बच सकते हैं। किसी भी देश की आर्थिक प्रगति का मुख्य आधार उसकी शिक्षा प्रणाली है। जब नागरिक शिक्षित होते हैं तो वे देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। वे न केवल अपने लिए रोजगार के अवसर पैदा करते हैं बल्कि अन्य लोगों को भी रोजगार प्रदान करने का काम कर सकते हैं। इसके अलावा शिक्षा नए विचारों और नवाचारों को जन्म देती है, जो किसी भी राष्ट्र की आर्थिक प्रगति के लिए आवश्यक है। शिक्षा लोगों को उनके पेशेवर जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए तैयार करती है। शिक्षा केवल बौद्धिक विकास तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये व्यक्ति के नैतिक और सांस्कृतिक मूल्यों को भी संवारती है। शिक्षा हमें सही व गलत में भेद करना सिखाती है और हमें एक बेहतर इंसान बनने के लिए प्रेरित करती है। सुबह सुबह ये कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का सागर केंद्र है, FM एंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 7:05 हुए हैं। लीजिए अब सुनिएगा कार्यक्रम कृषि संकेत। इसमें हमारा आज का विषय है मोरिंगा यानी मुनगा की उन्नत खेती। इस विषय पर हमें जानकारी दे रहे हैं विशेषज्ञ श्री RD चौबे जी।
1: वर्तमान समय में बहुत सारी हमारे परिवार में या हमारे किसान भाई जो हैं विभिन्न प्रकार के रोगों से या बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं, जिसमें हम यदि एलोपैथी की दवाओं का इस्तेमाल करते हैं तो हमें उसके साइड इफेक्ट भी आते हैं। लेकिन यदि हम आयुर्वेद का या औषधि फसलों का हम उपयोग करके या इस तरह की सब्जियां जो आसानी से उग सकती हैं उनका उपयोग करके हम अपने स्वास्थ्य को भी अच्छा बना सकते हैं, हमें जो विटामिन और मिनरल्स और प्रोटीन की आवश्यकता है उसकी पूर्ति भी कर सकते हैं और विभिन्न प्रकार की बीमारियों से हम बचाव भी कर सकते हैं। देखिए, हमारे यहाँ मुनगा की फसल जैसी जैसी गर्मी पड़ती है वैसे वैसे मुनगा की फसल बहुत अच्छी होती है और ये दक्षिण भारत में काफ़ी तेज़ी के साथ उसका उत्पादन होता है। वहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ने से 25 से 30 डिग्री टेम्परेचर

0: तापमान जो रहता है फसल के लिए उपयुक्त होता है। कोई भी बंजर भूमि में जो पथरीली हो, कंकड़ हो, और उसका पीएच मान यदि 6.5 से 7.5 तक भी हो, तो ऐसी मिट्टी में भी हम, यदि आपने मिट्टी की जांच कराई है और यदि इस तरह का पीएच मान है, उन स्थानों पर भी हम मुनगा की खेती कर सकते हैं। इसमें एक विशेषता और है कि जैसी जैसी गर्मी बढ़ती है वैसे वैसे इस पौधे की वृद्धि अच्छी होती है। तो उत्तर भारत के इलाकों में, जहाँ विशेष रूप से मध्य प्रदेश की बात करें या हम अपने जिले की बात करें, तो यहाँ पर भी मुनगा बहुत अच्छे से उगाया जा सकता है। तो आप कोशिश करें कि इसकी एक बार खेती करें और अपना जो दूसरी फसलें हैं उनकी अपेक्षा आप लगातार इससे लाभ अच्छी तरह से प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ प्राचीन समय से हमारे घर परिवारों में एक न एक मुनगे का पेड़ आंगन में हो या खेतों में हो लगा हुआ पाया जाता था, लेकिन उसकी विशेषता ये थी कि वो थोड़ा देर से फलन आता था उसमें, और उसकी फलियों में और पत्तियों में कड़वाहट ज़्यादा होती थी। तो तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय ने और गुजरात के कृषि विश्वविद्यालयों ने कुछ अच्छी उन्नत किस्मों का अनुसंधान करके पाया है कि बहुत सारी किस्में ऐसी हैं कम समय में अच्छा उत्पादन देती हैं, और उनकी जो कड़वाहट है मुनगे की जो फलियों में और पत्तियों में जो कड़वाहट पाई जाती है वो कड़वाहट भी उनमें नहीं है। तो जो किस्में हमारे वैज्ञानिकों ने शोध करके हमारे किसान भाइयों के लिए उपलब्ध कराई हैं उनमें PKM1, PKM2, ODC3, आपका अमर 32, बलियालता पति और रोहित CO1, CO2, CO3 किस्में हैं जो प्रमुखतः हमारे क्षेत्रों में उगाई जाती हैं। और इसका जो वानस्पतिक प्रवर्धन करने के लिए हम बीज की मात्रा का उपयोग करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। यदि हमारे पास ऐसे पौधे हैं तो हम इसको कलम से भी लगा सकते हैं। कलम से लगाने के लिए जो हमारे पुराने पौधे लगे हुए हैं उनकी कटिंग हम काट के, और ये चूंकि इसका रोपण जो है जुलाई से लेके सितंबर तक कर सकते हैं, मतलब ठंड में अपन कर सकते हैं अक्टूबर से लेके नवंबर तक। और ये किस्म ऐसी है कि आपकी जो हम बता रहे हैं आपको PKM1 है, PKM2 है, इसके अलावा उन्नत किस्मों में अभी जो वर्तमान में जो है ODC3 वैरायटी बहुत अच्छी चल रही है, ये 6 से 8 महीने में अपना उत्पादन शुरू कर देती है। और इसी तरह से अमर 32 भी की जो किस्में हैं उन्नत किस्में हैं वो भी बहुत अच्छा उत्पादन देती है। लगभग ये मान चले कि साल भर हमें फलन से प्राप्त हो सकता है। देखिए 1 किलो जो मुनगे का बीज होता है अलग अलग किस्मों में उसकी मात्रा होती है 2500 से 3500 बीज तक निकलते हैं 1 किलो मुनगा के बीज में। तो उसमें हमारा यदि हम 70% या 80% जर्मिनेशन मानेंगे तो 3000 के हिसाब से हम यदि उसका देखेंगे तो 2400 पौधे हमारे तैयार हो जाएंगे। प्रति एकड़ हमें कम से कम 800 पौधे रोपित करना है, 2x2 मीटर की पौधे से पौधे की दूरी, और 3 मीटर यदि हम गैप रखेंगे तो लगभग हमें 800 पौधे प्रति एकड़ यानी 2000 पौधे हम 1 हेक्टेयर में लगा सकते हैं। और इसमें खास बात का ये ध्यान रखना है कि जब भी हम बीज खरीद के लाएं उन्नत संस्थानों से लें, और बीज जो है यदि आप उन्नत बीज लेंगे तो उसको करना ये है कि बीज को सीधे आपको बोनी नहीं करना है, 24 घंटे तक थोड़े से कुनकुनी पानी में उस बीज को आप डाल दें। डालने के बाद जब 24 घंटे उसके हो जाएं तो उस पानी में से निकाल के उसको ट्राइकोडर्मा ब्रिडी से आप उपचारित करें, और जब हमें खेत में रोपना है तो खेत की तैयारी हमें पहले करनी पड़ेगी।
1: अभी आप सुन रहे थे कृषि संगीत कार्यक्रम। यह आकाशवाणी का सागर केंद्र है, FM 102.6 MHz पर। सुबह के 7:10 होने को आपसे थोड़ी देर में प्रादेशिक समाचार हम भोपाल केंद्र से रिले करेंगे।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: गृह मंत्री अमित शाह अगले कुछ दिनों तक सीमावर्ती क्षेत्रों के दौरे पर आज बीकानेर में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सभी राज्यों को 21 जून को होने वाली नीट परीक्षा के सुचारू संचालन के दिए निर्देश। प्रदेश में समर्थन मूल्य पर गेहूं की रिकॉर्ड खरीदी और राज्य में भीषण गर्मी का दौर जारी। नौतपा के दूसरे दिन आज कई जिलों में लू का अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह अगले कुछ दिन सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करेंगे। आज वे राजस्थान के बीकानेर पहुंचे हैं, जहां वे दो दिन की यात्रा पर रहेंगे। वे आज बीएसएफ की साचू सीमा चौकी का दौरा करेंगे और सुरक्षा बलों के साथ बातचीत कर उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। दोपहर में वे बीकानेर में सीमावर्ती क्षेत्र की सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करेंगे। इस बैठक में गृह मंत्रालय और राजस्थान सरकार के अधिकारी, बीएसएफ अधिकारी, साथ ही 5 सीमावर्ती जिलों के जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक शामिल होंगे। इसके बाद इस महीने की 29 तारीख को श्री शाह गुजरात के भुज का दौरा करेंगे, जहां वो बीएसएफ की एक सीमा चौकी का मुआयना करेंगे। अगले महीने की 5 तारीख को श्री शाह त्रिपुरा के सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करेंगे। इसके बाद वो पश्चिम बंगाल जाएंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर 21 जून को होने वाली नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा के सुरक्षित, सुचारू और सफल संचालन का आह्वान किया है। श्री प्रधान ने देशभर के सभी मुख्यमंत्रियों, उपराज्यपालों और प्रशासकों से इस संबंध में सहयोग मांगा है। भीषण लू के मद्देनजर केंद्रीय मंत्री ने उनसे परीक्षा केंद्रों पर उम्मीदवारों की सुविधा के लिए सभी आवश्यक बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने का भी आग्रह किया है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज नई दिल्ली में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। बैठक में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने, विभिन्न पहलों की प्रगति की समीक्षा करने और हिंद प्रशांत क्षेत्र से जुड़े ताजा घटनाक्रमों पर चर्चा होगी। खुले और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र के क्वाड के दृष्टिकोण के तहत मंत्री पिछले वर्ष वाशिंगटन में हुई चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
1: इस साल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक ऐसे समय में हो रही है, जब विश्व भर में अनिश्चितता का माहौल है और पश्चिम एशिया में संकट गहराया हुआ है। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान को मिलाकर बना क्वाड एक अहम समूह के तौर पर उभरा है, जिसका मुख्य उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना है। इस समूह के मौजूदा अध्यक्ष के तौर पर भारत इस बैठक की मेजबानी कर रहा है। क्वाड देशों ने दुनिया की भलाई के लिए मिलकर काम करने और एक ऐसे खुले, स्वतंत्र और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करने का संकल्प लिया है, जो समृद्ध और मजबूत हो। क्वाड ने एक सकारात्मक और व्यवहारिक एजेंडा अपनाया है, जिसमें स्वास्थ्य, सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन तथा उभरती टेक्नोलॉजी और क्षेत्रीय देशों की समुद्री क्षेत्र से जुड़ी जागरूकता को बढ़ाने जैसे समकालीन मुद्दों तथा चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लिखित पुस्तक अपनापन का आज नई दिल्ली में विमोचन किया जाएगा। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू पुस्तक का विमोचन करेंगे। इस अवसर पर पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा भी मौजूद रहेंगे। इस पुस्तक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ लंबे सार्वजनिक जीवन के दौरान श्री चौहान के अनुभव को साझा किया गया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मध्य प्रदेश की दो विभूतियों श्री कैलाश चंद्र पंत और डॉ. नारायण व्यास को पद्मश्री सम्मान से अलंकृत किए जाने पर बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा है कि प्रदेश की महान विभूतियों ने अपने उत्कृष्ट कार्यों, रचनात्मक लेखन और शोध कार्य के लिए दी गई दीर्घकालीन सेवाओं से मध्य प्रदेश को गौरवान्वित किया है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक, साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रदेश न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अब तक 13,27,000 किसानों से गेहूं का उपार्जन कर देश में नंबर वन स्थान पर है। अब तक लगभग 102 लाख मीट्रिक टन गेहूं का उपार्जन हो चुका है। गेहूं का उपार्जन अभी भी जारी है। खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि कोविड-19 की अवधि को छोड़कर विगत 10 वर्षों में इस साल समर्थन मूल्य पर गेहूं का सर्वाधिक उपार्जन किया गया है। मंत्री श्री राजपूत ने बताया कि 78 लाख मीट्रिक टन

के उपार्जन लक्ष्य को केंद्र सरकार द्वारा 100 लाख मीट्रिक टन कर दिया गया है। उन्होंने किसानों के हित में जिन किसानों ने स्लॉट बुक करा लिए हैं उनके गेहूं उपार्जन की अवधि 23 मई से बढ़ाकर 28 मई तक कर दी है। मध्य प्रदेश में जनगणना 2027 के प्रथम चरण के अंतर्गत मकान सूचीकरण और मकानों की गणना का कार्य तेज गति से अंतिम चरण की ओर अग्रसर है। प्रदेश में 1 मई से प्रारंभ हुआ यह फील्ड कार्य 30 मई तक संचालित किया जा रहा है। राज्य के नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रगणकों द्वारा घर घर जाकर प्रत्येक मकान परिवार और अन्य संरचनाओं से संबंधित जानकारी डिजिटल माध्यम से संकलित की जा रही है। राज्य में 1,37,000 से अधिक मकान सूचीकरण ब्लॉक बनाए गए हैं। दिनांक 25 मई तक प्राप्त जानकारी के अनुसार 1,34,309 मकान सूचीकरण ब्लॉक में कार्य पूरा किया जा चुका है। 2,39,09,808 मकानों की गणना की जा चुकी है। प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी है। मौसम विभाग ने नौतपा के दूसरे दिन आज भोपाल ग्वालियर सहित 45 जिलों में लू का अलर्ट जारी किया है। वहीं इंदौर नर्मदापुरम में भीषण गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है। इससे पहले नौतपा के पहले दिन कल प्रदेश में भीषण गर्मी के चलते खजुराहो में तापमान 47 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज हुआ। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक गर्मी से राहत के आसार नहीं है। आईपीएल क्रिकेट में क्वालिफायर 1 मुकाबले में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इस मुकाबले की विजेता टीम सीधे आईपीएल 2026 के फाइनल में पहुंचेगी, जबकि हारने वाली टीम को क्वालिफायर 2 में एक और मौका मिलेगा। बुधवार को न्यू चंडीगढ़ मोहाली में एलिमिनेटर मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। हारने वाली टीम टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी, जबकि विजेता टीम क्वालिफायर 2 में पहुंचेगी। रांची में 22 से 25 मई तक आयोजित 29वीं नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश एथलेटिक्स अकादमी के खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए प्रदेश का नाम रोशन किया है। अकादमी के प्रतिभाशाली खिलाड़ी देव मीणा ने पुरुष पोल वॉल्ट स्पर्धा में स्वर्ण पदक अर्जित किया, जबकि कुलदीप कुमार ने रजत पदक अपने नाम किया। दोनों खिलाड़ियों ने 5.45 मीटर का शानदार प्रदर्शन करते हुए नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी स्थापित किया है। इसके साथ ही अकादमी के खिलाड़ी विनोद सिंह ने पुरुष 5000 मीटर दौड़ स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खंडवा की ओंकारेश्वर में श्रद्धालुओं के साथ मारपीट की वायरल घटना के बाद मंदिर ट्रस्ट और जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। कुनासा एसडीएम ने बताया कि मंदिर ट्रस्ट के सुपरवाइजर दीपक मालाकार सहित 5 अन्य कर्मचारियों को सेवा से पृथक कर दिया गया है। शिवपुरी जिले में कलेक्टर द्वारा अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई की गई है। खनिज अधिकारी ने बताया कि खदानों के नियम अनुसार संचालित न होने पर खदान का पट्टा निरस्त किया गया है। झाबुआ में गंगा दशहरा के पावन अवसर पर जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत जिला स्तरीय कार्यक्रम श्रद्धा उत्साह और जनभागीदारी के साथ संपन्न हुआ। पंचज अभियान के अंतर्गत आगरमालवा जिला न्यायालय परिसर में पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन का संदेश देते हुए बेजुबान पक्षियों के लिए सकोरे लगाए गए। भोपाल कलेक्ट्रेट में टीएल की बैठक आयोजित की गई। इसमें कलेक्टर ने पेयजल व्यवस्था, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, पीएम जनमन अभियान, धरती आबा अभियान और जल गंगा संवर्धन अभियान की समीक्षा की। गुना कलेक्टर की अध्यक्षता में साप्ताहिक समय सीमा की बैठक का कल आयोजन किया गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज पर यह आपके अपने रेडियो सेट पर आपका अपना पसंदीदा रेडियो चैनल आकाशवाणी सागर, और जिस पर आप आकाशवाणी सागर के कार्यक्रमों का आनंद ले रहे हैं। हम आपको बता दें, इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 7:20 हुए हैं। लीजिए, अब आपकी खिदमत पे पेश है श्रोताओं के फरमाइशी फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम मंचाए गीत।

0: कार्यक्रम मनचाहे गीत का ये खूबसूरत नगमा अभी आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। इस गीत को लिखा था, हम आपको बता दें, एम जी हशमत ने, और संगीतबद्ध किया था कल्याण जी आनंद जी ने। फिल्म का नाम कोरा कागज। और इस कोरा कागज गीत को पसंद करने वाले आप सभी लोग हैं धाड़ी नंदूरा महाराष्ट्र से, श्री कृष्ण बाठे, संदीप बाठे, अमूल बाठे, संगम चौक यादव मोहल्ला सनावद जिला पश्चिम निमाड़ खरगोन मध्य प्रदेश से, दिलीप कुमार मालाकार, सुनीता मालाकार, मुस्कान मालाकार, योगेश मालाकार, धर्मेंद्र मालाकार, जितेंद्र मालाकार, हर्ष मालाकार, अशोक मालाकार, योगिता मालाकार, तुलसी मालाकार, जसपुर उत्तराखंड से, रियाजत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज रिफाकत, मोहम्मद रिहान, समरीन परवीन और माहिरा नूर। साथ ही ये हमें व्हाट्सएप मिली थी और इसी के लिए ये पत्र हमें मिला था, राजावत कॉम्प्लेक्स नई सड़क साजापुर से, मनमोहन राजावत, राज मधु राजावत, राशि रक्षित, चितरंजन, कमलेश, उमेश, कमल, उमेश, सरोज, आरती, रेखा, रितिका, रिचा, स्वीटी, सागर, रिया, रीत, ऋषभ राजावत और इनके सभी परिवार के लोग। तो आइए अब अगला गीत सुनने से पहले एक छोटा सा अंतराल लेते हैं।
1: दीदी नौकरी लग गई।
2: अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग।
1: हाँ दी, नया मोबाइल।
2: अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे।
1: इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है।
2: पहले बजट बनाना सीखो फिर खर्च करो।
1: पर दीप,
2: देखो कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम।
1: हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा।
2: अच्छा।
3: आरबीआई कहता है,
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
0: 102.6 मेगाहर्ट्ज पर ये आपके अपने रेडियो सेट पर आपका अपना पसंदीदा रेडियो चैनल आकाशवाणी सागर, जिस पर आप इस वक्त ट्यून किए हुए हैं अपना मनपसंद कार्यक्रम मनचाहे गीत, जिसमें हम आपके मन चाहे गीत सुनवा रहे हैं। और आइए अगला मनचाहे गीत आप सभी लोगों की पसंद पर है, ये पत्र में मिला है, आशा रेडियो श्रोता संघ मेहर नगर उमड़खेड़ महाराष्ट्र से, अभिजीत गवाणकर, राही श्रीमती सरिता गवाणकर, प्रिंस एकांश गवाणकर, आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से श्रीमती वैशाली शैलेश गवाणकर, श्वेता सुमित गवाणकर, कुमारी ध्वनी गवाणकर परी, बदलापुर मुंबई से सिद्धांत गवाणकर, प्रणीता गवाणकर, लाडला टुकटुक गवाणकर। और व्हाट्सएप भी इस गीत के लिए हमें मिले हैं, सरगुजा मेन पार्ट से विनोद थापा, पूजा रानी, विजय थापा, जानवी डोमिन, यामिनी, रोहित डोम, डोंडी लोहारा से हरीश शंकर बेलदार, फरजू प्रभा रानी बेलदार, जेल रोड रायगढ़ से उमाराज जगदीश राज, छत्रपति संभाजी नगर सुरेवाड़ी औरंगाबाद से प्रकाश बोरगांवकर, सुषमा बोरगांवकर, साथ में इनके प्रांजलि सोहम बोरगांवकर, सदानंद विराज स्वीट, अंशुमन बेबी ओवी, मेन बाजार कुंडलवाड़ी महाराष्ट्र से गंगाधर येमेकर, प्रमोद येमेकर और प्रदीप येमेकर। आप सभी ने सुनना चाहा है

श्रोताओ, ये आपका अपना पसंदीदा रेडियो चैनल आकाशवाणी सागर एफएम 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर, जिस पर आप इस वक्त ट्यून किए हुए हैं अपना मनपसंद कार्यक्रम मन चाहे गीत। और लीजिए, आपका अगला मन चाहा गीत हाजिर है बड़े दिल वाला फिल्म से। किशोर कुमार की आवाज है, इस गीत को मजरू ने लिखा है और संगीतबद्ध किया है आरडी बर्मन ने, और अनुरोधकर्ता आप सभी लोग हैं। ये पत्र हमें मिले हैं नेपाल पैलेस सागर मध्य प्रदेश से। तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नुपुर, ऋषिका, रॉबिन, शिवा, शिवांशु, यश अवदेश, प्रेम नारायण, रमेश कठौदिया, सुजीत पंडित, रमाकांत दुबे, और ये है ईश्वरवारा सागर मध्य प्रदेश से। प्रशांत खरे, सतीश खरे, आशी, राशि, पूजा, काना, प्रियांशी, शिवांशी, अयांश, पिंटू, कीर्ति और प्रीतेश। साथ ही हमें जय बजरंग रेडियो श्रोता संघ बस स्टैंड बंडा बेलई से ये पत्र हमें मिला है सागर मध्य प्रदेश से। लक्ष्मण रेखवार, श्रीमती विनीता रेखवार, दीपेश वैशाली, वैष्णवी लल्लू हल्ले, ऋषि रेखवार। तो आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

श्रोताओ, ये आपका अपना पसंदीदा रेडियो चैनल आकाशवाणी सागर एफएम 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर, जिस पर आप इस वक्त आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम मंचा है गीत का। इसमें हम आपकी पसंद के फिल्मी गीत सुनवा रहे हैं। और आइए, अगला जो नगमा है वो है गोलमाल फिल्म से, आवाज एक बार फिर किशोर कुमार की, गीत गुलजार का, संगीत आरडी बर्मन का। और अनुरोध करता आप सभी लोग, ये पत्र हमें मिले हैं चंडीगढ़ से सतीश तनेजा, विमला तनेजा, और लक्षनपुर छत्तीसगढ़ से विश्वनाथ साहू, पंकज साहू, तिरुपति साहू, अर्जुनी से सरोजनी साहू, पूजा साहू, और पांठर कवड़ा से अनिल बुरांडे, उषा बुरांडे, प्राची बुरांडे, अनुश्री बुरांडे, धनश्री बुरांडे, बल्लार शाह से सूरज जी लोंढे, प्राची लोंढे और एकलव्य लोंढे। ये इस कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति है।

और श्रोताओं इसी के साथ कार्यक्रम मंचाई गीत यहीं पर संपन्न होता है। हम आपको बता दें आज का ये फरमाइशी फिल्मी गीतों का सफर तय किया आपने अपने रेडियो मित्र मासूम आलम के साथ। यह आकाशवाणी का सागर केंद्र एफएम 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर सुबह के 7:45 हुए हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है गीत, गजल और कव्वाली का कार्यक्रम संगीत सरिता।

0: श्रोता, इस कार्यक्रम में सबसे पहले अभी आपने जो ये गीत सुना, इसे आवाज दी थी सुचित्रा ने। इस गीत को लिखा था अरुण राज ने और संगीतबद्ध किया था रहमान राजन ने।
1: ये देख कैसे?
2: हैप्पी बर्थडे बॉय।
1: दीका, हाँ मेरा फेवरेट कलर
2: हमेशा शॉपिंग।
3: आई नो माँ, बट खर्चा करने की भी यही उम्र है, राइट?
4: सेविंग करने की भी यही उम्र है।
5: आई नो पा, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा।
3: आई नो ना।
5: आरबीआई कहता है,
6: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
0: फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज पर, ये आपके अपने रेडियो सेट पर आपका अपना पसंदीदा रेडियो चैनल आकाशवाणी सागर, जिस पर आप इस वक्त ट्यून किए हुए हैं गीत गजल और कव्वाली का कार्यक्रम संगीत सरिता। और आइए अब इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाते हैं ये कव्वाली शंकर शंभू और उनके हम

आकाशवाणी का ये सागर केंद्र एफएम 102.6 मेगाहर्ट्ज पर, जिस पर आप इस वक्त लुत्फ ले रहे हैं कार्यक्रम संगीत सरिता का। और आइए इस कार्यक्रम के अंत में अब हम आपको सुनवाते हैं ये गजल हरिहरन की आवाज में, उनके ही संगीत निर्देशन में। इस गजल को लिखा है मुमताज राशिद ने।

0: इस गजल के साथ ही कार्यक्रम संगीत सरिता यहीं पर संपन्न होता है। यह आकाशवाणी का सागर केंद्र एफएम 102.6 मेगाहर्ट्ज पर सुबह के 8 बजने को आपसे थोड़ी देर में दिल्ली केंद्र से हम रिले करेंगे समाचार प्रभात।
1: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सिक्किम की 3 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला में तकनीकी खराबी के बाद फंसे 300 से अधिक पर्यटकों को सुरक्षित बचाया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इबोला वायरस को स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया। डीजीसीए ने एयरलाइंस को जारी किए निर्देश। दिल्ली में प्रति किलोग्राम सीएनजी की कीमत 2 रुपए बढ़ी। भारत ने सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप में मालदीव को 11-0 से हराया। और आईपीएल क्रिकेट क्वालिफायर 1 में आज शाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सो मोतेगी और अमेरिका के विदेश

0: मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। बैठक में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने, विभिन्न पहलुओं की प्रगति की समीक्षा करने और हिंद प्रशांत क्षेत्र से जुड़े ताजा घटनाक्रमों पर चर्चा होगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: इस साल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक ऐसे समय में हो रही है जब विश्व भर में अनिश्चितता का माहौल है और पश्चिम एशिया में संकट गहराया हुआ है। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान को मिलाकर बना क्वाड एक अहम समूह के तौर पर उभरा है, जिसका मुख्य उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना है। इस समूह के मौजूदा अध्यक्ष के तौर पर भारत इस बैठक की मेजबानी कर रहा है। क्वाड देशों ने दुनिया की भलाई के लिए मिलकर काम करने और एक ऐसे खुले, स्वतंत्र और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करने का संकल्प लिया है जो समृद्ध और मजबूत हो। क्वाड ने एक सकारात्मक और व्यवहारिक एजेंडा अपनाया है, जिसमें स्वास्थ्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन तथा उभरती टेक्नोलॉजी और क्षेत्रीय देशों की समुद्री क्षेत्र से जुड़ी जागरूकता को बढ़ाने जैसे समकालीन मुद्दों तथा चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन की सिक्किम यात्रा पर रहेंगे। गंगटोक से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति अपनी यात्रा के दौरान कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सिक्किम यात्रा के पहले दिन देवराली में नामग्याल इंस्टीट्यूट ऑफ टिबेटोलॉजी का दौरा करेंगी और गैंगटोक में महिलाओं के लिए पिंक बसों को हरी झंडी दिखाएंगी। कल वो नाथुला का दौरा करेंगी और साथ ही गैंगटोक में सिक्किम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगी। अपनी यात्रा के अंतिम दिन राष्ट्रपति मुर्मू गैंगटोक के पलजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पुलिस कलर मेडल प्रदान करेगी। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गैंगटोक।
0: राष्ट्रपति भवन में कल नागरिक अलंकरण समारोह भी आयोजित किया गया, जिसमें इस वर्ष के पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए। गृहमंत्री अमित शाह अगले कुछ दिन सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करेंगे। श्री शाह 2 दिन की यात्रा पर आज राजस्थान के बीकानेर पहुंच गए हैं। इस दौरान उनका सशस्त्र बलों से बातचीत करने और उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं का उद्घाटन करने का भी कार्यक्रम है। श्री शाह 29 मई को गुजरात जाएंगे। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि सरकार योग और प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से चिकित्सा सेवाओं को मजबूत कर रही है। नई दिल्ली में आयुष मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक में श्री जाधव ने कहा कि योग और प्राकृतिक चिकित्सा भारत की प्राचीन पद्धति है और अब ये वैश्विक स्वास्थ्य अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा बन रहे हैं। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ओटावा में कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी से द्विपक्षीय चर्चा की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुभकामनाएं दी। साथ ही भारत कनाडा व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA को जल्द पूरा करने पर सहमति जताई गई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। नागर विमानन महानिदेशालय ने इबोला वायरस को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये कदम विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कांगो और युगांडा में इबोला वायरस को अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किए जाने के बाद उठाया गया है। एक रिपोर्ट।
3: नागर विमानन महानिदेशालय ने कहा है कि युगांडा और कांगो से जुड़ी उड़ानों का संचालन करने वाली एयरलाइंस को यात्रियों के विमान से उतरने से पहले उनसे यात्री जानकारी फॉर्म भरवाना अनिवार्य होगा। इसके अलावा उड़ान के दौरान यात्रियों को बुखार, कमजोरी, मांसपेशियों में दर्द, सिर दर्द, गले में खराश, उल्टी या दस्त जैसे लक्षण होने पर अधिकारियों को जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं। विमान में संदिग्ध मरीज मिलने पर उसे विमान के पिछले हिस्से में अलग रखने और आसपास की सीटें खाली रखने के भी निर्देश दिए गए हैं। एयरलाइंस को मास्क, दस्ताने, PPE किट, सैनिटाइजर जैसी जरूरी सामग्री की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने को भी कहा गया है। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
0: दिल्ली में CNG के दाम में 2 रुपए प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी की गई है। आज सुबह 6 बजे से लागू इस नई दर के बाद राष्ट्रीय राजधानी में CNG की नई कीमत 83 रुपए 9 पैसे प्रति किलोग्राम हो गई है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। अधिकारियों के अनुसार रोपवे की 65 कैबिन में 300 से अधिक पर्यटक फंस गए थे। NDRF, SDRF, पुलिस सेना और प्रशासन ने संयुक्त रूप से करीब 7 घंटे तक बचाव अभियान चलाकर सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने घटना की जाँच के आदेश दिए हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में सुरक्षा बलों ने डोरीमल वन क्षेत्र में आतंकियों के एक ठिकाने को ध्वस्त कर दिया। ये कार्रवाई ऑपरेशन शेरुवाली के तहत चल रहे तलाशी अभियान के दौरान हुई। ड्रोन और खोजी कुत्तों

0: की मदद से इलाके में तलाशी अभियान जारी है। पंजाब में नगर निगम चुनावों के लिए मतदान शुरू हो गया है। राज्य में 8 नगर निगमों, 75 नगर परिषदों और 20 नगर पंचायतों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: राजनीतिक पार्टियों द्वारा 2027 में होने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले हो रहे इन नगर निकाय चुनावों पर एक अहम राजनीतिक संकेत के तौर पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। राज्य चुनाव आयोग के अनुसार पूरे राज्य में कुल 1896 वार्डों से 7555 उम्मीदवार मैदान में हैं। सभी नगर निकायों में आदर्श आचार संहिता पहले से ही लागू है। मतदाताओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए पंजाब सरकार ने आज सभी के लिए सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। की गिनती शुक्रवार 29 मई को होगी। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
0: उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्राम पंचायतों के लिए नए निकाय गठित होने तक या अधिकतम 6 महीने की अवधि के लिए निवर्तमान ग्राम प्रधानों को ग्राम पंचायतों का प्रशासक नियुक्त किया है। राज्य की ग्राम पंचायतों के प्रधानों का कार्यकाल आज समाप्त हो रहा है। निवर्तमान प्रधान स्वयं पंचायतों का प्रशासन संभालेंगे। एक रिपोर्ट।
2: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार सभी जिला मजिस्ट्रेटों को ग्राम पंचायतों में निवर्तमान प्रधानों को प्रशासक के रूप में नामित करने का अधिकार दिया गया है। ये निवर्तमान प्रधान कल से प्रशासक के रूप में कार्यभार संभालेंगे। प्रशासकों को केवल नियमित और दैनिक कार्यों को करने की अनुमति होगी तथा उन्हें कोई भी नीतिगत निर्णय लेने की अनुमति नहीं होगी। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि किसी भी परिस्थिति में कोई नीतिगत निर्णय आवश्यक हो तो जिला मजिस्ट्रेट की स्वीकृति के बाद ही निर्णय लिया जा सकता है। ग्राम पंचायत के प्रधानों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कार्यकाल समाप्त होने के बाद और पंचायतों के प्रधान बनने तक राज्य सरकार को प्रशासकों की नियुक्ति करने का अधिकार है। सुशील चंद्र तिवारी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
0: भारत सहित दुनिया भर से सऊदी अरब पहुंचे लाखों जायरीन पवित्र हज यात्रा कर रहे हैं। 5 दिन के हज के पहले दिन कल हज यात्री मीना के टेंट सिटी में एकत्रित हुए। एक रिपोर्ट।
3: पवित्र हज यात्रा पर पहुंचे जायरीन आज पूरा दिन अरफात के मैदान में इबादत और दुआओं में बिताएंगे। इसके बाद हज यात्री निमरा मस्जिद में हज का विशेष संदेश खुतबे हज सुनेंगे और दोपहर तथा शाम की नमाज एक साथ अदा करेंगे। सूर्यास्त के बाद वे मुजदलिफा के लिए रवाना होंगे। कल सुबह जायरीन मीना लौटेंगे जहां वे कुर्बानी और कंकर मारने की प्रतीकात्मक रस्म अदा करेंगे। समाचार कक्ष से कलीम अहमद।
0: अमरीकी सेना ने ईरान के साथ जारी संघर्ष विराम के बीच होर्मुज जलडमरू मध्य के पास ईरान के मिसाइल प्रक्षेपण स्थलों और नावों को निशाना बनाया है। ये घटनाक्रम तब सामने आया जब अमरीका और ईरान के बीच संघर्ष विराम वार्ता में कुछ प्रगति की खबरें आई हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान युद्ध समाप्त करने के लिए किसी भी समझौते में सऊदी अरब और पाकिस्तान सहित कई देशों को अब्राहम समझौते में शामिल किया जाना चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ बातचीत अच्छी तरह आगे बढ़ रही है। हालांकि उन्होंने चेतावनी दी कि या तो ये बातचीत शांति समझौते में बदलेगी या फिर पहले से ही बड़े संघर्ष की स्थिति का कारण बनेगी। अब्राहम समझौता अमेरिका की मध्यस्थता में 2020 में हुआ ऐतिहासिक शांति समझौता है जिसका मुख्य उद्देश्य इसराइल और कई अरब तथा मुस्लिम देशों के बीच संबंध सामान्य बनाने के लिए शुरू किया गया था। ब्राजील सरकार ने अमेजन वर्षावन क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए 61.75 करोड़ अमरीकी डॉलर आवंटित किए हैं। ये निवेश पिछले वर्ष के COP30 सम्मेलन के दौरान घोषित इको इन्वेस्ट कार्यक्रम का एक हिस्सा है। और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
4: जी फरहत, खेल खबरों में शुरुआत फुटबॉल से। भारत ने कल गोवा में सैफ महिला चैंपियनशिप के ग्रुप बी मुकाबले में मालदीव को 11-0 से हरा दिया। अविका सिंह ने 4 गोल किए। प्रियंका नोरेम और करिश्मा ने 2-2 गोल दागे। 5 बार की चैंपियन भारतीय टीम का अगला मुकाबला रविवार को बांग्लादेश से होगा। और अगर बात करें क्रिकेट की तो IPL के क्वालिफायर 1 मुकाबले में आज मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। मैच धर्मशाला में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इस मुकाबले की विजेता टीम सीधे फाइनल में पहुंचेगी जबकि हारने वाली टीम को क्वालिफाइड 2 में एक और मौका मिलेगा। उधर सिंगापुर में आज से शुरू हो रहे सिंगापुर ओपन सुपर 750 टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और पीवी सिंधु भारतीय चुनौती की अगुवाई करेंगे। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन, HS प्रणॉय, किदांबी श्रीकांत और आयुष शेट्टी, वहीं महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु, उन्नति हुडा और मालविका बंसोड़ चुनौती पेश करेंगी। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी तथा मिक्स्ड डबल्स में तनीषा क्रस्टो ध्रुव कपिला और रोहन कपूर रुथविका शिवानी गड्डे की जोड़ियां भी अपना अपना दावा पेश करेंगी। जी फरहत, खेल जगत से बस आज इतना ही।
0: धन्यवाद मुकेश। और अब

0: कर लेते हैं मौसम का। मौसम विभाग ने आज दिल्ली में भीषण गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया है। राजधानी में कल तक लू की स्थिति बनी रहने की संभावना है। शहर का अधिकतम तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, विदर्भ और पश्चिम राजस्थान में आज भी भीषण लू चल सकती है। छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड और पश्चिम मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी इसी तरह की स्थिति बनी रहेगी। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
1: धन्यवाद फरहत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कला, खेल और विज्ञान सहित कई क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली विभूतियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित करने की खबर आज हिंदुस्तान सहित कई अखबारों में है। पत्र लिखता है, पैरा खिलाड़ी प्रवीण कुमार को पद्मश्री सम्मान। अमर उजाला ने पुदुचेरी के पारंपरिक मार्शल आर्ट विशेषज्ञ के पजनी वेल के पद्मश्री सम्मान ग्रहण करने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दंडवत प्रणाम करने और प्रधानमंत्री के तुरंत कुर्सी से उठकर उनको उठाने का चित्र प्रकाशित किया है। धर्मेंद्र को मरणोपरांत पद्म विभूषण सम्मान। धर्मपत्नी हेमा मालिनी ने भावुक होकर ग्रहण किया सम्मान, देशबंधु में है। जनसत्ता ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत बढ़ने का समाचार आंकड़ों सहित प्रकाशित किया है। 10 दिन में चौथी बार, अब दिल्ली में भी कीमत 100 पार। पत्र ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के शब्द भी दिए हैं, ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा संरक्षण पर ध्यान देने की जरूरत। क्वाड बैठक आज, चीन की चुनौती पर होगी बात। पश्चिम एशिया संकट के बीच दिल्ली में हो रही है मीटिंग, नव भारत टाइम्स की सुर्खी है। नीट पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त, सरकार से मांगा जवाब, एनटीए ने कोई सबक नहीं सीखा। लोक सत्य ने सुनवाई शीर्षक से खबर प्रकाशित की है। राजस्थान पत्रिका ने राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी की रिपोर्ट प्रकाशित की है। महिला अपराध के मामलों में देश भर में मध्य प्रदेश की हालत चिंताजनक। प्रदेश में हर रोज दर्ज हो रहे हैं दहेज प्रताड़ना के 20 प्रकरण। दैनिक जागरण ने आज अपने संपादकीय पन्ने पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है, विकसित भारत के निर्माण की राह। संपादक ने अपने लेख में स्वामी विवेकानंद के शब्दों को अहमियत दी है, उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्त होने तक मत रुको। संपादक ने आयुष्मान भारत योजना, चंद्रयान 3 की सफल लॉन्चिंग और एआई में भारत को वैश्विक कंपनियों में अहमियत मिलने से लेकर भारत की प्रगति की चर्चा की है।
0: धन्यवाद मनोज। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सिक्किम की 3 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला में तकनीकी खराबी के बाद फंसे 300 से अधिक पर्यटकों को सुरक्षित बचाया गया। WHO ने इबोला वायरस को स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया। दिल्ली में प्रति किलोग्राम सीएनजी की कीमत 2 रुपए बढ़ी। भारत ने सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप में मालदीव को 11-0 से हराया। और IPL क्रिकेट क्वालिफायर 1 में आज शाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: यह आकाशवाणी का सागर केंद्र FM 102.6 मेगाहर्ट्ज पर आपके अपने रेडियो सेट की स्केल पर। और हम आपको बता दें, समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 8:15 हुए हैं। लीजिए अब सुनिएगा बुंदेली लोक गीतों पर आधारित कार्यक्रम लोक संगीत।

0: श्रोताओ, कार्यक्रम लोक संगीत में अभी आपने ये दादरा सुना सोनी कक्कड़ और उनके साथियों की आवाजों में।
1: जब हर सेकंड जरूरी हो, हम हैं तैयार। बंसल हॉस्पिटल सागर में 24/7 क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट, अत्याधुनिक ICU, एडवांस वेंटिलेटर और लाइफ सपोर्ट इमरजेंसी रिस्पांस टीम। हर सांस की सुरक्षा हमारे साथ। संपर्क करें 07582472000।
0: आकाशवाणी के हम सागर केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 102.6 MHz पर, जिस पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम लोक संगीत। और आइए कार्यक्रम लोक संगीत में अब हम आपको सुनवाते हैं विष्णु पटेरिया और उनके संगीत साथियों की आवाजों में ये लोकगीत।

0: साथियों नमस्कार। सागर जिले की धसान नदी पर निर्मित बंडा बृहद सिंचाई परियोजना उल्धन बांध के अंतर्गत लगभग 80,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी और 400 गांव लाभान्वित होंगे। डूब क्षेत्र में आ रहे ग्राम जैसे सलैया खुर्द, उल्धन, पिपरिया इलाई, बहरौल और कुल आदि ग्रामवासियों से निवेदन है कि डूब क्षेत्र को शीघ्र खाली कर निर्धारित पुनर्वास कॉलोनी पनारी तहसील बंडा एवं पिथौली तहसील बांदरी में शीघ्र विस्थापन सुनिश्चित करें। ध्यान रहे समय सीमा 30 मई 2026 है।
1: यह आकाशवाणी का सागर केंद्र एफएम 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर लीजिए कार्यक्रम लोक संगीत में। अब हम आपको सुनवाते हैं आजाद रावत की आवाज में ये दादरा गीत।

0: और श्रोता, इसी के साथ कार्यक्रम लोक संगीत यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। लीजिए अब सुनिएगा पॉडकास्ट विद आकाशवाणी सागर, लेकिन इस अंतराल के बाद।
1: जब हर सेकंड जरूरी हो, हम हैं तैयार। बंसल हॉस्पिटल सागर में 24/7 क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट, अत्याधुनिक ICU, एडवांस वेंटिलेटर और लाइफ सपोर्ट इमरजेंसी रिस्पांस टीम। हर सांस की सुरक्षा हमारे साथ। संपर्क करें 07582472000।
0: पॉडकास्ट विद आकाशवाणी सागर में हमारा आज का विषय है ताप घात, लू से बचाव व इलाज। इस विषय पर हमें जानकारी दे रहे हैं विशेषज्ञ डॉक्टर राजेंद्र चौदा, जो कि वरिष्ठ मेडिकल विशेषज्ञ हैं, और आपसे भेंट कर रहे हैं दीपक निषाद।

0: पॉडकास्ट विद आकाशवाणी सागर के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गर्मियों का समय चल रहा है और हम सभी जानते हैं कि तेज धूप कई मायनों में बहुत खतरनाक है और थोड़ी सी भी अगर लापरवाही बरती गई तो ये जानलेवा साबित भी हो सकती है। और सबसे बड़ी समस्या जो इस समय निकल करके सामने आती है वो है लू लगने की समस्या। तो आज हम इस विषय पर बातचीत करने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपक निषाद और एक बेहद खास मेहमान हमारे बीच आज स्टूडियो में इस विषय पर प्रकाश डालने के लिए उपस्थित हैं। आप हैं डॉक्टर राजेंद्र चौदा साहब, आप मेडिसिन विशेषज्ञ हैं। बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका।
1: थैंक यू दीपक भाई।
0: डॉक्टर साहब, हम बात करना चाहेंगे लू लगने की, हीट स्ट्रोक की, तापघात की, कई नामों से इसे जानते हैं। लू लगने की स्थिति, ये स्थिति क्या है, किस स्थिति को हम लू लगना कहते हैं?
1: दीपक जी, आपके माध्यम से, आकाशवाणी सागर के माध्यम से सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि आज की तारीख में हम देखें तो लू लगने की प्रवृत्ति इसलिए भी ज़्यादा हो गई क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो है टेम्परेचर बहुत ज़्यादा शहर में हो रहा है। आज भी हम देखें तो 45 टेम्परेचर जो है क्रॉस कर जाता है। लू में हम लोग दो तीन तरह के पेशेंट्स देखते हैं। सबसे पहले तो यह है कि जैसे लोग अगर धूप में निकलते हैं बिना सिर ढाके, बिना गमछे लपेटे हुए, तो जनरली हम देखते हैं कि जो सूरज की किरणें हैं उनके कारण जो है लोगों को बुखार जैसा आ जाता है, हल्का सा बुखार भी आता है। और हल्का बुखार आने की प्रवृत्ति में हम लोग देखते हैं, उसको हम सिंपल ये बोलते हैं कि आपको गर्मी के कारण फीवर आ गया है। दूसरा इसमें देखते हैं कि अगर गर्मी में कोई भी व्यक्ति निकलता है तो पसीने का लॉस, मतलब जिसमें नमक और पानी का लॉस हो जाता है, उसके कारण जो है शरीर में पानी की कमी हो जाती है, उसको हम लोग डिहाइड्रेशन वाली स्थिति बोलते हैं। ये हम इसलिए बता रहे हैं कि तीन अलग अलग तरह से हम लोग मरीज देखते हैं लू लगने के। और तीसरी जो सबसे खराब है, सबसे खराब स्थिति होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं सन स्ट्रोक, जिसको हम लोग हीट स्ट्रोक कहते हैं। हीट स्ट्रोक मतलब सबसे ज़्यादा सीवियरिटी में पेशेंट आते हैं, उसमें पल्स कम हो जाती है, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है पसीने के लॉस के कारण, और सिरदर्द, चक्कर आना, बेहोशी जैसी आना, ऐसे लक्षण मरीजों में

0: गंभीर लक्षण मिल जाते हैं। और कई बार इसमें देखते हैं कि कई बार मरीज को पसीना भी नहीं आता, मतलब क्योंकि ब्लड प्रेशर उसका इतना लो हो जाता है। ये जो हीट स्ट्रोक वाली स्थिति है ये सबसे खतरनाक होती है, और इसमें हमें तुरंत पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करना चाहिए और हमें उसके फर्स्ट एड ट्रीटमेंट लेना चाहिए।
1: इस पे बाद में चर्चा करनी थी लेकिन बात अभी सामने आई है, तो कितने घंटे के बाद ये अवस्था उत्पन्न हो जाती है, शरीर जब पूरा ड्राई हो जाता है, पसीना नहीं आता है?
0: देखिए ये तो डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी इम्यूनिटी कैसी है। ऐसा कोई व्यक्ति जो लगातार एसी में रहता है, ठंडक में रहता है, वो पता चला एक घंटे भी अगर मान लो निकलेगा तो उसको लू लगने के चांसेस हो जाते हैं। और मजदूर वर्ग के लोग हैं या जो भाई लोग जो गाँव में खेतों में काम करते हैं, वो कई बार दो दो चार चार घंटे छः छः घंटे भी अगर काम करते तो उनको वैसी स्थिति का सामना नहीं करना पड़ता। ये तो हो गई आपकी बॉडी इम्यूनिटी के कारण। बट ये है कि इसमें ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि जितने भी हमारे वर्कर्स लोग हैं बेचारे, उन वर्कर्स को कम से कम पानी या कुछ हाइड्रेशन वाली चीज़ें लेना चाहिए, चाहे ग्लूकोज वाटर हो या प्लेन पानी हो या मठा हो या आम का रस हो या आम का पन्ना हो, बेल का शरबत हो, इस टाइप की चीज़ें लेते रहना चाहिए। अगर आप प्रॉपर हाइड्रेशन करते रहेंगे तो लू लगने की संभावना थोड़ी सी कम होती है। तो थोड़ा सा स्थिति ये होना चाहिए कि लोगों को जो वर्किंग क्लास के लोग हैं जो खेतों में काम करते हैं या जो ऐसे धूप में काम करते हैं, उनको थोड़ा कोशिश करें कि शेडेड में काम करें या अपने प्रोटेक्शन के साथ में काम करें, और बीच में थोड़ा सा शरीर को घंटे दो घंटे में थोड़ा सा शरीर को 10 मिनट 5 मिनट के लिए आराम भी दें और थोड़ा हाइड्रेट भी करें बॉडी को।
1: पानी का अधिक से अधिक सेवन करना है, किसी भी फॉर्म में हो सकता है, वो आपने बताया पना हो सकता है, छाछ हो सकता है, सिंपल पानी भी पी सकते हैं आप, नींबू पानी भी पी सकते हैं, शिकंजी पी सकते हैं,
0: कोल्ड ड्रिंक नहीं, कोल्ड ड्रिंक्स नहीं। ये देखिए आप, देखिए ये मैं कोल्ड ड्रिंक्स के अगेंस्ट में नहीं हूं, बट क्या होता है कि कोल्ड ड्रिंक्स में आर्टिफिशियल चीजें बहुत ज्यादा होती हैं, उसमें शुगर की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, और जरूरी नहीं है कि जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं उसमें आपकी हर चीज नेचुरल हो। तो जनरली हम लोग बोलते हैं कि आप कोल्ड ड्रिंक्स में, किसी भी कोल्ड ड्रिंक का मैं नाम नहीं लूंगा, कोल्ड ड्रिंक्स की जगह पे हम लोग जो नेचुरल हमारी जो देशी चीजें हैं उन पे हम लोग प्रेफर करते हैं कि वो चीज ज्यादा ली जाए।
1: कोल्ड ड्रिंक्स के बारे में ये भी कहा जाता है कि वो हाइड्रेट करने की बजाय डिहाइड्रेट कर देते हैं। जी डॉक्टर साहब, आगे बढ़ना चाहेंगे, और आपने बताया कि जो हमारे लेबर क्लास के लोग हैं, मेहनत कश लोग हैं, बहुत जरूरी क्लास है हमारे सोसाइटी में, और निर्माण करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग पूरी यूनिट है उनके कंधे पे खड़ी है।
0: जी जी,
1: तो डॉक्टर साहब उनके लिए आप क्या सलाह देंगे, दिन का कौन सा वो समय होता है जिसको वो काम करने से अवॉइड करें, या जो भी नियोक्ता है जो उनको अपने यहाँ काम पे रखे हुए हैं वो भी थोड़ी संवेदनशीलता का परिचय दें, जब इतनी ज्यादा गर्मी है, सहन से बाहर है, कोई व्यक्ति बीमार हो सकता है।
0: क्या होता है कि चूंकि हमारे वर्किंग क्लास का टाइमिंग जनरली हम लोग देखते हैं 9:30-9:10 बजे से शुरू होता है, शाम को 5 बजे 6 बजे तक काम रहता है, इसमें सबसे खराब जो समय है 12 से 4 का समय, जिस समय बहुत तेज धूप पड़ती है, डायरेक्ट सन एक्सपोजर होता है, उस समय में लोगों को थोड़े सावधान रहने की आवश्यकता है। और हम लोग ये भी बोलते हैं कि जो बुंदेलखंड में जो देशी गमछा वाली जो स्टाइल है ना, वो गमछा वगैरह लपेट के या सन ग्लासेस लगा के थोड़ा सा अपने आप को प्रोटेक्ट करके भी रखें। अगर मान लो आवश्यकता नहीं है, बीच में समय मिलता है तो थोड़ा सा, अगर छाया मिलती है तो छाया में बॉडी को थोड़ा सा बीच बीच में
1: शरीर को कवर करके रखें, और हो सके तो उस समय रेस्ट लें, थोड़ा सा आराम लें।
0: हाँ, थोड़ा सा
1: आराम लें। डॉक्टर साहब, कई बार हम देखते हैं कि मरीज को सन स्ट्रोक हो गया, हीट स्ट्रोक हो गया, लू लग गई, साधारण भाषा में कहा जाए तो मरीज गंभीरता से नहीं लेता है, सोचता है कि आम बुखार है, जैसा कि आपने कहा कि धूप के कारण या गर्मी के कारण शरीर गर्म हो रहा है, लेकिन कुछ घंटे बाद स्थिति गंभीर हो जाती है, और इतनी गंभीर हो जाती है कि वो खुद से अपनी सहायता करने की स्थिति में
0: नहीं रहता, उसी को हम लोग सन स्ट्रोक जो स्टेज, जो सन स्ट्रोक की अवस्था है वो वही अवस्था है, और यह एक बहुत सीरियस स्टेज है। इस समय में लोगों को घर पर रहकर इलाज नहीं करना चाहिए, हमारा कहना यह है कि कम से कम जो पीएससीज हैं, मिनी पीएससीज हैं, वहां जाएं और अपने आप को सबसे पहले तो कोशिश करें कि अगर हाइड्रेट की स्थिति में है, आप ओरली आप लिक्विड्स ले सकते हैं, तो आप सबसे पहले अपने आप को हाइड्रेट करें, नंबर वन। नंबर दो, आपका जो फीवर है उसको सेटल डाउन करने के लिए आप ठंडे पानी से, हम लोग कहते हैं कि नहा लीजिए, आप ठंडे पानी को नहा लीजिए और साथ में बॉडी की मसाज करिए, तो आपका जो अंदर की बॉडी की हीट है वो एवेपोरेट हो जाती है। तो हाइड्रेशन जरूरी है और हॉस्पिटलाइज होना जरूरी है, क्योंकि बहुत डिहाइड्रेशन की स्टेज होती है, उसमें आईवी ड्रिप लगना जरूरी है, इसमें एंटीबायोटिक का कोई रोल होता नहीं है।
1: तुरंत आपको नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचना बहुत जरूरी है, और घर पर यदि रह करके आप इलाज कर रहे हैं
0: तो हाइड्रेट करिए, आप
1: एक एक क्षण गवा रहे हैं।
0: जी जी।
1: और जो स्थिति खतरनाक हो सकती है, हाइड्रेट करने के लिए डॉक्टर साहब सबसे सिंपल तरीका, सबसे साधारण तरीका आप बताइए, जैसे ओआरएस का घोल हो गया, घर में बना के जो निर्जलीकरण की अवस्था है या जो मिनरल्स का लॉस हो गया है, खनिज पदार्थ आपके शरीर से निकल गया है पसीने के माध्यम से, कैसे वो हाइड्रेट करें?
0: आप कुछ मत करिए, सिंपल पानी में ग्लूकोज और इलेक्ट्रॉल डाल के आप ले सकते हैं, नींबू नमक शक्कर की शिकंजी में आकर ले सकते हैं, चाहे तो आप ताजा मठा ले सकते हैं, दूध दही की लस्सी बना के आप ले सकते हैं, कोई भी फ्रूट्स ले सकते हैं। इस सीजन में जो आने वाले फ्रूट्स हैं, खासतौर से तरबूज और खरबूज है, ये आप ले सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि आप अपने घर में उपलब्ध चीजें हैं उन पर ज्यादा ध्यान दें, जैसे आम का पना है, बहुत सरलता से बन जाता है, वो ले सकते हैं। बेल का शरबत जो है इस मौसम में सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है, कहते हैं अगर बेल का शरबत लेके अपन निकलते हैं तो लू नहीं लगती, तो ये आप ले सकते हैं, ये बहुत सरलता से उपलब्ध है।
1: देसी जो प्रचलित तरीके हैं
0: वो ज्यादा इंपॉर्टेंट
1: है, बुजुर्गों ने बनाया है,
0: वो ज्यादा
1: समझ के बनाया है
0: जी जी,
1: और एज अ डॉक्टर आप भी उसको एंडोर्स कर रहे हैं कि वो बड़ी अच्छी चीज है, आज के जमाने में भी उतनी ही कारगर और उपयोगी है।
0: हम लोग भी लेते हैं बेल का शरबत, हम लोग भी लेते हैं,
1: डॉक्टर्स भी लेते हैं, ये बहुत जरूरी चीज है। कोल्ड ड्रिंक्स की तरफ से ध्यान हटा करके जो हमारी देसी चीजें हैं,
0: मुझे याद नहीं है मैंने कोल्ड ड्रिंक्स कब लिया है
1: जी, जी
0: मुझे याद नहीं है
1: जी डॉक्टर साहब,
0: हाँ मैं कोल्ड ड्रिंक का नाम नहीं लूंगा, मुझे याद नहीं है मैंने कोल्ड ड्रिंक्स कभी पिया हो, 2-3-4 साल में कभी
1: जी जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब आगे बढ़ना चाहेंगे और लू लगने की स्थिति और डिहाइड्रेशन की, दोनों अवस्थाएं अलग अलग हैं या लू लगने की स्थिति में डिहाइड्रेशन होता ही है?
0: लू लगने की स्थिति में डिहाइड्रेशन होता ही है, बस ये कहना चाहिए कि जो हीट स्ट्रोक वाली स्थिति है, लू लगने वाली स्थिति है, इसकी सीवियरिटी को हम लोग हीट स्ट्रोक बोलते हैं, बट लू लगने में डिहाइड्रेशन इसलिए होता है क्योंकि पसीने का लॉस होता है
1: जी जी। डॉक्टर साहब अब एक चीज और समझना चाहेंगे आपसे, अक्सर होता है कि काम के सिलसिले में हमें कई बार एसी से, कूलर से या पंखे से या घर की चार दीवारी से हमें बाहर निकलना पड़ता है या बाहर से हमें अचानक घर में आना पड़ता है, तो तापमान का फर्क होता है, ये तापमान का फर्क हमारे शरीर के तापमान में भी हलचल पैदा करता है, और क्या ये स्थिति भी कई बार हमें डिहाइड्रेशन की तरफ या लू लगने की तरफ लेकर के जाती
0: है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे जो लोग यूज्ड टू नहीं है बाहर धूप में काम करने के लिए, मतलब एसी में रहते हैं या कमरे में चैम्बर में रहते हैं, और अगर उनको अचानक बाहर निकलने का मौका पड़ जाए, तो अगर लंबे समय तक वो धूप में रहेंगे तो उनको लू लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो थोड़ा सा संभल के चलना पड़ता है, नंबर एक। दूसरा, हमारे पुराने बुजुर्ग लोग भी बोलते थे कि अगर धूप में अगर 2-3 घंटे काम करके अगर मान लो अपन कमरे में आते हैं, घर में आते हैं, तो कहते हैं बेटा थोड़ी देर के लिए बैठ जाओ, थोड़ी देर के लिए सुस्त आ लो, उसके बाद में पानी लेना। तो आपको गर्मी से अगर आप घर में वापस आते हो, तुरंत आपको कोल्ड ड्रिंक्स टाइप की चीज़, बर्फ़ वाले आइटम नहीं लेना है, सादा पानी पी सकते हो। उसी तरह ठंड से अगर मान लो एकदम से धूप में निकलते हैं तो आपको लू लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अपने बॉडी को प्रॉपरली तरीके से, चाहे कैप लगाओ, चाहे आप गमछे ओढ़ो, चाहे आप सनग्लासेस लो, तो ऐसे करके ही अपने आप को प्रोटेक्ट करके आगे बढ़ना चाहिए
1: जी। डॉक्टर साहब बहुत महत्वपूर्ण उपाय आप बता रहे हैं। एक और स्थिति की चर्चा करना चाहेंगे हम, खासकर जब पसीने के माध्यम से बहुत ज्यादा नमक जो हमारे शरीर का होता है बाहर निकल जाता है, और इतना ज्यादा पानी हमारे शरीर से बाहर निकल चुका होता है कि खून हमारा गाढ़ा हो जाता है।
0: हाँ, इस विषय पे आजकल बहुत चर्चा हो रही है
1: डॉक्टर साहब,
0: कि लंबे समय तक अगर अपन धूप में रहते हैं तो पसीने के माध्यम से हमारा नमक और पानी बाहर निकल गया तो शरीर का खून गाढ़ा हो गया, तो अगर शरीर का खून गाढ़ा हो जाता है तो खून में थक्का बनने की जो प्रवृत्ति है वो बढ़ जाती है, और अगर खून में थक्का बनने की प्रवृत्ति बढ़ती है तो हार्ट अटैक के चांसेस और लकवा लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि अगर आपका पसीना ज़्यादा निकल गया है, तो इसलिए हम लोग बार बार इसी चीज़ पर फोकस करते हैं कि आप अपने आप को हाइड्रेट करके रखिए, हर आधा घंटे 1 घंटे में लिक्विड्स लेते रहिए जिसमें आपका हाइड्रेशन प्रॉपर बना रहे, खून गाढ़ा ना हो पाए।
1: खून गाढ़ा होने से कई बार वो हार्ट अटैक तक की स्थिति ले जा सकता है?
0: बिल्कुल, अगर खून गाढ़ा रहेगा तो आपको हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाएंगे, आपको पैरालिसिस के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, स्ट्रोक्स के, लकवा लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं
1: जी। डॉक्टर साहब ये तो हो गई खून गाढ़ा होने की स्थिति, एक चीज और इसी से संबंधित है, खून से संबंधित, या कह लीजिए कि डायबिटीज के मरीजों के लिए हम अगर कोई सलाह आपसे चाहें, तो सनस्ट्रोक की स्थिति में जो मरीज पहले से ही डायबिटिक हैं उनको कितना एहतियात बरतना चाहिए?
0: बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर डायबिटिक वाले पेशेंट हैं और उनको सनस्ट्रोक या डिहाइड्रेशन की स्टेज होती है, तो हाइड्रेशन देते समय हम लोग ध्यान रखते हैं कि उनकी ब्लड शुगर के मॉनिटरिंग प्रॉपरली हो, और हाइड्रेशन में हम लोग फिर ग्लूकोज की ड्रिप ना चढ़ा के नमक की ड्रिप चढ़ाते हैं, जिसको हम लोग नॉर्मल सलाइन या रिंगर बोलते हैं। ये तो हो गई एक बात हाइड्रेशन के लिए। दूसरा ये है कि डायबिटिक पेशेंट को एहतियात बरतने की इसलिए भी आवश्यकता है क्योंकि डायबिटिक पेशेंट्स में न्यूरोपैथी हो जाती है, जिसमें पैरों में झुनझुनी आती है, तो उनको कई बार पैरों में सेंसेशन नहीं होता है। तो कई बार हम लोग देखते हैं कि कई बार बेयर फुटेड, मतलब नंगे पाँव लोग जो चलते हैं, नंगे पाँव चलने से क्या होगा कि डायबिटिक पेशेंट में चूंकि सेंसेशन कम होता है तो उनको

0: पैरों में जलने की चांसेस ज़्यादा होते हैं। दूसरा ये भी है कि जो ब्लड शुगर वाले पेशेंट हैं जिनको इंसुलिन लग रहा है, उनको थोड़ा सा सावधानी इसलिए भी बरतना चाहिए क्योंकि अगर इंसुलिन धूप में रखा रहेगा, गर्मी में रखा रहेगा, तो इंसुलिन ख़राब होने के चांसेस होते हैं। तो इंसुलिन को संभाल के रखें और फ्रिज के डोर पे सबसे नीचे की तरफ रख सकते हैं, उसको फ्रीज करने की आवश्यकता नहीं होती। या अगर आपके घर में फ्रिज नहीं है तो आप मटके के आसपास ठंडक वाली प्लेस पर इंसुलिन को रखें, जिससे कि इंसुलिन ख़राब होने की संभावना ना रहे। तीसरा पॉइंट और भी है, आज की तारीख में हम लोग देखते हैं हर दूसरे तीसरे मरीज के पास ग्लूकोमीटर होता है, तो ग्लूकोमीटर की भी प्रवृत्ति ऐसी होती है कि कंप्यूटराइज्ड होता है ये बेसिकली। तो इसमें ग्लूकोमीटर अगर बहुत हीट में, बहुत गर्मी में अगर ग्लूकोमीटर से अपन ब्लड शुगर की जांच करते हैं तो कई बार जो है रीडिंग फॉल्स आने की भी संभावना है, तो उस चीज़ को भी ध्यान में रखना चाहिए। इस तरह की दो तीन चीज़ें हैं डायबिटिक पेशेंट्स को, ये अपन को देखना चाहिए।
1: जी जी डॉक्टर साहब, चर्चा के आखिरी दौर में हम हैं और आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि मान लीजिए किसी मरीज को सनस्ट्रोक की समस्या हो गई, हमने इसकी गंभीरता या भयावहता की बात कर ली कि कितना सीवियर हो सकता है ये, लेकिन इसका इलाज कितना आसान है अगर वो हॉस्पिटलाइज्ड हो गए, मेडिकल सेंटर पे पहुंच गए?
0: मेन सिस्टम इसका ये है कि आपको हाइड्रेशन प्रॉपर करना है। अगर आप ओरली हाइड्रेट कर सकते हैं अपने आप को, तो आप ओरल में जो हम बताए हुए पेय पदार्थ हैं आप उनको लीजिए। अगर आप उस स्थिति में नहीं है, आपकी बेहोशी वाली स्थिति है, आप ओरली आप जो है लिक्विड नहीं ले पा रहे हैं, तो आप कोशिश करिए कि नियर बाय पीएससी, मिनी पीएससी जाएं और नॉर्मल सलाइन की, ग्लूकोज सलाइन की ड्रिप लगवा लें, तो आपका फायदा हो जाएगा। बहुत सिंपल इसका इलाज है।
1: यानी कि लापरवाही जितना खतरनाक हो सकती है, मेडिकल सेंटर पे पहुंचने के बाद, स्वास्थ्य केंद्र पे पहुंचने के बाद इसका इलाज उतना ही आसान है यदि आप समय से पहुंच गए तो।
0: एक और मैं पॉइंट बोलना चाहूंगा कि गर्मी के समय में हम लोग कोशिश करते हैं, लोगों को एडवाइस करते हैं कि आप बासा भोजन ना लें, आप ताजे भोजन का इस्तेमाल करें। अगर सुबह जो भोजन बनता है उसका सुबह इस्तेमाल करो और शाम का भोजन शाम को इस्तेमाल करो। आप रखा हुआ भोजन, रखे हुए कटे हुए फल, ये वाली चीज़ें आप इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इस गर्मी के मौसम में वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरिया इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होता है। हम लोग देखते हैं उल्टी दस्त के पेशेंट बहुत ज़्यादा आते हैं, टाइफाइड के पेशेंट बहुत ज़्यादा आते हैं। क्या होता है कि अगर मान लो आपके पास कहीं पानी का स्टोरेज है, हमारे जैसे स्वस्थ भारत मिशन के तहत सभी लोग, शासन के लोग, प्रशासन के लोग, लोगों को आह्वान करते हैं, तो ये बेसिकली आह्वान इसलिए करते हैं कि कोशिश करिए कि आप अपने आसपास के क्षेत्र में सफाई रखें। सफाई रखने से क्या होगा कि आपके पास आसपास में मच्छर का जो प्रजनन शक्ति है वो कम हो जाएगी, आपके आसपास में मच्छर नहीं रहेंगे, आपके आसपास में, घर के आसपास में सफाई रहेगी, तो आपको बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों से आपका बचाव हो जाएगा, जैसे मलेरिया, जैसे डेंगू फीवर, इन चीज़ों से आप अपने आप को बचा सकते हैं। और गंदगी से दूर रहेंगे तो आपको दूसरी जो बीमारियां हैं, टाइफाइड की बीमारियां, पीलिया की बीमारियां, उल्टी की बीमारियां, दस्त की बीमारियां, ये सब आपको नहीं होंगी। तो आप आसपास अपने स्वच्छ वातावरण का निर्माण करें और इससे भी बहुत फायदा होगा।
1: जी जी, कैसे तंदुरुस्त रहना है, कैसे सेहतमंद रहना है, कैसे निरोगी रहना है, खासकर इस गर्मी के समय में लू से बच के रहना है, तमाम उपाय, बहुत गंभीर सवाल लेकिन उतने ही सरल उपाय, टिप्स, सलाह हमारे श्रोताओं को डॉक्टर राजेंद्र चौधा साहब आपके माध्यम से आज पहुंचे हैं। बहुत धन्यवाद अदा करना चाहते हैं आपका, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने व्यस्तम कार्यक्रम में से वक्त निकाला और हमारे श्रोताओं को आपने सनस्ट्रोक, लू की स्थिति के बारे में बहुत ही सरल, बहुत ही अपनाए जा सकने वाले उपाय बताएं। मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर राजेंद्र चौधा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
0: थैंक यू दीपक भाई, थैंक यू।
2: ताप घात, लू से बचाव व इलाज, इस विषय पर अभी हमें जानकारी दे रहे थे विशेषज्ञ डॉक्टर राजेंद्र चौधा, जो कि वरिष्ठ मेडिकल विशेषज्ञ हैं। आपसे बातचीत कर रहे थे दीपक निषाद।

हम आपको बता दीजिए, आपके अपने रेडियो सेट पर आपका अपना पसंदीदा रेडियो चैनल आकाशवाणी सागर FM बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर लीजिए। अब आपकी खिदमत में पेश है फिल्मी गीतों से लबरेज कार्यक्रम चित्रपट संगीत।

0: इस कार्यक्रम का पहला गीत अभी आपने सुना, श्रेया घोषाल, जावेद अली और पृथ्वी गंधर्व की आवाजों में। इस गीत को शब्द दिए थे यतेंद्र मिश्रा ने और संगीतबद्ध किया था प्रीतम ने।
1: जब हर सेकंड जरूरी हो, हम हैं तैयार। बंसल हॉस्पिटल सागर में 24/7 क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट, अत्याधुनिक ICU, एडवांस वेंटिलेटर और लाइफ सपोर्ट इमरजेंसी रिस्पांस टीम। हर सांस की सुरक्षा हमारे साथ। संपर्क करें 07582472000।
0: श्रोताओ, आपने अपने रेडियो सेट के स्केल पर चुना है आकाशवाणी सागर FM 102.6 MHz पर, जिस पर आप इस वक्त सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रपट संगीत। और आइए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और धुरंधर फिल्म में हम आपको सुनवाते हैं ये आवाजें, शाश्वत सचदेव, शहजाद अली और उनके साथियों की आवाजों में। इस गीत को लिखा है इरशाद कामिल और साहिल लुधियानवी ने, संगीतबद्ध किया है शाश्वत सचदेव और रोशन ने।

हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के सागर केंद्र से एफएम 102.6 MHz पर, जिस पर आप इस वक्त आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम चित्रपट संगीत का। और आइए अब हम आपको सुनवाते हैं क्रिश 3 में अलीशा चिनॉय और जुबीन गर्ग की आवाजें। इस गीत को लिखा है समीर ने और संगीतबद्ध किया है राजेश रोशन ने।

0: और श्रोता इसी के साथ कार्यक्रम चित्रपट संगीत यहीं पर संपन्न होता है। यह आकाशवाणी का सागर केंद्र एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा करें।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
2: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की।

चित्रलोक कार्यक्रम में आइए सुनते हैं अगला गाना। फिल्म है गजनी, कार्तिक की आवाज, प्रसून जोशी के बोल, ए आर रहमान का संगीत।

गजनी फिल्म से आप सुन रहे थे ए आर रहमान का कंपोज किया हुआ ये बेहतरीन म्यूजिक। आइए अगला गाना सुनते हैं उन्हीं की कंपोजिशन में, युवराज फिल्म से, बेनी दयाल, श्रेया घोषाल और ए आर रहमान की आवाजों में गुलजार के बोल।

कार्यक्रम का अगला गाना सुनते हैं टशन फिल्म से, उदित नारायण और महालक्ष्मी अय्यर की आवाज में, कौसर मुनीर के बोल, विशाल शेखर का संगीत।

0: डिस्कशन फिल्म से गाना हम आपको सुनवाएंगे, लेकिन आइए सबसे पहले सुनते हैं ये संदेश।
1: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी।
0: सुनवाएंगे हम आपको टशन फिल्म से वो गाना, लेकिन बस एक छोटे से अंतराल के बाद।

आप सुन रहे हैं चित्रलोक कार्यक्रम। आइए अब सुनवाते हैं हम आपको टशन फिल्म से गाना जिसके लिए करवा रहे थे हम आपको इतना इंतजार। लेकिन कहते हैं ना, अक्सर इंतजार का फल मीठा होता है। इस बार आपके इस इंतजार का फल थोड़ा सुरीला होने वाला है।

कार्यक्रम का अगला गाना सुनते हैं, जब हैरी मेट सेजल, इस फिल्म से अरिजीत सिंह की आवाज, इरशाद कामिल के बोल और म्यूजिक है प्रीतम का।

0: इसी गाने के साथ वक्त हो चला है इस कार्यक्रम से इजाजत लेने का। डीजे सुदक्षिणा को इजाजत, और सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती।
1: यस, हु इज इट?
2: डॉन।

0: भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान
2: और बीच में एक गैप था, लिटरली जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हूँ, जंप कर जाती। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
3: श्रोताओं नमस्कार।
4: सोना इन्ना कूल मुंडा इन्ना वंडरफुल, ऐनु वेख जे कुड़िया तो कहंदी ओ माय
3: गॉड। जी हाँ, आज बातें एक ऐसे निर्माता निर्देशक की जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से बढ़ा दी लाखों दिलों की धड़कन, जिन्होंने सिखाए युवाओं को प्यार के नए मायने, जिन्होंने नई पीढ़ी को ये विश्वास दिलाया कि उलझे रिश्तों में भी खिलते हैं चाहत के फूल, उन्हें पाकर बरबस ही लोगों के होंठों पर ये नगमा गूंज उठता।

25 मई 1972 के दिन मशहूर फिल्म निर्माता यश जौहर और उनकी पत्नी हीरू जौहर के घर जन्मे करण जौहर। बचपन में फिल्मी दुनिया से वो दूर ही रहना चाहते थे। आज के सफल फिल्मकार करण जौहर जब स्कूल में पढ़ा करते थे तो अपने सभी दोस्तों से कहा करते कि उनके पिता एक व्यापारी हैं। लेकिन बड़े होते होते उन्होंने अपनी मंजिल की तलाश में फिल्मी दुनिया की राहों में ही चलने का निर्णय लिया।

पिता यश जौहर की ख्वाहिश थी कि उनका बेटा फिल्मी पर्दे पर चमके और लोगों के बीच एक अभिनेता की तरह नाम कमाए। ये तो पता नहीं कि पिता की इच्छा के लिए या अपनी मंजिल को परखने के लिए, पर करण जौहर ने अपने करियर की शुरुआत बतौर अभिनेता ही की। मात्र 17 साल की उम्र में वो नजर आए दूरदर्शन के एक सीरियल इंद्रधनुष में, लेकिन उनके हुनर में कई ऐसे रंग मौजूद थे जिन्हें वो सभी के सामने लाना चाहते थे, और इसके लिए उन्होंने चुनी पर्दे के पीछे की जिंदगी। अब उन्हें मिल चुकी थी उनकी राह।

बचपन से राज कपूर, यश चोपड़ा और सूरज बड़जात्या को अपना आइडल मानने वाले करण ने निर्देशन की दुनिया में कदम रखने के लिए साथ लिया निर्माता निर्देशक आदित्य चोपड़ा का। बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर करण ने जिस फिल्म से शुरुआत की वो फिल्म थी सुपर डुपर हिट फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे।

फिल्म में करण ने शाहरुख खान के दोस्त का किरदार भी निभाया था। पर्दे पर निभाई गई ये दोस्ती निजी जिंदगी में आज तक बरकरार है। जब करण ने फिल्म निर्देशन में कदम रखा तो उन्होंने अपनी फिल्म में शाहरुख खान को मुख्य भूमिका दी और उनके साथ साइन किया फिल्मी दुनिया से ही अपनी एक और दोस्त काजोल को। इन दोनों कलाकारों के साथ इस फिल्म में थी रानी मुखर्जी। सभी के दिलों को भाने वाली 1998 में आई करण जौहर की पहली निर्देशित फिल्म थी कुछ कुछ होता है।

करण जौहर की इस पहली निर्देशित फिल्म ने अपार सफलता हासिल की। फिल्म कुछ कुछ होता है ने न सिर्फ अलग अलग फिल्मी पुरस्कारों को समेटा बल्कि एक संपूर्ण मनोरंजन करने वाली फिल्म के तौर पर राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित हुई। इसके बाद मानो करण जौहर को मिल गई उनकी राह, जहां वो अपनी मंजिल को पाने के लिए आगे बढ़ चले। 2001 में उन्होंने निर्देशित की अपनी दूसरी फिल्म कभी खुशी कभी गम, जहां एक ओर करण के जीवन में खुशियों के रंग बिखर रहे थे, वहीं गम ने जिंदगी में दस्तक दी। साल 2004 में पिता यश जौहर करण को माँ हीरू जौहर की जिम्मेदारी सौंपकर इस दुनिया के रंगमंच को छोड़ गए। करण दुख के इस समय में अपनी माँ हीरू जौहर के सहारे बने और बाद में उन्होंने पिता की फिल्म कंपनी धर्मा प्रोडक्शन को भी संभाला। करण जौहर ने अब तक जितनी भी फिल्म निर्देशित की उन सभी की कहानी उन्होंने खुद लिखी और साल 2006 में आई एक ऐसी फिल्म जिस फिल्म को उन्होंने न सिर्फ लिखा और निर्देशित किया बल्कि इस फिल्म के निर्माता भी वही थे। ये फिल्म थी वैवाहिक रिश्ते के उलझन को दर्शाती फिल्म कभी अलविदा ना कहना।

ऑलराउंडर कहना गलत नहीं होगा। वो निर्माता, निर्देशक, लेखक, अभिनेता तो हैं ही, साथ ही बतौर कॉस्ट्यूम डिजाइनर भी फिल्मों में काम कर चुके हैं। ऐसी कुछ फिल्में हैं, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, दिल तो पागल है, डुप्लीकेट, मोहब्बतें, वीर जारा और मैं हूं ना। ज्यादातर उन्होंने शाहरुख खान के लिए कॉस्ट्यूम डिजाइन किए और साथ ही अमिताभ बच्चन के लिए भी।

साल 2009 में एक बार फिर करण जौहर अपनी पसंदीदा जोड़ी शाहरुख और काजोल के साथ लेकर आए एक ऐसी फिल्म जो सामाजिक मुद्दों की बात करते हुए सभी के दिलों को छू गई। करण के करियर की बेहतरीन फिल्मों में से एक मानी जाने वाली ये फिल्म थी माई नेम इज खान।

करण जौहर न्यूमरोलॉजी में काफी विश्वास रखते थे और इसीलिए उनकी फिल्मों के नाम शुरू होते थे अंग्रेजी के अक्षर से। लेकिन जब 2006 में उन्होंने फिल्म लगे रहो मुन्ना भाई देखी तो उन्हें लगा कि वो भी अब इन बातों में विश्वास नहीं करेंगे। इसके बाद उन्होंने कई अलग अलग अक्षरों से शुरू होने वाली फिल्मों का निर्माण किया। यहाँ हम आपको बताते चलते हैं उन फिल्मों के बारे में जिनसे करण जौहर बतौर निर्माता जुड़े हैं। ऐसी कुछ फिल्में हैं, कल हो ना हो, दोस्ताना, वेक अप सिड, आई हेट लव स्टोरीज, वी आर फैमिली, अग्निपथ और ये जवानी है दीवानी।

0: माने ना।
1: साल 2012 में करण जौहर फिल्मी दुनिया में लेकर आए अपने तीन नए स्टूडेंट्स आलिया भट्ट, वरुण धवन और सिद्धार्थ मल्होत्रा। तीन नए चेहरों को सामने लाने वाली उनकी ये फिल्म थी स्टूडेंट ऑफ द ईयर।

फिल्मी सितारों के बच्चों को लॉन्च करने में माहिर हैं। उन्होंने ऐसे कई नए सितारों को रुपहले पर्दे तक पहुंचाया है। हाल ही में उन्होंने कुछ फिल्मी सितारों के बच्चों को अपने द्वारा निर्मित फिल्म के जरिए लोगों से रूबरू करवाया है। ये फिल्में हैं धड़क, जिसमें उन्होंने ईशान खट्टर और जाह्नवी कपूर को लॉन्च किया,

करण जौहर यूं तो कई फिल्मों में गेस्ट अपीयरेंस करते नजर आए, लेकिन उन्होंने 2015 में अनुराग कश्यप की फिल्म बॉम्बे वेलवेट में एक ऐसा किरदार निभाया जो लोगों के मन पर छाप छोड़ गया। करण जौहर ने पहली बार एक नेगेटिव किरदार निभाया जिसका नाम था कैजात खंबाटा। इस नेगेटिव किरदार ने फिल्म को मिले नेगेटिव रिस्पांस के बीच न सिर्फ दर्शकों के बल्कि आलोचकों के भी पॉजिटिव कमेंट हासिल किए। इस किरदार के लिए करण जौहर ने अनुराग कश्यप से सिर्फ 11 रुपए लिए।

0: मोहब्बत बुरी बीमारी।
1: कई सालों तक सिर्फ फिल्म निर्माण से जुड़े रहने के बाद करण जौहर एक बार फिर तैयार थे एक नई फिल्म के साथ, जिसकी कहानी उन्होंने सिर्फ 30 दिनों में लिखी थी। ये फिल्म एक बार फिर करण जौहर के लिए बेहतरीन सक्सेस लेकर आई। साल 2016 में आई ये फिल्म थी ए दिल है मुश्किल।

भूमिका थी एक पिता की। करण जौहर सैरोगेसी के जरिए बन बैठे जुड़वां बच्चों के पिता। उन्होंने अपने बेटे का नाम पिता के नाम पर यश रखा है और बेटी को उन्होंने अपनी माँ हीरू जौहर के नाम से मिलता जुलता नाम रूही दिया।

करण जौहर की बतौर निर्माता कई फिल्में आई जिन्हें दर्शकों ने सराहा। इनमें शामिल हैं मीनाक्षी सुंदरेश्वर, सूर्यवंशी, गहराइयां, ब्रह्मास्त्र पार्ट 1, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी और जुग जुग जियो।

करण जौहर ने देशभक्ति से जुड़ी कई फिल्मों का भी निर्माण किया जिन्हें काफी सराहा गया। इनमें नाम शामिल हैं गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल, ए वतन मेरे वतन और कैप्टन विक्रम बत्रा के जीवन पर बनी फिल्म शेरशाह, जिसे दर्शकों का भरपूर प्यार मिला। केसरी 2 द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ जलियांवाला बाग सभी को पसंद आ रही है। ओ शेरा।

साल 2020 में सिनेमा से जुड़े बेहतरीन काम के लिए करण जौहर को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। फ्रेंच में मास्टर डिग्री रखने वाले करण जौहर प्रेम और रिश्तों की भाषा समझने और समझाने में भी मास्टर हैं। वो आगे दर्शकों तक प्रेम का ये संदेश अपनी फिल्मों के जरिए पहुंचाते रहेंगे, इसकी पूरी उम्मीद है।

0: आज के फनकार। ये कार्यक्रम आज केंद्रित था निर्माता निर्देशक करण जौहर पर, शोध आलेख और स्वर नेहा शर्मा का। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जय। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: अगला प्रसारण बस कुछ ही पलों में।
1: भोपाल से प्रस्तुत है धार से लेके चिट्ठी, आलेख सुनील सचान, वाचन स्वर दीपा सिंह। पश्चिमी मध्य प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य धार जिले में नौतपे के तपिश होने से आमजन हलाकान है। भीषण गर्मी के चलते जिले में जल स्तर लगातार नीचे जा रहा है। वहीं किसान आगामी खरीफ फसल के लिए खेत तैयार कर रहे हैं। जिले में इस साल 5,15,000 हेक्टेयर क्षेत्र में खरीफ की फसल बोनी का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें 3,00,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सोयाबीन, 1,11,000 हेक्टेयर क्षेत्र में कपास, 80,000 हेक्टेयर क्षेत्र में मक्का और शेष रकबे में मूंग, उड़द, मूंगफली आदि फसलें शामिल हैं। धार जिले में भी वर्ष 2026 को कृषि वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में खरीफ सीजन पूर्व जिले में 10 दिवसीय कृषि रथ का संचालन किया जा रहा है। इस अभियान के तहत तैयार किए गए विशेष कृषि रथ को केंद्रीय मंत्री और क्षेत्रीय सांसद सावित्री ठाकुर तथा कलेक्टर राजीव रंजन मीना द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। जिले के सभी 13 विकास खंडों के लिए तैयार किए गए 13 कृषि रथ प्रतिदिन 4 ग्राम पंचायतों में पहुंचकर कृषि को लाभकारी व्यवसाय बनाने के उपाय और जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। धार जिले में समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन का कार्य प्रगति पर है। 9 अप्रैल से प्रारंभ हुई खरीदी 28 मई तक चलेगी। जिले में इस साल 250 मीट्रिक टन खरीदी का लक्ष्य निर्धारित है, जिसमें से अब तक 229 मीट्रिक टन से अधिक की खरीदी 25,435 किसानों से की जा चुकी है। जिले में इस साल 44,913 किसानों ने अपना पंजीयन करवाया था, जिसमें से 30,510 किसानों को स्लॉट बुक हुए हैं। धार जिले में जनगणना 2027 का पहले चरण का कार्य चल रहा है। 31 मई तक चलने वाले पहले चरण में प्रगणकों ने समय से पहले ही अपने लक्ष्य को हासिल कर लिया है। जिले में 7,17,530 मकान होने के आंकड़े प्राप्त हुए हैं। काम पूरा होने के बाद क्रॉस चेकिंग का कार्य भी किया जा रहा है, ताकि कोई गलती की गुंजाइश ना रहे। धार जिले में आमजनों की सुविधा और आधार सेवाओं को सुलभ बनाने के उद्देश्य से धार के प्रधान डाकघर सहित विभिन्न डाकघरों में विशेष आधार शिविर आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें नागरिकों को नवीन आधार पंजीयन, बायोमेट्रिक अपडेट और मोबाइल लिंकिंग जैसी सुविधाएं मिल रही हैं। धार स्थित ऐतिहासिक भोजशाला को लेकर उच्च न्यायालय इंदौर द्वारा दिए गए फैसले के बाद से सभी ओर उत्साह का माहौल है। भोजशाला के पट खुलने के साथ ही बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी है। हाल ही में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव धार के ऐतिहासिक भोजशाला पहुंचे। उन्होंने मां वाग देवी की पूजा अर्चना और आरती की। मुख्यमंत्री ने घोषणा की

के धार में माता सरस्वती लोक विकसित किया जाएगा। राजा भोज शोध संस्थान की स्थापना भी की जाएगी। इस अवसर पर उनके साथ केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर, नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, धार विधायक नीना वर्मा सहित अन्य जनप्रतिनिधि भी उपस्थित थे। धार जिले में जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए जल गंगा संवर्धन अभियान चलाया जा रहा है। गंगा दशहरा के पावन अवसर पर जिले भर में जन सहभागिता से व्यापक स्तर पर जल स्रोतों के पूजन और गंगा कलश यात्रा का आयोजन किया गया। धार जिला इस अभियान में प्रदेश में छठवें स्थान पर रहते हुए उत्कृष्ट कार्य कर रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जल संरक्षण केवल अभियान नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य का संकल्प है। धार जिले के विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों में राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया गया। स्वास्थ्य कर्मियों को डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसी घातक बीमारियों के नियंत्रण और रोकथाम के लिए सामूहिक रूप से शपथ भी दिलाई गई। इस मौके पर स्वच्छता बनाए रखने का भी संकल्प दिलाया गया। धार के प्रसिद्ध शिल्पकार और संगीतज्ञ रघुनाथ राव कृष्णराव फड़के कला अवदान को समर्पित 3 दिवसीय 11वां पद्मश्री फड़के संगीत समारोह गतिनोर जिला मुख्यालय पर आयोजित किया गया। गायन, वादन और नृत्य की संगीत त्रिवेणी का संगम माने जाने वाले फड़के संगीत समारोह में शास्त्रीय नृत्य, गायन और वादन की नई विधाओं से संगीत प्रेमी परिचित हुए। श्रीलंका नृत्य दल की प्रमुख डॉक्टर अंजलि मिश्रा को इस साल पद्मश्री फड़के कला सम्मान से सम्मानित किया गया। वहीं अंतिम दिन कोलकाता की ख्याल गायिका श्रीमती पियाली चटर्जी ने गीत और भजन प्रस्तुत किए। धार जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

0: आकाशवाणी भोपाल से अभी आप सुन रहे थे धार जिले की चिट्ठी। आलेख था सुनील सचान का, वाचन स्वर दीपा सिंह का था। हमारा अगला प्रसारण बस कुछ ही पलों में होगा।
1: यह आकाशवाणी का सागर केंद्र है, FM एंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 10:05 हुए हैं। लीजिए अब सुनिएगा शास्त्रीय संगीत पर आधारित कार्यक्रम राग रागिनी, लेकिन इस अंतराल के बाद।
2: जब हर सेकंड जरूरी हो, हम हैं तैयार। बंसल हॉस्पिटल सागर में 24/7 क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट, अत्याधुनिक ICU, एडवांस वेंटिलेटर और लाइफ सपोर्ट इमरजेंसी रिस्पांस टीम। हर सांस की सुरक्षा हमारे साथ। संपर्क करें 07582472000।
3: यदि आप अब कोई नई कार या बाइक लेने की तैयारी कर रहे हैं तो वो आपको काफी किफायती दामों पर उपलब्ध होगी। GST परिषद ने छोटी कारों 350 cc तक की बाइक और तिपहिया वाहनों पर टैक्स 28% से घटाकर 18% कर दिया है। 22 सितंबर 2025 से लागू होने वाला ये त्योहारी तोहफा एंट्री लेवल गाड़ियों को और भी किफायती बना देगा, जबकि लग्जरी कारें और बड़ी बाइक 40% के नए स्लैब में आ गई हैं, लेकिन फिर भी उन पर कम टैक्स लगेगा।
2: जब हर सेकंड जरूरी हो, हम हैं तैयार। बंसल हॉस्पिटल सागर में 24/7 क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट, अत्याधुनिक ICU, एडवांस वेंटिलेटर और लाइफ सपोर्ट इमरजेंसी रिस्पांस टीम। हर सांस की सुरक्षा हमारे साथ। संपर्क करें 07582472000।
1: आइए श्रोताओं, कार्यक्रम राग रागिनी में आज हम आपको सुनवा रहे हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खां और उनके हमनवाओं से शहनाई वादन। राग है राग सुर मल्हार।

और श्रोता इसी के साथ कार्यक्रम राग रागनी यहीं पर संपन्न होता है। आकाशवाणी का सागर केंद्र एफएम 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर सुबह के 10:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिएगा कार्यक्रम आपकी पसंद।

0: बस तुम रहते हो।
1: कार्यक्रम आपकी पसंद की है। पहली पेशकश अभी आपने सुनी धड़कन फिल्म से। इस गीत को आवाजें दी थी अलका याग्निक और अभिजीत ने। गीत को लिखा था समीर ने, संगीतबद्ध किया था नदीम श्रवण ने और पसंद करने वाले आप सभी लोग थे। ये पत्र ये हमें व्हाट्सएप से फरमाइश मिली है। एक रिश्ता रेडियो श्रोता संघ अंबई तहसील सिल्लोड़ जिला छत्रपति संभाजीनगर औरंगाबाद महाराष्ट्र से अनिल घोटके, प्राजक्ता घोटके, वैष्णवी घोटके, गायत्री घोटके, यज्ञेश घोटके, सालार पहलगाम काश्मीर से पीरजादा मिराजुद्दीन, नजमुद्दीन, कैसरुद्दीन, नेहरू चौक पेठण से डॉक्टर सुरेश जाधव, अनिता जाधव, आरती पूजा, सोनल जाधव, बेबी सिया जाधव, जालना शहर से सोमनाथ जाधव, गीता जाधव, ओम जाधव, सुभाष जाधव, चंदन जाधव, एकनाथ जाधव, संगीता जाधव। और ये पत्र इसी गीत के लिए हमें लिख भेजा है। छत्रपति संभाजीनगर से राजेश सावले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और श्रीमती शीतल राजेश।
2: जब हर सेकंड जरूरी हो हम हैं तैयार। बंसल हॉस्पिटल सागर में 24/7 क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट, अत्याधुनिक आईसीयू, एडवांस वेंटिलेटर और लाइफ सपोर्ट इमरजेंसी रिस्पांस टीम। हर सांस की सुरक्षा हमारे साथ। संपर्क करें 07582472000।
1: ये आपके अपने रेडियो सेट पर आकाशवाणी सागर एफ एम 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर, जिस पर आप इस वक्त ट्यून किए हुए अपना मनपसंद कार्यक्रम आपकी पसंद और आइए आपकी पसंद कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और इन श्रोताओं की पसंद पर हम आपको अगला गीत सुनवाने जा रहे हैं। लक्ष्मीपुरा चोपड़ा के सामने सागर मध्य प्रदेश से एना शिवात्री, श्रीमती केशव शिवात्री, हेमंत, योगेश, कैलाश शिवाती, निशा, सुनीता, विनीता, अभय, आभा, अनिमेश, आयुष और पूरा शिवाती परिवार, ये इनका पत्र हमें मिला था। और साथ

हमें कुछ व्हाट्सएप भी मिले हैं। डाबकी रोड अकोला महाराष्ट्र से सुशीला देवी मंदूरकर, सदानंद मंदूरकर, कुमार गौरव मंदूरकर, आरव अर्पिता, और नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्ति कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, योगेश पुरी, ट्विंकल डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी, दिशा गोस्वामी। भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश शर्मा, गौरव शर्मा, गौतम नगर नांदेड़ से, महाराष्ट्र से प्रभाकर जोंगले, आरती जोंगले। आप सभी ने सुनना चाहा है फिल्म हीर रांझा में लता मंगेशकर की आवाज, कैफी आजमी के बोल हैं और संगीत है मदन मोहन।

आपने चुना है अपना मनपसंद रेडियो चैनल आकाशवाणी सागर एफएम बैंड 102.6 MHz पर, जिस पर आप इस वक्त सुन रहे हैं अपने मनपसंद फिल्मी गीत कार्यक्रम आपकी पसंद में। और आइए आपकी पसंद कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब हम आपको सुनवाते हैं खामोशी फिल्म में। एक बार फिर लता मंगेशकर की आवाज, गुलजार के बोल हैं और तर्ज बनाई है हेमंत कुमार ने। और अनुरोध करता आप सभी लोग हैं, ये हमें पत्र मिला है मयंक रेडियो श्रोता संघ नवागढ़ कटाई से, नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा शारदा, दामिनी वर्मा छत्तीसगढ़ से। और ये हमें पत्र मिला है बेमेतरा छत्तीसगढ़ से, सुरेश कुमार सारथी, कमलकांत सारथी, वीरेंद्र ब्रजकांत सारथी। और व्हाट्सएप मिला है हमें मालोट पंजाब से सतीश मिगलानी, सीमा मिगलानी, अनमोल मिगलानी, गांव टोरोवाल जिला नवा शहर पंजाब से गगनदीप थांदी, तृप्ता थांदी, डॉक्टर प्रियंका थांदी, डॉक्टर प्रशांत थांदी, डॉक्टर प्रियम थांदी, बेबी वामिका और वाणी थांदी।

फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। यह है आपके अपने रेडियो सेट पर आपका अपना पसंदीदा रेडियो चैनल आकाशवाणी सागर। और साथ ही साथ हम आपको बता दें, न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी आप अपने मोबाइल पर हमारे आकाशवाणी सागर का लाइव प्रसारण सुन रहे हैं, जिसके अंतर्गत आप इस वक्त ट्यून किए हुए कार्यक्रम आपकी पसंद हो रहा है। ये आपकी पसंद कार्यक्रम को और आगे बढ़ाते हैं और अब हम आपको सुनवाते हैं फिल्म पिघलता आसमान का ये गीत। अलका याग्निक और किशोर कुमार की आवाजें हैं। माया गोविंद ने इसे लिखा है और इसकी धुन तैयार की है कल्याण जी आनंद जी ने, और अनुरोधकर्ता आप सभी लोग हैं। ये पत्र हमें मिला है कमर कॉलोनी बड़वाह से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य, अदिति, शिवानी और मीनूराज श्रीमाली। साथ ही व्हाट्सएप से भी हमें फरमाइश लिख भेजी है ग्राम नगर कोहरा जिला राजनंदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, देवी साहू, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा बेबी, आराध्य साहू, कवि रेडियो श्रोता संघ डोंडी लोहारा बालो छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी पूजा तामुरिया, राधिका प्रभा देवी तामुरिया, मास्टर अल कबीर, महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारिणी ठाकुर, सूरज ठाकुर, ज्योति ठाकुर और बाबू रेयांश ठाकुर।

आकाशवाणी के हम सागर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर और आप सुन रहे हैं इस वक्त कार्यक्रम आपकी पसंद और देखिए चलते चलते हम आ गए हैं इस कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति की ओर जो कि हमें ये व्हाट्सएप किए हैं जवाहर नगर दुर्ग छत्तीसगढ़ से आरसी कामरे करुणा मीना अश्विनी विपुल कामड़े सनावद मध्य प्रदेश से शेख मूसा मोहसिन अशोक वर्मा राजकुमार बोड़ाना आर्य नगर कोहका भिलाई छत्तीसगढ़ से उत्तम सिंह जंगेल मोरस जंगेल अनिल कुमार अजीत कुमार आयुष जंगेल नंदिनी जंगेल धमधमा ग्राम सुखरी कला से अमित जंगेल शकुन जंगेल आरुषि ओशिका आदित्य जंगेल अंजलि जंगेल और ये पत्र हमें मिला है इसी गीत के लिए ताज मंजिल लक्कड़ बाजार खंडवा से मध्य प्रदेश से मोहम्मद रफीक पंवार मोहम्मद साकिब पंवार मोहम्मद हसनैन पंवार बाजार चौक ग्राम दीवाल से शंकरलाल गंगराड़े अवनीता गंगराड़े छोटू पूजा रोशनी अजय और वामिका गंगराड़े ग्राम छैगांव वादेवी जिला खंडवा से ये हमें पत्र मिला है अशोक कुमार वाघे वंदना वाघे भूपेंद्र वाघे झवर वाघे तनुश्री आरोही और काना वाघे आप सभी ने सुनना चाहा है रोटी फिल्म में लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजें आनंद बख्शी के बोल और कल्याण जी आनंद जी का ये संगीत

0: जब हर सेकंड जरूरी हो हम हैं तैयार। बंसल हॉस्पिटल सागर में 24/7 क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट, अत्याधुनिक ICU, एडवांस वेंटिलेटर और लाइफ सपोर्ट इमरजेंसी रिस्पांस टीम। हर सांस की सुरक्षा हमारे साथ। संपर्क करें 07582472000।
1: और श्रोता, इसी के साथ कार्यक्रम आपकी पसंद यहीं पर संपन्न होता है। हम आपको बता दें, आज का ये गीतों भरा सफर आपने तय किया अपने रेडियो मित्र मासूम आलम के साथ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी सागर FM 102.6 MHz पर। सुबह के 11 बजे हैं। लीजिए, अब आप सुनेंगे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, लेकिन इस अंतराल के बाद।
0: जब हर सेकंड जरूरी हो हम हैं तैयार। बंसल हॉस्पिटल सागर में 24/7 क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट, अत्याधुनिक ICU, एडवांस वेंटिलेटर और लाइफ सपोर्ट इमरजेंसी रिस्पांस टीम। हर सांस की सुरक्षा हमारे साथ। संपर्क करें 07582472000।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: स्वागत है आप सभी श्रोताओं का उमंग कार्यक्रम में। विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता, डिंपल देवांगन जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: मनुष्य को हमेशा मौका नहीं ढूंढना चाहिए, क्योंकि जो आज है वही सबसे अच्छा मौका है। आज को ही मौका बना लीजिए।
3: आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी, पूजा, पुष्कर, लेहान, जिज्ञासा, विराट, तेजस्वी और गौरव तामुरिया जी का।
2: और इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का। वो लिखते हैं,
3: अजीत जी और विमलेश जी नमस्कार। आज उमंग कार्यक्रम में दो बहुत ही सुंदर, प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम प्रसारित किए गए। पेड़ की बात शीर्षक से जगदीश चंद्र बसु पर केंद्रित कार्यक्रम ने संवाद के माध्यम से उनके कार्यों, उपलब्धियों, प्रयासों और विज्ञान जगत में उनके अभूतपूर्व योगदान को बहुत सरलता से चर्चित किया।
2: जी,
3: योगेश ठाकुर जी आगे लिखते हैं,
2: ये कार्यक्रम बच्चों को बसु जी के कार्यों के बारे में एक संक्षिप्त झलक प्रदान करता है। भारत की पहली महिला पायलट सरला ठकराल पर आधारित कार्यक्रम बहुत ही शिक्षाप्रद और मनोरंजक था। इस कार्यक्रम के माध्यम से सरला ठकराल के द्वारा प्राप्त की गई अभूतपूर्व सफलता की गाथा का पता चलता है। इतने सुंदर कार्यक्रम को श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ।
3: योगेश जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद इतनी सुंदर प्रतिक्रिया देने के लिए। अगला संदेश हमें मिला है राधेनगर अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया जी का।
2: चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और बिमला अनेजा
3: और ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और अबान अब्बासी,
2: धन्यवाद आपके संदेशों के लिए। और अब प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए। श्रोताओं, आपका हम आभार प्रकट करते हैं कि आपने हमारे कार्यक्रमों की इस श्रृंखला को सराहा है,
3: क्योंकि इस श्रृंखला में आपके लिए हम लेकर आते हैं ढेर सारी मनोरंजक और रोचक जानकारियाँ। तो विमलेश जी, इस सप्ताह हम क्या जानकारी साझा करने जा रहे हैं, जरा श्रोताओं को तो बताइए।
2: अजीत जी, इस सप्ताह हम चर्चा करेंगे दुनिया के कुछ प्रसिद्ध फूलों पर।
3: जी मुझे याद आया, इसी श्रृंखला में हम भारत के कुछ प्रसिद्ध फूलों की चर्चा भी तो कर चुके हैं।
2: बिल्कुल।
3: तो आज किस फूल की चर्चा की जाए?
2: अजीत जी, आज हम बात करेंगे विश्व प्रसिद्ध फूल

0: चेरी ब्लॉसम की।
1: तो क्यों ना शुरुआत की जाए आपसे।
0: जी श्रोताओं, चेरी ब्लॉसम दुनिया के सबसे प्रसिद्ध फूलों में से एक है। इसका मूल है जापान, यानी इसकी उत्पत्ति जापान से मानी जाती है। जापानी भाषा में इसे सुकुरा कहा जाता है। यह फूल जापान की राष्ट्रीय और सांस्कृतिक पहचान माना जाता है।
1: जी विमलेश जी, ठीक वैसे ही ना जैसे भारत की राष्ट्रीय पहचान फूलों के संदर्भ में कमल है।
0: बिल्कुल सही। जब ये फूल खिलते हैं तो लगभग पूरा देश गुलाबी और सफेद रंगों की मनमोहक छटा से भर जाता है। पूरा वातावरण बेहद खूबसूरत हो जाता है। इसके खिलने के समय में बहुत से पर्यटक खास तौर से जापान आते हैं।
1: विमलेश जी, आपने इन फूलों के खिलने के बारे में कहा
0: जी,
1: तो ये हमारे श्रोता जरूर जानना चाहेंगे कि चेरी ब्लॉसम फूलों के खिलने का समय कब होता है।
0: अजीत जी, चेरी ब्लॉसम के फूल सामान्यतः मार्च और अप्रैल माह के बीच वसंत ऋतु में खिलते हैं। हालांकि स्थान और तापमान के अनुसार इसके खिलने के समय में थोड़ा बहुत अंतर आ सकता है।
1: विमलेश जी, एक और बेहद रोचक बात मैंने फूलों के विषय में पढ़ी थी, और वो ये कि चेरी ब्लॉसम के पेड़ों पर इस मौसम में पहले फूल खिलते हैं, बाद में पत्तियां निकलती हैं।
0: जी बिल्कुल सही, और इसके कारण पेड़ पूरी तरह से फूलों से ढका हुआ दिखाई देता है। श्रोताओं, आपको बता दें कि जापान में चेरी ब्लॉसम फूलों के खिलने के समय त्योहार जैसा माहौल होता है। इस समय जापान में एक विशेष उत्सव मनाया जाता है जिसे हनामी कहते हैं। अजीत जी, अब आपकी बारी।
1: जी श्रोताओं, हनामी को चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल भी कहा जाता है।
0: जी
1: आइए जानते हैं कि इस उत्सव के दौरान वहां लोग क्या करते हैं।
0: इस समय शहरों, गांवों और कस्बों में रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिनमें चित्रकारी, गीत संगीत और जापानी संस्कृति की झांकियां दिखाई देती हैं। लेकिन हनामी परंपरा की एक सबसे बड़ी खास बात यह है कि
1: इस समय लोग चेरी ब्लॉसम पेड़ों के नीचे बैठकर परिवार, मित्रों और खासकर बच्चों और बुजुर्गों के साथ समय बिताते हैं।
0: जी
1: वे एक साथ बैठकर चेरी ब्लॉसम फूलों की अनोखी छटा का आनंद लेते हैं और प्रकृति को धन्यवाद देते हैं।
0: जी दूर दूर शहरों में रहने वाले परिवार के लोग इस समय एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं
1: जी,
0: और स्वादिष्ट भोजन करते हैं, जिनमें विशेष है सकुरा मोची, ये मीठे चावल का केक होता है।
1: और दूसरा व्यंजन है डांगो, जिन्हें हनामी डांगो भी कहते हैं। ये पिसे हुए चावल के बने हुए गोल आकार के पकवान होते हैं। एक और व्यंजन है खास, उसका नाम है टेम्पुरा।
0: जी
1: इसमें तली हुई सब्जियां और मिठाई और विशेष जापानी चाय परोसी जाती है।
0: ऐसा नहीं है कि चेरी के फूल सिर्फ जापान में ही हैं। इन फूलों को विभिन्न देशों ने अपनाया, जैसे कोरिया, चीन, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत। इन देशों ने जापान से इसकी पौध को लेकर अपने देशों में विकसित किया है।
1: एक और खास बात आपको बता दें कि चेरी ब्लॉसम के फूल बहुत कम समय के मेहमान होते हैं।
0: जी
1: ये एक से दो सप्ताह तक ही अपनी पूरी सुंदरता में रहते हैं, फिर मुरझा जाते हैं। एक और खास बात आपको बता दें श्रोताओं कि चेरी ब्लॉसम वाले पेड़ों में जो चेरी के फल लगते हैं ना, वो बहुत छोटे और खट्टे होते हैं। इन पेड़ों में वो चेरी के फल नहीं लगते जो सामान्य तौर पर खाए जाते हैं।
0: खाने वाले चेरी के फलों के पेड़ अलग होते हैं। दरअसल चेरी ब्लॉसम के पेड़ सजावटी पेड़ माने जाते हैं। इनकी प्रजाति चेरी फल वाले पेड़ की प्रजाति से अलग है।
1: जी
0: इनका उद्देश्य सिर्फ सफेद और गुलाबी रंगों की अद्भुत छटा को बिखेरना है।
1: और इन फूलों के द्वारा ये संदेश मिलता है कि जीवन भी क्षणिक है, इसीलिए जब तक जीवन है इसे हम सुंदरता से बिताएं और समय का मूल्य समझें।
0: जी
1: शायद चेरी ब्लॉसम फूलों के हनामी उत्सव का ही प्रभाव है कि जापान में सौंदर्य और कला पर बड़ा जोर दिया जाता है, और हाँ वहाँ समय की बड़ी प्रतिबद्धता है।
0: जी बिल्कुल। तो श्रोताओं, अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। प्रश्न है,
1: चेरी ब्लॉसम के फूलों को जापानी भाषा में क्या कहते हैं। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
0: चेरी ब्लॉसम के फूलों को जापानी भाषा में क्या कहते हैं।
1: आप अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर भेज सकते हैं। साथ ही साथ हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर भी आप अपने संदेश और हमारे प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं। और हाँ,
0: आप एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। और अब बारी है हमारे कार्यक्रमों की, सुनते हैं कार्यक्रम।
1: हमारा पहला कार्यक्रम है वी आर गोइंग टू द जू। सिंगिंग द पोएम श्रृंखला के अंतर्गत प्रस्तुत इस गीत में मजेदार ढंग से बच्चों की चिड़ियाघर की यात्रा का वर्णन है। पशु पक्षियों की आवाजों को शामिल करके गीत को और भी अधिक रोचक बनाया गया है।
2: चिल्ड्रन, Have you ever visited a zoo?
3: A zoo?
2: Yes, a zoo.
3: Oh, yes.
2: All right. So tell me, what do you see in a zoo?
3: Tiger. Lion.
2: Yes.
3: Monkey. Birds of different kind.
2: Very nice.
3: Camel. Giraffe.

0: Dear friends, you have just heard the sounds of different animals in this song. Now, listen to the sounds again and try to identify them by yourself. This was elephant. This was monkey. And this was tiger. This was polar bear. And this was skunk. And this was kangaroo. And friends, do you know that pets and animals are very important part of our lives and the environment as well? But how? Talk to your elders and teachers.
1: अभी आपने सुना ये संगीतमय कार्यक्रम और अब सुनते हैं कार्यक्रम बाल क्रांतिकारी जोरावर सिंह।
0: इस कार्यक्रम में बाल क्रांतिकारी जोरावर सिंह की वीर गाथा प्रस्तुत की गई है और जानकारी दी गई है कि कैसे भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उसने अंग्रेजी शासन से लोहा लिया और देश की स्वतंत्रता के संघर्ष में अपना बलिदान दिया।
1: जी
2: भारत वीरों और वीरांगनाओं की भूमि है। जब जब भारत माँ की आन बान और शान पर संकट आया, हमारे वीर और वीरांगनाएं अपने कर्तव्यों से कभी पीछे नहीं हटे। बात है अंग्रेजों के विरुद्ध छेड़े गए स्वतंत्रता संग्राम की, जब हमारे वीर और वीरांगनाओं ने अदम्य साहस, सूझबूझ और मातृभूमि के प्रति कर्तव्य को बड़ी बहादुरी से निभाया। इन वीरों और वीरांगनाओं में कई तो काफी कम उम्र में ही कुर्बान हो गए।
3: ऐसे ही एक वीर बालक थे जोरावर।
4: साथियों, हमें अपने शत्रु की हर चाल का, हर हथियार का और हर रणनीति का जवाब देना है। शत्रु को कभी भी कमजोर नहीं समझना है और हर पल हम सबको उससे चौकन्ना रहना है।
5: बिल्कुल ठीक
4: है। आप सब जानते हैं कि हम पर दोहरी जिम्मेदारी है। हमें अपनी रियासत के साथ साथ पड़ोस की रियासतों की भी मदद करनी है, ताकि अंग्रेज हमारी मातृभूमि पर कब्जा ना जमा सकें।
6: वीर जोरावर की
7: जय।
6: वीर जोरावर की
7: जय।
6: जय जयरापुर जय भारत।
7: जय जयरापुर जय भारत।
3: राजा जोरावर सिंह, हैदराबाद जैसी बड़ी रियासत से सटी छोटी सी रियासत जेरा

0: नागपुर का महज 15-16 की उम्र का राजा, जिसने 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों से लड़ने के लिए अरब और रोहिल्ला पठानों की एक सैनिक टुकड़ी तैयार की थी।
1: अरे वाह, इतनी सी उम्र में जोरावर राजा बन गए।
0: दरअसल पिता की अचानक मृत्यु हो जाने पर उन्हें ये जिम्मेदारी कबूल करनी पड़ी, क्योंकि वो अपने पिता के उत्तराधिकारी थे और दूसरा, अंग्रेजों के बढ़ते हमलों से मुकाबले के लिए ऐसा करना जरूरी था। खैर, ये वो वक्त था जब 1857 की क्रांति में बुरी तरह मात खाने के बाद अंग्रेज नई नई चालें रचने लगे थे। इसी में एक खतरनाक चाल थी, डिवाइड एंड रूल, यानी फूट डालो और राज करो।
1: अंग्रेजी हुकूमत ने हम भारतीयों को जात पात, भाषा, धर्म और क्षेत्र के नाम पर लड़ाना शुरू कर दिया ताकि इसका फायदा उठाया जा सके।
2: महाराज, महाराज, हालात खराब हो रहे हैं, लोग आपस में ही लड़ने लगे हैं। हमें कुछ करना होगा महाराज। पड़ोस की दूसरी रियासतों को भरोसे में लेकर और मिलकर काम करना होगा ताकि इन अंग्रेजों को मनमाने का कोई मौका ही ना मिले।
3: ठीक कहते हैं मंत्री जी, मैं कल ही हैदराबाद जाता हूँ। वो हमारी सबसे बड़ी राजशाही रियासत है
2: जी।
3: वहाँ के निजाम अफजल उद्दौला से बात करूंगा और मुझे उम्मीद है कि वो हमारी बात को अहमियत देंगे।
2: जी महाराज, महाराज अगर ऐसा हो जाए तो ये आपकी यात्रा की एक बड़ी सफलता होगी।
3: बिल्कुल,
2: आपकी सूझबूझ का जवाब नहीं महाराज। वाकई आप अपनी मातृभूमि और जनता की रक्षा के लिए कितने समर्पित हैं। हम तैयारी शुरू करते हैं महाराज।
3: जी मंत्री जी।
2: जी महाराज।
0: जोरावर ने अगले ही दिन एक नेक मकसद के साथ निजाम के दरबार में दस्तक दी।
4: होशियार, खबरदार, रियासते जेरापुर के महाराज जोरावर सिंह दरबारे खास में जलवा अफरोज हो रहे हैं।
5: जोरावर सिंह महाराज आ रहे हैं। महाराज जोरावर सिंह खास
0: महाराज। आइए हमारे दोस्त, तहे दिल से आपका इस्तकबाल है, तशरीफ रखिए और बताएं कि आपने कैसे तकलीफ की, क्या खिदमत की जाए आपकी।
3: निजाम साहब, हम आपसे एक गुजारिश करने आए हैं।
0: जी जरूर, हुक्म करें, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं।
3: देखिए निजाम साहब।
0: जी फरमाइए।
3: फिरंगी हुकूमत की बर्बरता और साजिशें एक बार फिर बढ़ रही हैं। गदर में मिली नाकामी के बाद अब वो हमें आपस में लड़ा रहे हैं
0: जी।
3: इसलिए हमें मिलकर काम करना होगा ताकि वो किसी साजिश में कामयाब ना हो पाएं।
0: राजा जोरावर, हम भी ऐसा ही चाहते हैं। हम कल सुबह तफसील से बात करते हैं
3: जी।
0: तब तक आप हमारे खास मेहमान की तरह इस किले में रहें। हमारे वजीर सालार जंग आपके आराम और कल की बातचीत के सारे इंतजाम कर देंगे।
6: जो हुक्म मेरे आका, हम महाराज और उनके सैनिकों का पूरा ख्याल रखेंगे। आइए महाराज।
0: अफजल उद्दौला उर्फ मीर तहनियत अली खान 1857 से 1869 तक हैदराबाद के निजाम यानी शासक थे और यहाँ के पहले शासक कमरुद्दीन खान आसफ जाह के पांचवें वंशज थे। दरअसल भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान हैदराबाद रियासत पर नवाबों की हुकूमत रही। खैर, निजाम के दरबार में अपने शानदार स्वागत से जोरावर खुश थे। वहीं निजाम भी उनकी देशभक्ति और सूझबूझ को देखकर हैरान थे।
1: जी हाँ, जेरापुर की जनता के लिए हैदराबाद का साथ बहुत जरूरी था और जोरावर यहाँ काफी उम्मीद से आए थे।
6: ए, सुनो, सारी तैयारियां पूरी है ना?
7: बिल्कुल।
6: देखो, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। एक तो जोरावर खुद बहुत बहादुर है, दूसरे उसके अंगरक्षक

0: की तरह उसके साथ रहते हैं। और तीसरी बात यह है कि अगर हमारी साजिश कामयाब ना हुई तो फिरंगी हुकूमत हमसे नाराज हो जाएगी और इनामो इकराम की जगह मिलेगी लानत मलामत।
1: हुजूर आप फिक्र ना करें, सब कुछ वैसे ही होगा जैसे आपने कहा है।
0: लेकिन जरा होशियारी से।
1: जो हुकुम सरकार।

0: Canavar! Hocam! Tüm çağrı taraf se gir çüke ho.
1: Ye kya hai?
0: You are under arrest!
1: एक सोते हुए निहत्थे इंसान को आधी रात में ऐसे कायरों की तरह गिरफ्तार करते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? हिम्मत है तो हमसे लड़कर दिखाओ, आओ सामने।
0: बाउट हो गई तुम्हारी बहादुरी। फौजियो,
2: हुजूर,
0: बांधो इस बच्चे को जंजीर से।
2: जी।
1: छोड़ो मुझे, हाथ मत लगाओ मुझे, मुझसे हाथ हटाओ। मैंने कहा छोड़ो मुझे, हटो यहाँ से।
0: शाबाश, शाबाश, सालारजन, मैं खुश हुआ। तुम्हें मोटा इनाम दिलवाऊंगा।
3: हुजूर।
1: अच्छा, तो ये सब इसकी कारस्तानी है। एक बुजदिल ही दूसरे बुजदिल का साथ दे सकता है। लानत है तुम पर सालार जंग, लानत है। लालच में तुम इतने गिर जाओगे हमने सोचा ना था।
0: फौजियों, ले चलो इसको।
1: चलो मुझे, छोड़ो मुझे।
4: बाद में अंग्रेजी फौज ने जोरावर पर बहुत अत्याचार किए। उनकी सैनिक तैयारी के बारे में पूछा गया, उनसे क्रांतिकारियों के नाम और ठिकाने पूछे गए, तरह तरह के लालच भी दिए गए, लेकिन वो जरा भी कमजोर नहीं पड़े और बार बार यही कहते रहे कि मातृभूमि से विश्वासघात नहीं कर सकते, चाहे जान ही क्यों ना गंवानी पड़े।
5: जोरावर से सारे राज उगलवाने के लिए थक हार कर कर्नल मेटोस टेलर नाम के एक नए अफसर को नियुक्त किया गया, लेकिन वो जितना ही सख्त था उतना ही दोस्ताना मिजाज का भी था। उसके मन में जोरावर के प्रति हमदर्दी थी। वो और जोरावर जल्द दोस्त बन गए और जोरावर उसे प्यार से अप्पा कहने लगे।
6: देखो जोरावर, अगर तुम प्यार से बचाओगे तो तुम्हें सजा की जगह आम माफी मिल जाएगी और मैं रेजिडेंसी से कहकर तुम्हें मालामाल करवा दूंगा।
1: अप्पा, ये नहीं हो सकता।
6: देखो देखो, तुम्हें हमारी दोस्ती की कसम, बात मान लो, मैं तुम्हें कोच नहीं होने दूंगा।
1: ये नामुमकिन है।
6: व्हाई?
1: हमें माफ कीजिए, हम अपनी रियासत और मुल्क दोनों से दगा नहीं कर सकते। हम देशद्रोह नहीं करेंगे, हरगिज नहीं करेंगे। अप्पा साहब, अब हम मौत का सामना करने के लिए तैयार हैं। हमें जो भी सजा होगी अब हमें मंजूर है।
6: तो तुम नहीं मानोगे। देखो देखो, आजीवन कारावास या फिर मौत की सजा हो सकती है तुम्हें। ये सजा।
1: अप्पा साहब, हमारी बस एक विनती है कि हमें फांसी पर मत चढ़ाइएगा। हमने ऐसा कोई अपराध नहीं किया है जिसके लिए हमें शर्म आए। हमने जो किया हमें उस पर गर्व है। कैद, फांसी या काला पानी, इनमें से कोई भी इतना भयंकर नहीं जितना कि विश्वासघात है। इसलिए हमें फांसी के बजाय तोप से बांधकर उड़ा दीजिएगा। हम कुछ नहीं कहेंगे और जरा भी नहीं डरेंगे, जरा भी नहीं।
6: एक्चुअली यू आर अ फूल।
4: जोरावर की ये बात सुनकर कर्नल टेलर का दिल भी सिहर उठा।

0: बाद में उनकी गुजारिश न मानकर जोरावर को काला पानी की सजा सुनाई गई।
1: काला पानी की सजा?
0: हाँ, काला पानी की सजा। भारत की भूमि से सैकड़ों किलोमीटर दूर अंडमान निकोबार का एक द्वीप है, जहां अंग्रेजों ने स्वतंत्रता सेनानियों को यातनाएं देने के लिए एक जेल बनाई थी।
1: जोरावर को भी अंग्रेज सैनिक नाव से काला पानी की जेल ले जाने लगे।
0: और समुद्र में बीच रास्ते जोरावर ने एक अंग्रेज पहरेदार से रिवॉल्वर छीन ली।
2: काले पानी की सजा से मौत को बेहतर समझता हूँ मैं। भारत माँ का बहादुर बेटा हूँ। इस सजा को मेरी रियासत का सामान्य सा व्यक्ति भी नहीं पसंद करेगा। फिर मैं तो राजा हूँ।
1: एक छोटी सी रियासत के छोटी उम्र के राजा ने देश के लिए बड़ा काम कर दिखाया और मातृभूमि की रक्षा के लिए मौत को गले लगाकर अपना नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज किया।
3: तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बाल क्रांतिकारी जोरावर सिंह, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
4: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
3: नमस्कार।
5: उमंग ये प्रायोजित कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं, FM 102.6 MHz पर। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें।

हाल क्या है जनाब। जी हाँ, ये गीत अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में, अनोखी अदा, फिल्म का नाम था मजरू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंग तरंग।

महालक्ष्मी और शान की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे और वेडनेसडे फिल्म से इरशाद कामिल ने इसे लिखा था, संजय चौधरी का म्यूजिक। सोनू निगम को लीजिए सुनिए इस एल्बम दीवाना में, फैज अनवर ने इसे लिखा, साजिद वाजिद का म्यूजिक।

0: भूपेन हजारिका को आप सुन रहे थे इस फिल्म रुदाली से, गुलजार ने इसे लिखा था और भूपेन हजारिका का संगीत।
1: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जो शहीद हुए हैं इनकी जरा याद करो।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंग तरंग।

0: चित्रा सिंह को अभी आप सुन रहे थे इस गजल में, और इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम रंग तरंग यहीं समाप्त होता है। ये है विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की अध्यक्षता में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में हुई। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठक में हिस्सा लिया। बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने पर बल दिया। उन्होंने दूसरों की सहायता करने की बात भी कही। श्री जयशंकर ने कहा कि क्वाड देश खुले समाज हैं जो समृद्ध और विकास की खोज में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक देशों के तौर पर उन्होंने आतंकवाद के साझा खतरे का मुकाबला करने पर भी अपना ध्यान केंद्रित किया है। बैठक के बारे में उन्होंने बताया कि द्विपक्षीय चर्चाएं विश्व की मौजूदा स्थिति पर केंद्रित थीं। चारों देशों ने विशेष रूप से हिंद प्रशांत क्षेत्र से जुड़े मुद्दों पर ध्यान दिया। उन्होंने कहा कि समुद्री क्षेत्र में सहयोग का लगातार विस्तार हुआ है, जिसमें निगरानी और समुद्री क्षेत्र की जानकारी, लॉजिस्टिक्स नेटवर्क, समुद्र के नीचे बिछी केबलें, प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण और मानवीय सहायता तथा आपदा राहत गतिविधियां शामिल हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन के सिक्किम यात्रा पर रहेंगी। राष्ट्रपति यात्रा के पहले दिन देवराली में नामग्याल इंस्टीट्यूट ऑफ तिब्बतोलॉजी का दौरा करेंगी और गंगटोक में महिलाओं के लिए पिंक बसों को झंडी दिखाएंगी। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। अधिकारियों के अनुसार रोपवे के 65 केबिनों में 300 से अधिक पर्यटक फंस गए थे। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस, सेना और प्रशासन ने संयुक्त रूप से करीब 7 घंटे तक बचाव अभियान चलाकर सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सफल बचाव अभियान की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि इस कठिन ऑपरेशन को जिस दक्षता और संकल्प के साथ पूरा किया गया, उसके लिए सभी कर्मियों के प्रति राष्ट्र आभारी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नरेंद्र मोदी सरकार के आज 12 साल पूरे होने पर इसे भारत की सभ्यता और विकास यात्रा का एक बदलाव लाने वाला दौर बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि 26 मई 2014 को देश के प्रशासन, सोच, नेतृत्व और राष्ट्रीय संकल्प में एक निर्णायक बदलाव आया जब श्री मोदी ने प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचे के विकास और निर्णायक वैश्विक नेतृत्व से लेकर एक मजबूत राष्ट्रीय सुरक्षा ढांचे तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने अभूतपूर्व प्रगति की है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यभार संभालने के बाद से देश ने अभूतपूर्व आत्मविश्वास और नए सांस्कृतिक पुनर्जागरण का ऐतिहासिक क्षण देखा है। दिल्ली में सीएनजी की कीमत में 2 रुपए प्रति किलोग्राम की वृद्धि हुई है। आज सुबह 6 बजे के बाद से राष्ट्रीय राजधानी में सीएनजी की नई कीमत 83 रुपए 9 पैसे प्रति किलोग्राम हो गई है। नागर विमानन महानिदेशालय ने इबोला वायरस को लेकर नए निर्देश जारी किए हैं। ये कदम विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कांगो और युगांडा में इबोला वायरस को अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किए जाने के बाद उठाया गया है। महानिदेशालय ने कहा है कि युगांडा और कांगो से जुड़ी उड़ानों को का संचालन करने वाली एयरलाइंस को यात्रियों के विमान से उतरने से पहले उनसे यात्री जानकारी फॉर्म भरवाना अनिवार्य होगा। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लवरोव से बात की और रूस यूक्रेन युद्ध तथा ईरान की स्थिति पर विचार विमर्श किया। अमेरिका में विदेश विभाग के प्रवक्ता टॉमी पिगॉट ने इस संबंध में जानकारी दी है।

0: आईपीएल क्रिकेट में आज क्वालिफायर वन में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। ये मुकाबला धर्मशाला में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। विजेता टीम फाइनल में पहुंचेगी, जबकि हारने वाली टीम को क्वालिफायर टू में एक और मौका मिलेगा। मौसम विभाग ने बताया है कि मिजोरम में आज मानसून की शुरुआत हो गई है। विभाग ने बताया कि इस साल मिजोरम पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों और केरल में मानसून समय से 6 दिन पहले ही आ गया है। इस बीच विभाग ने आज दिल्ली में भीषण लू का येलो अलर्ट जारी किया है। राजधानी में कल तक लू की स्थिति की संभावना है। हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, विदर्भ, पश्चिम राजस्थान में आज भी भीषण लू चल सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल।

लता मंगेशकर को आप सुन रहे थे। इस फिल्म का नाम था अर्धांगिनी। मजरू सुल्तानपुरी ने इस गीत को लिखा था, वसंत देसाई का संगीत था। आज यादों की महफिल में वो गीत जिनमें इंतजार है, याद है, किसी प्यार भरे संदेश का जिक्र है। फिलहाल एक छोटा सा अंतराल और यादों की महफिल के बाकी के गीत इस अंतराल के बाद।

0: गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जो शहीद हुए हैं उनके जरा याद करो कुर्बानी।
3: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम यादों की महफिल, जिसमें आज वो गीत जिनमें इंतजार, याद, किसी प्यार भरे संदेश का जिक्र है।

आशा भोसले भूपिंदर की आवाजों में ऐतबार फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे। बप्पी लहरी ने संगीत दिया था और हसन कमल ने इसे लिखा। एक और इंतजार में डूबा नगमा जगजीत सिंह की आवाज में।

होठों से छिलू तुम मेरा गीत अमर कर दो। प्रेम गीत फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे, जगजीत सिंह की आवाज में इंदी वर्णी से लिखा था।

आपकी कसम इस फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार लता मंगेशकर की आवाजों में। आनंद बख्शी ने इसे लिखा था, आर डी बर्मन की तर्ज थी।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, गांवों में खिली गलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत।
3: तुम्हारी याद सताती है।
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम यादों की महफिल।

0: विविध भारती से आप सुन रहे थे प्रोग्राम यादों की महफिल।
1: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या?

0: देखो जरा, तीन बज रहे हैं, तीन।
1: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
0: सखी सहेली?
1: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
0: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
2: सखी सहेली।
3: यह है विविध भारती, सुरीला सफर लेकर हाजिर होते हैं बस कुछ ही पलों में।

साथियों, बहुत बहुत स्वागत आप सबका प्रोग्राम में जिसका नाम है सुरीला सफर। सबसे पहले आपके प्यार भरे मैसेजेस, संदेशों का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आप सब जानते हैं, इस प्रोग्राम में हमारी तरफ से एक टेक्स्ट या इबारत लिखी जाती है, पोस्ट की जाती है। उसमें आपको एक शब्द चुनने होते हैं, एक नहीं कई शब्द चुनने होते हैं, और साथ ही उन शब्दों से कौन कौन से गीत शामिल हो सकते हैं ये बताना होता है। आपके प्यार भरे संदेशों से समझ में आ रहा है कि काफ़ी सारे शब्द, काफ़ी सारे गीत आप चुन चुके हैं और एक लिस्ट भी तैयार कर ली है जो कि मैंने देख ली है। लेकिन उन श्रोताओं के लिए जो अभी अभी हमसे जुड़े हैं, आपके लिए इस इबारत को फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। इबारत कुछ इस प्रकार है, ठंडा हवा का झोंका हर पल तुम्हारा एहसास दिलाता है। तुम पास हो या ना हो, मेरा दिल तुम्हारे करीब रहता है। तुम्हारी आंखें जैसे सागर की गहरी सी बात, तुम्हारी नजर में छुपी रहती है मेरी हर बात। एक पंछी सा दिल मेरा तुम्हारे पीछे उड़ता है, मोहब्बत के पंख लगा गगन तक जुड़ता है। वक्त की दूर राहों पर तुमसे ही ये वादा है, तुम्हारे साथ ही छांव में हर दर्द आधा है। सपना बनकर तुम ही तो आए थे दबे पांव मेरी जिंदगी में, तुम ही तो हो मेरी बंदगी में। ये दीवाना दिल आज भी तुम्हारी राहें तकता है, बयार चले तो लगता है तू पास ही रहता है। जी हाँ, ये थी इबारत और आपके संदेश मुझ तक पहुंच चुके हैं। शुरुआत करते हैं इस प्रोग्राम की, लेकिन आपको ये भी बता दें कि अगर आपकी लिस्ट हमारी लिस्ट से मैच नहीं करती, फिर भी आप फेसबुक पर इन शब्दों से जुड़े गीत लिख सकते हैं, हो सकता है हम उन्हें शामिल कर दें, है ना।

मुझको ये जाने वफा तुम याद आए, बिल्कुल आशा भोसले की आवाज़ में दो बदन फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे। शकील बदायनी ने इसे लिखा और रवि का संगीत था, और साथ ही आपके मैसेजेस मुझ तक पहुंच गए हैं। जी हाँ, आप सब ने एक दूसरे का अभिवादन किया है, जो कि सबसे अच्छी बात लगती है मुझे। और उसके अलावा एक श्रोता हमें लिखते हैं, इश्किया विरह वेदना का चित्रण करती खूबसूरत इबारत, जहाँ प्रेम अग्नि से व्यथित झुलसती दिलों की दास्तां बयां है। ठंडी हवा के झोंकों से कभी प्रेमी युगल दिल को सहला देते हैं, तो कभी तन्हाई में महबूब को याद कर स्वयं को दिलासा देते हैं। इबादती इश्क में डूबी खूबसूरत इबारत के संगीत में सफर का इंतजार है। बिल्कुल, इंतजार खत्म हुआ और सफर शुरू हुआ। एक और श्रोता है जिनका कहना है कि प्रियतम की दूरी और उस पर ठंडी हवा के झोंके जब तन को छूते हैं तो मानो उसकी उंगलियों से छुआ हो, मानो उनकी उंगलियों ने छुआ हो। कम कपाती सिर्फ सर्द रातों की नहीं होती, बल्कि प्रियतम की यादों की भी होती है। हवा का हर झोंका बीते लम्हों की खुशबू साथ लाता है और भर देता है आंखों को नमकीन पानी से। जी हाँ, ये मैसेज बहुत बड़ा है, लेकिन मैंने उसका सार जरूर अब तक पहुंचा दिया है। और एक और श्रोता हमारे लिखते हैं कि आज एक बार फिर गद्यांश ने दिल के एहसासों को बहुत खूबसूरती से पेश किया है। वैसे भी अपने प्रियजन से जब दूरियों की वजह से जो विरह की टीस दिल में उभरती है, तो ठंडी हवा का झोंका मन में उभरती यादों, सपनों, दर्द और मोहब्बत भरी मीठी बातों की बयार लेकर आता है। एक और श्रोता हमारे लिखते हैं कि प्रेम में सपनों का आना और वादा करना, आंतरिक प्रेम की गहराई, अत्यंत प्रतीक्षा और विश्वास का सुंदर और भावुक चित्रण है, जो स्वप्न मिलन के रूप में देखा जाता है। जी हाँ, बिल्कुल, और साथ ही आपके मैसेजेस मुझ तक बिल्कुल पहुंच रहे हैं। हमारे एक और श्रोता कहते हैं कि हम सिर्फ चीजों को, बातों को लिखते नहीं है, उन पर अमल भी करते हैं। अच्छा सुनने और अच्छा लिखने से हम थोड़े और अच्छे बन जाएंगे, इतना तो हो ही जाएगा। कुछ बुराइयां तो हमारी दूर हो ही जाएंगी। विविध भारती के साथ रहकर रोज। जी हाँ, बिल्कुल, हमें हर रोज अपने आप को और बेहतर बनाना चाहिए, यही तो जिंदगी है। एक और श्रोता हमारे लिखते हैं कि आज दिल की गहराई से निकली इस इबारत ने जज्बातों को एक नया आसमां दे दिया है। जब अपने प्रियजन से दूरियां बढ़ती है तो दिल में विरह की एक मीठी टीस उभरती है। ऐसे में जब खिड़की से ठंडी हवा का झोंका आता है तो सिर्फ हवा नहीं होती, वो सिर्फ आती है पुरानी यादों का कारवां लेकर, अधूरे सपने और थोड़ा सा दर्द और मोहब्बत भरी मीठी बातों की बयार लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन खूबसूरत संदेशों के लिए। फिलहाल इस गीत के साथ ही मैं आपको एक काम भी दे रही हूँ। जी हाँ, आपके लिए एक पहेली है, पहेली नहीं, आप अपने दिल की बात कह सकते हैं मुझसे, और वो ये है कि जब हम ये गीत सुन रहे थे, जब चली ठंडी हवा, तो तन को ठंडक देने के लिए इस झुलसाती गर्मी में बहुत से उपाय हैं, फ्रिज है, एसी है, पंखा है, बहुत कुछ है, लेकिन दिल की ठंडक और दिमाग को ठंडा रखने के लिए आप क्या करते हैं, बताइए मुझे। जी हाँ, दिल की ठंडक और दिमाग की ठंडक के लिए आप क्या करते हैं इस गर्मी में, आप मुझे बताएं। तब तक हम चलते हैं अपने अगले गीत की ओर।

सागर जैसी आंखों वाली, ये तो बता तेरा नाम है क्या? और बहुत से लोगों ने इसके डिटेल्स भेज दिए हैं। नहीं, इतना आसान नहीं होने वाला है, हम इस तरह के क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे आज। बिल्कुल, आप हैं आज मेरे यानी अनुराधा के संग आज इस सुरीला सफर में, और आपके मैसेजेस मुझ तक पहुंच गए हैं। जो मैंने पूछा था कि दिमाग को और दिल को ठंडा रखने के लिए आप क्या करते हैं, दिल और दिमाग को ठंडा करने के लिए हम रेडियो विविध भारती सुनते हैं, विविध भारती के सारे कार्यक्रम सुनते हैं सुबह से रात तक। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि प्यार में दिल एक आज़ाद पंछी की तरह हो जाता है, जो सारे बंधनों को तोड़कर सिर्फ अपने हमसफर की तरफ उड़ना चाहता है। इस एहसास की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि जिंदगी के हर बड़े से बड़े दर्द को आधा कर देता है। हमारे श्रोता कहते हैं कि उनकी लिस्ट हमारी लिस्ट से मैच खा गई है, मैच कर गई है, और दो गीत जो है उनके मुताबिक बज गए हैं। बिल्कुल, और बाकी लोग भी आपकी लिस्ट में जो भी गीत है मुझे लिख भेज सकते हैं, हो सकता है हम उसे शामिल कर लें। हमारे श्रोता लिखते हैं कि दिल और दिमाग को ठंडा रखने के लिए गाने सुनते हैं, अच्छे विचार पढ़ते हैं और कुछ नया चीज़ देखते हैं जो हमें दिल को सुकून देता हो और मन को शांति देता हो, और टीवी भी देख लेते हैं, गाने भी सुन लेते हैं, साथ ही साथ रेडियो सुनते हुए रसोई में काम भी हो जाता है। जी हाँ, ये तो बहुत ही बड़ा एडवांटेज है। और साथ ही विविध भारती के कार्यक्रम और सम्मानीय उद्घोषकों की मधुर आवाज़ दिलो दिमाग में ठंडक दे देती है। थैंक यू सो मच आपके खूबसूरत मैसेजेस के लिए। चलिए इसके साथ ही बढ़ते हमारे अगले गीत की तरफ। लेकिन ये जो गीत अभी आपने सुना, सागर जैसी आंखों वाली, इसके बारे में क्या कहा जाए? तो बहुत से गीत हैं जिन पर जिनमें आंखों की प्रशंसा की गई है, तो ये सागर जैसी आंखों वाली का मतलब क्या है? इसके अलग अलग मायने हो सकते हैं। आप मुझे लिख भेजें, पढ़ते हैं कि आप कितनी क्रिएटिविटी दिखाते हैं अभी मैसेजेस में। सागर जैसी आंखों वाली का मतलब, या इसको और किस तरीके से एक्सप्लेन किया जा सकता है, मुझे बताइए। फिलहाल लिस्ट का ये तीसरा गीत।

बिल्कुल सही कहा, नज़ारे हम क्या देखें और हम आपके मैसेजेस देख रहे हैं बस, उसके अलावा हमें ठंडक किसी से नहीं मिलती। एकदम सच कहेंगे, एक श्रोता लिखते हैं, दिल को ठंडक देने के लिए हम तो बस छत पर जाकर पक्षियों के लिए पानी रख देते हैं और जब वो एक एक करके पानी पीते हैं तो लगता है मानो इस गर्मी से हमें ठंडक मिल गई हो, और रात में इतने शीतल चंद्रमा को देखकर मानो दिल भीग जाता है क्योंकि उसकी चांदनी में बड़ी ठंडक होती है। और आपने कहा है कि प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब श्रोताओं का जिन्होंने आज मेरा स्वागत किया इस प्रोग्राम में। तो मैं सबको एक एक मैसेज तो नहीं कर पाऊंगी, लेकिन सबको, सभी सुनने वालों को बहुत बहुत प्यार भरा शुक्रिया। हमारे दूसरे श्रोता लिखते हैं कि दिल का ये छोटा सा एहसास ही तो है जो हमें इंसान बनाए रखता है, कभी कभी एक ठंडी हवा के झोंकी की तरह आता है और मन के सारे कोलाहल को शांत कर देता है। ये किसी पुराने गाने को सुनकर अचानक बचपन की गलियों में लौट जाना चाहता है, या किसी अजनबी के लिए मन में उपजी सहानुभूति का एहसास। हमारे श्रोता लिखते हैं, दिल और दिमाग तो अच्छे गाने सुनकर ठंडे हो जाते हैं, बाकी राजस्थान में इतनी गर्मी है कि एसी की हवा भी ठंडक नहीं देती है।

बिल्कुल बिल्कुल, गर्मी का हाल हर जगह इस वक्त बहुत एक्सट्रीम पर है। दिल को ठंडा रखने के लिए अच्छे गाने सुनती हूँ और किस्से कहानियाँ पढ़ती हूँ, और गर्मियों के दिन काफ़ी लंबे हो जाते हैं, ऐसे में गानों और किताबों का संयोजन दिन को खुशनुमा बनाते हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं कि छाछ, शिकंजी, पुदीना सौंफ की शरबत, खीरा ककड़ी, तरबूज, खरबूज, संतरा, ठंडे फल और पेय पदार्थ शरीर और मन को ताजगी और सुकून से भर देते हैं। ताजगी और सुकून से भर देते हैं बिल्कुल, और मधुर संगीत तो है ही, उस पर सोने पर सुहागा। दिल की ठंडक और दिमाग की ठंडक के लिए हर मौसम अजीज अदरक इलायची वाली चाय इन्हें चाहिए, हमारे एक श्रोता लिखते हैं। और साथ ही अदरक इलायची की चाय कई लोगों को लगता है कि गर्मी करती है, पर जिन्हें चाय का प्रेम है, चाय प्रेम में जो पड़े हैं, उनके लिए वो ही ठंडक देती है ना। हमारे श्रोता लिखते हैं कि फिलीपीन में अब गर्मी ने बहुत जोर पकड़ा है, काम निपटाकर दोपहर को मुझे नींबू शिकंजी पीना बहुत राहत देता है और नमकीन लस्सी भी मैं जरूर पीता हूँ। एक और श्रोता हमारे लिखते हैं कि दिल और दिमाग को शांत व ठंडा रखने के लिए नियमित मेडिटेशन यानी कि ध्यान रखना, ध्यान करना बहुत जरूरी है। गहरी सांस लेने से व्यायाम, पर्याप्त पानी पीना और भरपूर नींद लेना, ये सब प्रभावी तरीके हैं। तनाव, गुस्सा और नकारात्मक विचारों से दूर रहना चाहिए और बस मेंटल कामनेस के लिए कुछ करना चाहिए। साथ ही काफ़ी लंबा मैसेजेस और काफ़ी सारे इन्होंने हमें तरीके बताए हैं अपने आप को ठंडा रखने के लिए मेंटली, इमोशनली, तो ज़रूर ठंडा रखते हैं और एक और ठंडक यहाँ आप तक पहुँचाते हैं इस गीत के द्वारा। लेकिन हाँ, अगले गीत तक जाने से पहले अभी जो गीत आपने सुना कभी कभी फिल्म का, जिस जोड़ी पर वो फिल्म आया गया था उस गीत में जो जोड़ी थी उसमें जो एक्ट्रेस है, जो हीरोइन है, जो मेन लीड है, उसका फिल्म में क्या नाम है, उसका कैरेक्टर नेम क्या है, आप मुझे बताएंगे? चलिए तब तक हम चलते हैं अपने अगले गीत की तरफ।

सोनू निगम की आवाज़ में ये गीत संघर्ष फिल्म से आप सुन रहे हैं और जतिन ललित ने इसे संगीत दिया, समीर ने इसे लिखा। सुरीला सफर में आज मैं हूं आपके साथ अनुराधा और आपके मैसेजेस मुझ तक पहुंच गए हैं। हमारा एक बहुत ही खास मैसेज मुझे लगता है एक आया है कि इस कार्यक्रम से हम बुजुर्ग गाहे बघाए जुड़े हैं। ये मैं नहीं कहता कि ये कार्यक्रम सिर्फ बुजुर्गों के लिए ही है, पर चूंकि गाने पुरानी फिल्मों के बजते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। इस उम्र में दिल की शांति और दिमाग की ठंडक ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए कार्यक्रम से जुड़ते हैं। अब हमारे दिन दुपट्टा और दिल की आशनाई से बहुत दूर चले गए हैं, इसीलिए हमारे लिए कार्यक्रम में दिल से जुड़ना मुमकिन नहीं होता है। मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखती हूँ क्योंकि विविध भारती में हर वर्ग के लिए, हर उम्र वर्ग के लिए अलग अलग प्रोग्राम है, अलग अलग गीत है, अलग अलग थीम्स है जिस पर प्रोग्राम्स चलते हैं। तो आप जुड़े रहें विविध भारती के संग। एक और श्रोता लिखते हैं कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, कवि का जो मन करे वो अपनी कल्पना में वैसी ही उपमा दे सकता है। कभी आंखों की तुलना कभी झील से कभी सागर से, जहां मन डूब सा जाता है और ठहर सा जाता है, बस इसीलिए कवि आंखों को इस तरह से सोच लेता है। एक और श्रोता हमारे लिखते हैं कि गांव में मिट्टी के घरों में खपरेल छत के नीचे बहुत ठंडक मिलती है, प्रतिदिन गोबर से लीप देने से घर शीतल रहता है, बचपन ऐसे घरों में ही गुजरा है। हमारे श्रोता कहते हैं कि कवि हृदय किसी भी शब्द से कुछ भी गढ़ लेते हैं, सागर जैसी आंखें मतलब सुंदर गहरी आंखें जिसका फिगर ऑफ स्पीच है यानी कि उपमा। जब कहां आंखें छोटी छोटी और सागर अथाह सा होता है, फिर भी कितनी खूबसूरती से दोनों की तुलना कवि कर लेते हैं। सागर जैसी आंखों वाली का हम बहुत सारा मतलब निकाल सकते हैं, जैसे आंखें इतनी गहरी हो जिसका सागर जैसा ही ओर हो ना छोर हो और उसमें गोते लगाने को दिल करता हो। सागर जैसी आंखों पर बहुत से मैसेजेस मुझ तक पहुंचे हैं। सागर जैसी आंखों पर बहुत रिसर्च कर डाली है आप सबने, एंड बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इस मैसेज के लिए, सागर जैसी आंखों के लिए। और मैं ये कहूँगी कि बहुत क्रिएटिविटी झलक रही है हर एक संदेश में, और साथ ही पता चल रहा है कि हमारे जो श्रोता हैं वो कवि से कम नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया है, इस चीज़ को बताया है, वो बहुत खूबसूरत है। और साथ ही साथ हमने ये पूछा था कि कभी कभी फिल्म में जो इस गीत में जो गीत हमने आपको सुनवाया उसमें जो नज़र आती है जोड़ी, उसमें हीरोइन का नाम, एक्ट्रेस का नाम क्या है, तो बहुत से श्रोताओं ने सही जवाब दिया है, पिंकी कपूर, जी हाँ, और साथ ही विक्की। आपके मैसेजेस हम तक पहुंचाते रहिए और चलिए हम चलते हैं अपने अगले गीत की तरफ।

कि खो जाएं हम, तो इसी बात पर मुझे याद आ रहा है कि हमारी जो ये लिस्ट है कितनी मेल खाती है, ये भी तो मुझे बताइए। कौन कौन से शब्द आप ढूंढ चुके हैं और उससे जुड़े गीत जो अब तक आपसे मेल खा चुके हैं, आपकी लिस्ट से मेल खा चुके हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे अच्छा लगेगा। साथ ही ये भी बताना चाहूँगी कि जो हमारे श्रोता हैं हमारे साथ, उनकी लिस्ट गीतों की मैच खाए ना खाए, लेकिन हमारी जो सोचने की जो एक तरीके की सोच है वो ज़रूर मेल खाती है, क्योंकि जब मैं गाना यहाँ पे प्ले करती हूँ उससे पहले ही उसके जवाब आ चुके होते हैं, यानी कि मेरे सवाल पूछने से पहले ही आप उसका जवाब लिख देते हैं। जैसे कि ये गीत जब अभी चल रहा था तो आपने कहा कि दूसरा आदमी फिल्म का नाम है और ऋषि कपूर और राखी पर फिल्माया गया है, लेकिन मैंने ये नहीं पूछा। सवाल को थोड़ा सा बदल देते हैं, क्या कहें, थोड़ी सी पहेली को थोड़ा और ट्रिकी बनाते हैं। तो एक काम करते हैं कि ये दूसरा आदमी फिल्म से जो गीत अभी आपने सुना, इसमें राखी और ऋषि कपूर तो थे ही, लेकिन इसके अलावा इस फिल्म में 2 से 3 अभिनेता अभिनेत्री भी थे, तो आप उनके नाम लिख भेजें कि इस फिल्म में ऋषि कपूर और राखी के अलावा और कौन कौन हैं, ये ज़रूर मुझे भेजिए। अभी हम चलते हैं आपके संदेशों पर। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि उन्हें याद आ रहा है कि शादी के 15 दिनों बाद ही, जब उनकी शादी हुई थी उसके 15 दिनों के बाद ही उन्हें ट्रेनिंग पर जाना पड़ा था और करीबन 2000 किलोमीटर दूर, और अपनी धर्मपत्नी से बिछड़ना पड़ा था। उस वक्त उन्हें ये इबारत की ये जो सब बातें आज हैं वो कहीं ना कहीं उसे रिलेट कर पा रहे हैं, उसे जुड़ाव महसूस कर रहे हैं, वो बिछड़ना याद आ रहा है। जी हाँ, प्यार में बिछड़ना और उसके बाद फिर से मिलना, उसका मज़ा ही कुछ और होता है। साथ ही साथ सागर जैसी आँखों से आशय बातों को बिना बोले सामने वाले की आँखों में देख कर उसकी भावनाओं को समझना, ये भी कहा जाता है सागर जैसी आँखों वाली। साथ ही हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत में सपनों की बातें भी होंगी तो कुछ बातें हमारी भी। सपने देखना इंसान के मन का सबसे खूबसूरत हिस्सा होता है। ये वो दुनिया है जहां हम अपनी इच्छाओं को बिना किसी रोक टोक के जीते हैं। सपने वो नहीं जो नींद में आते हैं, सपने वो हैं जो नींद नहीं आने देते। सपने हमें आगे बढ़ने की ताकत देते हैं और हिम्मत देते हैं और उम्मीद जगाते हैं। जी हाँ, बहुत खूबसूरत संदेश लिखा है आपने। तो चलिए हम आते हैं अपने सवाल पर कि जो गीत आपने सुना दूसरा आदमी से, उसमें और कौन से अभिनेता या अभिनेत्री हैं, मुझे बताएं। चलिए चलते हैं हमारे अगले गीत की तरफ।

मोहब्बत बड़े काम की चीज़ है। त्रिशूल फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर, किशोर कुमार और साथियों की आवाज़ों में खयाम का संगीत था। साहिर लुधियानवी ने इसे लिखा। और इस गीत के बारे में हमारे श्रोता लिखते हैं कि आप इस गीत से भी कुछ घुमा फिरा कर सवाल पूछ लेंगे तो हम एकदम तैयार हैं, पर हो सकता है कि आपने ऐसा लिखा तो अब हम कुछ और घुमा फिरा कर पूछते हैं, है ना? फिलहाल जो सवाल हमने पूछा था, दूसरा आदमी, उसमें कौन कौन है? कई लोगों ने हेमा मालिनी लिखा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो सही है, है ना? ऋषि कपूर, नीतू सिंह, राखी, शशि कपूर, परीक्षित साहनी और देवेंद्र वर्मा, ये इस फिल्म में दिखाए गए मेन लीड्स में। और साथ ही साथ प्रमिला चोपड़ा ने भी एक गीत गाया है, ऐसा हमारे एक श्रोता ने लिखा है। और हमारे श्रोताओं की प्रशंसा करना चाहूँगी मैं कि वो सिर्फ गाने पर ध्यान नहीं दे रहे, सवालों पर ध्यान नहीं दे रहे, साथ ही साथ जो फिलर बज रहा है वो क्या है उसकी डिटेल्स भी मुझे भेज रहे हैं। साथ ही साथ गीत के शुरुआत में जो होता है इंट्रो म्यूज़िक जिसे कहा जाता है, उसके बारे में भी मुझे लिख कर भेज रहे हैं। और ये दर्शाता है कि आप संगीत से कितने करीब हैं और विविध

आरती को ऐसे श्रोता मिले हैं, बहुत अच्छा लगता है कि आप संगीत की जानकारियां साझा कर रहे हैं साथ ही साथ। एक श्रोता लिखते हैं, क्या मौसम है, चल कहीं दूर निकल जाएं। ऐसा मेरे साथ कई बार होता है, घर के पास एक जंगल है अक्सर, और उस जंगल की जानिब निकल जाती हूँ मैं अक्सर। वहाँ चीड़ के ऊंचे दरख्त हैं, हवा के झोंके हैं, वो जब झूमते हैं तो उनकी नुकीली पत्तियाँ साए साए करती है, वो आवाज़ सुकून देती है मन को। साथ ही हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि मौसम तो ऐसा है कि घर से बाहर जाने को मन ही नहीं करता, और कवि न जाने क्या क्या कह रहा है। विविध भारती के सारे कार्यक्रम हर वर्ग तथा हर उम्र के लोगों के लिए बने हैं। खास करके पोस्ट कोरोना पीरियड के बाद विविध भारती की पॉपुलैरिटी और ज़्यादा बढ़ गई है, और श्रोता सीधे तौर पर जुड़ गए हैं। बिल्कुल सही बात है। हमारे एक और श्रोता कहते हैं कि सपना देखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके कारण अपना भविष्य दांव पर लगाना वो बिल्कुल ठीक नहीं हो सकता। और साथ ही साथ हमारे एक और श्रोता लिख रहे हैं कि उनके घर पर कुछ काम चल रहा है, घर का कुछ काम चल रहा है, यानी कि कंस्ट्रक्शन चल रहा है, और गर्मी अपनी चरम सीमा पर है, और थोड़ी थोड़ी देर में लगता है कि आराम कर लें। साथ ही साथ आम का पना, छाछ, कभी नींबू पुदीने का शरबत, बस ठंडे पेय पदार्थों का सेवन करते रहे, और साथ ही साथ ये जो गीत है इनके साथ हम बने रहें। बिल्कुल, चलिए आपको ले चलते हैं अगले गीत की तरफ। और अगला गीत जो अभी आप सुनेंगे, क्या आप बता सकते हैं कि वो कौन सी फिल्म का गीत है? जी हाँ, ये जो गीत है ये कौन सी फिल्म से लिया गया है, मुझे बताएं।

रात कली ख्वाब में आई और फिल्म का नाम था बुढ़ा मिल गया। जी हाँ, और बहुत सारे श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, यही फिल्म का नाम है। और साथ ही साथ ये भी लिखा है कि नवीन निश्चल पर ये फिल्म आया गया, गीत है साथ ही अर्चना है इस फिल्म में, और बिल्कुल सही। साथ ही हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि आप बहुत ही आसान सवाल आपने ये पूछा, विविध भारती के श्रोताओं के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ा मुश्किल सवाल नहीं है, लेकिन आपसे वादा करते हैं कि अगले प्रोग्राम में और कठिन से कठिन सवाल लेकर आएंगे। लेकिन ये भी है कि जब आपके जवाब आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है और आपसे एक जुड़ाव महसूस होता है। बहुत ज़्यादा कठिन सवाल लेकर आएंगे तो हो सकता है आपके मैसेजेस कम आए मुझ तक, है ना। साथ ही साथ हमारे श्रोताओं ने लिखा है कि बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि आज आपके द्वारा ये पहला प्रोग्राम प्रस्तुत किया जा रहा है जिसका नाम है सुरीला सफ़र, और बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत रोचक प्रेजेंटेशन की आपने, प्रस्तुतिकरण किया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल मुलाकात होती रहेगी इस शो में आपके साथ। और जितने भी श्रोता हैं जिन्होंने भी हमारे बारे में लिखा है, आज इस प्रोग्राम के बारे में लिखा है, उनका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। एक श्रोता हमारी लिखती है कि हवाओं के नर्म झोंके हर पल तुम्हारा ही एहसास दिलाते हैं, दूरी में सुख भी और विरह भी, जैसे पहाड़ का रिश्ता बादलों से है वैसा ही मेरा रिश्ता तुमसे है। बहुत ही खूबसूरत ये मैसेज है, ये संदेश है। तो चलिए अब इस प्रोग्राम की का जो आखिरी गीत है आप तक पहुंचाते हैं।

0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस प्रोग्राम से जुड़ने के लिए। और ये गीत आप सुन रहे थे अमानत फिल्म से, साहिर लुधियानवी ने इसे लिखा था। इसके साथ ही मुझे
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए सुनिए फिल्म संगीत कार्यक्रम का पहला गीत किशोर कुमार का गाया हुआ है बोल।

मेरे हमदम मेरे दोस्त, लीजिए इस फिल्म में सुनिए लता मंगेशकर को। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने इस गीत का संगीत दिया है। गीत रचना मजरू सुल्तानपुरी की।

0: लता मंगेशकर की आवाज में गाए मेरे हमदम मेरे दोस्त फिल्म के इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत अब यहीं समाप्त होता है। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: के साथ मैं अभिषेक कटियार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सुभाषितम के तहत संदेश साझा करते हुए कहा कि सच्चा ज्ञान देश, समाज और पूरी मानवता के कल्याण का रास्ता खोलता है। उन्होंने एक संस्कृत श्लोक भी पोस्ट किया, जिसका मतलब है कि आत्मा स्वभाव से शुद्ध और स्वयं प्रकाशमान है, लेकिन अज्ञान के कारण वह मलिन दिखती है और ज्ञान से फिर अपने असली स्वरूप में आ जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को आज 12 साल पूरे हो गए हैं। 26 मई 2014 को उन्होंने देश के 15वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। इस मौके पर प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रधानमंत्री को बधाई देते हुए कहा कि बीते 12 वर्षों में भारत ने आत्मनिर्भरता, डिजिटल क्रांति, सांस्कृतिक गौरव और वैश्विक नेतृत्व के नए आयाम स्थापित किए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 3 दिवसीय दौरे पर सिक्किम पहुंची हैं। यहां राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर और मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने उनका स्वागत किया। पहले दिन वे महिलाओं के लिए खास गुलाबी बसों का उद्घाटन करेंगी और आर्किडेरियम और नामग्याल तिब्बत विज्ञान संस्थान का दौरा करेंगी। वहीं दूसरे दिन नाथुला दर्रे की यात्रा के साथ सिक्किम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शिरकत करेंगी। दौरे के आखिरी दिन वे सिक्किम पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित करेंगी, जिसके साथ सिक्किम यह प्रतिष्ठित सम्मान पाने वाला देश का 15वां राज्य बन जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल नई दिल्ली में भोपाल निवासी 2 विभूतियों को पद्मश्री सम्मान से नवाजा। कैलाश चंद्र पंत को शिक्षा और साहित्य और डॉक्टर नारायण व्यास को पुरातत्व के क्षेत्र में यह सम्मान दिया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दोनों विभूतियों को बधाई देते हुए कहा कि इनके कार्यों ने प्रदेश का नाम रोशन किया है। उज्जैन में 2 दिवसीय क्षिप्रा तीर्थ परिक्रमा का आज समापन होगा, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शाम 5 बजे माँ क्षिप्रा की 351 फीट लंबी चुनरी अर्पित करेंगे। इस परिक्रमा की शुरुआत कल गंगा दशहरे के मौके पर मुख्यमंत्री के पुत्र वैभव यादव ने रामघाट पर पूजन कर की थी। ये परिक्रमा 23 साल पहले मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने ही मां क्षिप्रा के संरक्षण के लिए शुरू की थी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की पुस्तक अपनापन, नरेंद्र मोदी संग मेरे अनुभव का आज नई दिल्ली में विमोचन हुआ। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा ने इस किताब को लोकार्पित किया। इस मौके पर प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव समेत कई केंद्रीय मंत्री मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा,
1: आज 26 मई है, ये वो ऐतिहासिक दिन है जब श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण की थी। मैं भी उनको बधाई देता हूँ और आप सब भी उनका अभिनंदन करें। लेकिन मेरा और उनका साथ 35 साल पुराना है और इन 35 सालों में मैंने उनको हर क्षण देश के लिए जीते हुए देखा है। उनका हर कदम देश की प्रगति और विकास के लिए उठा है। मैंने उनके दिल को जनता के लिए धड़कते हुए देखा है।
0: 21 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों के तहत आयुष मंत्रालय पूरे देश में 100 दिनों की काउंटडाउन सीरीज चला रहा है, जिसके तहत 25वें कार्यक्रम की मेजबानी खजुराहो कर रहा है। इस सिलसिले में केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री प्रताप जाधव आज खजुराहो पहुंचे, जहां एयरपोर्ट पर सांसद वीडी शर्मा और विधायक अरविंद पटेलिया ने उनका स्वागत किया। अब रुख करते हैं मौसम का। इस बार नौतपा आते ही प्रदेश में गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। छतरपुर के खजुराहो में पारा 47.2 डिग्री और नौगांव में 46.8 डिग्री पर दर्ज किया गया। प्रदेश के करीब 45 जिले हीटवेव की चपेट में हैं और मौसम विज्ञान विभाग ने निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना और सतना में रेड अलर्ट जारी किया है। अच्छी खबर यह है कि 28 मई से प्री मानसून की दस्तक हो सकती है और 14 जिलों में गरज चमक के साथ बारिश के आसार हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। प्रदेश सरकार ने ईद उल जुहा यानी बकरीद का सरकारी अवकाश 27 मई की जगह 28 मई कर दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी किया है, जिसके बाद अब 27 मई को सभी सरकारी दफ्तर और बैंक खुले रहेंगे। झाबुआ के ग्राम रंभापुर के हाट बाजार में संभाग स्तरीय चलित खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला द्वारा बिक रहे खाद्य पदार्थों की मौके पर ही जांच की गई। छिंदवाड़ा के खिलाड़ियों ने शिमला में आयोजित नेशनल स्केटिंग चैंपियनशिप में 2 गोल्ड सहित 5 मेडल हासिल किए हैं। खंडवा के मानधाता के आरक्षक रवि सोलंकी ने ओंकारेश्वर में नर्मदा नदी में डूब रहे महाराष्ट्र निवासी युवक की जान बचाई और आगरमालवा जिला अस्पताल में तंबाकू व्यसन मुक्ति केंद्र स्थापित किया गया है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। इस समय दोपहर के 2:15 होने को है। थोड़ी देर में दोपहर समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम।

0: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। क्वाड ने स्थिर और सुरक्षित ऊर्जा बाजारों की प्रतिबद्धता व्यक्त की। भारत और अमेरिका ने महत्वपूर्ण खनिजों और दुर्लभ मृदा तत्वों की आपूर्ति, खनन और प्रसंस्करण को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृहमंत्री अमित शाह ने राजस्थान के सांचू में सीमा चौकी का दौरा किया। राज्य के सीमावर्ती क्षेत्र में वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। सऊदी अरब में लाखों जायरीन आज हज की मुख्य रस्म अदा कर रहे हैं। और आईपीएल क्रिकेट में धर्मशाला में क्वालिफायर वन में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की अध्यक्षता में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठक में हिस्सा लिया। क्वाड समूह ने स्थिर और सुरक्षित ऊर्जा बाजारों की प्रतिबद्धता व्यक्त की। सदस्य देशों ने वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत समुद्री निगरानी पहल और समुद्री क्षेत्र में गतिविधियों और स्थितियों की जानकारी के लिए साझा तस्वीर पर सहमति जताई। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि क्वाड बंदरगाह बुनियादी ढांचे पर एक विशेषज्ञ पैनल बनाने पर विचार करेगा। फिजी में एक पायलट बंदरगाह परियोजना और समुद्र के नीचे बिछी केबलों पर भी सहयोग करेगा। उन्होंने कहा कि बैठक के मुख्य नतीजों में से क्वाड क्रिटिकल मिनरल फ्रेमवर्क को अंतिम रूप देना था। क्वाड देशों ने भारत अमेरिका क्रिटिकल मिनरल्स फ्रेमवर्क पर भी हस्ताक्षर किए। हिंद प्रशांत ऊर्जा सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, प्रबंधन, नीति, अंतर्राष्ट्रीय बाजार विश्लेषण और आपातकालीन प्रतिक्रिया अभ्यासों के क्षेत्र में क्वाड पहल की घोषणा भी की गई। बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता में डॉ. जयशंकर ने कहा कि क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत किया जाएगा।
1: Economic resilience should be promoted.
2: बैठक में आर्थिक मजबूती बनाए रखने, आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने, विश्वसनीय और सुरक्षित तकनीकों का प्रसार करने तथा उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने पर चर्चा हुई। ऊर्जा और उर्वरक की वर्तमान उपलब्धता के साथ साथ महत्वपूर्ण खनिजों और संसाधनों की उपलब्धता पर भी बात हुई। हमारा लक्ष्य आपसी सहयोग को मजबूत करना तथा दूसरों की सहायता करना है। हम क्वाड देश आदान प्रदान से विकास और समृद्धि की खोज में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं।
0: श्री जयशंकर ने कहा कि लोकतांत्रिक देशों के तौर पर आतंकवाद के साझा खतरे का मुकाबला करने पर भी हमारा ध्यान केंद्रित है।
1: As democratic nations,
2: लोकतांत्रिक राष्ट्र होने के नाते हमने आतंकवाद के साझा खतरे का मुकाबला करने पर भी ध्यान दिया। हमारी आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति है। आतंकवादी हमलों से प्रभावित राष्ट्रों को आत्मरक्षा का अधिकार है। स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के कई आयाम और पहलू हैं। बैठक में इनमें से कई क्षेत्रों में हुई प्रगति की समीक्षा की गई, जबकि अन्य क्षेत्रों में खोज को प्रोत्साहित किया गया। आने वाले दिनों में चाहे वह आर्थिक गतिविधि हो, ऊर्जा व्यापार हो या समुद्री व्यापार, हिंद प्रशांत क्षेत्र विश्व के लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाएगा।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि क्वाड क्रिटिकल मिनरल्स फ्रेमवर्क क्वाड देशों को आर्थिक नीति के साधनों का लाभ उठाने और निवेश का समन्वय करने में मार्गदर्शन करेगा। उन्होंने कहा कि हिंद प्रशांत ऊर्जा सुरक्षा पर क्वाड पहल संकट के दौरान देश क्षेत्र में ऊर्जा की आपूर्ति बनाए रखने में मदद करेगी। श्री रूबियो ने बताया कि अमरीका इस साल का और विस्तार करने के उद्देश्य से इस वर्ष के अंत में ईंधन सुरक्षा मंच के लिए क्वाड देशों की मेजबानी करेगा। श्री रूबियो ने कहा कि क्वाड देश मजबूत मूल्यों को साझा करते हैं और उनके हित आपस में जुड़े हुए हैं।
3: सहयोग के जिन क्षेत्रों पर हम मिलकर काम कर रहे हैं वे हाल ही में दुनिया भर में हुई घटनाओं के कारण और भी अधिक प्रासंगिक और महत्वपूर्ण हो गए हैं। इसलिए आज मुझे लगता है कि हम उन क्षेत्रों में अपने संबंधों को क्रियान्वित करने में और भी अधिक प्रगति करेंगे जिन पर हम सहयोग कर सकते हैं। क्वाड के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि हम साझा हितों के क्षेत्रों में विचारों का आदान प्रदान करने के लिए एक साथ आते हैं। क्वाड तेजी से एक ऐसा मंच बनता जा रहा है जिसके माध्यम से हम कार्यवाही कर सकते हैं।
0: जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सु मोतेगी ने होर्मुज जल डमरू मध्य में स्वतंत्र और सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करने के साथ पश्चिम एशिया में स्थिरता लाने में कूटनीतिक प्रयासों के महत्व पर बल दिया। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग ने कहा कि क्वाड ने आज सुरक्षा पहल और महत्वपूर्ण खनिजों जैसे क्षेत्रों में कई प्रयासों को आगे बढ़ाया है।

0: भारत और अमेरिका ने आज महत्वपूर्ण खनिजों और दुर्लभ मृदा तत्वों की आपूर्ति, खनन और प्रसंस्करण को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण द्विपक्षीय ढांचे पर हस्ताक्षर किए। ये ऐतिहासिक समझौता विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के बीच हुआ। आज दोपहर बाद जापान और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री सेवा तीस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने आज राजस्थान में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित सांचू सीमा चौकी का दौरा किया। उन्होंने इस क्षेत्र में तैनात सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के जवानों से बातचीत की और देश की सीमाओं की रक्षा के प्रति उनके समर्पण की सराहना की। इस दौरान गृहमंत्री ने राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम के दूसरे चरण की शुरुआत की। श्री शाह बीकानेर स्थित बीएसएफ मुख्यालय में सीमा सुरक्षा बल पर एक बैठक की अध्यक्षता करेंगे। उत्तर प्रदेश में आज आगरा लखनऊ और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर दो अलग अलग सड़क हादसों में 10 लोगों की मौत हो गई। पहली घटना में उन्नाव जिले के पास आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बस पलटने से 6 लोगों की जान चली गई और 10 से अधिक लोगों के घायल हो गए। अधिकारियों ने बताया है कि बस दिल्ली से गोरखपुर जा रही थी, तभी औरास पुलिस थाना क्षेत्र के पास चालक ने नियंत्रण खो दिया, जिससे बस पलट गई। एक अन्य घटना बाराबंकी जिले के पास पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर हुई, जिसमें 4 लोगों की मृत्यु हो गई। ओडिशा के कालाहांडी जिले में निर्माणाधीन सेप्टिक टैंक में दम घुटने से 6 लोगों की मौत हो गई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। ये घटना मदनपुर रामपुर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत गौड़ कालाखुंटा गांव में हुई। पुलिस के अनुसार मजदूर सेप्टिक टैंक से लकड़ी के ढांचे को हटा रहे थे, तभी जहरीली गैसों या ऑक्सीजन की कमी के कारण उनका दम घुट गया। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने इस त्रासदी पर गहरा दुख व्यक्त किया है और मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। अधिकारियों के अनुसार रोपवे के 65 कैबिनों में 300 से अधिक पर्यटक फंस गए थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सफल बचाव अभियान की सराहना की है। सरकार देश में एक मजबूत, भरोसेमंद और टिकाऊ सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम विकसित करने के लिए कई महत्वपूर्ण पहल कर रही है। सेमीकंडक्टर इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत निर्माण और पैकेजिंग की 12 परियोजनाओं के साथ साथ 24 सेमीकंडक्टर डिजाइन परियोजनाओं को भी मंजूरी दी जा चुकी है। दूरसंचार विभाग ने नागरिकों के लिए इंटरनेट का उपयोग आसान बनाने की दिशा में प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस पीएम वाणी के अंतर्गत सुधारों की पहल की है। संचार मंत्रालय ने कहा है कि सभी पीएम वाणी हितधारकों को संशोधित दिशा निर्देशों को लागू करने और इस वर्ष जुलाई तक पूरे इकोसिस्टम में नई उपयोगकर्ता अनुकूल सुविधाओं को चालू करने का निर्देश दिया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने आज नई दिल्ली में अपनापन नरेंद्र मोदी संग मेरे अनुभव नामक पुस्तक का विमोचन किया। ये पुस्तक केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लिखी गई है। इस अवसर पर श्री नायडू ने कहा कि सभी को, विशेषकर उभरते हुए राजनेताओं को, इस पुस्तक को अवश्य पढ़ना चाहिए। श्री देवेगौड़ा ने कहा कि पुस्तक एक सामान्य राजनीतिक जीवन नहीं, बल्कि ये दर्शाती है कि श्री मोदी और श्री शिवराज ने जनता के कल्याण के लिए कैसे मिलकर काम किया। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि पुस्तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनके दशकों के अनुभव पर आधारित है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 वर्ष पूर्ण होने पर उन्हें बधाई दी।
1: आज 26 मई है, ये वो ऐतिहासिक दिन है जब श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण की थी। मैं भी उनको बधाई देता हूँ और आप सब भी उनका अभिनंदन करें। लेकिन मेरा और उनका साथ 35 साल पुराना है और इन 35 सालों में मैंने उनको हर क्षण देश के लिए जीते हुए देखा है। उनका हर कदम देश की प्रगति और विकास के लिए उठा है। मैंने उनके दिल को जनता के लिए धड़कते हुए देखा है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नरेंद्र मोदी सरकार के आज 12 साल पूरे होने पर इसे भारत की सभ्यता और विकास यात्रा का बदलाव लाने वाला दौर बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि 26 मई 2014 को देश के

0: प्रशासन, सोच, नेतृत्व और राष्ट्रीय संकल्प में एक निर्णायक बदलाव आया जब श्री मोदी ने प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यभार संभालने के बाद से देश ने अभूतपूर्व आत्मविश्वास और नए सांस्कृतिक पुनर्जागरण का ऐतिहासिक क्षण देखा है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नवीन ने सरकार के सुशासन और राष्ट्र प्रथम की भावना से प्रेरित पिछले 12 वर्ष के कार्यकाल को अभूतपूर्व बताया। बीजू जनता दल के पूर्व राज्यसभा सांसद देवाशीष सामंतराय भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। उन्हें नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में भाजपा के महासचिव अरुण सिंह और ओडिशा के प्रदेश अध्यक्ष मनमोहन सामल सहित वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में पार्टी में शामिल किया गया। खाद्य ग्रामोद्योग आयोग ने स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने की दिशा में नया रिकॉर्ड बनाया है। वित्त वर्ष 2024-25 में कारोबार 1,87,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए खाद्य ग्रामोद्योग उद्योग के अध्यक्ष मनोज कुमार ने कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और लाखों ग्रामीण कारीगरों की मेहनत के फलस्वरूप प्राप्त हुई है। घरेलू शेयर बाजार के संविधि सूचकांक में दोपहर के कारोबार में गिरावट का रुख है। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 251 अंक गिरकर 76,238 जबकि निफ्टी 50 अंक की गिरावट के साथ 23,982 पर था। सऊदी अरब में वार्षिक हज यात्रा का सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण दिन आज अराफात का दिन है। दुनिया भर से लाखों मुसलमान जुलहिजा की 9 तारीख को मक्का के पास अराफात के मैदान में इकट्ठा हुए हैं ताकि वे हज की प्रमुख रस्म अदा कर सकें। जायरीन निमरा मस्जिद में खुतबाए हज या हज का उपदेश सुनेंगे और शाम को मुजदलिफा के लिए रवाना होने से पहले दोपहर और शाम की नमाज एक साथ अदा करेंगे। इस रस्म को हज पूरा करने के लिए अनिवार्य माना जाता है। मुजदलिफा से जायरीन कल सुबह कुर्बानी और शैतान को पत्थर मारने के लिए प्रतीकात्मक रस्म के लिए मीना लौटेंगे। इस साल के हज में 1,75,000 से भी ज्यादा भारतीय जायरीन हिस्सा ले रहे हैं। अमरीका और ईरान के बीच तनाव और बढ़ गया है। अमरीकी सेना ने दक्षिणी ईरान में नए हवाई हमले किए हैं। इन हमलों को वॉशिंगटन ने अपने सैनिकों की सुरक्षा के लिए आत्मरक्षा में की गई कार्रवाई बताया है। आईपीएल क्रिकेट में आज क्वालिफायर 1 में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। ये मुकाबला धर्मशाला में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। विजेता टीम फाइनल में पहुंचेगी जबकि हारने वाली टीम को क्वालिफायर 2 में एक और मौका मिलेगा। मौसम विभाग ने बताया है कि मिजोरम में आज मॉनसून की शुरुआत हो गई है। केरलम में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के कल तक पहुंचने की संभावना है। एक रिपोर्ट।
1: मौसम विभाग ने केरलम के तिरुवनंतपुरम, कोल्लम और अल्लापुझा जिलों में आज अलग अलग स्थानों पर तेज वर्षा की आशंका को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। कई दक्षिणी क्षेत्रों में लगातार बारिश जारी है। कोच्चि, मुन्नार, कुमारकोम, निलाक्कल, कुमिली, सबरीमला, वर्कला और पोनमुडी सहित कई स्थानों पर आज सुबह 10 बजे से लगभग 5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। लक्षद्वीप के अमिनी, अगाती और कवरत्ती में भी 5 से 15 मिलीमीटर के बीच बारिश हुई है। अधिकारियों ने बताया है कि मौसम की स्थिति पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पल्लुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं कनकलता।
0: इस बीच विभाग ने आज दिल्ली में भी भीषण गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया है। राजधानी में कल तक लू की स्थिति की संभावना है। हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, विदर्भ और पश्चिम राजस्थान में आज भी भीषण लू चल सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। क्वाड ने स्थिर और सुरक्षित ऊर्जा बाजारों की प्रतिबद्धता व्यक्त की। भारत और अमेरिका ने महत्वपूर्ण खनिजों और दुर्लभ मृदा तत्वों की आपूर्ति, खनन और प्रसंस्करण को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृहमंत्री अमित शाह ने राजस्थान के सांचू सीमा चौकी का दौरा किया। राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। सऊदी अरब में लाखों जायरीन आज हज की मुख्य रस्म अदा कर रहे हैं और आईपीएल क्रिकेट में धर्मशाला में क्वालिफायर 1 में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: लीजिए सुनिए कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

आज के सदाबहार नगमे की पहली पेशकश अभी आप सुन रहे थे उड़न खटोला फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज में शकील बदायूनी ने से लिखा नौशाद का संगीत।

0: आशा भोसले और मोहम्मद रफी को आप सुन रहे थे इस गीत में, तू नहीं और सही फिल्म का नाम था। असद भोपाली ने इसे लिखा और रवि का संगीत।
1: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना, मैं और मेरी तन्हाई, सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सदाबहार नगमे।

लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाजों में ये गीत श्री 420 से आप अभी सुन रहे थे। शैलेंद्र ने इसे लिखा और शंकर जयकिशन की तर्ज थी। अगला गीत सदाबहार नगमे में लीजिए।

0: जब जब फूल खिले, इस फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में साथी नंदा ने साथ दिया था, आनंद बख्शी ने इसे लिखा और कल्याण जी आनंद जी की तर्ज थी।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
2: देखो जी बहार आई, गांवों में खिली कलियां।
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
3: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
1: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे गीत।
4: तुम्हारी याद सताती है
1: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं सदाबहार नगमे।

लीजिए सुनिए आज के इस प्रोग्राम सदाबहार नगमे का आखिरी नगमा। मधुमति फिल्म से आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और सखियों की आवाजें, शैलेंद्र ने इसे लिखा, सलिल चौधरी का संगीत।

0: सहेली
1: कार्यक्रम सखी सहेली सुनने वाले सभी सखियों और सखाओं को मंदाकिनी जोशी और
2: मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार।
1: भाई मंजरी, क्या बात है, आज बहुत ही खुश मिजाज लग रही हो।
2: जब आप मिलती है ना तो खुशी वैसे ही अपने आप बाहर निकल के आ अच्छा। जाती है, और जब सखी सहेली का मंच होता है और फिर लगता है कि हमें कितने सारे लोग सुन रहे होंगे कि आज ये दोनों फिर आ गई है, फिर क्या क्या बोलेंगी।
1: ये तो बात है ना। देखिए, दोपहर की जो गर्मी है ना, इसमें अगर थोड़ी हल्की फुल्की चुहलबाजी हो जाए, बोछार हो जाए हंसी मजाक की, तो हमारी जो सखियां हैं, जो सखा है ना, वो भी हल्की ठंडक महसूस करने
2: महसूस
1: हैं।
2: करते हैं, और जो थोड़ा सा झपकी लेते हैं हाँ। वो भी थोड़े से एक्टिव हो जाते हैं हाँ। कि नहीं भाई अभी
1: अरे
2: तो
1: क्या बात करने वाली है आज
2: क्या बोलने वाली है
1: तो बताओ आज क्या बात करने वाले हैं।
2: देखिए, जब अपने छुट्टियों का समय शुरू हो गया तो जब परिवार के कुछ लोग कहीं बाहर जाते हैं और जाते जाते वो बता जाते हैं, देखो तुम घर पर हो और मेरे आने से पहले ये काम ठीक करा लेना, कुछ बिजली का खराब होगा तो वो करा लेना, कुछ चीजें लानी खरीद के, राशन पानी है वो भर लेना, नहीं तो किचन के डिब्बे आप ठीक करा लेना, नहीं तो कूलर ठीक करा लेना, इस तरह की बहुत सारी छोटी छोटी चीजें वो बता के जाते हैं। तो क्योंकि हमें तो घर संभालना है तो वो तो बाहर चले गए घूम फिर
1: तो के। मुझे लग रहा है मंजरी कि तुम्हारे पतिदेव जो है कहीं बाहर गए हैं और तुम्हें ये सारी बातें कहकर गए हैं कि मंजरी मेरे आने तक ये सारे काम हो जाने चाहिए।
2: मंदाकिनी मैम, देखिए मंदाकिनी क्या होता है कि ये सारी बातें जो होती ना ये हर घर में होती है। कुछ मेरे घर की बात आपने जैसे कह दी तो हम भी सोच सकते हैं कि भाई आपके हाँ,
1: मेरे घर में तो ये हो ही रहा है। अच्छा। हमारे घर के कुछ लोग जो बाहर घूमने गए हैं, हमारे अपने लोग, जब वो लौटेंगे तो उनके आने से पहले कुछ काम ऐसे हैं जो हमें करके रखने हैं। हालांकि उन्होंने उस अंदाज में नहीं कहा होगा कि भाई काम हो जाने चाहिए, लेकिन आपके अंदर एक जिम्मेदारी की भावना होती है कि भाई कोई हमारे परिवार के लोग घूमने गए हैं, जब वो वापस आए तो उन्हें ये सुविधा हम दे दें क्योंकि हम घर पर ही हैं।
2: हम घर पर हैं और इसमें बड़ा वो भी रहता है कि
1: आनंद भी आता है
2: और जब काम के बीच में हम थोड़ा समय निकाल के लिए अपने घर के लिए देते हैं तो लगता है कि अरे आज कर लेंगे, अच्छा अभी तो बहुत दिन है वो उनके आने में, अभी कर लेंगे। जब आखिर के दिन बचते हैं ना तब भागदौड़ मचती है कि भैया अब कर लो, नहीं आएंगे तो ये सुनने को
1: अधूरापन मिलेगा, अव्यवस्था मिलेगी।
2: कहने का मतलब खुद से काम करने के लिए हमें आगे बढ़ना ही पड़ता है।
1: बिल्कुल, ये तो है, अगर हम खुद से नहीं बढ़ेंगे तो वो काम नहीं होता है। अब आप खुद आगे बढ़िए और बताइए कि आज हमारे विषय क्या है बातचीत के।
2: तो देखिए, हम बताते हैं कि आज हम लोग बात करने वाले हैं जो शादी में जनवासे के किस्से हुआ करते थे, वो आप सभी के ने ये चीजें महसूस करी होंगी। तो चुलबुले से किस्से हैं, रूठने मनाने के किस्से होते हैं, तो आप साझा कीजिए, याद करिए अपने मेमोरी को और लिखिए। और उद्यमी महिला में हम बात करने वाले हैं राधिका अग्रवाल, ऑनलाइन मार्केट प्लस शॉप क्लूज की सह संस्थापक हैं, इनके बारे में बात करेंगे। और मुहावरों की दुनिया में कान का कच्चा होना, तो इसके बारे में हमारे सभी साथी सखियां सहेलियां सभी लोग लिखकर भेजे
1: हाँ। लिखें ये कि क्या वो खुद कान के कच्चे हैं, ये भी लिखना जरूरी है। अभी क्या होता है, हमारे श्रोता क्या करेंगे, कान के कच्चे मुहावरे का अर्थ लिखने लग जाएंगे। वो अर्थ हमें नहीं लिखना है, अर्थ तो आप जानते हैं,
2: आप बता सकते हैं कि फलाना अभी कान का कच्चा है। हाँ,
1: ऐसी जिंदगी में हमारे साथ हुआ कि किसी कोई व्यक्ति कान का कच्चा था और उसने बात को सुनकर हम पे ऐसा आरोप मढ़ दिया। तो ये जो किस्से हैं जिंदगी में, ऐसा बहुत बार होता है हमारे अपने घर में। कुछ लोग हमारे अपने भाई बहन, अपने माता पिता भी हो जाते हैं। कई बार हम कहते हैं अरे भाई माँ, आपको पापा ने और आपने बात मान ली हाँ। तो आप कान की कच्ची हो इसका मतलब।
2: तो इस तरह की छोटी छोटी बातें लिखकर भेजिए जिसमें आपको भी मजा है, हंसी है और हमें भी पढ़ के अच्छा लगे। और अच्छे काम की शुरुआत खुद से, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन मंदाकिनी जी, उससे पहले तो हम लोग गीतों से समा बांध देते हैं।
1: बिल्कुल, सुनते हैं ये गीत।

0: हाँ तो मंजरी, अब हम अच्छे काम की शुरुआत कर लेते हैं।
1: बिल्कुल, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे चीजें आ गई, खत आ गए कहना चाहिए थे, खत लेके सदम तो ये कहना चाहिए, हमारे पास हमारे श्रोताओं के बहुत सारे
0: आ गए हैं,
1: खत आ चुके हैं और इस विषय पर भी आ गए कि अच्छे काम की शुरुआत खुद से करें। तो क्या है कि मंदाकिनी जी, समाज को बेहतर बनाने की बात हर व्यक्ति करता है, लेकिन हम चाहते हैं कि लोग ईमानदार बने, अपने वातावरण को स्वच्छ रखें, रिश्तों में भी प्रेम उनके बना रहे और हर जगह शांति और सहयोग दिखाई दे। लेकिन अक्सर हम ये भूल जाते हैं ना कि किसी भी अच्छे बदलाव की शुरुआत दूसरों से नहीं बल्कि स्वयं से होती है। अगर हम किसी से अच्छा करवाना चाहते हैं तो हमें खुद अच्छा करने के बारे में पहले सोचना चाहिए।
0: बिल्कुल,
1: यदि हर व्यक्ति अपने व्यवहार, सोच और कर्म को सुधारने का प्रयास करे तो पूरा समाज अपने आप बेहतर बन सकता है। इसलिए कहा जाता है अच्छे काम की शुरुआत खुद से करें। यानी अगर कुछ कोई किसी के अंदर क्वालिटी है, गुण है, वो अच्छा करना

0: आता है, तो आप उसको एक अवसर जरूर दें, उसको देखें कि वो कितना अच्छा कर सकता है।
1: बिल्कुल, ये तो आपने कही मंजरी बात की, दूसरा आप पर नजर लगाए हुए है कि भाई आपको हम मौका दें, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि स्वयं में भी बदलाव करना बहुत जरूरी है। अभी क्यों जरूरी है? क्योंकि हम समाज का ही एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और समाज अनेक व्यक्तियों से मिलकर बनता है। यदि हम अच्छे हैं तो परिवार अच्छा होगा, परिवार अच्छा है तो समाज अच्छा होगा और देश अच्छा बनेगा। अक्सर क्या होता है, दूसरों की गलतियां हम गिनाते रहते हैं लेकिन अपनी कमियों पर हम ध्यान नहीं देते, जबकि सच्चाई ये होती है कि सुधार की पहली सीढ़ी क्या है,
0: सुधार है। और देखिए, हम चाहते हैं ना कि लोग समय का सम्मान करें, तो पहले हमें स्वयं समय का पालन करना चाहिए। और यदि हम चाहते हैं कि बच्चे संस्कारी बने, तो हमें अपने व्यवहार का उदाहरण प्रस्तुत करना होगा। केवल उपदेश देने से बदलाव नहीं आता है, बल्कि अपने कर्मों से प्रेरणा देने से बदलाव आता है। छोटी शुरुआत उसका बड़ा प्रभाव पड़ता है, यानी अच्छे काम के लिए हमेशा बड़े मंच या बहुत धन की आवश्यकता नहीं होती है। छोटी छोटी आदतों से ही समाज में बड़ा परिवर्तन हम ला सकते हैं, जैसे कि सड़क पर कचरा ना फैलाना, या हमारे आसपास गली मोहल्लों में हम कचरा ना डालें, जरूरतमंद की सहायता करें, बुजुर्गों का सम्मान करें और पेड़ लगाएं, पौधे लगाएं, और क्या कहते हैं कि जो हमारे पशु पक्षी हैं उनके लिए हम भोजन और पानी की व्यवस्था करें। इस तरह के हम छोटे छोटे काम खुद भी कर सकते
1: हैं। अपने घर में हम पानी और बिजली को बचाएं, कितना पानी का नुकसान करते हैं हम लोग, पानी चलता रहता है नलों से लगातार। आपने देखा होगा छोटे शहरों में तो लोग पानी से घर धोते हैं और धोते ही जाते हैं, बाल्टियों भर भर के बाल्टियां बाहर फेंक देते हैं। तो ये पानी का इतना दुरुपयोग हम करते हैं जिसका हमें अंदाजा नहीं है कि, और बिजली चल रही है तो चले, दिन भर कूलर दिन भर एसी में हम बैठे रहने के आदि हो गए हैं। तो हम यहाँ से शुरुआत करें ना, कम से कम पेट्रोल बचाएं, हम अपना ईंधन बचाएं। हम छोटी सी थोड़ी सी दूर पर जाते हैं और अपनी स्कूटी स्टार्ट कर लेते हैं, या कार चलाने की हमें आदत है तो हम कार लेकर भी चले जाते हैं, गाड़ी लेकर भी हम चले जाते हैं, लेकिन हम पैदल नहीं चलते हैं। तो ये चीजें जो है, खुद में सुधार लाना बहुत जरूरी है। सच बोलना सीखे, ईमानदारी अपनाना सीखे। हम दूसरे से उम्मीद करती हैं कि वो सच होना चाहिए, सच बोलने वाला होना चाहिए, लेकिन अपने ऊपर जब बात आती है तो हम झूठ का सहारा ले लेते हैं। और ये काम छोटे जरूर लगते हैं मंजरी, लेकिन इनका प्रभाव बहुत गहरा होता है हमारे जीवन में। जब व्यक्ति अच्छा काम करता है तो दूसरे लोग उससे बिल्कुल प्रेरित होते हैं।
0: बिल्कुल, और हमारे साथी भी लिखते हैं मंदाकिनी जी कि हमारी आदत होती है कि अक्सर हम सबको सलाह देते रहते हैं, दूसरों के लिए भी सोचना चाहिए, अच्छे काम करने चाहिए, लेकिन खुद ऐसा करने से झिझकते हैं। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो रास्ता चलते रुक कर किसी जरूरतमंद की सहायता करते हैं। अगर सब ये सोचे कि कोई करे या नहीं, मुझे तो जरूरतमंदों की सहायता करनी ही है, और किसी को कहने से बेहतर मैं खुद वो काम करूं, तो हमें देख कर हो सकता है दूसरे लोगों की सोच में भी बदलाव आए। बिल्कुल सही बात है कि अगर हम किसी के लिए, अपने लिए अच्छा चाहते हैं तो दूसरे के लिए भी आप अच्छा करना सोचिए। आपके आपके लिए खुद अच्छा होने ही लगेगा, वो आपको आपके कर्मों का फल आपको खुद मिलेगा, लेकिन आप अच्छा तो करने की सोचिए।
1: बिल्कुल, कहते हैं कि एक राजा कैसा व्यवहार चाहता है जैसा दूसरा राजा चाहता है, यानी एक राजा को दूसरे राजा से पहले अच्छा व्यवहार करना होगा, तभी तो दूसरा राजा पहले राजा से अच्छा व्यवहार करेगा। तो वही बात हमारे सामने होती है कि हम जब दूसरे के काम को प्रेरित करेंगे, अच्छा करेंगे, तो हमें लगेगा कि हम खुद सीख रहे हैं। जैसे एक श्रोता लिखते हैं कि अच्छे काम की शुरुआत खुद से एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है। बदलाव की शुरुआत हमेशा खुद से होती है। यहाँ कुछ व्यवहारिक तरीके हैं जिन्हें आप खुद को बेहतर बनाकर अच्छे काम की शुरुआत कर सकते हैं। छोटे कदमों से शुरुआत करें, बहुत बड़ा लक्ष्य लेने के बजाय रोजमर्रा के छोटे छोटे सुधारों पर ध्यान दें। जैसे रोज 30 मिनट पढ़ना या नियम व्यायाम करना सीखें, स्वयं की आदतों का विश्लेषण करें, अपनी दिनचर्या में से बुरी आदतें जैसे देर तक सोना, मोबाइल का बहुत उपयोग, इसको पहचानें, सुधारें, सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं। अच्छे काम के लिए सही सोच और दृढ़ निश्चय की जरूरत होती है। खुद से सकारात्मक वादे करें, ज्ञान बढ़ाएं, खुद को शिक्षित करें और अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ बनने का प्रयास करें, अब जिससे आप दूसरों की बेहतर मदद कर सकें। इसके अलावा हर दिन कुछ सकारात्मक सीखने का प्रयास करें, आभार प्रकट करें। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अच्छे समय का इंतजार न करें, जो आज आपके पास समय है वहीं से मेहनत करना शुरू कर दें।
0: बहुत सुंदर सी बात लिखी है इन्होंने।
1: और मंजरी, अभी हमें एक छोटा सा अंतराल लेना है, फिर मिलते हैं।

0: मंदाकिनी जी लिखते हैं कि ये बात बिल्कुल सच है कि लोग उपदेश से नहीं उदाहरण से सीखते हैं। जैसे सभी अभिभावक चाहते हैं कि उनके बच्चे मोबाइल का उपयोग बहुत कम करें, तो सबसे पहले अभिभावकों को स्वयं मोबाइल का उपयोग कम करना होगा। हमारा आचरण ही सामने वाले को संदेश देता है। हर इंसान दूसरों को बदलने का प्रयास करता है, जबकि पहली शुरुआत स्वयं से करनी चाहिए। बदलाव शिकायत करने से नहीं बल्कि शुरुआत करने से आता है, और अच्छे कार्य की शुरुआत स्वयं से की जाए तो बेहतर होता है। गांधी जी ने कहा था कि जो बदलाव दुनिया में देखना चाहते हो तो सबसे पहले वही बदलाव खुद में लाना होगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल। वही एक श्रोता लिखते हैं कि किसी भी अच्छे कार्य की शुरुआत सबसे पहले स्वयं से करें। जैसे एक दीपक पहले स्वयं जलता है तभी दूसरों को रोशनी देता है, उसी प्रकार व्यक्ति पहले अपने भीतर अच्छाई लाता है तब कहीं अच्छाई समाज में फैलती है। कुछ उदाहरण है, जैसे यदि हम चाहते हैं कि लोग सड़क पर कचरा न फैलाएं तो सबसे पहले हमें स्वयं कचरा डस्टबिन में डालना होगा। दूसरा, यदि हम चाहते हैं कि परिवार में प्रेम और सम्मान बना रहे तो पहले हमें अपने व्यवहार में मधुरता लानी होगी। और तीसरा ये कि अगर हम दूसरों से समय की पाबंदी की अपेक्षा करते हैं तो पहले हमें स्वयं समय का सम्मान करना होगा।
0: बिल्कुल। और हमारे एक साथी लिखते हैं कि अच्छे काम की शुरुआत खुद से ही करना बहुत अच्छा विषय है। जब हम स्वयं करेंगे तो बाकी लोगों को प्रोत्साहित कर सकते हैं। जैसे कि हम मोबाइल लैपटॉप पर जब खाली होते हैं बैठ जाते हैं और बच्चों को मना करते हैं। वास्तव में हम तो काम के कारण बैठते हैं, बच्चे तो छुट्टियां हैं, क्या करें। कितनी भी अन्य गतिविधियों में व्यस्त रखें पर खाली होती वे मोबाइल चलाते हैं, उनको मना करते हैं और समझाते हैं। बड़े बच्चे तो समझ जाते पर छोटे, उनके मन में यही रहता है कि हम चला रहे हैं तो वे नहीं। फिर उनका समय तय किया है, बस इतने ही समय। ये तो एक छोटी सी बात है, और भी बहुत कुछ अच्छी बात हम शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, उदाहरण तो आपको ही देना होगा। आप कहिए कि देखो हम एक घंटे चलाएंगे,
1: बिल्कुल
0: तुम लोग छोटे हो तुम लोग आधे घंटे चलाओगे। तो इस तरह उनका टाइम थोड़ा कम कीजिए।
1: जी बिल्कुल सही कहा, ये तो एक बहुत बड़ी समस्या है मोबाइल और बच्चे। तो बच्चे हाथ में मोबाइल लेकर दिन भर घूम गए,
0: अपनी मम्मी से बच्चे कंपटीशन करते हैं, मम्मी तुमने एक घंटे चलाया मैं भी चलाऊंगा। तो वो फिर गलत है। या फिर आप अपने कान बगल में रख के सो रहे हैं तो बच्चे वही मोबाइल पकड़ के सोने लग जाते हैं, हमें चाहिए।
1: वो सीखते हैं ना, जैसा आप बताएंगे वैसा अनुसरण तो बच्चे करेंगे ना। तो हमें अपना पहले खुद ही उदाहरण पेश करना होगा। कम से कम मोबाइल का इस्तेमाल हमारे लिए भी बहुत अच्छा है, करके तो देखिए। कहते भी हैं कि रात के सोने से पहले 2 घंटे पहले आप मोबाइल बंद कर दीजिए, ऐसा कहते हैं। और सुबह उठने के 2 घंटे बाद ही मोबाइल देखिए, तो आप देखिए आपके जीवन में धीरे धीरे आपके विचारों में सुख शांति आने लग जाती है। क्योंकि उठते ही जब हम खोलते हैं तो हजारों नकारात्मक बातें, नकारात्मक समाचार मोबाइल में दिखते हैं और हमारे दिमाग में घूमते हैं कि अरे ऐसा है, तो हम नकारात्मक होते चले जाते हैं। तो शुरुआत खुद से करें अच्छे काम की, कि आप कोई किताब पढ़ें, बच्चों को किताब पढ़ने का मौका दें। एक श्रोता लिखते हैं कि जीवन में यदि सकारात्मक बदलाव लाना है कि अच्छे काम की शुरुआत स्वयं से होनी चाहिए। जब हम अपने आप को उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत करते हैं तो लोग हमारा अनुसरण करते हैं। जब हम अपनी आदतों अपने विचारों में सकारात्मकता लाते हैं तो हमारे आसपास का वातावरण भी बदलता है। दूसरों से अपेक्षा रखने से बेहतर है स्वयं से अपेक्षा रखें। कहा भी गया है पर उपदेश कुशल बहुतेरे, तो जे आचरही तेनर न घनेरे।
0: क्या बात है। और एक लिखते हैं कि अच्छे काम की शुरुआत खुद से, ये बड़ा प्रेरणादायी विचार है। यदि आप समाज, परिवार या अपने आप में जीवन में कोई सकारात्मक प्रभावशाली बदलाव लाना चाहते हो तो उसकी शुरुआत खुद से ही होनी चाहिए। अगर हम दूसरों का इंतजार किए बगैर खुद पहल करते हैं तो बड़े से बड़ा काम भी संभव हो जाता है। बस और कुछ नहीं, शरीर रूपी इंजन को एक किक की जरूरत होती है। क्या बात है, बहुत सुंदर बात लिखी है।
1: बिल्कुल।
0: तो हमारे सभी साथियों ने बहुत अच्छे अच्छे संदेश लिखकर भेजे हैं, तो उन्हें धन्यवाद कहते हुए एक गीत सुन लेते हैं।
1: बिल्कुल सुनते हैं।

0: तो देखिए भाई, ये गाना कितना सटीक है ना मंदाकिनी जी?
1: बिल्कुल.
0: हम लोगों की सूरत एक जैसी नहीं मिलती, कुछ तो बदलाव है.
1: बिल्कुल है
0: ना? तो ये सफल, आप हंस रहे हैं ना इसी बात पर कि मंजरी ने बस छेड़ दी बात. हाँ, है ना?
1: और तो, ये ऐसी बातें हैं जिस पर घंटों चर्चा है करें तो भी कम पड़ जाती है.
0: जी,
1: जिस खूबसूरती से गीतकार ने बात कही है उस पर घंटों चर्चा की जा सकती है.
0: बिल्कुल. चलिए हम अपने अगले विषय की ओर बढ़ते हैं. हमारी सफल महिला उद्यमी है राधिका अग्रवाल. राधिका अग्रवाल भारत के उन प्रेरणादायक महिला उद्यमियों में गिनी जाती हैं जिन्होंने भारतीय ई कॉमर्स जगत में अपनी अलग पहचान बनाई. वे shopclues.com की सह संस्थापक को फाउंडर है. उनकी सफलता इस बात का उदाहरण है कि दृढ़ संकल्प, नई सोच और मेहनत से महिलाएं व्यापार और तकनीकी की दुनिया में बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकती हैं.
1: तो राधिका गई की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये एक इंटरनेट उद्यमी है और यूनिकॉर्न क्लब में प्रवेश करने वाली भारत की पहली महिला है. और ये सिलिकॉन वैली में 2011 में स्थापित ऑनलाइन मार्केट प्लेस shopclues की सह संस्थापक है. वर्तमान में कंपनी की मुख्य व्यवसाय अधिकारी के रूप में भी कार्यरत
0: जी. और राधिका का जन्म एक शिक्षित और अनुशासित परिवार में हुआ. उनके पिता भारतीय सेना में अधिकारी थे, इसलिए बचपन से ही उन्होंने अनुशासन, मेहनत और आत्मविश्वास सीखा. उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा भारत में पूरी की और आगे की पढ़ाई के लिए विदेश गई.
1: बिल्कुल. उन्होंने अमेरिका की प्रसिद्ध वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी इन सेंट लुइस से MBA की डिग्री ली और पढ़ाई के दौरान उन्होंने मार्केटिंग, बिजनेस मैनेजमेंट और उपभोक्ता व्यवहार को गहराई से समझा भी, और यही ज्ञान आगे चलकर उनके व्यवसाय में बहुत काम भी आया.
0: जी. और व्यवसाय शुरू करने से पहले राधिका अग्रवाल ने कई बड़ी कंपनियों में काम किया. उन्होंने फैशन और रिटेल क्षेत्र की अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों में अनुभव प्राप्त किया. इस दौरान उन्हें ये समझ आया कि ऑनलाइन व्यापार का भविष्य बहुत बड़ा है और भारत में इस क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं.
1: हाँ, और अगर 2011 की बात करें ना मंजरी, तो राधिका अग्रवाल ने अपने पति संजय सेठी और सहयोगी संदीप अग्रवाल के साथ shopclues की स्थापना की. और उस समय भारत में ऑनलाइन शॉपिंग का बाजार तेजी से बढ़ ही रहा था, लेकिन छोटे दुकानदारों और स्थानीय व्यापारियों को ऑनलाइन मंच नहीं मिल पा रहा था. shopclues

0: उसने इन्हीं छोटे व्यापारियों को इंटरनेट के माध्यम से ग्राहकों तक पहुंचाने का काम भी किया
1: जी। और कंपनी की खासियत ये थी कि उसने छोटे शहरों और मध्यम वर्ग के ग्राहकों पर विशेष ध्यान दिया। यहां ग्राहकों को कम कीमत पर विभिन्न प्रकार के उत्पाद उपलब्ध कराए जाते थे। धीरे धीरे शॉपक्लूज भारत की प्रमुख ई कॉमर्स कंपनियों में शामिल हो गई। कंपनी ने लाखों ग्राहकों और हजारों व्यापारियों को जोड़ा। एक समय ऐसा आया जब शॉपक्लूज का मूल्यांकन $1 बिलियन से अधिक हो गया और ये यूनिकॉर्न स्टार्टअप कहलाने लगी।
0: और राधिका अग्रवाल की जब हम बात कर रहे हैं तो भारत की पहली महिला उद्यमों में वो शामिल हुई जिन्होंने यूनिकॉर्न स्टार्टअप खड़ा किया और ये उपलब्धि भारतीय महिलाओं के लिए प्रेरणा का कारण भी बनी। और राधिका अग्रवाल की जब हम बात कर रहे हैं तो उनकी यात्रा इतनी आसान नहीं थी मंजरी। उन्हें बड़े प्रतिस्पर्धियों से मुकाबला करना पड़ा। शुरुआत में निवेश जुटाना, ग्राहकों का विश्वास जीतना और व्यापार को तेजी से बढ़ाना उनकी बड़ी चुनौतियों में शामिल भी था। लेकिन हाँ, उन्होंने हार नहीं मानी और उन्होंने नई रणनीतियों की, ग्राहक सेवा और सस्ती कीमतों के माध्यम से अपनी कंपनी को बहुत आगे तक बढ़ाया।
1: बिल्कुल। और राधिका अग्रवाल हमेशा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का और अपने सपनों को पीछा करने के लिए प्रेरित करती थी। उनका मानना है कि महिलाएं यदि आत्मविश्वास और धैर्य के साथ काम करें तो किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकती हैं। और वे ये भी कहती थी कि असफलता से डरना नहीं चाहिए क्योंकि हर असफलता हमें कुछ ना कुछ नया सिखाती है। और राधिका अग्रवाल को कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सम्मानित किया गया है। उन्होंने भारत की प्रभावशाली महिला उद्यमियों को में गिना जाता है। कई बिजनेस पत्रिकाओं और मंचों ने उन्हें प्रेरणादायक महिला नेतृत्वकर्ता के रूप में सराहा है। और राधिका अग्रवाल को कई पुरस्कार भी मिले, जैसे आउटलुक बिजनेस अवार्ड में आउटलुक बिजनेस वुमेन ऑफ वर्थ 2016 में और एंटरप्रेन्योर इंडिया अवार्ड्स में वुमेन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2016 में, सीएमओ एशिया अवार्ड 2016 में वर्ष के सर्वश्रेष्ठ महिला उद्यमी का पुरस्कार प्राप्त किया आपने, और सीईओ इंडिया अवार्ड्स 2016 में सीईओ ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला। एसोचैम का वर्ष सर्वश्रेष्ठ उद्यमी पुरस्कार 2017 में वे महिलाओं को उद्यमिता और नेतृत्व में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। और राधिका अग्रवाल की कहानी मेहनत, नवाचार और आत्मविश्वास की कहानी है। उन्होंने ये साबित किया कि यदि सोच बड़ी हो और इरादे मजबूत हों तो कोई भी व्यक्ति नई ऊंचाइयों तक पहुँच सकता है। वे आज भारत की युवा पीढ़ी विशेषकर महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं।
0: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने बताई कि वे आज भी हमारी प्रेरणा का स्रोत हैं। चलिए एक छोटा सा ये संदेश सुन लेते हैं। अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी।
0: तो मंजरी, अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।

0: हाँ तो मंजरी, हम भी आपसे यही कहते हैं, देखो कसम से अगर तुमने भी किसी की बात को मान लिया और हमसे झगड़ा कर लिया तो हाथ मलोगी दोस्ती से, देख लेना।
1: लेकिन आपको पता है कि मंजरी ऐसी है
0: नहीं, कान का कच्चा होना बहुत गलत बात है,
1: कान की कच्ची है भी नहीं। और बहुत से लोगों में ऐसी आदत होती है कि वो अपना प्रभाव बनाने के लिए, दूसरे के उभरती हुई प्रतिभा को दबाने के लिए वो अगले सामने वाले से ऐसी बातें कर देते हैं कि कान की कच्ची वाली आदत हो जाती है। फिर वो उससे नहीं पूछता है कि भाई ये वाकई में ऐसी है या नहीं, वो जानने की कोशिश नहीं करता, वो उसकी कहने पर ही चलते
0: विश्वास कर लेते।
1: तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए।
0: ऐसे कान के कच्चे लोग बहुत हमारे आसपास होते हैं कि जिनको कुछ भी कह दो वो मान लेते हैं, उसका सही गलत की गणना उनको आती ही नहीं है
1: जी। और कान के कच्चा होना मुहावरे का अर्थ है कि कान का कच्चा होना का अर्थ है कि बिना सोचे समझे किसी की बात पर जल्दी विश्वास कर लेना या सुनी सुनाई बातों में आ जाना। तो मंदाकिनी जी ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर आपको किसी के बारे में जानना है तो आप उसी से बात कर लीजिए। वो कैसा है आप अपनी नजरों से उसको परखने की कोशिश कीजिए ना। कोई दूसरा कुछ कहता है ये ऐसी वैसी है तो क्यों आप उसके उस पे जाते हैं।
0: बिल्कुल। और दुनिया में ऐसे बहुत से लोग मिलते हैं जो बैक बाइटिंग करते हैं, लेकिन अगर आपको किसी की सच्चाई जानी तो पहले तो आपके अंदर कुव्वत होनी चाहिए, वो दमगम
1: बिल्कुल,
0: कि आप खुद अच्छे बने है ना, खरा सोना, फिर आप दूसरे को परखें। और जब आप परखते हैं तो आपकी नजरों में वो पारखीपना होना चाहिए कि आप उसको परख ले अपनी नजरों से, दूसरों की बातों से, बैक बाइटिंग से, दूसरों के हिंट मिलने पर आप अगर कोई धारणा बनाते हैं किसी के प्रति, ये बहुत गलत बात है।
1: बिल्कुल सही बात है।
0: तो एक श्रोता लिखते हैं कि कान का कच्चा होना अर्थ सुनी सुनाई बातों पर तुरंत विश्वास कर लेना या बिना सोचे समझे किसी की बात मान लेना। ये वीडियो कान का कच्चा होना मुहावरे का अर्थ और उदाहरण समझाता है कि कान का कच्चा होना का अर्थ है कि आप अच्छा कुछ लिखते हैं ये कि रवि पर भरोसा मत करना, वो बहुत कान का कच्चा है, कोई भी उसे भड़का सकता है। सीता सबकी बातों में मत जाओ, कान का कच्चा होना अच्छी बात नहीं है। और ऐसे व्यक्ति जो स्वयं अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करते, दूसरों की बातों में जल्दी आ जाते हैं, उन्हें अक्सर कान का कच्चा कहा जाता है
1: जी। और एक लिखते हैं कि बिना सोचे समझे या बिना सच्चाई जाने दूसरों की बातों पर तुरंत विश्वास कर लेना, जो व्यक्ति सुनी सुनाई बातों में जल्दी आ जाता है उसे कान का कच्चा कहा जाता है। समझदार व्यक्ति को कभी भी कान का कच्चा नहीं होना चाहिए बल्कि सच का पता लगाना चाहिए। कान के कच्चे होने की आदत से लोग अक्सर नुकसान में रहते हैं। और वाकई में जो कान के कच्चे होते हैं तो उनका अपना व्यक्तित्व भी उस तरह से खराब होता है कि वो इस तरह से अगर करते हैं तो उनके व्यक्तित्व पर भी असर पड़ता है।
0: बिल्कुल पड़ता
1: है। सबसे पहले तो इंसान को मंदाकिनी जी अपने व्यक्तित्व को बचा के रखने की सोचना चाहिए कि नहीं, मैं जैसी हूँ मैं वैसी रहूंगी, कोई मुझे कुछ भी कहे मैं डिगा नहीं सकता, जिसे कहते हैं
0: ना अपने किरदार को हमें मजबूत बनाना चाहिए, ना कि उथल पुथल वाला इधर इधर ढुल गए उधर ढुल गए,
1: थाली का बैगन जिसे कहते हैं, वैसा नहीं होना चाहिए।
0: उधर उसकी बात सुन ली, उधर उसकी बात मान ली, तो आपका अपना व्यक्तित्व क्या रहा?
1: बिल्कुल
0: कुछ नहीं रहा। तो आपका जो व्यक्तित्व में एक खूबी होनी चाहिए जो देखते ही लोग आपकी तारीफ करेंगे, नहीं ये व्यक्ति कान का कच्चा नहीं है, ये व्यक्ति अटल है, मजबूत है, और ये किसी की बातों में तुरंत नहीं आता, तब जाकर आपका कोई व्यक्तित्व बनता है। एक श्रोता लिखते हैं कि कान का कच्चा होने का अर्थ बिना सोचे समझे किसी की बात पर यकीन कर लेना। ये हमारी जिंदगी में बहुत लोग कहते हैं और अक्सर किसी न किसी मुसीबत में फंस जाते हैं, अपना ही नुकसान करा लेते हैं। इसका वाक्य प्रयोग आजकल की दुनिया में काम का कच्चा होना नहीं होना चाहिए, मतलब होना नहीं चाहिए ऐसा।
1: और एक मेरी साथी लिखती है कि कान का कच्चा काम का कच्चा भी बन जाता है, क्योंकि वो पूरा समय अलग भ्रम में जीता है, हर कही सुनी बात पर भरोसा करता है और खुद भरोसे लायक रहता नहीं। क्योंकि जब आप हर किसी की बात पर बस यूं ही भरोसा कर लेते हैं बस इसलिए कि आपकी जान पहचान है, तो आप कोई भी अपने इशारों पर भी नचा सकता है। इसलिए कान का कच्चा होना व्यक्तित्व को धूमिल कर देता है। जबकि एक इंसान जो कान का कच्चा नहीं है वो अपने करीबी की बातों को भी जांचे परखे बिना यूं ही विश्वास करके कदम नहीं उठाता और अपने काम का पक्का होता है, जिससे कोई पीठ पीछे भी उसके किसी निर्णय पर उंगली नहीं उठा सकता। तो कान का कच्चा नहीं काम का पक्का होना चाहिए। हमारी सखी ने बहुत अच्छी सी बात लिखकर भेजी है।
0: बिल्कुल बहुत अच्छा। वही एक लिखते हैं हमारे श्रोता कि कई बार दूसरों की चुगली या अफवाहों पर आंख मूंद कर भरोसा करने से आपसी रिश्तों में दरार या विवाद की स्थिति पैदा हो जाती है। दोस्ती में दरार या परिवार में कलह का मुख्य कारण यही कान का कच्चा होना भी होता है।
1: बिल्कुल सही बात लिखी है। और एक लिखे हैं कि कान के कच्चों से दूर रहना ही बेहतर है, आपके संबंध खराब करते हैं वे उनके लिए बहुत मित्र नहीं होते। बिल्कुल सही बात है। लेकिन कितनी भी कोशिश कर लो ना, आप समूह में सबके साथ में है तो कौन कान का कच्चा है ये भी हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। और एक लिखते हैं कि कान का कच्चा वह व्यक्ति जो बातें इधर से उधर करता हो, ऐसे व्यक्ति आपकी जरूरत की बात गोपनीयता खराब कर देते हैं, यानी आपकी जरूरत की बात को भी वो किनारे करके अपना मतलब निकालना कहना चाहिए,
0: मतलब ऐसे लोग जो होते हैं जो बातों की हाँ। होती है दो दोस्तों के बीच में, उसको भी वो हटा देते हैं।
1: मतलब दोस्ती तो को किनारे कर देते हैं और अपना मतलब निकालने के लिए, अपने को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए दूसरे के व्यक्तित्व को गिरा देते हैं। वो चीज नहीं होनी चाहिए।
0: बिल्कुल, वही एक श्रोता ने बहुत अच्छी बात लिखी कि कान का कच्चा यानी बिना किसी सबूत के दूसरों की बातों पर भरोसा कर लेना आज के समय में ये मुहावरा हर किसी को समझने की जरूरत है ताकि गलतफहमियों से बचा जा सके। विविध भारती पर हमेशा ऐसे ही ज्ञानवर्धक और मजेदार विषय सुनने को मिलते हैं, इसके लिए ये बहुत बहुत बधाई देते हैं।
1: जी, सबको धन्यवाद देते हैं, बहुत अच्छे से संदेश लिखकर भेजे। एक गीत सुनते हैं, फिर हम लोग मजेदार किस्से जनवासी के सुनते हैं।
0: वाह।

0: हमारे देखिए श्रोताओं ने लिखा है कि तेरी सूरत से नहीं मिलती वाला गाना जो है बहुत समय बाद सुना है, तो उन्हें बड़ा अच्छा लग रहा है सुनने।
1: अच्छा, क्या बात है।
0: तो देखिए अब हम बढ़ते हैं जनवासे की ओर, जो हमारे यादों से जुड़े हुए किस्से। और जनवासे में देखिए ऐसा होता था ना कि लड़की वाले जो थे लड़के वालों को रुकने का एक स्थान देते थे, वहां ठहरते थे सब लोग, और उनके लिए खाने पीने का इंतजाम रखा जाता था, घड़े का पानी उस समय रखा जाता था। आज तो चलो आप ठंडा पानी की बोतलें रखते हो, लेकिन उस समय घड़ा ही रखा जाता था। शरबत के पाउचेस पैकेट रख दिए जाते थे कि चीनी और नींबू रख दिया गया कि शरबत घोल के बनाएंगे। खरबूजा तरबूज इन समय में ये सब रखा दिए जाते थे, मौसमी फल, बर्फ रखी है। तो कुछ बराती लड़के लड़कियां बहुत शैतान टाइप के होते थे, तो वो जा करके उसमें से नींबू गायब कर दे, तो चीनी गायब कर दे। अब जब वो बना रहे हैं आके लड़की वाले बेचारे, तो वो चीजें कम पड़ गई हैं, तो अब उनको कह भी रहे हैं कि इसमें तो खट्टा नहीं है, इसमें नींबू और डालिए। बेचारे इतना तो नींबू लाए थे, कहाँ चला गया। तो मतलब इस तरह के किस्से जनवासे में अक्सर होते थे।
1: बिल्कुल,
0: और
1: ये एक रोचकता बनाए रखते हैं और बड़ा अच्छा माहौल होता है शादी विवाह में।
0: बहुत अच्छा माहौल होता था,
1: और छुटपुट मजाक होती है,
0: और वो चारपाई गद्दे नहीं पड़े तो शीशा नहीं है तो कंघा, और शैम्पू नहीं है तो बालों में तेल लगाना नहीं है।
1: सादगी से वो जनवासा होता था, दिखावटी दिखावटी नहीं होता।
0: मतलब अगर चीजें कोई भी कम हो गई तो नुक्स निकालने वाले भी होते थे, और बड़ा झगड़ा भी होता था कि हमारे लिए तो चारपाई नहीं रखी, हमारे लिए तो गद्दा नहीं रखा। और जब वो मिठाई की नाश्ते के लिए मिठाई के डब्बे दिए जाते थे, तो सब लोग खोल के देख रहे हैं कि अरे इसमें तो 5 पीस हैं, इसमें तो 6 पीस हैं, ये ज्यादा कैसे हुआ या कम कैसे हुआ। इस तरह के भी नोकझोंक आपस में ही होने लग जाती थी। तो उसका भुगतान जो कहते हैं ना, वो लड़की वालों को करना पड़ते थे।
1: बिल्कुल सही कहा।
0: और हमारे एक साथी लिखते हैं कि हमारे यहाँ बारात को पहले गाँव से बाहर बड़े आम के बाग में ठहराया जाता था, वहीं जलपान कराया जाता था, फिर गाँव के बीच में एक बड़ा हॉल होता था, उसमें बारात को ठहराया जाता था और उसको जनवासा कहते थे। तो मंदाकिनी जी बड़ी यादें हैं सबकी।
1: बिल्कुल, आपने कहा और ये याद आते ही पुराने वो दिन याद आ गए जब शादी विवाह का मौसम होता था। मुझे याद है हम लोग बच्चे होते थे और हम अपने पापाओं की जिद करते थे, पापा वहां लेके जाओ जन्माष्टमी में कौन कौन आया है, और वो हमें लेके जाते थे। तब इस तरह की शरारतें हम समझते भी थे और कई बार हंसते भी थे कि अरे कैसी कैसी बातें यहाँ होती है, लेकिन जो व्यवस्था होती थी वो बहुत अच्छी होती थी।
0: वो अपने हिसाब से देखिए सब लोग अच्छा ही करते थे
1: और मन से
0: करते थे, और जिसको कमी निकालना है वो तो निकालता ही है। और भाई एक बड़ा मजेदार इसमें होता था कि भाई दूल्हे का जीजा जी रूठ गए, दूल्हे के फूफा जी रूठ गए, दोस्त रूठ गए, इस तरह के भी उनको सुविधाएं
1: बनाने की जो बातें भी बहुत होती थी, नाराज हो जाता था उसको मनाया जाता था।
0: और खाने पीने की भी कोई चीज व्यवस्था नहीं है, तो उसमें भी जनवासे में रूठे पड़े कि हमें तो ठीक से मान मनोवल नहीं किया गया, बुलाया नहीं गया, तो बहुत सारी चीजें होती थी।
1: बिल्कुल सही कहा, इसलिए फूफाओं को मामाओं को बड़ा संभाल कर रखना पड़ता था क्योंकि वो बहुत जल्दी नाराज हो जाते थे।
0: और एक हमारे साथी लिखते हैं कि पुराने समय में बारात के रुकने के लिए किसी बड़े भवन या स्कूल आदि में व्यवस्था की जाती थी जिसे जनवासा कहते हैं। यहाँ पर वधु पक्ष दूल्हे और बारात को आदरपूर्वक मुख्य विवाह स्थल मंडवे पर चलने का न्योता देते हैं। वधु पक्ष की महिलाएं और सखियां ढोल मंजीरे के साथ जनवासे के बाहर या आंगन में जुटती हैं, और वे दूल्हे समधी दूल्हे के पिता फूफा और जीजा का नाम लेकर विशेष रूप से तैयार किए गए गाली गीत गाती हैं। इन गीतों में समधन के सीधेपन या बरातियों के खाने पीने की आदतों पर बेहद मीठे अंदाज में मजाक उड़ाया जाता, जिसका वर पक्ष कभी बुरा नहीं मानता था। लेकिन ऐसा नहीं है, कभी कभी इन गीतों से वो लोग बुरा भी मान जाते थे क्योंकि उस समय देखा था ऐसे होता था, बड़ा मजा आता था। लेकिन गाने बहुत अच्छे थे,
1: ये गीत हमारे शादी विवाह की जान होते थे।
0: सही बात।
1: एक श्रोता लिखते हैं कि शादी में जनवासा यानी बारात ठहरने की जो जगह है केवल एक कमरा या हॉल नहीं है, बल्कि ये बारात की जान और हंसी मजाक का मुख्य केंद्र होता है। यहाँ बिताई गई रातें और बारातियों के कारनामे सालों साल तक परिवार की कहानी और चुटकुलों का हिस्सा रहते हैं। जनवासे में सबसे पहले आप और मजेदार किस्सा आधी रात के बाद चाय का होता है, जब सारे बाराती तैयार होकर दूल्हे के साथ मंडप में जाने का इंतजार करते हैं, तब जनवासे का माहौल किसी हॉस्टल के कमरे जैसा हो जाता है। 3 बजे रात में चाय की डिमांड होना और किसी की चाय ना मिलना, फिर पूरी बारात का खुद ही उठकर चाय बनाने की जुगत करना, ये भी एक आम दृश्य होता है।
0: बिल्कुल। और एक साथी लिखते हैं कि शादी में जनवासे का बड़ा महत्व है, यहाँ पर इतिहास रचे जाते हैं, किस्से कहानियां बनते हैं। बारात के ठहरने के स्थान को जनवासा कहते हैं। पहले के समय में ज्यादातर किसी स्कूल या धर्मशाला को जनवासा के लिए निश्चित किया जाता था, ऐसे में मन मुताबिक सुविधा उपलब्ध करवाना मुश्किल होता था। वैसे में कोई रूठने वाले बारातियों तब तो विवाद होना आवश्यक होता था, पर उनमें से ही कुछ लोग बीच बचाव करने वाले लोग भी होते थे जो मामले को शांत कर देते थे।
1: बिल्कुल। और एक श्रोता लिखते हैं कि जनवासा सिर्फ बारातियों के ठहरने की जगह नहीं बल्कि रिश्तों की गर्माहट, हंसी मजाक और यादों का एक अनमोल हिस्सा है जो शादी को और भी यादगार बना देता है। मेरी शादी में बारात एक रात जिस धर्मशाला में रुकी थी उसी धर्मशाला से लगा हुआ सिनेमा हॉल था। छत पक्की थी लेकिन कुछ हिस्सा टीन शेड से ढका था जिसमें से जनवासी में ठहरे बारात में गए बच्चे फिल्म देखते रहे जिसे आज भी वो याद करते हैं।
0: बिल्कुल। और ये लिखते हैं कि जन्माष्टमी ये नियत स्थान विवाह में लड़की वालों द्वारा ऑपरेट होता है या यूं कहें दोनों के सहयोग से हो सकता है। लड़का और लड़की के परिवार वालों की ओर से जिसमें दोनों को सुविधा हो जाती थी और अधिक भार लड़की वालों पर नहीं आता। जन्माष्टमी वो स्थान है जहाँ पर दूल्हा और बराती बेफिक्र होकर आराम करते हैं। यह स्थान विवाह मंडप के आसपास ही होता है। बहुत सी अच्छी सी बात है। और जन्माष्टमी भी देखा जाता था कि कितनी पास है कितनी दूर है और वहां पर उनके स्वागत के लिए कोई खड़ा है नहीं खड़ा, ये सब भी चीजें होती थी। और लाइट की व्यवस्था है या नहीं है या फिर
1: मतलब सही समय पर उन्हें खाना पीना हर चीज प्रोवाइड कराना हर पूरा एक जिम्मेदारी।
0: बड़ा मजा भी आता था कि भाई अगर पत्तल में उनको खाना परोसा गया है तो पूरी गर्म क्यों नहीं है, रसगुल्ले ज्यादा क्यों नहीं मिल रहे हैं, रायता सही से क्यों नहीं परसा जा रहा है। तो इस तरह की जो थोड़े बहुत चूहलबाजी टाइप की भी होती थी तो बड़ा यादगार दिन है वो।
1: बिल्कुल।
0: अभी तो जैसे कि अभी व्यवस्था होटलों में हो जाती है
1: अब वो जनवासी का महत्व थोड़ा सा कम हो गया है क्योंकि होटल भी दूर दूर होते हैं और अभी कई चीजें बदल गई
0: होटल में एक साथ खाना खा रहे हैं,
1: होटल में हो गई है, घरों में वो स्थान ही खत्म हो गया है जहाँ बैठकर गीत गाए जाते थे, पूरा हल्दी से लेकर सारे कार्यक्रम किए जाते थे, तो ये चीजें अब बहुत कम हो गई हैं।
0: लेकिन मुझे तो वो जनवासी वाले दिन बहुत याद आते हैं।
1: बिल्कुल याद।
0: चलिए हम लोग एक गीत सुनते हैं फिर बाकी बात करते हैं।
1: बिल्कुल।

0: मंजरी, मुझे तो लग रहा है कि जनवासी में तुम तो रूठ के नहीं बैठ गई हो।
1: नहीं, हम नहीं रूठ के बैठ गए, लेकिन मुझे याद है कि एक बार जनवासी में मुझे अकेला छोड़ के लोग खाने चले गए तो हमने आंख बंद कर ली, अंधेरा था चारों तरफ, तो इस तरह के हमारे साथ भी हादसे हो चुके हैं। बाद में जब भैया लोग छोड़ के गए तो उन्हें बहुत डांट पड़ी, तो इस तरह की यादें भी हैं। और हमारे साथी लिखते हैं, जनवासा जिसे जनवासा भी कहा जाता है, बिताए गए ये पल दिखावे से दूर सच्चे और आत्मीय होते हैं, यहाँ अनजान लोग भी दोस्त बन जाते हैं और पुरानी दुश्मनी या गिले शिकवे भी हंसी मजाक से दूर हो जाते हैं। शादी के बाद जब भी रिश्तेदार आपस में मिलते हैं तो जनवासे के यही किस्से उनकी बातचीत की सबसे बड़ी रौनक बन जाते हैं।
0: बिल्कुल सही बात है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि शादी ब्याह का मौसम है पुराने जमाने का, यानी मेरी माँ की शादी के समय का, 1951 की बात कर रहे हैं ये। उन्होंने बताया कि किस्सा जनवासा यानी वो जगह जहाँ बारात और दूल्हे को दुल्हन के परिवार द्वारा स्वागत करके विश्राम के लिए ठहराया जाता है। छोटे गाँव में महीने में शादी थी, एक बड़ा घर व्हाइट वॉश कराकर उस जमाने की सुख सामग्री के साथ तैयार रखा गया। गर्मी का मौसम था तो खस के पर्दे लगा दिए गए, रात का सीमांत पूजन भोजन ये कार्यक्रम हो गए। शादी के दिन देखा तो सभी बारातियों के तन पर बड़े बड़े लाल धब्बे और सूजन दिखाई दे रही थी। पूछने पर पता चला कि रात को ठंड जगह की आकर्षण से लाल चींटियों ने बहुत समय में वहां आसरा कर लिया था और बारातियों को काट खाया और अपना आतिथ्य दिखाया। तो बड़े बड़े होटल से शान चौकत में अब तो जनवासा होता है, लेकिन उस समय की घर की बात बताइए कि चींटियां वगैरह थी, उन्होंने काट खाया तो हर बाराती के उस शरीर में लाल निशान बने।
1: बिल्कुल, जनवासे में ये भी देखा जाता था कि भाई उनके लिए पंखा रखा गया कि नहीं, हाथ का पंखा होता था उस समय, तो वो है कि नहीं है। और एक हमारे साथी लिखते हैं, अब तो जनवासा के नाम से कुछ भी नहीं है, एक बारात घर में सब कुछ हो जाता है, अब तो बाराती रात में रुकते भी नहीं है। और ये जनवासे में चाय की बड़ी वो होती थी कि चाय चाहिए चाय चाहिए, अब सुबह चाय चाहिए तो मालूम पड़ा दूध नहीं आया है, तो वो बड़ी समस्या हो गई है, अब क्या किया जाए। तो उसमें भी कुछ लोग शैतानी करते थे कि भाई कम दूध डाल के, जैसे जितना भी दूध उसी में चाय बना दी, अब तो यही है पी लो पी लो। तो कुछ पीते थे, कुछ सोचते थे अरे गर्म पानी समझ के ही पी लो। तो बड़ी चीजें अलग अलग तरीके की उस समय में थी, लेकिन उनका भी एक अपना एक
0: मजा था। वही श्रोता लिखते हैं कि जनवासा में बताए गए ये बल दिखावे से दूर सच्चे और आत्मीय होते हैं, यहाँ अनजान लोग भी दोस्त बन जाते हैं और पुरानी दुश्मनी या गिले शिकवे भी हंसी मजाक में दूर हो जाते हैं। शादी के बाद जब भी रिश्तेदार आपस में मिलते हैं तो जनवासी के यही किस्से उनकी बातचीत की सबसे बड़ी रौनक भी होते हैं।
1: बिल्कुल, और एक लिखते हैं शादी में जनवासी के किस्से, ये एक बहुत ही अच्छा विषय है और आज कल भी ऐसा होता है, ये जिज्ञासा बनी रहती है। वैसे देखा ये जाता है कि लोगों के पास समय अभाव है और इस दृष्टिकोण से फॉर्मेलिटी ही निभाते हैं।
0: अब तो फॉर्मेलिटी ही निभाते हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि पहले जनवासा गाँव के स्कूलों में, पंचायत घर में या शामियाना लगाकर भी, या आम के बगीचे में भी तैयार किया जाता था।
1: और जब आम के बगीचे में होता था ना मंदाकिनी, तो वो तो किसी और का बगीचा है, अब आम लगे हैं, अब बराती लगे तोड़ने में, अब वो फिर झगड़ा मच रहा है। तो मतलब आप बरातियों को बोल भी नहीं सकते कि भैया आम ना तोड़ो, तोड़ लिया है तो बाग वाला गुस्सा आ रहा है। तो इस तरह के बड़े
0: रोचक किस्से जनवासी की दुनिया से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, आज हमने इन किस्सों को याद किया, हमारे श्रोताओं ने भी अपने वो खूबसूरत किस्से साझा हमसे किए हैं।

0: कभी कभी हमारे साथी लिखते हैं कि जनवासा गुजराती में से उतारो कहा जाता है, मतलब जान यानी बरातियों का उतार का ठहरने की जगह।
1: महक रही है सांसों की रागनी में कभी कभी ऐसा।
2: तो मंजरी आज तो बहुत सारी बातें हमने अपनी सखियों और सखाओं से कर ली और पुराने दिनों की याद ताजा हो गई है ना, वो किस्से जो हम भूल गए थे
0: वापस से याद हो गए ताजा। तो सभी को धन्यवाद देते हुए नमस्कार करते हैं। तो सभी को मंजरी वर्मा और
2: मंदाकिनी जोशी का नमस्कार।

0: सखी सहेली
1: कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। आज सेल्यूलॉइड के सितारे कार्यक्रम में गूंजेगी बांसुरी की तान। फिल्मी गानों में बांसुरी के टुकड़े होते हैं जो हमें अपने साथ बहाकर ले जाते हैं। एक ऐसे कलाकार हैं जो फिल्म संगीत, गजलें, फ्यूजन और शास्त्रीय संगीत सभी मंचों पर अपनी बांसुरी की तान से सबको मोहित किए हुए हैं। उन्होंने जब वी मेट फिल्म के इस गाने में बांसुरी बजाई। फिल्म दम लगा के हईशा। फिल्म

ओ माई गॉड। बांसुरी की इस मीठी तान को सुनकर आपको लग रहा होगा कि आज के सेल्यूलॉइड के सितारे कार्यक्रम में आखिर कौन से बांसुरी वादक आए हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने बांसुरी वादक पारसनाथ। ये है पारसनाथ से आपके इस दोस्त यूनुस खान की बातचीत का

0: क्या बात है बांसुरी की इस मधुर तान को सुनकर आप, मुझे पूरा यकीन है कि बहुत अभिभूत और वशीभूत हो गए होंगे। तो चलिए विविध भारती के स्टूडियो में स्वागत करते हैं बनारस घराने के जाने माने बांसुरी वादक पारसनाथ जी का। कैसा लग रहा है आपको यहाँ आकर?
1: मैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद करता हूँ कि इतने संगीतमय माहौल में आपने मुझे याद किया, इसके लिए मैं आपका दिल से आभारी हूँ। और विविध भारती, तो हम आकाशवाणी विविध भारती हमारा आज से नहीं, मेरे दादाजी के समय से नाता है
0: जी।
1: मेरे दादाजी भी पंडित शिवनाथ जी, वो शहनाई प्लेयर आकाशवाणी में थे एज ए स्टाफ आर्टिस्ट, और मेरे पिताजी पंडित अमरनाथ जी जो मेरे गुरु भी हैं, मेरे दादाजी और मेरे पिताजी, वो पिताजी मेरे एज अ स्टाफ आर्टिस्ट ज्वाइन हुए थे, फिर एज अ फ्लूट प्लेयर बनारस घराने के बांसुरी वादक, फिर उसके बाद उन्होंने ऑर्केस्ट्राइजेशन भी की कई सालों तक, फिर म्यूजिक एज अ म्यूजिक कंपोजर म्यूजिक कंडक्टर, और फिर ऑल ओवर इंडिया की यूनियन प्रेसिडेंट भी थे बहुत सालों तक। तो उनके साथ हम जाते थे आकाशवाणी में, और हमें जो बचपन की जो याद थी, जिस समय से हम अपना जीवन शुरू किया है, वो आज मुझे वापस देख के आकाशवाणी का वो जो खुशबू है, और वो जो आकाशवाणी के स्टूडियो की जो एकुस्टिक, वो जो है एक जो नॉस्टैल्जिक फील है ना, वो आज मेरे को वापस देख के बड़े सालों बाद बहुत अच्छा लगा।
0: क्या
1: सो, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दैट।
0: अपने ही परिवार में वापसी है आपकी एक तरह से,
1: बिल्कुल कह सकते हैं, इट्स अ होम कमिंग बैक।
0: बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ एक चीज जो है वो मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूँ कि आपके पिताजी पंडित अमरनाथ जी गायक पंडित अमरनाथ जी से अलग
1: है, बांसुरी वादक
0: जी, बिल्कुल बांसुरी वादक पंडित अमरनाथ जी, जिनका ताल्लुक आकाशवाणी से भी रहा, आकाशवाणी के वाद्य वृंद के लिए उन्होंने बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
1: जी जी, पिताजी ने तकरीबन 61 या 61-62 डिफरेंट रागास पे अपनी वाद्य वृंद की रचनाएं की।
0: क्या बात है।
1: और जो प्योर, जिसमें से बहुत प्रचलित राग भी नहीं थे, जिसमें से कई ऐसे राग थे जिसमें जो बहुत अक्षोभ राग भी हैं, अक्षोभ राग जैसे जो लोग ज़्यादा सुनते नहीं, बजाते नहीं, गाते नहीं, करते नहीं, और बहुत डिफिकल्ट राग भी हैं जैसे बिलास खानी तोड़ी। बिलास खानी तोड़ी राग गाना बजाना ही, उसको उस राग को संभालना ही मुश्किल है
0: जी।
1: और गोरख कल्याण, ये सब राग संभालना ही मुश्किल है। मारू बिहाग और फिर केदार, ये सब रागों को सिर्फ संभाल लेना ही काफी है,
0: और इन रागों में वाद्यवृंद
1: वाद्यवृंद बनाना, वो भी और उनके चलन के आधार पे
0: जी।
1: अब सारे गामा पादा नीजा नीला पमा गरे सा, अब ये जब आप ऑर्केस्ट्राइजेशन करते हैं 80 लोगों के साथ,
0: 80 लोग,
1: हाँ
0: ये मायने,
1: 80 आर्टिस्ट, वो भी 80 आर्टिस्ट सिर्फ आर्टिस्ट नहीं है, वो एक एक चुन के हिंदुस्तान के
0: नगीने
1: हैं, जो अपने अपने अपने वाद्य के अपने अपने घरानों के खलीफा आप समझ लीजिए, जिनको जो अपने घराने के गुरु हैं और गुरु के सुपुत्र हैं, जो जनरेशन से चले आ रहे हैं, उनको दिल्ली में हम सुनते थे कि जो उनको अपने घरानों का खलीफा बोलते हैं, अपने घरानों का गुरु, महागुरु ऐसा समझ लीजिए। तो वो सब उस रूम में मौजूद हैं और पिताजी की कंपोजिशन वो बजा रहे हैं, और जो नोटेशन जो पिताजी करते थे हिंदुस्तानी नोटेशन, सारे गामा पादा निसा और SRGM सारे
0: गामा पादा, दोनों नोटेशन करते थे वो
1: पिताजी करते थे। हाँ, सो स्टाफ नोटेशन नहीं लिखते थे वो, हिंदी नोटेशन लिखते थे, बट उसको SRGM में लिखते थे
0: जी जी।
1: सो वो नोटेशन जो जब पिताजी बनाते थे कंपोजिशन, सो मैं और मेरे बड़े भाई पंकज नाथ जी, हम वैसे तीन भाई हैं, मेरे सबसे बड़े भाई हैं श्री पवन कुमार नाथ जी, वो म्यूजिक में नहीं है, और मुझसे बड़े जो हैं श्री पंकज नाथ जी, वो बांसुरी वादक हैं, और मैं उनके बाद सबसे तीसरा छोटा पारसनाथ। तो हम तीन भाई हैं और दो म्यूजिक में हैं, एक म्यूजिक में नहीं है
0: जी।
1: तो मैं और पंकज नाथ जी हम लोग पिताजी के साथ रात भर बैठ के उनके साथ नोटेशन लिखा करते थे, वो बनाते रहते थे, सुर बनाते रहते थे और कंपोजिशन बनाते रहते थे, तो हम दोनों नोट करते रहते थे, नोटेशन करते रहते थे। तो वहाँ से हम नोटेशन सीखने को भी, एक जो इंडस्ट्री में काम करने के लिए मुंबई इंडस्ट्री में
0: बुनियाद पक्की हुई
1: एक तरीके से बोल लीजिए, वो एक ट्रेनिंग भी थी
0: जी,
1: और एक तरीके से काम भी होता रहा।
0: मैं ये देख पा रहा हूँ कि इतना अनुशासित और सख्त बचपन था, तो उसमें बदमाशी की जगह कितनी थी।
1: वो निकल ही जाता है बचपन में। बचपन ऐसा होता है ना कि थोड़ी सी भी जगह या मौका मिले तो बदमाशी कर ही लेता आदमी।
0: कौन कौन सी बदमाशियां की कुछ याद कीजिए। उसके बाद जाहिर है कि बदमाशी के साथ एक चीज साथ में आती है, वो एक कुटुंबस।
1: हाँ, अभी आर्टिस्ट है। हाँ। और मुझे ऐसा लगता है कि बचपना जो होता है वो अपने आप में ही बदमाश होता है, और प्लस आर्टिस्ट घराने का बच्चा हो
0: जी।
1: तो और भी बदमाश
0: और भी। तो आप क्या कारनामे करते थे?
1: हम लोग करते थे बचपन में।
0: शर्मारे बता रहे थे।
1: हाँ, थोड़ा सा शर्मार हो गया, बट हाँ बदमाशी करते थे।
0: बगीचों से आम चुराए, चोरी से फल देखी
1: है। बहुत चुराए हमने, आम चुराए हैं, और हमने अपने टीचरों को भी बहुत परेशान किया है।
0: ओहो हो,
1: प्रिंसिपल को भी थोड़ा परेशान किया है,
0: थोड़ा।
1: हाँ। इतना थोड़ा कि उन्होंने
0: घर शिकायत भेज दी।
1: घर शिकायत नहीं, घर वालों को स्कूल ही बुला लिया था।
0: अरे बाप रे। फिर
1: पिताजी आए, उन्होंने, अच्छा एक्चुअली मैं आपको बता दूं,
0: लेकिन किया क्या था आपने ऐसा? कुछ तो खतरनाक वाला किया होगा।
1: आपने मुझे पकड़ लिया रंगे हाथों पकड़ लिया आपने मुझे।
0: जी जी जी।
1: मैं बचपन में भी नहीं पकड़ा था, मुझे तो टीचर ने।
0: अच्छा।
1: इसको कर्मा बोलते।
0: वापस आ गया।
1: मुझे लगता है कोई ना कोई टीचर आया आपके रूम। हाँ, तो बदमाशी की है सर। हाँ, कभी कभी स्कूल से, जैसे कभी होमवर्क नहीं कर पाना, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ आपको
0: जी,
1: कि मुझसे होमवर्क नहीं हो पाता था।
0: अच्छा।
1: और जिस स्कूल में हम थे, मैं बॉयज स्कूल में था, सो वहाँ के टीचर्स बहुत स्ट्रिक्ट थे
0: जी,
1: बहुत स्ट्रिक्ट थे,
0: और जमाना भी सख्ती का था,
1: बहुत ज्यादा था, और मतलब लिटरली पिटाई पड़ती थी बहुत ज्यादा। सो उस पिटाई से बचने के लिए हमने थोड़ा स्कूल, कभी कभी घर से निकले हैं पर पहुंचे नहीं।
0: कहीं और पहुंच गए।
1: तो ऐसी बदमाशियां रही, फिर खेलने चले गए
0: जी,
1: गेम खेलने चले गए, क्रिकेट खेलने चले गए, तो ये मस्तियां की हैं। और पिताजी को पता नहीं होता था, और ये डर भी होता था उनको अगर पता चल गया
0: तो क्या हाल होगा।
1: बाप रे, दुनिया अलग और मैं अलग।
0: कितना सख्त अनुशासन, आप सबसे छोटे थे तो लाड़ भी उतना ही रहा होगा, अनुशासन भी उतना ही।
1: अनुशासन के टाइम पे बिल्कुल लाड नहीं था
0: जी,
1: कोई छोटा बड़ा देखा ही नहीं। सो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि बचपन में मैंने, मेरे भाई ने, हम प्रॉपर नींद सोए नहीं है, मतलब वो इसलिए नहीं सोए हैं, शायद उसकी वजह से ही मैं आज आपके सामने बैठा हूँ
0: जी। ये एक साधना का हिस्सा रहा कि नींद में कटौती होती रही और सीखने का मामला चलता रहा।
1: वो मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूँ कि वो एक करेक्ट एज है
0: जी,
1: अनुशासन में रहने का, जीवन अगर बनता है तो उसी एक करेक्ट एज में, वो भले ही बच्चा प्रैक्टिस भी नहीं कर रहा हो या भले ही बच्चा कुछ नहीं भी कर रहा हो, अगर वो अच्छे माहौल में है ना, तो उसकी मेमोरी और मसल मेमोरी में वो बात जा रही है।
0: क्या प्यारी बात बोली है जी।
2: रंगी पर

0: अगर उसका माहौल अच्छा है तो भले ही कई चीज़ें मैंने जब मैं काम करने लगा प्रोफेशनली, बहुत सारी चीज़ें मैंने तब रियलाइज़ की कि कुछ चीज़ें जो मैंने प्रैक्टिस नहीं भी की पर मैं रियाज जब करता था या बजाने जाता था या बजाता था बांसुरी, तो मुझे महसूस हुआ कि ये एक जो बचपन में जो मैंने सिर्फ सुना है उस वजह से एक एडॉप्शन हो गया है, वो उसको ग्रास्पिंग वो मेरे ब्रेन ने मेरे मसल ने कर लिया है उसको, तो वो एक बहुत ज़रूरी है। तो ऐसा होता था सर कि सुबह के वक्त से मैं आपको बताता हूँ, जैसे सुबह 4-4:30 बजे के वक्त पे हम अपने दादा दादी जी के साथ, बड़ा हमें लाड प्यार मिला है, मेरे दादाजी पंडित शिवनाथ जी, लेट पंडित शिवनाथ जी शहनाई प्लेयर भी थे। और अच्छा, मैं आपको दादाजी की बात आई तो ये मैं बता दूं, ये मेरे दादाजी की बांसुरी है।
1: अरे गजब, तो ये कितने साल पुरानी होगी?
0: मेरे दादाजी व्हेन ही लेफ्ट हिज बॉडी, जब वो शांत हुए, उनकी एज थी 104 साल।
1: ओहो, गजब।
0: ही वाज अ मिलिट्री गाय।
1: जी जी।
0: और उन्होंने जो सबसे पहली जॉब थी उनकी वो मिलिट्री में थी, और इंडिया और चाइना की जो वॉर हुई थी
1: 62 वाली,
0: वो पार्ट थे उसके।
1: ओके।
0: इंडिया वो चाइना के वॉर के, और उनको फिर क्योंकि इंजर्ड हो गए थे, उनको स्निच हुआ था, गोलियां लगी थी, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वो उस हालत में इंजर्ड नहीं हुए थे कि मतलब आदमी डेथ के उसमें चला जाए, बट ही वॉज इंजर्ड, हिज सीरियसली इंजर्ड।
1: लेकिन वो शहनाई भी बजाते थे?
0: शहनाई छोड़ी नहीं उन्होंने, रियाज नहीं छोड़ा उन्होंने
1: फौज में होते हुए।
0: हाँ,
1: वाह वाह,
0: शहनाई। और इस बांसुरी को बोलते हैं त्रिपुरा बांसुरी, जो मेरे दादाजी ही बजाते थे पूरे खानदान में।
1: गजब।
0: सिर्फ दादाजी बजाते थे त्रिपुरा बांसुरी। अच्छा, त्रिपुरा बांसुरी में क्या एक स्पेशलिटी है सर कि इसमें जैसे हम नॉर्मल बांसुरी है
1: जी,
0: हमारी ये नॉर्मल बांसुरी है, यहाँ पे कॉर्ग लगता है माउथ होल के पास।
1: जी बिल्कुल।
0: ये त्रिपुरा बांसुरी में कॉर्ग नहीं होता है, ये पूरी खाली होती है अंदर से।
1: अरे गजब।
0: एक बांस की नली है और उसमें जो सुरों के होल किए हुए हैं। और यहाँ पे जैसे आपने बहुत सारे बांसुरी वादकों को देखा होगा, बहुत आजकल जो पीछे पंचम का होल है, ये तो हम बचपन से देख रहे हैं अपने बांसुरी, अपने घराने के बांसुरी में। हालांकि हम पंचम का होल यूज नहीं करते, हम जो कृष्णा बांसुरी है नॉर्मल वो वैसे ही बजाते हैं।
1: जी जी,
0: पंचम हम होल यूज नहीं करते। तो हमने तो अपने बचपन में दादाजी को त्रिपुरा बांसुरी, ये कम से कम नहीं तो 200 साल पुरानी बांसुरी।
1: क्या बात है, ये तो अद्भुत
0: बांसुरी, उनका आशीर्वाद है
1: जी।
0: मंदिर में रहती थी ये बांसुरी, हमेशा मंदिर में रहती थी। सुबह तो हमारा कैसा था कि दादाजी हमारे मिलिट्री के थे तो उनका अनुशासन शेड्यूल बहुत स्ट्रिक्ट था। 4 बजे हम तीनों को उठा देते थे, वो हम तीनों का 4 बजे उठ के, मैक्सिमम 4:30 बजे उठ के सिर्फ एक काम था कि राग भैरव में एक स्थाई गानी है, तीनों को गानी है, वो चाहे कुछ भी हो जाए। अच्छा, उसके पीछे वो उनका सोच ये था कि वो ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठना है, उस वो जो ब्रह्म मुहूर्त की जो एनर्जी है वो आपको महसूस करनी है, और उस मुहूर्त में जो राग है, रागों का जो, क्योंकि हमारे जो राग रागनी है ये हमारे देव देवताओं का उत्पन्न किया हुआ है, ये तो साक्षात आजकल जो म्यूजिक जो एंटरटेनमेंट है वो तो पहले पूजा और प्रार्थना के लिए यूज होता था।
1: जी जी।
0: सिर्फ और सिर्फ पूजा और प्रार्थना और सिर्फ साधना ही होती थी संगीत के सुर से। तो अभी क्या था कि वो ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे सिर्फ भैरव राग गवाने का एक ही उद्देश्य था कि वो आशीर्वाद ईश्वर का, वो भैरव राग का आशीर्वाद, सरस्वती माँ का आशीर्वाद उस मुहूर्त में हमें मिले।
1: वाह।
0: तो सा रे गा मा पा नी सा, एक हम बंदिश गाते थे तीनों भाई उठ के, जा

0: जागो
1: वाह वाह वाह वाह
0: मोहन प्यारे जागो। तो ये बंदिश हम सुबह गाते थे, उसके बाद हम तीनों नींद में गाते थे। अब ये तो हुई दादाजी की सोच, अब तीन बच्चों की सोच बताता हूँ कि हमें ऐसा लगता है क्यों क्यों उठाया जा रहा है 4 बजे सुबह, क्यों नहीं सोने दिया जा रहा है, ये क्या पनिशमेंट है, ये क्या है, क्योंकि नींद इतनी प्यारी होती है ना।
1: बिल्कुल,
0: और वो 4:30 बजे तो एकदम चरम सीमा की नींद होती है।
1: बिल्कुल।
0: सो उस वक्त जगा दिया जाता था, दिल्ली आई बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली
1: जी,
0: तो दिल्ली की सर्दी भी खतरनाक होती थी,
1: खतरनाक जी,
0: पर वो जगाते थे। फिर उसके बाद वो हो गया, फिर 5:30 बजे के बाद हमें अलाउड नहीं था कि बेड से उठना ही है और फिर बाहर निकलना है घर से, एंड जस्ट हैव टू गो वॉक, डू व्यायाम, जो प्राणायाम व्हाटएवर। ये मैं अपने बचपने की बात बता रहा हूँ सर, जब मैं 5th-6th standard की बात बता रहा हूँ
1: जी जी।
0: एंड देन वो होने के बाद फिर घर आए, नहाया धोया, नाश्ता किया, 7:30-8 बजे हम लोग रियाज पे बैठ गए। 8 बजे रियाज पे बैठे हैं नाश्ता करके,

0: फिर इसके साथ सरगम उन्होंने कुछ कुछ बनाई थी, बताई थी हमें, तो सरगम बजाते थे हम लोग। तो एक हाजिरी होती थी हमारी, पिताजी भी होते थे, दादाजी होते थे, हम दोनों होते थे। उसके बाद फिर दादाजी अपने शेड्यूल में बिजी हो जाते थे, पिताजी जॉब में जाते थे, हम लोग रियाज करते थे दोनों भाई। सो हमारा रियाज होता था तकरीबन 8 बजे से 8:30 बजे से लेके दोपहर को 12:30-1 बजे तक, 5 घंटे का एक टाइम का रियाज। फिर दिन में लंच के बाद 2 घंटे होते थे, उसमें आप कुछ और कीजिए, जैसे कुछ और सीखिए या बगीचे में कुछ कीजिए या कुछ भी घर में कुछ और सेवा कीजिए, घर का कुछ काम कीजिए, वैसा कुछ। फिर 4:30 बजे से 4, 4:30, 5 बजे से वापस रियाज। वो रात को चलता था 10, 10:30 बजे तक। तो दिन में तकरीबन 11, 12, 13 घंटे का रियाज होता था। उसी 13 घंटे में पूरे दिन शिष्य आते थे, अपने टाइम से आते थे, जिनको जाना होता था वो चले जाते थे, वो चलता ही रहता था एक रोटेशन में। तो वो माहौल रहता था।
1: वाह वाह।
0: फिर रात को आप समझिए 10:30 बजे अगर हम लोग छोड़ा है रियाज करके, दिन भर आप सोने गए हैं 12 के आसपास, तो पिताजी आए रिकॉर्डिंग से और 1 बजे या कभी 2 बजे उनका कुछ मूड हुआ बताने का, कुछ सोचते हुए आए हैं, बच्चों को बताऊंगा।
1: और बच्चे तो सो रहे हैं।
0: बच्चे सो रहे हैं। अब बच्चे कौन, मैं और मेरे बड़े भाई पंकज जी। अब पिताजी ने हमें कभी बचपन में, मेरी माता ने, पिता ने, हमारे बुजुर्गों ने कभी मारा नहीं, हाथ नहीं उठाया, पर डर इतना था कि उनके आंखों से और आवाज से डर लगता था। तो ये था कि अब पिताजी आ गए 12, 1 बजे, उन्होंने कहा चलो बाजरी लेके आओ। अब नींद से आधी नींद से उठे, मुंह में पानी डाला है, फिर दोनों बांसुरी लेके आ गए। अब सर वो सेशन चल रहा है सुबह 4-5 बजे तक।
1: ओहो हो, तो सारी रात जागना है।
0: पूरी सारी रात जाग गए।
1: और सुबह का तो फिर शेड्यूल तय है।
0: सुबह का शेड्यूल तय है। पर फिर कभी कभी पिताजी संडे, क्योंकि आकाशवाणी छुट्टी होती थी, तो सैटरडे संडे पिताजी भी बैठते थे रियाज पे। फिर वो जब पिताजी बैठते थे तो और लंबा डिटेल क्या रियाज होता था दादाजी के साथ भी। तो होते होते फिर वो बचपन पूरा वैसे ही उसी
1: रियाज करते हुए,
0: रियाज करते हुए, अनुशासन से इसी तरीके से गुजरा है।
1: क्या बात है।
0: मैं इतना ही बताना चाहूंगा कि इस जीवन में मुझे, मैं जितना ही अपने आप को ग्रैटिट्यूड महसूस करूं यूनिवर्स के लिए, ईश्वर के लिए, भगवान के लिए, या उस सोर्स के लिए जिसने मुझे ये लाइफ दी है, कि मुझे ऐसे परिवार में ऐसे दादा दादी जिन्होंने पूरा बचपन में हमें प्यार भरपूर दिया
1: जी,
0: संगीत दिया, जिसके वजह से हमारी जिंदगी बनी
1: जी,
0: मेरे माता पिता जिन्होंने कोई कमी महसूस नहीं होने दी और फिर संगीत सिखाया और फिर जीवन को कैसे जीना है उसके बारे में भी नॉलेज दी
1: जी,
0: ऐसे परिवार में मेरी जीवन की शुरुआत हुई। कोई भाग्यशाली मैं अपने आप को बहुत मानता हूँ कि ऐसे घराने का बच्चा हूँ और ऐसे घराने में पैदा हुआ हूँ। और भी बहुत एक बड़ी बात है कि जीवन को जीने के लिए कई बार ऐसा होता है, प्रोफेशन आप पैसा कमाने के लिए चुनते हो जिससे आप पैसा कमाते हो, पर आपकी आत्मा तृप्त नहीं होती है। और पैशन आपका कुछ और होता है, पर आप पैशन के लिए काम कर ही नहीं पाते हो।
1: बिल्कुल।
0: जीवन जीने का आत्मा के लिए आप क्या कर रहे हैं, तो वो पैशन है आपका, वो कुछ भी हो सकता है, खाना बनाना हो सकता है,
1: बिल्कुल,
0: ट्रैवल करना हो सकता है, कुछ भी, मतलब म्यूजिक हो सकता है। और तो मेरा तो पैशन भी यही है, जीवन भी यही है, ऐसा नहीं लगता है मेरा साज है, ऐसा लगता है मेरे शरीर का एक अंग है,
1: बिल्कुल,
0: ये और मैं एक ही है। सो मैं इस जन्म में आर्टिस्ट बन के पैदा हुआ हूँ और एक सास की सेवा कर रहा हूँ, कृष्ण भगवान के सास की सेवा कर रहा हूँ, जिन्होंने इस सास से पता नहीं कितने लोगों का कितना उद्धार हुआ है। तो मेरे लिए तो इससे बड़ी कोई बात ही नहीं है।
1: क्या बात है पारस जी। हम अब ये रिक्वेस्ट करेंगे कि वो जो दादाजी वाली बांसुरी है, त्रिपुरा बांसुरी
0: जी,
1: उस पर कोई धुन बजाएं और उसके बाद हम एक फिल्मी गाना सुने आपकी पसंद का।
0: मैं दादाजी की बजाई हुई धुन में आपको सुनाता हूँ
1: जी,
0: पर त्रिपुरा बांसुरी मैंने बजानी, मेरे लिए ये एक बहुत ड्रॉबैक है मेरे लाइफ का
1: जी,
0: कि ये बांसुरी मैं कोशिश की थी मैंने बजानी
1: जी जी,
0: पर दादाजी जब तक उनके दांत थे और वो इस तरीके से होल्ड कर पाते थे
1: जी जी जी,
0: देखो ऐसे बजाते हैं,
1: समझ गया।
0: देखिए तो एक होती है सीधी बांसुरी,
1: हाँ,
0: आपने देखी होगी ऐसे शहनाई की तरह बजाते हैं
1: जी जी जी।
0: एक होती है ये जो हम बजाते हैं कृष्णा बांसुरी
1: जी,
0: इसको कृष्णा बांसुरी बोलते हैं। तो मैंने कृष्ण भगवान की मूर्ति देखी होगी थी
1: हमेशा
0: ऐसी, तो इसको बोलते हैं आड़ी बांसुरी।
1: हाँ,
0: आड़ी बांसुरी भी बोलते हैं, कृष्णा बांसुरी भी बोलते हैं, और इसको हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का वाद्य भी बोलते हैं
1: जी।
0: फिर ये हो गए त्रिपुरा बांसुरी, इसको बजाते हैं ऐसे। इसका ये पंचम का हुल है
1: जी,
0: और ये बाकी आगे नॉर्मल जैसे बांसुरियों पे होता है
1: उस तरह के,
0: उस तरीके का है। और इसमें एक और खास बात है कि आप देखिए, इसमें जो कृष्णा बांसुरी है, इसमें जो एक मध्यम तीव्र मा, जो क्योंकि आजकल बहुत सारे फ्लूट मेकर्स अपनी नाम बढ़ाने के लिए, बहुत सारे फ्लूटिस्ट अपने नाम बढ़ाने के लिए वो चीजें अपने आप को, क्योंकि अपना नाम आजकल के जीवन में क्या हो गया ना सर, भोगना भोगना ग्रीडीनेस
1: जी जी
0: इतना ज्यादा बढ़ गया है कि झूठ पे झूठ बोलते लोग
1: जी।
0: आप सोचिए, ये मैं 200 साल पुरानी बांसुरी मैं आपको दिखा रहा हूँ
1: जी, बिल्कुल।
0: इसमें दो चीजें दिखा रहा हूँ मैं आपको, इसमें एक तो पंचम होल दिखा रहा हूँ,
1: हाँ बिल्कुल,
0: और दूसरा एक ये मध्यम तीव्र मध्यम का, हाँ, नोट है,
1: बिल्कुल है,
0: ठीक है
1: आखिर में,
0: ठीक है। अब ये दोनों चीजें बहुत सारे सब बोलते कि ये हमारा है हमारा है हमारा है,
1: ये तो 200 साल पुरानी बांसुरी है,
0: हमने तो बचपन से देखा है
1: जी,
0: हमने कभी बोला ही नहीं ऐसा, क्योंकि हमें उस तरीके से कभी ना, हमने कभी ना देखा, ना कभी पिताजी का कभी वैसा विचार रहा, ना कभी दादाजी का वैसा विचार रहा कि ये हमारा है हमारा है, हमने किया है हमने किया है हमने किया है। पिताजी और दादाजी का सिर्फ एक ही उद्देश्य रहा है हमेशा से, पिताजी का आज भी है, कि ये ईश्वर का दिया हुआ साज है, ईश्वर का दिया हुआ आशीर्वाद है, हमारा नहीं है, ईश्वर का है, ईश्वर ने हमें चुना है, तो आपके थ्रू जो अच्छा जितनों का हो सके अगर हो पा रहा है तो वो भी ईश्वर ने आपको चुना उसके लिए,
1: आप माध्यम है,
0: आप अपने आप को मत मत समझिए कि आप भगवान है
1: जी,
0: आप भगवान नहीं है, आप भगवान होते तो आपने अपने लिए कुछ कर लिया होता सबसे पहले, जिन लोगों की वजह से आपका हो रहा है वो आशीर्वाद ईश्वर का दिया हुआ है।
1: बहुत सही,
0: तो हमने तो बचपन से ये देखा है सर। अब ये त्रिपुरा बांसुरी जो है ना, ये दादाजी का ही आशीर्वाद है, मैं ये बांसुरी बजा पाता हूँ, जो भी है मेरे पास उन्हीं का आशीर्वाद है, पर ये बांसुरी मैं बजा नहीं पाता,
1: कोई बात नहीं, तो आप
0: इसका साउंड क्रिएट नहीं कर पाता
1: जी, तो आप अपनी कृष्णा बांसुरी बजाइए।
0: मैं लाया इसलिए हूँ कि उनका आशीर्वाद हमें, खैर मेरे साथ, मेरे हमेशा साथ रहता है ये,
1: वाह
0: हमेशा,
1: क्या प्यारी बात,
0: ये मेरे फ्लूट किट में रहता है
1: जी जी जी।
0: अब मैं आपको एक चीज बता रहा था, जो तीव्र माँ का ये है
1: जी,
0: अब ये बांसुरी पे तीव्र माँ का यहाँ होल है,
1: हाँ है,
0: है ना
1: जी,
0: इसलिए आप कभी गूगल यूट्यूब में सर्च करेंगे ना, आपको ज्यादा रिकॉर्ड नहीं मिलेगा दादाजी का
1: जी जी जी,
0: पिताजी का भी ज्यादा नहीं मिलेगा, क्योंकि ना वो सुरों में खोए रहते थे, म्यूजिक में खोए रहने वाले लोग थे, शागिर्दों के साथ रहने वाले लोग थे, संगीत में खोए रहने वाले लोग थे, वो टेक्निकली वो उस चीज को समझ ही नहीं पाए। अब हमें भी जब समझ में आया ना, तो दादाजी हमें छोड़ के, शरीर छोड़ के जा चुका था उनका, अब पिताजी भी अपने एक मिजाज के हैं, तो हम भी उनके, क्योंकि हम बच्चे भी हैं, बेटे भी हैं, शिष्य भी हैं, अब पिताजी कब गुरु से पिता बन जाते हैं, पिता से कब गुरु बन जाते हैं, समझ में नहीं आता है।
1: तो वो, बिल्कुल सही,
0: वो
1: है।
0: देखना पड़ता है
1: जी।
0: तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आपने बोला दादाजी के लिए जो हम बजाते थे बचपन में,
1: हाँ हाँ।
0: दादाजी के साथ राग दुर्गा मैं आपको सुनाता हूँ,
1: ठीक है, और उसके बाद एक फिल्मी गाना भी सुनते हैं,
0: मैं फिल्मी गाना भी सुनाऊंगा
1: जी।

0: क्या बात है, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार।
1: धन्यवाद धन्यवाद।
0: अब बताइए गाना कौन सा सुना जाए?
1: मैं आपको एक मेरा बहुत ही पसंदीदा गाना है
0: जी जी,
1: जो कि मैं अक्सर बजाता भी हूँ, वो है पिया तो से नैना लागे रे।
0: क्या बात है, गाइड फिल्म का ये गाना है।
1: बहुत अच्छा गाना है।
0: वाह वाह वाह।
1: और लता जी ने तो
0: कमाल किया,
1: उनको सादर कोटी कोटी प्रणाम है। और इतना अच्छा कंपोज किया है
0: एसडी बर्मन साहब ने।
1: वाह वाह। तो मैं वो आपको
0: जरूर जरूर स्वागत है।

0: अभी इसमें क्या किया ना मैंने, जैसे मैं इसको थोड़ा फ्यूजन अंदाज से भी बजाता हूँ कभी कभी।
1: जी जी जी।
0: तो इसमें एक छोटी सी थीम ऐड की है मैंने।
1: अच्छा।
0: बहुत ही छोटी सी। अब जैसे ये चल रहा है

0: अर्जी, आपके बचपन की साधना, बचपन का माहौल, सख्त अनुशासन, ये तमाम बातें हमने यहाँ सुनी और जानी। एक बात जो हमारे सुनने वालों के लिए बहुत जरूरी है जानना, वो है कि किस उम्र में आपको बांसुरी पकड़ा दी गई थी?
1: सर, ये मुझसे सवाल पूछा जाता है, मैं हर बार यही जवाब देता हूँ। जब एक बच्चे को एहसास होने लग जाता है ना,
0: जी,
1: कोई सेंस शुरू हो जाता है दुनियादारी का, मुझे लगता है कि उसी एज में मैंने बांसुरी हाथ में ले ली थी।
0: जी,
1: एक बच्चा होता है जब सिर्फ रो रहा होता है, सिर्फ एक सोता रहता है,
0: शिशु होता है, जब
1: शिशु होता है वो, तो जब एक बच्चा लड़कपन में आ जाता है,
0: जी,
1: तो उस एज में बांसुरी हाथ में आ गई थी।
0: वाह वाह वाह।
1: अब वो कौन सी एज थी, मे बी मैं 2 साल का था, 3 साल का था, या कितने भी, मैं इतना बता, मुझे पता है कि मेरी जो पहली परफॉर्मेंस थी,

जाने माने बांसुरी वादक पारसनाथ से अपने इस दोस्त यूनुस खान की बातचीत अभी आपने सुनी। ये था पहला भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन रीमा जोशी, प्रस्तुति जुबैर खान। इस कार्यक्रम का दूसरा भाग सेल्यूलॉइड के सितारे कार्यक्रम में आप सुनेंगे अगले हफ्ते।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का एक लेख साझा किया है, जिसमें सरकार की विभिन्न पहलों पर प्रकाश डाला गया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि देश अमृत काल में आगे बढ़ रहा है। उपराष्ट्रपति ने अपने लेख में सरकार की विभिन्न पहलों का जिक्र किया है। क्वाड देशों ने आज नई दिल्ली में अपने विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान गठबंधन के एजेंडे की प्रगति की समीक्षा की और हिंद प्रशांत से जुड़े क्षेत्रीय तथा वैश्विक घटनाक्रम पर चर्चा की। बैठक समाप्त होने के बाद विदेश मंत्रालय में अपर सचिव के नागराज नायडू ने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि बैठक में स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत के प्रति क्वाड की प्रतिबद्धता को दोहराया गया है। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि 4 जून से 8 जून तक फर्स्ट वर्ल्ड योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का आयोजन अहमदाबाद में हो रहा है। ये योगा की पहली वर्ल्ड चैंपियनशिप है। दुनिया के 75 से अधिक देश इसमें भाग लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 3 दिवसीय दौरे पर सिक्किम पहुंची। यहां राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर और मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने उनका स्वागत किया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की लिखी पुस्तक अपनापन नरेंद्र मोदी संग मेरे अनुभव का आज नई दिल्ली में विमोचन हुआ। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और पूर्व प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा ने इस किताब को लोकार्पित किया। और IPL क्रिकेट में आज क्वालिफायर 1 मुकाबले में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युववाणी। हमारा आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति है।

नमस्कार साथियों, स्वागत करती हूँ मैं आपकी रेडियो साथी प्रज्ञा गुप्ता, आप सभी साथियों का कार्यक्रम युवाणी में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि इस तपती गर्मी में आप अपना पूरा ध्यान रख रहे होंगे और खूब ठंडे पेय पदार्थों का आनंद ले रहे होंगे। दोस्तों, आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे पर्यटन स्थल की सफाई और युवा दायित्व पर। इसी के साथ चर्चा होगी फिटनेस के महत्व पर। पर दोस्तों, आज के कार्यक्रम की शुरुआत एक छोटे से किस्से से करते हैं। पिछले वीकेंड की ही बात है, कॉलेज के कुछ दोस्तों ने मिलकर प्लान बनाया कि शहर की भीड़ भाड़ से दूर पहाड़ों के बीच उस मशहूर झरने पर जाएंगे। हफ्तों की प्लानिंग हुई, ट्रिप की प्लेलिस्ट बनी और ढेरों शानदार तस्वीरों के आइडियाज सोचे गए। जब वे वहां पहुंचे तो नजारा वाकई बहुत खूबसूरत था, हरी भरी वादियां और गिरते पानी की आवाज। दोस्तों ने उत्साह में अपना कैमरा सेट किया, एक बेहतरीन फ्रेम बनाया और रिकॉर्डिंग शुरू की। लेकिन जब अपना वो वीडियो प्ले करके देखा तो जानते हैं बैकग्राउंड में क्या नजर आया? पानी की साफ लहरों के बीच तैरता हुआ एक चिप्स का खाली पैकेट और ठीक उनके पीछे पत्थरों पर फंसी हुई प्लास्टिक की कुछ खाली बोतलें। उस एक पल में उस खूबसूरत जगह का सारा सुकून और उन दोस्तों का सारा उत्साह एकदम फीका पड़ गया। साथियों, यह सिर्फ उन दोस्तों की कहानी नहीं है, या आज हम में से लगभग हर उस युवा की कहानी है जो अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी से कुछ पल चुरा कर प्रकृति के बीच सुकून ढूंढने जाते हैं। लेकिन वहां क्या मिलता है? हमारा ही छोड़ा हुआ कचरा। चलिए इस विषय में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। वक्त है आज के इस कार्यक्रम के पहले गीत का।

दोस्तों आप सुन रहे थे गीत फिल्म ये जवानी है दीवानी से। स्वर थे मोहित चौहान के, गीतकार थे अमिताभ भट्टाचार्य और संगीत निर्देशन था प्रीतम का। दोस्तों गीत से ठीक पहले हमने एक किस्से को साझा किया था, एक खूबसूरत झरने और वहां फैले हुए कचरे की दास्तां। दोस्तों हमारी जिंदगी असाइनमेंट्स, ऑफिस की डेडलाइंस, करियर की टेंशन्स और दिन भर मोबाइल या लैपटॉप की स्क्रीन में कितनी व्यस्त हो गई है। इस भाग दौड़ में हम अक्सर खुद को भूल जाते हैं। ऐसे में जब हम अपना बैग पैक करते हैं और किसी सफर पर निकलते हैं तो वो सिर्फ जगह बदलना नहीं होता, वो हमारे मन का रीसेट बटन होता है। हम पहाड़ों पर जाते हैं ताकि वो ठंडी हवा हमारे दिमाग की उलझनों को शांत कर सके। हम नदियों और झीलों के किनारे बैठते हैं, चाहे वो हमारी शहर की शांत झीलें हों, हरी भरी वादियां हों, सुकून भरा परिसर हो। वहां जाकर जो शांति मिलती है उसको शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। और जब हम पुराने किलों और ऐतिहासिक जगहों पर जाते हैं तो वो सिर्फ पत्थर की इमारतें नहीं होती, वो हमारी जड़ें हैं। वो हमें बताती हैं कि हम कहां से आए हैं और हमारा इतिहास कितना समृद्ध रहा है। दोस्तों पर्यटन सिर्फ एक इंडस्ट्री नहीं है, यह हमारे लिए एक थेरेपी है। यह हमें प्रकृति से, अपनी संस्कृति से और सबसे बड़ी बात खुद से जोड़ती है। जब आप एक नई जगह पर अजनबी लोगों से मिलते हैं, वहां का खाना खाते हैं, वहां की हवा में सांस लेते हैं तो आप एक बेहतर और सुलझे हुए इंसान बनकर लौटते हैं। लेकिन दोस्तों इसी खूबसूरत सफर के दौरान कई बार हम सब से अनजाने में ही सही एक छोटी सी चूक हो जाती है। हम दोस्तों के साथ होते हैं, हंसी मजाक चल रहा होता है और उसी उत्साह में कई बार हमारे हाथ से कोई खाली पैकेट या पानी की बोतल वहीं छूट जाती है। हमें से कोई भी कभी भी जानबूझकर अपनी प्रकृति या अपनी धरोहर को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। हम सब अपनी इन जगहों से बहुत प्यार करते हैं, बस उस खुशी के पल में हमारा ध्यान इस बात पर नहीं जाता कि वो छोटी सी चीज वहां के प्राकृतिक सौंदर्य को कैसे प्रभावित कर सकती है। जरा सोचिए, वो वादियां, जो नदियां, जो ऐतिहासिक दीवारें बिना कुछ मांगे हमें इतना सुकून देती हैं, क्या वो बदले में हमसे थोड़ी सी देखभाल की उम्मीद नहीं करती? जब उसी खूबसूरत नजारे के बीच हमें कोई प्लास्टिक या कचरा नजर आता है तो हम सबका मन थोड़ा उदास हो जाता है ना, क्योंकि वो जगह हमारी अपनी है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, पर हमारे साथ यूं ही बने रहिएगा क्योंकि गीत के बाद हम जानेंगे कि कैसे हम युवा पर्यटन स्थल को साफ रखने में अपना योगदान प्रदान कर सकते हैं।

दोस्तों आप सुन रहे थे राहत फतेह अली खान की आवाज में गीत जग घूमया फिल्म सुल्तान से। गीतकार थे इरशाद कामिल और संगीत निर्देशन था विशाल शेखर का। दोस्तों हम युवा बहुत समझदार हैं, हमारे अंदर जो ऊर्जा है वो दुनिया का कोई भी बदलाव ला सकती है। हम जो चीज अपना लेते हैं वो ट्रेंड बन जाती है, तो क्यों ना हम सब मिलकर एक नया और बेहद खूबसूरत ट्रेंड शुरू करें, जिम्मेदार पर्यटन यानी रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म का ट्रेंड। और इसके लिए हमें बहुत कुछ अलग या मुश्किल नहीं करना है, बस सफर के दौरान कुछ छोटी छोटी बातों को अपनाना है साथ मिलकर। पहला कदम एक छोटा सा इको फ्रेंडली बैग। दोस्तों हम जब भी सफर पर निकलें तो अपने बैग में कपड़े या कागज का एक खाली बैग जरूर रखें। रास्ते में जो भी खाली रैपर या बोतल हो उसे हम वहां ना छोड़कर उस बैग में रख लें और डस्टबिन दिखने पर उसे वहां डाल दें। कितना आसान है ना। दूसरा कदम लीव नो ट्रेस। यह प्रकृति का बहुत ही प्यारा नियम है। हम जहां भी जाएं वहां सिर्फ अपने पैरों के निशान और अपनी यादें, अच्छी प्यारी यादें छोड़कर आएं। हम सब ये कोशिश करें कि वो जगह हमारे आने से पहले जितनी खूबसूरत थी हमारे जाने के बाद भी वैसी ही रहे। तीसरा और सबसे जरूरी कदम एक प्यारी सी मुस्कान के साथ सहयोग। दोस्तों कई बार हमारे आसपास कोई और पर्यटक अनजाने में कचरा छोड़ रहा होता है, ऐसे में एक सहयोगी के रूप में एक प्यारी सी मुस्कान के साथ उनसे कहना है कि आइए इसे हम सब मिलकर साफ रखते हैं, आखिर ये जगह हमारी ही तो है। यकीन मानिए प्यार और अपने पन से की गई यह छोटी सी पहल सामने वाले का दिल जीत लेगी। दोस्तों हमारी धरोहरें और हमारी प्रकृति हमारा परिवार है, आइए हम सब मिलकर ये वादा करें कि अपने इस परिवार की खूबसूरती को हम यूं ही सहेज कर रखेंगे, एक टीम की तरह, एक जिम्मेदार युवा की तरह। अभी तक हमने बात की हमारे आसपास के वातावरण, हमारी खूबसूरत धरोहर और प्रकृति को सहेजने की। हमने जाना कि कैसे हम सब मिलकर बाहर की दुनिया को खूबसूरत बना सकते हैं, लेकिन साथ ही उन खूबसूरत वादियों का मजा हम तभी ले पाएंगे जब हमारा अपना शरीर पूरी तरह से स्वस्थ होगा। तो आइए अब बात करते हैं हम सबकी जिंदगी के एक बहुत ही अहम विषय की, हमारी सेहत, हमारी फिटनेस की। जरा सोचिए, क्या आप सुबह उठते ही खुद को तरोताजा महसूस करते हैं? क्या आप दो मंजिल सीढ़ियों बिना सांस फूले चढ़ सकते हैं? क्या दिन भर काम या पढ़ाई करने के बाद भी आपके अंदर इतनी ऊर्जा बचती है कि आप शाम को अपने परिवार या दोस्तों के साथ हंस बोल सके? अगर इन सब सवालों का जवाब हाँ है तो यकीन मानिए आप फिट हैं। टेक्नोलॉजी ने हमारी जिंदगी को बहुत आसान बना दिया है, इसमें कोई भी शक नहीं है, लेकिन उसकी वजह से स्क्रीन टाइम भी इतना अधिक बढ़ गया है कि वह हमारे मेंटल हेल्थ को प्रभावित कर रहा है, और साथ ही लगातार बैठे रहने और शारीरिक मेहनत कम होने का सीधा असर हमारे शरीर पर ही नहीं बल्कि हमारे दिमाग पर भी पड़ रहा है। दोस्तों आज का युवा बहुत जल्दी तनाव, एंजाइटी और थकान का शिकार हो रहा है। हम बड़े बड़े सपने तो देखते हैं लेकिन कई बार उन सपनों के लिए मेहनत करते करते अपने शरीर और अपने दिमाग को थका देते हैं। यहीं पर फिटनेस हमारा सबसे बड़ा हथियार है, इसके बारे में और विस्तार से चर्चा करेंगे। चलिए सुनते हैं आज का अगला गीत।

दोस्तों, आप सुन रहे थे सुखविंदर सिंह और श्रेया घोषाल की आवाज़ में ये गीत फिल्म संजू से। गीतकार थे शेखर अस्तित्व और संगीत निर्देशन था विक्रम का। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे शरीर और दिमाग का कितना गहरा कनेक्शन है? जब हम कोई भी शारीरिक गतिविधि करते हैं, चाहे वो टहलना हो, दौड़ना हो या कोई खेल खेलना हो, तो हमारा दिमाग एंडोमॉर्फिन्स नाम की रसायन छोड़ता है और हम इन्हें हैप्पी हार्मोन्स कहते हैं। अगर आप किसी बात से बहुत परेशान हैं, पढ़ाई का बहुत प्रेशर है या दिन भर के काम से आप फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, तो आप बस 30 मिनट के लिए बाहर खुली हवा में तेजी से चलिए। आप खुद महसूस करेंगे कि आपका सारा तनाव जैसे पसीने के साथ बह गया हो। आपका दिमाग पहले से कई ज्यादा शांत और स्पष्ट हो जाएगा। यानी कि फिटनेस सिर्फ हमारे शरीर की बीमारियों को ही नहीं बचाता, बल्कि यह हमारे मानसिक स्वास्थ्य को भी एक बहुत बड़ा सहारा देता है। एक स्वस्थ शरीर में ही एक शांत और एकाग्र मन बसता है। जब शरीर में चुस्ती होती है तो हमारे विचार भी सकारात्मक होते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि समय कहां से निकालें? हम सब इतने व्यस्त हैं कि लगता है फिटनेस के लिए अलग से समय निकालना तो असंभव है। साथियों, यहीं पर हमें अपनी सोच को थोड़ा सा बदलना है। फिटनेस को एक टास्क या बोझ की तरह मत देखें, इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का एक स्वाभाविक हिस्सा बना लीजिए। हमें रोज 2 घंटे जिम में पसीना बहाने की जरूरत नहीं है। यहाँ तक कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO भी कहता है कि दिन भर में बस 30 से 40 मिनट की सामान्य शारीरिक गतिविधि हमें स्वस्थ रखने के लिए काफी है। तो हम अपनी सामान्य दिनचर्या में इसे कैसे शामिल कर सकते हैं? आइए बहुत ही आसान और व्यवहारिक तरीकों पर बात करते हैं। दोस्तों, जब भी मौका मिले लिफ्ट की जगह सीढ़ियों का इस्तेमाल करें। यह एक बहुत ही बेहतरीन कार्डियो व्यायाम है जिसके लिए आपको कोई अलग से समय निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके अलावा अगर आप फोन पर बात कर रहे हैं तो कुर्सी पर बैठने की बजाय टहलते हुए बात करिए। पढ़ाई या काम के बीच में हर 1 घंटे के बाद उठें, शरीर को थोड़ा सा स्ट्रेच करें और पानी पीकर वापस बैठें। आप अपने पसंदीदा खेल को भी चुन सकते हैं, क्योंकि फिटनेस मजेदार होनी चाहिए, सजा नहीं। आप अपने दोस्तों के साथ वीकेंड पर क्रिकेट, बैडमिंटन या फुटबॉल खेल सकते हैं। और अगर आपको स्विमिंग पसंद है या साइकिल चलाना अच्छा लगता है तो उसे भी अपने रूटीन में शामिल करें। प्रकृति के बीच 30 मिनट टहलकर जरूर आइए, यह आपके शरीर को ही नहीं आपके मन को भी प्रफुल्लित करेगा। अंत में हम फिटनेस के उन 2 पहलुओं पर बात करेंगे दोस्तों, जिनके बिना कोई भी फिटनेस रूटीन अधूरा है, हमारा आहार और हमारी नींद। आजकल जंक फूड और बाहर का खाना हमारी लाइफस्टाइल का एक बड़ा हिस्सा बन गया है ना। हम इसे पूरी तरह से छोड़ तो नहीं सकते, लेकिन हम एक संतुलन तो बना ही सकते हैं। इसलिए कोशिश करिए कि आपके दिन का ज्यादातर खाना घर का बना हुआ हो, सादा और पौष्टिक हो, ताजे फल, सब्जियां, दालें और भरपूर मात्रा में पानी। बस यही असली फिटनेस का राज है। पानी हमारे शरीर के लिए एक जादुई तत्व है। दिन में 8 से 10 ग्लास पानी पीने की आदत डालिए। आप खुद अपने शरीर और त्वचा में गजब का बदलाव देखेंगे। और सबसे आखिर में, लेकिन सबसे जरूरी बात, पर्याप्त नींद। हम युवा अक्सर देर रात तक फोन चलाते हैं या काम करते हैं और अपनी नींद से समझौता कर लेते हैं। दोस्तों, जब हम सोते हैं तब हमारा शरीर खुद को रिपेयर करता है। अगर आप 7 से 8 घंटे की अच्छी और गहरी नींद नहीं ले रहे हैं तो आप चाहे कितनी भी अच्छी डाइट ले लें और कितना भी व्यायाम कर लें, आपका शरीर हमेशा थका हुआ ही रहेगा। रात को सोने से कम आधे घंटे पहले अपनी स्क्रीन का प्रयोग रोक दें। दोस्तों, हम युवा इस देश का भविष्य है। हमें बहुत कुछ करना है, बहुत ऊंचाइयों को छूना है और यह तभी संभव है जब हम शारीरिक और मानसिक रूप से फिट होंगे। तो चलिए सुनते हैं आज के कार्यक्रम का ये अंतिम गीत।

दोस्तों, अब वक्त हो चला है आज की रोजगार सूचना का। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन सीजुअल द्वारा ग्रुप बी और सी के 12,256 रिक्त पदों हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 32 वर्ष के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना अनिवार्य है। आवेदन 21 मई से प्रारंभ हो चुके हैं और आवेदन करने की अंतिम तिथि 22 जून है। हमारा आज का कार्यक्रम यही समाप्त होता है। विदा लेती हूँ आपके रेडियो साथी प्रज्ञा गुप्ता।

0: युवा श्रोता सुन रहे थे अपना कार्यक्रम युववाणी। हमारा आज का ये कार्यक्रम
1: हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर शाम के 5:30 हुए हैं। प्रस्तुत है काव्य पाठ जिसमें आमंत्रित कवि हैं नारायण सोनी, नईम माहिर, मुकेश सोनी और आबिद राहतगढ़ी। तो आइए सुनते हैं ये काव्य पाठ।
2: आदाब हाजरीन, मैं नईम माहिर और इस खूबसूरत काव्य गोष्ठी में आपका तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं, स्वागत करते हैं। यह खूबसूरत महफिल आज जो सजी हुई है, इसमें हमारे साथ मुकेश सोनी रहबर जी, वरिष्ठ गीतकार जो राहतगढ़ से तशरीफ लाए हैं, आबिद राहतगढ़ी जी और एक बहुत ही अच्छे कवि, शायर, गीतकार आदरणीय क्रांति जबलपुरी जी, और मैं आपका नईम माहिर इस खूबसूरत महफिल में आपका स्वागत करते हैं। सबसे पहले मैं इन चार मिसरों की रोशनी में उनको आवाज़ें सुखन देने जा रहा हूँ कि साथ साथ चलने में देर कितनी लगती है, साथ साथ चलने में देर कितनी लगती है और रास्ते बदलने में देर कितनी लगती है, और माँ जो मुझसे रूठी है मैं उसे मना लूंगा, मोम के पिघलने में देर कितनी लगती है। आइए आबिद राहतगढ़ी जी आए हो वो अपना कलाम हम सबको सुनाए।
3: नाजरी नादा और एक मतला और एक शेर आपकी नजर कर रहा हूँ। अर्ज किया है कि

0: बहुत बहुत शुक्रिया। एक नई गजल आप सबकी खिदमत में हाजिर कर रहा हूं। गजल का मतला हाजिर है।
1: स्वागत है भैया।
0: तलख लहजा था रवादारी न थी,
2: तलख लहजा था
3: रवादारी न थी,
0: तलख

0: थी।
1: बहुत अच्छे।
0: और ये शेर देखें साहब
1: जी,
0: जान क्या यादों ने तेरी कर दिया,

0: और ये शेर बतौर खास, इसलिए तुमने उठाया फायदा।
1: आहा,
0: क्या कहें इसलिए।

0: क्या बात है, क्या बात है भाई।
1: नर्म दिल था मुझ में होशियारी न थी।
2: और ये शेर देखें
0: जी।
1: इश्क ने मगरूर मुझको कर दिया।
0: इश्क ने
1: मगरूर मुझको कर दिया।

0: भाई,
1: मेरी शोहरत कोई अखबारी न थी। और गजल का मक्ता मुलाजा फरमाए
0: जी।

0: एक गजल जिनकी भी मैं यारी न थी, एक गजल जिनकी भी मैं यारी न थी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप लोग।
1: हाजरीन, अभी आप सुन रहे थे आबिद राहतगढ़ी साहब को, उन्होंने अपने खूबसूरत कलाम से आप लोगों को लुत्फंदोज किया। अब मैं जिस शायर को बुलाने जा रहा हूँ, इन चार मिसरों से मैं उनको दावत सुखन देने जा रहा हूँ कि बर्बाद जिंदगी को पयाम बहार दे, बर्बाद जिंदगी को पयाम बहार दे, बेताब दिल बहुत है जरा सा करार दे, एक उम्र कट गई है इसी इंतजार में,
0: क्या कहने,
1: शायद तेरी नजर मेरी किस्मत सवार दे। आइए मुकेश सोनी रहबर साहब
2: जी, बहुत बहुत शुक्रिया माहिर जी। एक गजल के चंद अशार आपकी खिदमत में, सुनिएगा कि मैं हूँ ये है तुम हो वही नहीं होती,
0: वाह।
2: मैं हूँ ये है तुम हो वही नहीं होती, माँ घर में ना हो तो खुशी नहीं होती,
0: क्या कहने, बहुत खूब।
2: मैं हूँ ये है तुम हो वही नहीं होती, माँ घर में ना हो तो खुशी नहीं होती, और प्यासे ही मर जाते कब के तुम सागर,
0: वाह।
2: प्यासे ही मर जाते कब के तुम सागर, दुनिया में गर कोई नदी नहीं होती,
0: क्या कहने, बहुत
1: शुक्रिया,
2: शुक्रिया,
1: वाह वाह वाह।
2: प्यासे ही मर जाते कब के तुम सागर, दुनिया में अगर कोई नदी नहीं होती, और आज नतीजा मेरे हक में है, लेकिन माहिर साहब
1: जी,
2: आज नतीजा
1: मेरे
2: हक में है, लेकिन तेरी हार से मुझको खुशी नहीं होती,
0: जी बहुत
1: वाह।
2: आज नतीजा मेरे हक में है, लेकिन आज नतीजा मेरे हक में है, लेकिन तेरी हार से मुझको खुशी नहीं होती। और ये शेर देखें कि जिनके सर होता है बुजुर्गों का साया,
0: क्या कहने,
2: जिनके सर होता है बुजुर्गों का साया, जग में उसको कोई कमी नहीं होती,
0: वाह।
2: जिनके सर होता है बुजुर्गों का साया, जग में उसको कोई कमी नहीं होती। और ये गजल के ये चंद अशार और देखें कि चेहरे का खोल फिर से बदल करके आ गए, चेहरे का खोल फिर से बदल करके आ गए, जो आस्ती में थे वो निकल करके आ गए, चेहरे का खोल फिर से बदल करके आ गए, जो आस्ती में थे वो निकल करके आ गए, और तेरी हर एक चाल से वाकिफ हूँ इसलिए,
1: बहुत अच्छे,
2: तेरी हर एक चाल से वाकिफ है इसलिए, किरदार को हम अपने बदल करके आ गए,
1: वाह वाह वाह वाह।
2: तेरी हर एक चाल से वाकिफ है इसलिए, किरदार को हम अपने बदल करके आ गए, आपस में बात होती नहीं फिर भी जाने क्यों, आपस में बात होती नहीं फिर भी जाने क्यों, तेरे लिए हम आग पे चल करके आ गए,
0: वाह
2: जी शुक्रिया शुक्रिया। आपस में बात होती नहीं फिर भी जाने क्यों, तेरे लिए हम आग पे चल करके आ गए, और चाहत के रास्तों पे फिसलते हैं सब के सब, चाहत के रास्तों पर फिसलते हैं सब के सब, अच्छा हुआ कि आप संभल करके आ गए,
3: अच्छा
2: शुक्रिया,
1: अच्छा अच्छा अच्छा।
2: चाहत के रास्तों पर फिसलते हैं सब के सब,
1: क्या बात है,
2: अच्छा हुआ कि आप संभल करके आ गए। और एक गजल और देखें कि कुछ लोग आस पास के कुछ घर के आ गए, कुछ लोग आस पास के कुछ घर के आ गए, मैं हूं अभी ये देखने दफ्तर के आ गए, कुछ लोग आस पास के कुछ घर के आ गए, मैं हूं अभी ये देखने दफ्तर के आ गए, और दोनों तरफ ही आते तो फिर बात ही ना थी, दोनों तरफ ही आते तो फिर बात ही ना थी, मेरी तरफ ही फूल क्यों पत्थर के आ गए,
1: वाह वाह वाह वाह वाह।
2: दोनों तरफ ही आते तो फिर बात ही ना थी,
1: वाह।
2: मेरी तरफ ही फूल क्यों पत्थर के आ गए,
1: वाह।
2: और ये शेर देखें मायर साहब की, जहमत भी ना उठा सके मेरे लिए मेरे,
1: जहमत भी ना
2: उठा सके मेरे लिए मेरे मरने के बाद देखिए सब घर के आ गए। जी शुक्रिया।
1: तल्ख हकीकत बयान की है। वाह
2: वाह। जहमत भी ना उठा सके मेरे लिए मेरे।
1: वाह वाह वाह।
2: मरने के बाद देखिए सब घर के आ गए।
1: वाह वाह वाह।
2: और शेर देखें आपके लिए कि दावत पे सिर्फ आपको हमने बुलाया था। दावत पे सिर्फ आपको
1: हमने बुलाया था।
2: हमने बुलाया था, एक आप हैं कि साथ में लश्कर के आ गए। दावत पे सिर्फ आपको हमने बुलाया था, एक आप हैं कि साथ में लश्कर के आ गए।
1: क्या कहने क्या कहने। बहुत अच्छे अशार शेर आपने मुकेश सोनी रहबर साहिब से सुने। इस हमारे गुलदस्ते में एक ऐसा फूल भी है, उसकी शायरी जो है आप सुनेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। क्रांति जबलपुरी साहब, उनको इन चार मिसरों से दावत सुखन देने जा रहा हूँ कि अपनी हिम्मत को हम आजमाते रहे। अपनी हिम्मत को हम
2: आजमाते रहे।
1: चोट खाते रहे, मुस्कुराते रहे। अपनी हिम्मत को हम आजमाते रहे, चोट खाते रहे, मुस्कुराते रहे। और जुल्म सहने में माहिर थे हम भी बहुत, बेवफा को गले से लगाते रहे। आइए क्रांति जबलपुरी जी अपने कलाम हम सबको सुनाएं।
4: नमस्कार। चार मिसरों से मैं अपनी बात शुरू करता हूं कि सस्ते सवाल पूछना महंगे सवाल दे।
1: वाह।
4: सस्ते सवाल पूछना महंगे सवाल दे, दानिशवरों की सोच जो सकते में डाल दे। सस्ते सवाल पूछना
1: महंगे
4: सवाल दे, दानिशवरों की सोच जो सकते में डाल दे। और ये भी देखें कि मालिक मेरे उरूज को ऐसा कमाल दे।
2: क्या
4: मालिक मेरे उरूज को ऐसा कमाल दे, पत्थर की आंख से भी जो आंसू निकाल दे।
1: बहुत अच्छे।
4: मालिक मेरे उरूज को ऐसा कमाल दे, पत्थर की आंख से भी जो आंसू निकाल दे, और लफ्जों में मेरे दर्द का ऐसा उबाल दे। लफ्जों में मेरे दर्द का ऐसा उबाल दे, बेजान जिस्म से भी जो चीखे निकाल दे।
2: क्या बात।
4: और एक गजल का मतलब देखें
1: जी,
4: के गजल है दिलरुबा मेरी, गजल ही शाहजादी है। गजल है दिलरुबा मेरी, गजल ही शाहजादी है। गजल के नाम मैंने प्यार की दुनिया लुटा दी है। गजल है दिलरुबा मेरी, गजल ही शाहजादी है। गजल के नाम मैंने प्यार की दुनिया लुटा दी है, और गजल में हुस्न का डंका मोहब्बत की अदा दी है। गजल में हुस्न का डंका मोहब्बत की अदा दी है, जो रोके से नहीं रुकती बगावत की मुनादी है। गजल है दिलरुबा मेरी, गजल ही शाहजादी है। गजल के नाम मैंने प्यार की दुनिया लुटा दी है, और गजल में हुस्न का डंका मोहब्बत की अदा दी है, जो रोके से नहीं रुकती बगावत की मुनादी है। और गजल में राम की मानस, गजल ईशा की चर्चा भी, गजल में घोल कर आयत इसे जमजम बना दी है। गजल है दिलरुबा मेरी, गजल ही शाहजादी है, और गजल का नूर मनमोहक, गजल का नूर मनमोहक, गजल का रूप मस्ताना, गजल का नूर मनमोहक, गजल का रूप मस्ताना, गजल ने आज जीने की तमन्ना फिर जगा दी है।
1: बहुत अच्छे।
4: गजल ने आज जीने की तमन्ना फिर जगा दी है।
1: वा, वा, वा, वा।
4: और गजल है तो मैं जिंदा हूँ।
2: क्या बात।
4: गजल है तो मैं जिंदा हूँ। गजल में सांस बसती है। गजल है तो मैं जिंदा हूँ, गजल में सांस बसती है। गजल ने सांस की ये डोर जीवन से मिला दी है। गजल ने सांस की ये डोर जीवन से मिला दी है। और एक गजल और देखें के कलमा पढ़ूं ना मैं किसी भी पीर पे लिखूं।
2: आहा, क्या बात।
4: कलमा पढ़ूं ना मैं किसी भी पीर पे लिखूं, जलते हुए जहान की मैं तस्वीर पे लिखूं।
2: क्या।
4: कलमा पढ़ूं ना मैं किसी भी पीर पे लिखूं, जलते हुए जहान की मैं तस्वीर पे लिखूं, और फरहाद कैस रांझा ना कोई हीर पे लिखूं। फरहाद कैस रांझा ना कोई हीर पे लिखूं, है वक्त की चाहत के महावीर पे लिखूं।
2: वाह, क्या बात है।
4: और ये भी देखें कि

0: मकरो फरेब जुर्म की तस्वीर देखकर, मकरो फरेब जुर्म की तस्वीर देखकर, बरसा नयन से दर्द जो उस पीर पे लिखूं, मकरो फरेब जुर्म की तस्वीर देखकर, बरसा नयन से दर्द जो उस पीर पे लिखूं, और जीने दो सबको प्यार से और प्यार से रहो, जीने दो सबको प्यार से और प्यार से रहो।
1: अच्छा संदेश है।
0: जब बांटना है प्यार क्यों शमशीर पे लिखूं,
2: जीने
0: दो सबको प्यार से और प्यार से रहो, जब बांटना है प्यार क्यों शमशीर पे लिखूं, और जिसकी किसी भी ईंट में मुफलिस का हो लहू,
2: क्या बात,
0: जिसकी किसी भी ईंट में मुफलिस का हो लहू, लाहौल मुझको ऐसी किसी तामीर पे लिखूं, लाहौल मुझे ऐसी किसी तामीर पे लिखूं, कलमा पढ़ूं न मैं किसी भी पीर पे लिखूं, जलते हुए जहान की मैं तस्वीर पे लिखूं।
3: और अभी तक बहुत खूबसूरत निजामत करने वाले हमारे नई माहिर साहब को मैं इन्हीं चार मिसरों से आवाज देता हूं कि मुझे कोई मतलब नहीं है किसी से, मुझे कोई मतलब
1: नहीं है किसी से,
3: मेरा वास्ता है तेरी हर खुशी से। मुझे कोई मतलब नहीं है किसी से, मेरा वास्ता है तेरी हर खुशी से, और मेरे हाथ को उसने जब से छुआ है, मेरे हाथ को उसने जब से छुआ है, मेरी नींद यारो उड़ी है तभी से। माहिर साहब,
1: ये गजल का मतलब आप सभी के बीच में रख रहा हूँ
3: जी, अता करें,
1: देखिएगा। हाँ खुशी बेशुमार भी होगी,

0: वक्त आएगा मुझ से मिलने को।
1: वाह,
0: जिंदगी बेकरार भी।
2: क्या कहने भाई, क्या कहने, क्या कहने।
0: जिंदगी बेकरार भी होगी, और दिल का चैनो करार भी होगी। दिल का चैनो करार भी होगी, जिंदगी खुश गवार भी होगी।
2: क्या बात है भाई, क्या बात है, वाह वाह।
0: जिंदगी खुश गवार भी होगी। ये शेर बतौर खास कि आज भटकी हुई है फिक्र मगर।
2: क्या बात है बाबा।
0: आज भटकी हुई है फिक्र मगर,

0: क्या बात है, क्या बात है भाई।
1: खत लेके वो हाथों में वो कुछ सोच रहा होगा।
2: बात को
1: सानी मतलब मुलाजा फरमाए
0: जी अता
1: कि
0: करिए।
1: खत लेके ही हाथों में

0: शेर मुलाजा फरमाए
1: जी
0: के होठों पे मसरत की कंदील जली होगी।
2: अच्छा प्रयोग साहब।
0: होठ

0: मुरझाया हुआ चेहरा,
1: आए है क्या कहने,
0: फूलों सा खिला हो
1: बाबा।

0: होगा।
1: बहुत खूबसूरत
0: ये शेर बतौर खास
1: जी अता
0: मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, आपको भी शायद पसंद आए
1: जी।
0: कि एक लम्हा की दूरी से,
1: एक लम्हा की दूरी से
0: बढ़ जाती थी बेताबी।
1: क्या बात।
0: एक लम्हा की दूरी से

0: मैं अच्छी तरह
1: अच्छा,
0: से
1: अच्छा,
0: माहिर
1: अच्छा। मैं अच्छी तरह माहिर उस शख्स से वाकिफ हूँ, खुद रूठ गया होगा,
0: खुद मान गया होगा। हाय हाय क्या बात है भाई माहिर साहब,
1: खुद रूठ गया होगा।

0: बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम चलते हैं अगले शायर की तरफ जो हमारे बीच में राहतगढ़ से आए हैं और खूबसूरत लबो लहजे के शायर हैं। मैं उन्हें दावत सुखन दे रहा हूँ कि आएँ और अपनी गज़लें अपने गीत हमको सुनाएं।
1: मैं शायर आबिद राहतगढ़ी आपकी खिदमत में फिर से एक बार हाजिर हूँ। एक मतला गज़ल का और चंद शेर हाजिर करता हूँ, मुलायजा फरमाए।
2: जी।
1: मैं चल रहा हूँ, रुका नहीं हूँ।
2: मैं चल रहा हूँ, रुका नहीं हूँ।

0: बात
1: बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप लोग। इसके बाद मैं एक गजल का मतला और हाजिर करता हूँ और चंद अशार आपकी खिदमत में हाजिर है।
2: स्वागत है भैया।
1: इस तरह वो ध्यान से निकला,
0: इस तरह वो ध्यान से निकला।
1: नहीं भाई
2: जी,
1: इस तरह वो ध्यान से निकला, तीर जैसे कमान से निकला।
0: क्या बात है।
1: और शेर देखें कि धुंधला ताबीर ख्वाब पढ़ने लगा, धुंधला ताबीर ख्वाब पढ़ने लगा, उसका चेहरा गुमान से निकला। उसका चेहरा गुमान से निकला। और शेर देखें, मार देंगे जमीन वाले तुझे,
0: मार देंगे जमीन वाले तुझे,
1: मार देंगे जमीन वाले तुझे, तू अगर आसमान से निकला, तू अगर आसमान से निकला। और शेर देखें कि टूटे दिल का बना तमाशा जब,
0: टूटे दिल का
1: बना तमाशा जब, दर्द मेरी जबान से निकला। टूटे दिल का बना तमाशा जब, दर्द मेरी जबान से निकला। और शेर देखें कि खौफ तारी रहा रकीबों पर, सर उठाकर मैं शान से निकला। सर उठाकर
0: क्या बात है,
1: मैं शान से निकला। और ये शेर देखें कि बाप की याद नसीहत आई, बाप की याद नसीहत आई, जब मैं अपने मकान से निकला। बाप की याद नसीहत आई, जब मैं अपने मकान से निकला। और मक्ता हाजिर करता हूँ कि हो गया जार जार दिल आबिद,
0: हो गया जार जार दिल आबिद,
1: दर्द दिल खैस्तान से निकला, दर्द दिल खैस्तान से निकला। बहुत बहुत शुक्रिया नवाजिश
2: करो। क्या बात है, बहुत अच्छी गजल तरन्नुम में और तहद में आपने बहुत अच्छे अशआर सुनाए। अब मैं जिस शायर को आवाज देने जा रहा हूँ इन चार मिसरों की रोशनी में, कि नजर में उसकी आना चाहता हूँ, नजर में उसकी आना चाहता हूँ, मगर कोई बहाना चाहता हूँ, नजर में उसकी आना चाहता हूँ, मगर कोई बहाना चाहता हूँ, हमारे दर में आ हायल हुई जो, हमारे दर में आ हायल हुई जो, वही दीवार ढाना चाहता हूँ, वही दीवार ढाना चाहता हूँ। और मेरी ख्वाहिश मेरा अरमा यही है, मेरी ख्वाहिश मेरा अरमा यही है, मैं तुमको याद आना चाहता हूँ, मैं तुमको याद आना चाहता हूँ। आइए मुकेश सोनी रहबा साहब
3: जी, बहुत बहुत शुक्रिया एक बार पुनः एक गज़ल के साथ। अर्ज करता हूँ कि एक प्यादे के मुकद्दर को आजमाते हुए, एक प्यादे के मुकद्दर को आजमाते हुए, मैंने राजा को हराया है मुस्कुराते हुए। एक प्यादे के मुकद्दर को आजमाते हुए, मैंने राजा को हराया है मुस्कुराते हुए। और ये शेर मेरे सुनने वालों को, आकाशवाणी के श्रोताओं के लिए, कि एक प्यादे के मुकद्दर को आजमाते हुए मैंने राजा को हराया है मुस्कुराते हुए, और इश्क की उम्र है तो कर ले इश्क पुस्तक से, इश्क की उम्र है तो कर ले इश्क पुस्तक से, वरना फिर उम्र गुजरती है चोट खाते हुए।
2: वाह वाह,
3: शुक्रिया। इश्क की उम्र है तो कर ले इश्क पुस्तक से, इश्क की उम्र है तो कर ले इश्क पुस्तक से, वरना फिर उम्र गुजरती है चोट खाते हुए। और ये शेर जहाँ तक मेरी आवाज जाए वहाँ सुनिएगा, कि अपने बच्चों से मैं नजरें मिला नहीं पाया, अपने बच्चों से मैं नजरें मिला नहीं पाया, रात को घर गया था जब मैं लड़खड़ाते हुए। जी जी शुक्रिया।
2: वाह वाह वाह वाह।
3: अपने बच्चों से मैं नजरें मिला नहीं पाया, रात को घर गया था जब मैं लड़खड़ाते हुए, और मेरा हक मुझको मिले इसलिए तेरे दर पर।
1: वाह।
3: मेरा हक मुझको मिले इसलिए तेरे दर पर, मैंने देखा है पिताजी को सर झुकाते हुए।
2: वाह वाह वाह।
3: जी शुक्रिया। मेरा हक मुझको मिले इसलिए तेरे दर पर, मैंने देखा है पिताजी को सर झुकाते हुए। और एक गजल और देखें कि बाबूजी के नक्शे कदम पे चलकर देख।
2: अच्छी गजल है भाई। वाह वाह वाह।
3: बाबूजी के नक्शे कदम पे चलकर देख, अपने ऐबों का सराज कुचल कर देख।
2: हाँ।
3: बाबू जी के नक्शे कदम पे चल कर देख,
2: अच्छा शेर है,
3: अपने ऐबों का सराज कुचल कर देख, जिम्मेदारी का एहसास हो जाएगा, जिम्मेदारी का एहसास हो जाएगा, सूरज के जैसे एक रोज निकल कर देख,
2: वाह वाह,
3: जिम्मेदारी का एहसास हो जाएगा, सूरज के जैसे एक रोज निकल कर देख, और दरवाजे तक खुशियां तो आने से रहीं, दरवाजे तक खुशियां तो आने से रहीं, चार दीवारी से तू आज निकल कर देख,
2: क्या बात है
3: जी, शुक्रिया, दरवाजे तक खुशियां तो आने से रहीं, चार दीवारी से तू आज निकल कर देख, और कोई मसीहा जग में अब मिलने से रहा, कोई मसीहा जग में अब मिलने से रहा, मेहनत से अपनी किस्मत को बदल कर देख, जी शुक्रिया, कोई मसीहा जग में अब मिलने से रहा, मेहनत से अपनी किस्मत को बदल कर देख, और हद से ज्यादा दुनिया तुझको चाहेगी पर, हद से ज्यादा दुनिया तुझको चाहेगी पर, फूलों के किरदार से कुछ दिन ढल कर देख,
2: वाह वाह वाह
3: शुक्रिया, हद से ज्यादा दुनिया तुझको चाहेगी पर, फूलों के किरदार से कुछ दिन ढल कर देख, और एक गजल के चंद अशआर और, के क्या कहें क्या मिला बरगद की छांव में आकर,
4: क्या बात है क्या बात है क्या बात है, बहुत अच्छे भाई,
3: क्या कहें क्या मिला बरगद की छांव में आकर, जिंदगी खिलने लगी फिर से गांव में आकर, जी शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, क्या कहें क्या मिला बरगद की छांव में आकर, जिंदगी खिलने लगी फिर से गांव में आकर, शेर देखिएगा कि दर्द सहता है यही सोच कर के हर एक बाप, दर्द सहता है यही सोच कर के हर एक बाप, कौन देखेगा मेरे छाले पांव में आकर,
2: वाह वाह वाह,
3: कौन देखेगा मेरे छाले पांव में आकर, और ये शेर आप सभी के लिए समर्पित करता हूं कि उम्र

0: जब कोई बैठता है मेरी छांव में आकर।
1: वाह वाह वाह
0: जी, शुक्रिया। जब को

0: भरपूर
1: अच्छा किया।
2: मैंने उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ा, था यकीन बैठेंगे श्री राम नाव में आकर। जी शुक्रिया शुक्रिया।
0: अच्छा है भाई, वाह।
2: मैंने उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ा, था यकीन बैठेंगे श्री राम नाव में आकर।
0: अच्छा है भाई, वाह वाह वाह।
2: जी बहुत बहुत शुक्रिया।
0: अभी तक आप

0: सुन रहे थे मुकेश सोनी रेबर साहेब को। अब मैं आवाज़ देने जा रहा हूँ आदरणीय क्रांति जबलपुरी साहेब को इन चार मिसरों से कि सदाकत का गर्वो परस्तार होता
1: हाँ,
0: तो इन आईनों का तरफदार होता, मैं राहों को उसकी गुलों से सजाता अगर उसको खारों से भी प्यार होता।
1: आए हाय हाय।
0: स्वागत है आपका, आइए क्रांति जबलपुरी जी।
2: अभी तक आप लोगों से शायरी और गजलों का आनंद ले रहे थे। मैं थोड़ा सा रस परिवर्तन करता हूँ और गीत की ओर आपको लेके चलता हूँ। और एक करुण गीत जिसमें उस वेदना का उल्लेख किया गया है कि लोग अपने गांव से शहर की ओर, शहर से बड़े शहर की ओर, बड़े शहर से महानगर की ओर और महानगर से देश बदलने तक की बात करते हैं। और अब तो यहाँ तक लोग सोच रहे हैं कि दुनिया बदल के मंगल पे जाने की जब सोच रहे हैं, तब जाकर मैं ये गीत लिखता हूँ कि हमेशा पलायन का जो परिणाम है वह सुखद नहीं होता, उस वेदना को मैं इसमें दर्शाना चाहता हूँ। लीजिए, हाजिर है। डूबी हैं अंखियां आंसुओं में, तकती हैं तुमको राहों में।
1: हाँ
2: एक पत्नी का दर्द देखें आप,
0: जी।
2: कि डूबी हैं अंखियां आंसुओं में, तकती हैं तुमको राहों में। अब लौटो मेरे प्राण प्रिय, ये जीवन है अंगारों में।
1: वाह।
2: डूबी हैं अंखियां आंसुओं में, तकती हैं तुमको राहों में। अब लौटो मेरे प्राण प्रिय, ये जीवन है अंगारों में। अब सांस देह से उखड़ रही, अब सांस देह से उखड़ रही, लगता है धड़कन बिछड़ रही। अब सांस देह से उखड़ रही, लगता है धड़कन बिछड़ रही। हर नफ्स यही बस सोच रही, दम निकले तेरी बाहों में। डूबी हैं अंखियां आंसुओं में,
0: हाँ, बहुत
2: तकती
0: अच्छी।
2: हैं तुमको राहों में।
1: वाह।
2: और तुम बिनी ये आंखें तरस गईं, अब घर की हालत बिगड़ गई। आटा भी नहीं, चावल भी नहीं, अब दूध बचा आंचल में नहीं।
1: हाँ।
2: आते अब भूख से अकड़ रही, रोटी बिन हालत बिगड़ रही। लगता है गोदी उजल रही, अब कोख हरी भी सिकुड़ रही। बच्चों के चेहरे उतर रहे, सब भूख से नन्हे बिलख रहे।
1: हाँ।
2: फट चुके हैं कपड़े दिखता तन, सब कांप रहे हैं जाड़ों में।
1: वाह
2: डूबी
1: वाह,
2: हैं अंखियां आंसुओं में, तकती हैं तुमको राहों में।
0: बहुत अच्छा।
2: और बंद देखें कि अब माल न देता है, ऊपर से भाषण देता
1: क्या
2: है,
1: बात।
2: कहता है पैसे ले आओ, फिर माल नगद में ले जाओ। जिस दूध से मुन्नी पलती थी, वह गाय हमारी जननी थी। कल गाय भूख में जी न सकी, चरती थी जो खलिहानों में।
1: वाह वाह,
2: डूबी हैं अंखियां आंसुओं में, तकती हैं तुमको राहों में। और ये भी बंद देखें कि वन के कंधों पर निर्भर हैं, वन के कंधों पर निर्भर हैं। अब पालनहारा रघुवर है, वन के कंधों पर निर्भर है। अब पालनहारा रघुवर है, जंगल से कुछ फल लाते हैं, वह बेच के खाना खाते हैं। जंगल से लकड़ी लाते हैं, पग में कांटे चुभ जाते हैं। अब आओ लौट के राम प्रिय, रोती है सीता सपनों में। डूबी हैं अंखियां आंसुओं में, तकती है तुमको राहों में। और ये बंद भी देखें कि बच्चे क्या पीड़ा सहते हैं, बच्चे क्या पीड़ा सहते हैं। हम हाल बताएं किस मुंह से, बस पापा पापा रटते हैं। अब राह तुम्हारी तकते हैं, दादा अम्मा ऐसे सहमे जैसे उबे हैं जीवन से। अब जीवन का विश्वास नहीं, रोते रहते हैं रातों में। डूबी हैं अंखियां आंसुओं में, तकती हैं तुमको राहों में।
1: क्या।
2: एक दिन अपनी छोटी बिटिया, एक दिन अपनी छोटी बिटिया, सपने में ऐसी बोर आई, पापा पापा रटते रटते खेतों तक पागल फिर आई।
1: आए हाय।
2: कल ही तो रो रो गुजरा है अपना त्योहार दशहरे का, भूख के साथ गुजारा हमने फिर रोटी के अभावों में।
1: आए हाय,
2: डूबी हैं अंखियां आंसुओं में, तकती है तुमको राहों
0: क्या
2: में।
0: मार्मिक
1: क्या,
0: गीत
1: वाह
0: है
1: वाह
0: यार
1: भाई,
0: भाई, वाह
1: अच्छा
0: वाह
1: है,
0: वाह
1: अच्छा
0: वाह।
1: है।
2: चार पंक्तियां देखें कि कैसे कैसे ये दर्द प्रभु निज जीवन में दे डाले हैं। गुर्बत के पाले हैं हम सब,
1: आए हाय।
2: दुर्भाग्य के पांव में छाले हैं। बच्चों की पढ़ाई छूट गई, किस्मत भी हमसे रूठ गई। सारे बच्चों के नाम कटे, सब निकल गए हैं खेतों में।
1: आहा,
2: डूबी हैं अंखियां आंसुओं में, तकती हैं तुमको राहों में। डूबी हैं अंखियां आंसुओं में,
1: बहुत खूब,
2: तकती हैं तुमको
1: बहुत
2: राहों में।
1: खूब, क्या
0: बात।
1: बहुत खूबसूरत गीत के बाद अब हम पुनः हमारे अगले शायर नईम माहिर साहब को इन्हीं चार मिसरों से आवाज़ देता हूँ कि ये खेत, ये खलियान, ये बेहतर मचान को।
3: वाह।

0: खेत ये खलियान ये बेहतर मचान को सिद्दत से घर बनाया है कच्चे मकान को।
1: अरे क्या बात है साहब, क्या
0: ये
1: बात?
0: खेत ये खलियान ये बेहतर मचान को सिद्दत से घर बनाया है कच्चे मकान को। हर शख्स पे भरोसा अच्छा नहीं जनाब, हर शख्स पे भरोसा अच्छा नहीं जनाब, खुद दांत काट लेते हैं अपनी जबान को।
2: वाह वाह,
0: नई माहिर साहब,
2: बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश सोनी साहब। एक किसी शायर का शेर याद आता है मुझे, क्रांति जबलपुरी साहब ने जो बेहद मार्मिक गीत पढ़ा कि ऐ मुफलिसी गरीब के बच्चे संभालना।
0: क्या क्या,
2: ऐ मुफलिसी
0: गरीब
2: के बच्चे संभालना, मुश्किल था माँ का रात में कंकर उबालना।
0: आए, हाए, हाए, हाए।
2: मुश्किल था माँ का रात में
0: कंकर उबालना।
2: आइए हाजरीन, एक गजल आप सबके लिए हाजिर खिदमत है। जिंदगी से निबाह करना है,
0: जिंदगी से निबाह करना है,

0: वाह
1: ऐसी खूह अख्तियार करना है जिससे अपनों का कुर्ब हासिल
0: अच्छा
1: हो,
0: है। हाँ क्या कहने,
2: क्या कहने भाई।
1: जिस

0: जिंदगी तू बता,
1: जिंदगी तू बता तेरी खातिर,
2: जिंदगी तू बता तेरी खातिर, कितना जीना है कितना मरना है,
1: क्या बात है क्या बात है क्या बात,
2: कितना जीना है कितना मरना है। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी आप इस खूबसूरत महफिल में सुन रहे थे हमारे साथ बड़े भाई मुकेश सोनी रहबर, आबिद राहतगढ़ी जी, बड़े भाई क्रांति जबलपुरी और मैं आपका भाई नई माहिर। आकाशवाणी के सभी श्रोताओं का एक बार फिर मैं तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं और यहां इस प्रोग्राम को
3: यह था आज का काव्य पाठ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी सागर का प्रसारण।
4: अब बढ़ेगा आपका व्यापार, आकाशवाणी सागर से करिए प्रचार, हर घर तक अपनी सेवा और सामान का करें प्रसार। आकाशवाणी सागर से विज्ञापन देने के लिए व्हाट्सएप करें 9770

0: 7832297 पर। नंबर एक बार फिर सुने 9770-43-22-97।
1: अरे काय भैया, ये सब मुंह लटकाए काय कहूं दिए थे?
2: अब का बताएं भज्जा, तुमके कोनो ये कहूं परेशानी होए तो बतावे, ये तो रामधई समस्याओं की लेन लगी है लेन।
1: अरे भैया, ये सब का होगा, कुछ तो बताओ।
2: अब तुम्हें का बताएं भज्जा, कबहू जो ढोर बीमार, कबहू वो ढोर बीमार, कहूं एक खोजा परेशानी, कहूं वो खोबा परेशानी, और ऊपर से खेती रो आ रही है सो अलग ही।
1: अरे अब रोबो धोबो छोड़ो, उठाओ मोबाइल, लगाओ हेलो किसान वाणी में। हेलो किसान वाणी में हर गुरुवार को दोपहर 1 बजे से फोन लगत है, ओ में आउट है आकाशवाणी में एक से एक चुनिंदा वैज्ञानिक और डॉक्टर सोई।
2: अच्छा,
1: मोबाइल पे फोन लगाओ 22-88-20 है, और दूसरा नंबर भी लिख लो 240-845। बड़े समझदार हो, इसमें कोड नंबर ही लगाने पड़े सागर को, और सागर को कोड है 07582। अब सागर आकाशवाणी को आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो, सागर आकाशवाणी को व्हाट्सएप नंबर भी लिख लो भैया, सागर आकाशवाणी।

0: 9-7।
1: एक बेर फिर से बता दे भज्जा।
0: भैया फिर से लिख लो, ये में कछु परेशानी नहीं। 9-7-7-0-4-3-2-2-9-7।
1: अच्छा तो पहले फोन की कोशिश कर है और ले लगो तो फिर बात साहब।
0: अरे
1: अच्छा जा बताओ भज्जा, ये सर रामधाई हमारी सब समस्याओं को निदान हो जाए।
0: अब तो रोबो धोबो हो गई पुरानी बातें। लगाओ हेलो किसान वाणी में फोन।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: आपके सवाल, आपके विचार, सुनिए सागर संवाद, जहां हर नागरिक बनता है अपने शहर की आवाज। आप भी बोलिए, क्योंकि आपकी बात ही बनेगी सागर की बात। सागर संवाद, अपनी बात आकाशवाणी के साथ। सुनिए सागर संवाद आकाशवाणी सागर से महीने के पहले और पांचवें शुक्रवार को रात्रि 8:30 बजे से।
5: जब हर सेकंड जरूरी हो, हम हैं तैयार। बंसल हॉस्पिटल सागर में 24/7 क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट, अत्याधुनिक आईसीयू, एडवांस वेंटिलेटर और लाइफ सपोर्ट इमरजेंसी रिस्पांस टीम। हर सांस की सुरक्षा हमारे साथ। संपर्क करें 07582472000।

0: एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग आप सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार तक। समय होता है सुबह 11 से 11:30 बजे तक।
1: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
2: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी सागर का प्रसारण FM 102.6 MHz पर। पेश है कार्यक्रम सदाबहार गीत।

मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की थी। आनंद बख्शी ने ये गीत लिखा था और इस गीत की धुन बनाई थी कल्याण जी आनंद जी ने। और अब अगला सदाबहार गाना है दर्द फिल्म से, आशा भोसले की आवाज़, नक्श लयालपुरी के बोल, धुन खय्याम की।

0: जब हर सेकंड जरूरी हो, हम हैं तैयार। बंसल हॉस्पिटल सागर में 24/7 क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट, अत्याधुनिक ICU, एडवांस वेंटिलेटर और लाइफ सपोर्ट इमरजेंसी रिस्पांस टीम। हर सांस की सुरक्षा हमारे साथ। संपर्क करें 07582472000।
1: और अब आइए सुनते हैं एक और सदाबहार गाना। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ है, फिल्म का नाम है देवर, आनंद बख्शी के बोल, और इस गीत की धुन बनाई है रोशन ने।

और कार्यक्रम के अंत में मुझे जीने दो इस फिल्म का गाना ये सुन लेते हैं। आशा भोसले की आवाज़ है, जयदेव ने इस गीत की धुन बनाई है और पारंपरिक बोल जिन्हें जयदेव ने सदाबहार गाने का रूप दिया है, तो आइए सुनते हैं।

0: उपेक्ष थारे ना ना ना उपेक्ष थारे न जाओ शाम पैया परु बीच धारे।
1: और इसी गीत के साथ कार्यक्रम सदाबहार गीत अब समाप्त हुआ। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के सागर केंद्र से एफएम 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 6:45 हुए हैं और अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम लोकरंग। लोकरंग में सबसे पहले ये लोक भजन आइए हम सुनते हैं चंद्रभूषण पाठक के स्वर में।

जब हर सेकंड जरूरी हो, हम हैं तैयार। बंसल हॉस्पिटल सागर में 24/7 क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट, अत्याधुनिक ICU, एडवांस वेंटिलेटर और लाइफ सपोर्ट इमरजेंसी रिस्पांस टीम। हर सांस की सुरक्षा हमारे साथ। संपर्क करें 07582472000।

0: एनआई स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: और अब लोक रंग में आइए सुनते हैं ये एक और लोक गीत सविता यादव की आवाज में।

0: हो गया इंतजाम।
1: किसका?
0: गुड्डी की फीस का।
1: दिखा। 20,000 का लोन तुरंत? पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही ले और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
2: आरबीआई कहता है,
3: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
4: जब हर सेकंड जरूरी हो, हम हैं तैयार। बंसल हॉस्पिटल सागर में 24/7 क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट, अत्याधुनिक आईसीयू, एडवांस वेंटिलेटर और लाइफ सपोर्ट इमरजेंसी रिस्पांस टीम। हर सांस की सुरक्षा हमारे साथ। संपर्क करें 07582472000।
2: और अब कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं मूलचंद विश्वकर्मा से ये लोकगीत।

मूलचंद विश्वकर्मा के गाए इसी लोक गीत के साथ कार्यक्रम लोक रंग अब समाप्त हुआ। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के सागर केंद्र से FM 102.6 मेगा हर्ट्ज पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकी बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। गृहमंत्री अमित शाह ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। श्री अमित शाह ने कहा कि घुसपैठ और अन्य कारणों से अस्वाभाविक जनसांख्यिकी बदलाव हो रहा है। गृहमंत्री ने कहा कि ये समिति अवैध प्रवासन और अन्य अस्वाभाविक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकी बदलावों का व्यापक मूल्यांकन करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल लाल किले से स्वतंत्रता दिवस संबोधन में जनसांख्यिकी बदलाव पर उच्च स्तरीय समिति के गठन की घोषणा की थी। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार अगले 6 महीनों के भीतर ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए ड्रोन रोधी प्रणाली लगाने की प्रक्रिया में है। राजस्थान के बीकानेर जिले में सांचू सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों को संबोधित करते हुए गृहमंत्री ने कहा कि जहां सीमा पार से आने वाले खतरे महत्वपूर्ण बने हुए हैं, वहीं देश के भीतर ऐसे खतरों में मदद करने वाले आंतरिक तत्वों पर भी उतना ही ध्यान दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसमें शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की अध्यक्षता में आज क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इस बैठक में हिस्सा लिया। सदस्य देशों ने वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग को और बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा तथा पारदर्शिता बढ़ाने के लिए समुद्री निगरानी को मजबूत करने और गतिविधियों की एक साझा तस्वीर तैयार करने की पहल पर सहमति जताई। डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि क्वाड बंदरगाह बुनियादी ढांचे पर एक विशेषज्ञ पैनल बनाने पर विचार करेगा तथा फिजी में एक प्रायोगिक आधार पर बंदरगाह परियोजना और समुद्र के नीचे बिछी केबलों पर भी सहयोग करेगा। क्वाड देशों ने भारत अमरीका महत्वपूर्ण खनिजों की रूपरेखा पर भी हस्ताक्षर किए। बाद में विदेश मंत्रालय में अपर सचिव के नागराज नायडू ने संवाददाताओं को बताया कि बैठक में स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत के प्रति क्वाड की प्रतिबद्धता को दोहराया गया है। उन्होंने बताया कि क्वाड देशों ने पहलगाम आतंकी हमले की भी निंदा की है।
1: आतंकवाद से सख्ती से निपटना क्वाड सहयोग का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बना हुआ है। विदेश मंत्रियों ने सीमा पार आतंकवाद और आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। संयुक्त बयान में विशेष रूप से पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की गई और आतंकवादी गुटों, उनके वित्त पोषण और प्रायोजकों के खिलाफ निर्णायक अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया गया।
0: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE की पेमेंट गेटवे प्रणाली में सुधार के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के 4 प्रमुख बैंकों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की है। बैठक के दौरान श्री प्रधान ने विद्यार्थियों को असुविधा से बचाने के लिए निर्बाध और सुरक्षित भुगतान प्रणाली की आवश्यकता पर जोर दिया। केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि वर्ष 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी के भारत के दावे को ध्यान में रखते हुए योगासन को भविष्य के ओलंपिक खेलों की सूची में शामिल करने के प्रयास किए जाएंगे। डॉक्टर मांडविया ने आज नई दिल्ली में कहा कि अहमदाबाद में 4 से 8 जून तक पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी। डॉक्टर मांडविया ने कहा कि योग की उत्पत्ति हजारों वर्ष पहले भारत में हुई थी और अब इसे विश्व स्तर पर स्वीकार किया जा रहा है। IPL क्रिकेट के पहले क्वालिफायर

0: मुकाबले में आज गुजरात टाइटंस ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। मैच में जीत दर्ज करने वाली टीम को सीधे फाइनल में प्रवेश मिलेगा, जबकि हारने वाली टीम को एलिमिनेटर के विजेता से दूसरा क्वालिफायर खेलना होगा। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है। शाम के 7:05 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। कार्यक्रम विवरण में आपका स्वागत है। सुनिए हमारे केंद्र से प्रसारित और अनुप्रसारित कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी। पहले कल के कार्यक्रम। कल प्रातः 6:05 पर सुनिएगा भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना। कार्यक्रम विवरण सुबह 6:25 पर होगा। प्रातः 6:30 पर सुनिएगा श्री रामचरितमानस का संगीतमय पाठ। स्वर होंगे अनुराधा पौंडवाल और सुरेश वाडकर के। 6:40 यह वक्त होगा कार्यक्रम भूले बिसरे गीत सुनने का। 6:55 पर सवेरे संस्कृत में समाचार दिल्ली से रिले करेंगे। दैनिक कार्यक्रम होगा सुबह सुबह प्रातः 7:00। 7:05 पर सुनिएगा कृषि संकेत। 7:10 पर प्रादेशिक समाचार भोपाल से रिले करेंगे। मन चाहे गीत होंगे सुबह 7:20 पर और 7:45 पर आनंद लीजिएगा कार्यक्रम संगीत सरिता का। समाचार प्रभात रिले करेंगे दिल्ली से सुबह 8:00। 8:15 पर लोक संगीत होगा। 8:45 पर सुनिएगा चित्रपट संगीत। 9:00 विविध भारती के कार्यक्रम मुंबई से रिले करेंगे। 10:00 भोपाल से रिले करेंगे जिले की चिट्ठी। प्रायोजित कार्यक्रम होगा स्वस्थ तन स्वस्थ जीवन। समय होगा प्रातः 10:05। 10:10 पर सुनिएगा फोन करें गीत सुने का पुनः प्रसारण। 11:00 होगा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। 11:30 से पुनः विविध भारती के कार्यक्रम मुंबई से रिले किए जाएंगे। 2:00 आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण भोपाल से होगा। 2:10 पर सुनिएगा प्रादेशिक समाचार भोपाल से। दिल्ली से होंगे दोपहर समाचार दोपहर 2:15 पर। और एक बार फिर दिन में 2:30 से विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम मुंबई से रिले किए जाएंगे। शाम 5:00 सुनिएगा इस घंटे की सुर्खियां भोपाल से। भोपाल से ही युववाणी हम आपको सुनवाएंगे शाम 5:02 पर। शाम 5:30 पर सुनिएगा संगीत सरिता। 6:00 विविध भारती का प्रसारण मुंबई से। 6:30 पर शाम सदाबहार गीत आप सुन सकेंगे। 6:45 पर सुने जा सकेंगे कुछ बुंदेली लोक गीत कार्यक्रम लोक रंग में। शाम 7:00 हिंदी समाचार दिल्ली से। 7:05 पर कार्यक्रम विवरण होगा। 7:10 पर सुनिएगा भोपाल से आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण, माफ कीजिएगा प्रादेशिक समाचार। 7:20 पर शाम को लोक रंग होगा और 7:30 पर ग्राम सभा भोपाल से रिले करेंगे। रात्रि 8:00 चित्रपट संगीत। 8:20 पर संगीत सरिता। 9:00 मन चाहे गीत और 9:30 से विविध भारती सेवा के कार्यक्रम मुंबई से रिले किए जाएंगे। ये थे हमारे कल के कार्यक्रम।
2: जब हर सेकंड जरूरी हो हम हैं तैयार। बंसल हॉस्पिटल सागर में 24/7 क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट, अत्याधुनिक आईसीयू, एडवांस वेंटिलेटर और लाइफ सपोर्ट इमरजेंसी रिस्पांस टीम। हर सांस की सुरक्षा हमारे साथ। संपर्क करें 07582472000।
1: और अब आज के शेष कार्यक्रम सुनिए। अब से कुछ ही देर बाद यानी 7:10 पर प्रादेशिक समाचार भोपाल से रिले करेंगे। 7:20 पर सुनिएगा खेती गृहस्थी का कार्यक्रम किसान वाणी। रात्रि 8:00 चित्रपट संगीत। 8:15 पर संगीत सरिता का आनंद लीजिएगा। रात्रि 8:30 पर सुनिएगा स्वरचित काव्य पाठ, जो कि गंगा दशहरा पर आधारित केंद्रित होगा। रात्रि 8:45 पर समाचार संध्या दिल्ली से रिले करेंगे। 9:00 मन चाहे गीत और 9:30 से विविध भारती के कार्यक्रम मुंबई से। इसी के साथ कार्यक्रम विवरण अब समाप्त हुआ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी सागर का प्रसारण। शाम के 7:10 होने को हैं। प्रादेशिक समाचार भोपाल से रिले करेंगे बस कुछ ही देर में।

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 वर्ष पूरे, 26 मई 2014 को 15वें प्रधानमंत्री के रूप में ली थी शपथ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन में मां शिप्रा को अर्पित की 351 फीट लंबी चुनरी। त्रिशा शर्मा मौत के मामले में सीबीआई का एक्शन, पति समर्थ सिंह और सास के खिलाफ दहेज मृत्यु की धाराओं में एफआईआर दर्ज। और पन्ना में निर्माणाधीन कुएं की मिट्टी धसकने से 5 मजदूरों की मौत। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को आज 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। 26 मई 2014 को उन्होंने देश के 15वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। इस मौके पर प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रधानमंत्री को बधाई देते हुए कहा कि बीते 12 वर्षों में भारत ने आत्मनिर्भरता, डिजिटल क्रांति, सांस्कृतिक गौरव और वैश्विक नेतृत्व के नए आयाम स्थापित किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्ण का एक लेख सोशल मीडिया पर शेयर किया है। इस लेख में उपराष्ट्रपति ने सरकार की उन योजनाओं का जिक्र किया जिनसे महिलाओं, युवाओं और किसानों को सीधा फायदा मिला है। श्री मोदी ने कहा कि देश अभी अमृतकाल में आगे बढ़ रहा है और यह लेख इसी सफर को दर्शाता है। उपराष्ट्रपति ने स्वामी विवेकानंद, तिरुवल्लुवर और सुब्रमण्यम भारती से प्रेरणा लेने की बात कही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 3 दिवसीय दौरे पर सिक्किम पहुंची, जहां राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर और मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने उनका स्वागत किया। पहले दिन उन्होंने महिलाओं के लिए खास गुलाबी बसों का उद्घाटन किया। कल वे नाथुला दर्रे की यात्रा करेंगी और सिक्किम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। दौरे के आखिरी दिन राष्ट्रपति सिक्किम पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित करेंगी। इसके साथ ही सिक्किम यह प्रतिष्ठित सम्मान पाने वाला देश का 15वां राज्य बन जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज उज्जैन में 2 दिवसीय क्षिप्रा तीर्थ परिक्रमा का समापन किया। उन्होंने रामघाट पर मां शिप्रा को 351 फीट लंबी चुनरी अर्पित कर परिक्रमा का विधिवत समापन किया।
1: जल संरक्षण को लेकर हमारे सरकार लगातार काम कर रही है और ये तीसरा साल, इस साल गुड़ी पड़वा से लगाकर 30 जून तक जो हमने काम चालू किया, लगभग 10,000 करोड़ से ज्यादा के लागत के 2 लाख से ज्यादा अलग अलग प्रकार के काम, जिसमें कुएं, बावड़ी, नदी, नहर, तालाब, पोखर, झरने, नदी के उद्गम, हर स्थान पर जल संरक्षण को लेकर के सरकार काम कर रही। सभी राज्यों में सबसे बेहतर प्रदर्शन अगर कहीं है तो मध्य प्रदेश में है।
0: ये परिक्रमा कल गंगा दशहरा के अवसर पर मुख्यमंत्री के पुत्र वैभव यादव द्वारा पूजन के साथ शुरू हुई थी। ये परिक्रमा मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने 23 वर्ष पहले मां शिप्रा के संरक्षण के उद्देश्य से शुरू की थी। पन्ना जिले के अजयगढ़ ब्लॉक के बिहरपुरवा गांव में मनरेगा के तहत बन रहे सिंचाई कुएं की मिट्टी धसक गई। इसमें दबने से 5 मजदूरों की मौत हो गई है। कलेक्टर उषा परमार और एसपी निवेदिता नायडू ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया। मृतकों के परिजनों को मुख्यमंत्री सहायता कोष से 4-4 लाख रुपए दिए जाएंगे। सांसद वीडी शर्मा और विधायक ब्रजेंद्र प्रताप सिंह ने पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज राजस्थान के बीकानेर के पास सांचू

0: चौकी पर प्रहरी सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में बीएसएफ की भूमिका की तारीफ करते हुए कहा कि बल ने सीमा की रक्षा के साथ साथ सीमावर्ती लोगों का हौसला भी बुलंद रखा। श्री शाह ने बीएसएफ, सेना, प्रशासन और नागरिकों को मिलाकर चार स्तरीय ग्रिड बनाने पर जोर दिया ताकि सीमा को पूरी तरह से अभेद्य बनाया जा सके।
1: बीएसएफ के जवानों का ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो प्रदर्शन रहा उसकी भी भूरी प्रशंसा करना चाहते। हर जगह पे जहां मोर्चा संभाला था बीएसएफ ने, वो न केवल डटकर रहे सीमांत जिलों के नागरिकों का हौसला बनाए रखने में भी बीएसएफ ने बहुत बड़ा योगदान किया।
0: प्रदेश के उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने शराब दुकानों पर सख्ती के आदेश दिए हैं। उन्होंने सभी जिलों के कलेक्टरों को आबकारी नियमों का पालन कड़ाई से कराने के निर्देश दिए हैं। अब प्रदेश भर में अवैध अहाते, देर रात तक शराब बिक्री और ओवर रेटिंग जैसी शिकायतों पर विशेष अभियान चलेगा, जिसके तहत पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त टीमें रात को गश्त करेंगी और नियम तोड़ने वाले ठेकेदारों का लाइसेंस तक रद्द हो सकता है। इसके साथ ही हर दुकान पर शराब के दाम दिखाना और क्यूआर कोड लगाना भी अब अनिवार्य कर दिया गया है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की लिखी पुस्तक अपनापन, नरेंद्र मोदी संग मेरे अनुभव का आज नई दिल्ली में विमोचन हुआ। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा ने इस किताब को लोकार्पित किया। इस मौके पर प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव समेत कई केंद्रीय मंत्री मौजूद रहे। अभिनेत्री ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत के मामले में सीबीआई ने भोपाल पहुंचते ही कार्रवाई शुरू कर दी है। एजेंसी ने मृतका के पति समर सिंह और सास रिटायर्ड जज गिरवाला सिंह के खिलाफ दहेज मृत्यु की धाराओं में एफआईआर दर्ज की है। कल रात टीम ने दोनों आरोपियों से ढाई घंटे तक पूछताछ की और घटनास्थल का मुआयना भी किया। जबलपुर के बरगी डैम में 30 अप्रैल को हुए क्रूज हादसे की न्यायिक जांच आज से शुरू हो गई है। इस हादसे में 13 पर्यटकों की जान गई थी और 28 लोगों को बचाया गया था। रिटायर्ड जज जस्टिस संजय द्विवेदी की अध्यक्षता में हुई सुनवाई में सबसे बड़ा सवाल ये उठा कि जब क्रूज को पहले ही नष्ट कर दिया गया है तो उसकी तकनीक जांच अब कैसे होगी। यह भी सामने आया कि क्रूज में एनजीटी के नियमों के खिलाफ कमजोर इंजन लगा था और संचालकों के पास पर्यावरणीय अनुमति भी नहीं थी। आयोग ने सभी जरूरी दस्तावेज पेश करने के निर्देश दिए हैं। देवास जिले के टोंक खुर्द में 14 मई को पटाखा फैक्ट्री में भीषण विस्फोट हुआ था। इस हादसे की न्यायिक जांच के लिए भी सरकार ने हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस सुभाष काकड़े की अध्यक्षता में जांच आयोग बनाया है। आयोग विस्फोट के कारण, लापरवाही और जिम्मेदारी तय करेगा। सुरक्षा नियमों के उल्लंघन और राहत बचाव की प्रभावशीलता की भी जांच होगी। एक महीने के भीतर रिपोर्ट सरकार को सौंपनी होगी। प्रदेश सरकार ने नागरिकों के लिए एमपी लॉकर ऐप लॉन्च किया है। यह ऐप सभी जरूरी सरकारी दस्तावेज एक जगह डिजिटल रूप में सुरक्षित रखने की सुविधा देती है। इस ऐप पर विवाह प्रमाण पत्र, ट्रेड लाइसेंस, संपत्ति कर रसीद समेत 22 से ज्यादा सेवाएं उपलब्ध हैं। खास बात यह है कि एआई की मदद से यह एप्लीकेशन खुद ब खुद दस्तावेजों को पहचान लेता है और किसी भी लाइसेंस की मियाद खत्म होने से पहले ही अलर्ट भी भेजता है। भोपाल में दाऊदी बोहरा समाज ने आज बकरीद का त्यौहार पूरे जोश और अकीदत के साथ मनाया। सुबह से ही अलीगंज हैदरी मस्जिद समेत शहर की तमाम बोहरा मस्जिदों में नमाजियों की भीड़ उमड़ पड़ी। सफेद पारंपरिक लिबास में सजे समाज के लोगों ने विशेष नमाज अदा कर देश में अमन और भाईचारे की दुआ मांगी। अब बात करते हैं मौसम की। नौतपा के दूसरे दिन प्रदेश में गर्मी का कहर जारी रहा। मौसम विभाग ने निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना और सतना में तीव्र लू का रेड अलर्ट जारी किया है। खजुराहो और नौगांव में पारा लगातार 45 डिग्री के पार बना हुआ है। भोपाल, ग्वालियर समेत 45 जिले हीट वेव की चपेट में है। अच्छी खबर यह है कि 28 मई को प्री मानसून की दस्तक के संकेत मिले हैं और 14 जिलों में बारिश का अलर्ट है। अब एक विशेष सूचना। आज 26 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 साल पूरे हो गए हैं। इन 12 वर्षों का लेखा जोखा और देश की बदलती तस्वीर पर वरिष्ठ पत्रकार मृगेंद्र सिंह और सुरेश शर्मा से खास बातचीत सुनिए आज रात 10 बजे सिर्फ आकाशवाणी भोपाल पर। अब कुछ समाचार संक्षेप में। गंगा दशहरा के अवसर पर नर्मदापुरम जिले के विवेकानंद घाट पर परिवहन और स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने श्रमदान किया और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। मंडला में आज पुलिस महानिरीक्षक की अध्यक्षता में अपराध समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। अशोकनगर शहरी परियोजना के सेक्टर 3 स्थित आंगनबाड़ी केंद्र पर ईसीसीई दिवस का सफल आयोजन किया गया। खंडवा जिले में यातायात पुलिस के द्वारा परिवहन बसों की विशेष चेकिंग अभियान के दौरान 138 वाहनों की जांच की गई और धार में 1 जून को रोजगार स्वरोजगार एवं अप्रेंटिसशिप मेले का आयोजन किया जा रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्ष पूरे। 26 मई 2014 को 15वें प्रधानमंत्री के रूप में ली थी शपथ। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उज्जैन में मां क्षिप्रा को अर्पित की 351 फीट लंबी चुनरी। तुषा शर्मा मौत मामले में सीबीआई का एक्शन। पति समर्थ सिंह और सास के खिलाफ दहेज मृत्यु की धाराओं में एफआईआर दर्ज और पंदा में निर्माणाधीन

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 7:20 हो चुके हैं। प्रस्तुत है खेती गृहस्थी का कार्यक्रम किसान वाणी।

0: कार्यक्रम किसान वाणी सुन रहे हमारे सभी किसान भैया बहनों को बहुत ही बहुत स्वागत है। आज फिर का आपके संगे का है हम सुनील राय और
1: हम हैं रज्जू भैया।
0: दो जनों की दो हाथ जोड़े की सभी को
1: राम राम। और सुनील भैया आपको भी राम राम पहुंच जाए।
0: राम राम रज्जू भैया आपको भी राम राम।
1: देखो भैया गर्मी खूब पड़ रही
0: है। ठीक कह रहे
1: उन्नो तपा लगी
0: हो दूसरा दिन आज।
1: तो आज अपन किसान वाणी लेके आ गए हैं। नौतपा की भी अपन चर्चा कर रहे हैं, गर्मी की भी चर्चा कर रहे हैं और काका अपन लेके आए हैं जा अपने किसान भैया रहो बता दे मैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल रज्जू भैया जैसे कि दिन दिवस की अपन चर्चा करते हैं तो आज अपन चर्चा कर रहे हैं 26 मई का है चंपक रमन पिल्ले की पुण्यतिथि का है आज। लू से बचाव पे तो आपने बता ही दिया कि अपन चर्चा कर रहे हैं और समसामायिक खेती पे भी अपन चर्चा कर रहे हैं कि किसान भैया का व्यवस्थाएं कर सकते हैं आगे की फसल के लाने। और देखियो बहुत ही उम्दा एक भेंट वार्ता है मुनगा की, एक हम मोरिंगा भी कहते हैं कि उन्नत खेती आरडी चौबे साहब से चर्चा करी है आपने, बहुत बढ़िया भेंट वार्ता है और असल में कहा है कि मुनगा के कैसे का फायदे हैं जा सब अपन सुन है।
1: बिल्कुल भैया।
0: और जैसो के रज्जू भज्जा अपन मनोरंजन की बातचीत करें और लोकगीतों के माध्यम से अपन मनोरंजन भी करवाते हैं तो बेबी कर्म है। और रज्जू भैया देखियो
1: मंडी के भाव और मौसम की जानकारी भी लेते हैं।
0: बताते ही हैं, बिल्कुल बताते हैं।
1: तो भैया चर्चा को आरंभ अपन कर रहे हैं महान क्रांतिकारी चंपक रमन पिल्लई की पुण्यतिथि से।
0: बिल्कुल रज्जू भैया देखियो इनको जन्म तो 15 सितंबर 1891 को भाव तो बे वर्ष 1907 में पहली दार है। जय हिंद को अमर नारा देवी बारे राष्ट्रीय जय घोष की मूल जनक हती। जी विदेशी धरती पे आजादी की अलख जगाए वाले बर्लिन कमेटी के सक्रिय संस्थापक और प्रखर राष्ट्रीयवादी नेता रहे। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश साम्राज्य को हिलाए वाले ऐतिहासिक एड एमडेन युद्धपोत अभियान के मुख्य रणनीतिकार थे।
1: बिल्कुल भैया। और राजा महेंद्र प्रताप की अगुवाई में वर्ष 1915 में अफगानिस्तान काबुल में बनी भारत की पहली अस्थायी निर्वासित सरकार के विदेश मंत्री भी ये रहे।
0: बिल्कुल।
1: और सन 1934 में 26 मई को उनको स्वर्गवास हो गया। तो ऐसे महान क्रांतिकारी चंपक रमन पिल्लई जी की पुण्यतिथि पे उनको अपन शत शत नमन कर रहे हैं।
0: बिल्कुल नमन करते हैं। और रज्जू भैया देखियो कि नौतपा चल रहा है, वो गर्मी बहुत ही ज्यादा पड़ रही है।
1: बिल्कुल भैया देखो नौतपा के बारे में एक बात कही जात है,
0: सुना
1: भैया, नौतपा अगर जरूरी भी है गर्मी पर वो खेती किसानी के लिहाज से पानी बरस भी से भी एक जोड़ो जात है कि अगर भैया नौतपा अच्छे बिना चुचाए अगर निकल गए तो बारिश भी अच्छी होते भैया और अपनी खेती भी अच्छी होती।
0: बिल्कुल सही है कह रहे का ऐसे के जो भी अपने खेत की माटी में लारवा पीपा अंडा रहते हैं जिनसे नुकसान होते बाद में कीट व्याधि होते हैं फसलों में वे नहीं होते।
1: बिल्कुल भैया एक बारे में एक कहनात कही जात है।
0: सुना सुना भैया
1: कि दो मूसा दो कातरा दो तीड़ी दो ताप और दो की बाजी जल हरे दो बिसवर दो बाय।
0: हमारे बिल्कुल समझ में नहीं आई भज्जा।
1: देखो भैया हम समझा दे रहे हैं,
0: समझाओ समझाओ।
1: दो मूसा यानी के नौतपा के पहले दो दिना लू और भीषण गर्मी ना पड़े तो चौकरों की संख्या बढ़ जात भैया। और चौकरों को तो जानते ही हो भैया अपने खेती किसानी को खूब नुकसान पहुंचाओ।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही है कही।
1: अब दो कातरा की भी बात है में तो एक बाद के दो दिन अगर गर्मी ना पड़े तो कातरा जो फसल को नष्ट करवे वाला जो कीड़ा होता है वो नष्ट नहीं होता है भैया
0: जो फसल को काटा
1: था। दो तीड़ी की भी बात करी जा रहे भैया अगर पांचवें और छठे दिन गर्मी ना पड़े तो टिड्डी और उके अंडा नष्ट नहीं होता है ऐसी मान्यता है तो बेबी खेती को नुकसान पहुंचाऊ।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: और दो ताप की बात भी हो रही है इसमें अगर सातवें और आठवें दिना तेज गर्मी ना पड़े तो फसलों को बीमारी लगावे बारे हानिकारक कीटाणु नष्ट नहीं होता है तो भैया गर्मी पड़े वो बहुत जरूरी है। और दो बिसवर दो बाय अगर नौवें दिन तेज गर्मी ना होए तो सांप बिच्छू जैसे विषैले जीव बढ़ जाते हैं तो ऐसी मान्यता है भैया नौ तपों के बारे में, जहाँ अपन किसान भैयारों को बता रहे हैं कि खेती के हिसाब से नौ तपा बहुत लाभकारी है।
0: बहुत महत्वपूर्ण कहानी। और रज्जू भाई जा बात बताओ कि अपने बुजुर्ग केनात किए गए और वैज्ञानिक ऊखों अब अनुसंधान के माध्यम से साबित कर पाते हैं, मनो अपने बुजुर्ग जी सबरी बातें पहले ये समझा गए और कितनों मायनों रखते हैं नौ तपा किसानी के हिसाब से।
1: बिल्कुल भैया, मनो भैया नो तपा तो पर रहे सु पर रहे
0: हो
1: मनो, अब गर्मी से भैया लू से बचाव भी अपन को जरूरी है।
0: अरे जा तो बहुत अच्छी बात है कर
1: तो दे। लू से बचाव के जो उपाय हैं वे अपन को अपनाने हैं। कहूं भी अगर अपन बाहर जा रहे हैं कामकाज से, कामकाज तो भैया खत्म होते ही नहीं,
0: खत्म नहीं है,
1: तो कहूं भी अगर जा रहे हैं तो अपन तो 10 से लेके शाम के 5 बजे तक बाहर ना निकलें। जो भी कामकाज हो भैया 10 बजे के पहले या संजा बिरिया निपटाएं।
0: बिल्कुल सही बात है राखी, आपने कम से कम नौ तपा लगे हैं और ऐसी भीषण गर्मी पड़ रही है और अगर अपन को काम करने ही है रज्जू भैया तो अपन को सवेरे 4 बजे उठ के अपने खेती किसानी के काम 10-11 तक अपन को निपटा देने।
1: ठंडे ठंडे
0: ठंडे अगर देखियो, अगर बखन्नी कर रहे, खरार फिर रहे, प्लाऊ कर रहे, हम कह रहे हैं कि ट्रैक्टर भी इतनों गर्म हो जाते कि पानी डर डर परेशान है, 10 बजे तक भी ट्रैक्टर काम करने में दिक्कत जाते हैं।
1: बिल्कुल भैया,
0: मैंने बात जय कहा ही कि अपन को सवेरे जल्दी काम करने कहो और संजा को देरी से काम करने कहो।
1: मनो भैया कहूँ अगर मजबूरी में बाहर जाने पड़ जाए तो अच्छो हुई है भैया कि अपन अच्छे सूती कपड़ा पहने और सिर और चेहरा को तौलिया या गमछा बांध के अपन निकले, जिससे गर्मी को प्रभाव कम रहे।
0: बिल्कुल सही किया।
1: इसके अलावा भैया अच्छो पानी पी के निकले अपन, है ना, पानी पर्याप्त पिए, इससे भैया जो डिहाइड्रेशन की समस्या हो जाते है बाना हो पे
0: पानी की कमी हो जाते है बिल्कुल हुई। और एक बात और कही जाते डॉक्टरों के द्वारा के अगर चार घंटा के भीतर अपन को बाथरूम में पेशाब नहीं आ रही है तो अपन दिक्कत में कहा है, मतलब जो कहा कि नमक और शक्कर को घोल बना के भी बॉटल में धल ले
1: रहे।
0: और अगर हम कह रहे हैं कि वो अपन ठंडो नहीं कर पा रहा तो कौन कौन ही पी ले, अगर बिद गए हैं सु मनो धारो जरूर रहे।
1: और सुनील भैया देखो, प्रकृति गर्मी दे रही है तो गर्मी के संग रसीले फल सुई
0: दे। बहुत बढ़िया बात है,
1: फलों को राजा आम आ रहा हो अबे,
0: तरबूज आ रहा, चिमरी आ रही, ककड़ी आ रही,
1: तो इनको भैया खाओ, खूब सेवन करो अच्छो। और आम को पनो तो भैया बात ही अलग है, भूख बढ़ावे वार
0: और इसे अपन को लाने शरीर को सहन करने की क्षमता दे रहा।
1: तो ये सब भैया बातें अपन को छोटी छोटी बातें हैं लेकिन ध्यान रखने हैं और एक हिसाब से भैया अपन लू से अपनों बचाव कर सकते हैं, अपने परिवार को बचाव कर सकते हैं और अपने पशुओं को भी बचाव अपन लू से करें, उनको ठंडी जगह पे अपन बांधें और उनके लाने जहाँ तक हो सके अच्छो ठंडो पानी देवें और कूलर की व्यवस्था हो तो कूलर कर देवें भैया, गर्म हवाओं से उनको बचाएं और जो हरो चारो हो वो भी अपन दे सकते।
0: बिल्कुल बिल्कुल, कुल मिला के 10 के पहले उनको भी भीतरे कर लेने का है और संजा को हम कह रहे हैं अच्छे खुलारे में बांधे जी में रात भर में उनको भी अच्छो आराम और ठंडक मिल जाए। देखो रज्जू भैया चर्चा अपनी लगी रहे हैं।

0: ने अपन संदेश
1: बिल्कुल बिल्कुल भैया।
2: जब हर सेकंड जरूरी हो हम हैं तैयार। बंसल हॉस्पिटल सागर में 24/7 क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट, अत्याधुनिक ICU, एडवांस वेंटिलेटर और लाइफ सपोर्ट इमरजेंसी रिस्पांस टीम। हर सांस की सुरक्षा हमारे साथ। संपर्क करें 07582472000।
3: साथियों नमस्कार। सागर जिले की धसान नदी पर निर्मित बंडा बृहद सिंचाई परियोजना उल्धन बांध के अंतर्गत लगभग 80,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी और 400 गांव लाभान्वित होंगे। डूब क्षेत्र में आ रहे ग्राम जैसे सलैया खुर्द, उल्धन, पिपरिया इल्लाई, बहरौल और कुल आदि ग्राम वासियों से निवेदन है कि डूब क्षेत्र को शीघ्र खाली कर निर्धारित पुनर्वास कॉलोनी पनारी तहसील बंडा एवं पिथौली तहसील बांदरी में शीघ्र विस्थापन सुनिश्चित करें। ध्यान रहे समय सीमा 30 मई 2026 है।
4: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
5: हर

0: सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए,
1: कोई डर नहीं।
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जनसेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
6: रज्जू भैया, किसान वाणी की ए भाव में किसान वाणी के ए भाग में हमारे सभी किसान भैया बहन को बहुत ही बहुत स्वागत है। और आपकी निगाहें जा कह रही हैं।
7: बिल्कुल भैया, जा बताओ। रसगुल्ला पसंद है तुम्हें?
6: हाँ।
7: तो कटंगी के रसगुल्ला ले आए।
6: अरे तो बिल्कुल सुन ही लेते भैया, विष्णु कटेरिया जी।
7: बिल्कुल भैया, सुन ले।

0: रज्जू भैया बहुत बढ़िया लोगी सुनवा दो आपने।
1: बिल्कुल भैया, बिल्कुल रसगुल्लों से तो मुंह में पानी आ गया।
0: नहीं मतलब हम जा कह रहे हैं कि रसगुल्ला में जो स्वाद है और मीठा है वो तो बहुत ही बढ़िया। मोनो हम जा बता रहे हैं कि कछु रसगुल्ला करिया हुआ थे जो हरीर और भीतर निकला था लाल तरबूज जो भी बहुत मीठे रहते।
1: बिल्कुल भैया, देखो फलों में भी प्रकृति ने रस डालो है, उनको भी रसगुल्ला बना के भेजो है अपन को।
0: हाँ तो अबे जो ही कहा ना रसगुल्ला गर्मी को, बिल्कुल गर्मी भाई को, जो बात समझ वाली बात है। अच्छा एक बात और कह रहे रज्जू भैया हम आपसे कि प्रकृति ऐसी कहानी कि जोन रित आ जाए वो हिसाब से अपन को सब्जी भी देते फल भी देते और वो हिसाब से शरीर को स्वस्थ रखने को प्रयास भी करत प्रकृति।
1: बिल्कुल भैया बिल्कुल।
0: देखियो बातचीतें तो हो गई, अब बहुत उम्दा सी जोन भेंट वार्ता आपने करी है मुनगा और मोरिंगा उन्नत खेती। आरडी चौबे साहब जो कि उद्यानिकी विशेषज्ञ हैं इनसे करी अपने सुन ले जाइए।
1: बिल्कुल भैया। किसान भैया बिन्नाहरो, समय समय पे हम अपने स्टूडियो में विशेषज्ञों को आमंत्रित करके आप औरों को नई नई और उपयोगी जानकारी दुआउत रहते हैं। तो आज यही क्रम में हमने आमंत्रित करो है आरडी चौबे जी के लाने जो उद्यानिकी विशेषज्ञ हैं और आपसे हम आज चर्चा कर रहे हैं मोरिंगा या मुनगा की उन्नत खेती के बारे में। तो सबसे पहले तो चौबे जी आपको बहुत बहुत स्वागत है
2: जी। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: और जा बताएं कि मोरिंगा और मुनगा की उन्नत खेती से किसान भैया हरे कैसे लाभ ले सकते हैं और मुनगा की खेती काय महत्वपूर्ण है।
2: वर्तमान समय में जहां हम बहुत सारी हमारे परिवार में या हमारे किसान भाई या हमारे समाज जन जो हैं विभिन्न प्रकार की रोगों से या बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं, जिसमें हम यदि एलोपैथी की दवाओं का इस्तेमाल करते हैं तो हमें उसके साइड इफ़ेक्ट भी आते हैं, लेकिन यदि हम आयुर्वेद का या औषधि फसलों का हम उपयोग करके या इस तरह की सब्जियां जो आसानी से उग सकती हैं उनका उपयोग करके हम अपने स्वास्थ्य को भी अच्छा बना सकते हैं
1: जी।
2: हमें जो विटामिन्स और मिनरल्स और प्रोटीन की आवश्यकता है उसकी पूर्ति भी कर सकते हैं और विभिन्न प्रकार की बीमारियों से हम बचाव भी कर सकते हैं
1: जी। तो चौबे जी, जा तो मुनगा की उपयोगिता की बात हो गई, अब जैसे जोन किसान भैया हरे इखों लगावो चाहत हैं तो इके लाने कौन प्रकार की जमीन चाहिए, पीएच मान कितो का भाव चाहिए, ये बारे में भी कछु जानकारी देवे।
2: देखिए हमारे यहाँ मुनगा की फसल गर्मी, जैसी जैसी गर्मी पड़ती है वैसे वैसे मुनगा की फसल बहुत अच्छी होती है और ये दक्षिण भारत में काफी तेजी के साथ उसका उत्पादन होता है। कर्नाटका है, तमिलनाडु है, आंध्रा है और अपना केरला है, वहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ने से 25 से 30 डिग्री टेम्परेचर तापमान जो रहता है वो फसल के लिए उपयुक्त होता है। कोई भी बंजर भूमि में जो पथरीली हो, कंकड़ हो और उसका पीएच मान यदि 6.5 से 7.5 तक भी हो तो ऐसी मिट्टी में भी हम, यदि आपने मिट्टी की जाँच कराई है और यदि इस तरह का पीएच मान है तो उन स्थानों पर भी हम मुनगा की खेती कर सकते हैं
1: जी।
2: इसमें एक विशेषता और है कि जैसी जैसी गर्मी बढ़ती है वैसे वैसे इस पौधे की वृद्धि अच्छी होती है
1: जी।
2: तो उत्तर भारत के इलाकों में जहाँ विशेष रूप से मध्य प्रदेश की बात करें या हम अपने जिले की बात करें तो यहाँ पर भी मुनगा बहुत अच्छे से उगाया जा सकता है। तो आप कोशिश करें कि इसकी एक बार खेती करें और जो दूसरी फसलें हैं उनकी अपेक्षा आप लगातार इससे लाभ अच्छी तरह से प्राप्त कर सकते हैं
1: जी। चौबे जी, मुनगा की उन्नत किस्मों की भी जानकारी दे और एक ही रोपाई कैसे करें, जे बीज के जरिए ही अपन एक उत्पादन ले सकते हैं या पौधा तैयार करने पड़े हैं, ये बारे में भी कछु जानकारी देवें।
2: देखिए जहाँ तक मुनगा की खेती के बारे में बात करें तो हमारे यहाँ प्राचीन समय से हमारे घर परिवारों में एक न एक मुनगे का पेड़ आंगन में हो या खेतों में हो लगा हुआ पाया जाता था
1: जी।
2: लेकिन उसकी विशेषता ये थी कि वो थोड़ा देर से फलन आता था उसमें और उसकी फलियों में और पत्तियों में कड़वाहट ज्यादा होती थी। तो तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय ने और गुजरात के कृषि विश्वविद्यालयों ने कुछ अच्छी उन्नत किस्मों का अनुसंधान करके पाया है कि बहुत सारी किस्में ऐसी हैं जो कम समय में अच्छा उत्पादन देती हैं और उनकी जो कड़वाहट है मुनगे की जो फलियों में और पत्तियों में जो कड़वाहट पाई जाती है वो कड़वाहट भी उनमें नहीं है
1: जी।
2: तो जो किस्में हमने हमारे वैज्ञानिकों ने शोध करके हमारे किसान भाइयों के लिए उपलब्ध कराई हैं उनमें PKM1, PKM2, ODC3, आपका अमर 32, बलियालता पति और हमारा रोहित CO1, CO2, CO3 किस्में हैं जो प्रमुखतः हमारे क्षेत्रों में उगाई जाती हैं
1: जी।
2: और इसका वानस्पतिक प्रवर्धन करने के लिए हम बीज की मात्रा का उपयोग करें तो ज्यादा बेहतर होगा। यदि हमारे पास ऐसे पौधे हैं तो हम इसको कलम से भी लगा सकते
1: जी।
2: कलम से लगाने के लिए जो हमारे पुराने पौधे लगे हुए हैं उनकी कटिंग हम काट के, और ये चूंकि इसका रोपण जो है जुलाई से लेके सितंबर तक कर सकते हैं
1: जी।
2: और उधर ठंड में अपन कर सकते हैं अक्टूबर से लेके नवंबर तक। और ये किस्म ऐसी है कि आपकी जो हम बता रहे हैं आपको PKM1 है, PKM2 है, इसके अलावा उन्नत किस्मों में अभी जो वर्तमान में जो है ODC3 वेराइटी बहुत अच्छी चल रही है, ये 6 से 8 महीने में अपना उत्पादन शुरू कर देती है। और इसी तरह से अमर 32 भी इसकी जो किस्म है उन्नत किस्म है वो भी बहुत अच्छा उत्पादन देती है, लगभग ये मान चले कि साल भर हमें फलन से प्राप्त हो सकता है
1: जी। तो चौबे जी, प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अगर पौधों की संख्या की बात करें तो कितनी लव चाहिए, बीज की मात्रा कितनी भाव चाहिए, ये बारे में भी कछु जानकारी देवें।
2: देखिए, 1 किलो जो मुनगे का बीज होता है अलग अलग किस्मों में उसकी मात्रा होती है 2500 से 3500 बीज तक निकलते हैं 1 किलो मुनगा के बीज में
1: जी।
2: जो हम यदि 1 किलो की संख्या मान के चलें तो उसमें हमारा यदि हम 70% या 80% जर्मिनेशन मानेंगे तो 3000 के हिसाब से हम यदि उसका देखेंगे तो 2400 पौधे हमारे तैयार हो जाएंगे। प्रति एकड़ हमें कम से कम 800 पौधे रोपित करना है, 2x2 मीटर की पौधे से पौधे की दूरी, और 3 मीटर यदि हम गैप रखेंगे तो लगभग हमें 800 पौधे प्रति एकड़ यानी 2000 पौधे हम 1 हेक्टेयर में लगा सकते हैं
1: जी।
2: और इसमें खास बात का ये ध्यान रखना है कि जब भी हम बीज खरीद के लाएं उन्नत संस्थानों से लें, और बीज जो है यदि आप उन्नत बीज लेंगे तो उसको करना ये है कि बीज को सीधे आपको बोनी नहीं करना है, 24 घंटे तक थोड़े से कुनकुनी पानी में उस बीज को आप डाल दें। डालने के बाद जब 24 घंटे उसके हो जाएं तो उस पानी में से निकाल के उसको ट्राइकोडर्मा ब्रिडी से आप उपचारित करें
1: जी।
2: और जब हमें खेत में रोपना है तो खेत की तैयारी हमें पहले करनी पड़ेगी
1: जी।
2: हमें क्या करना है कि 1 फीट बाई 1 फीट बाई 1 फीट के गड्ढे खोदना है, उसमें 5 से 10 किलो प्रति गड्ढे के हिसाब से उसमें हमें गोबर की लगभग 1 साल पुरानी खाद डालना है।

0: कोशिश करें कि उसमें नीम खली और नीम पाउडर या नीम खली का उपयोग भी कर सकते हैं, और इसमें यदि आप चाहें तो 100 ग्राम पोटास और 100 ग्राम सुपर फास्फेट भी डाल सकते हैं। तो गड्ढे को मिट्टी से भर दें आप 6 इंच ऊपर तक, और जैसे ही बरसात का मौसम आता है तो जो पौधे हमने तैयार किए हैं या तो हम जमीन में क्यारी लगा के बीज बो सकते हैं, या फिर हम 3x1 का मिक्सचर बना के पॉलिथीन पैकेट में भी पौधे तैयार कर सकते हैं
1: जी।
0: और ऐसे पौधे जो है मुनगा का जो बीज का अंकुरण है 3 से लेके 20 दिन के बीच में हो जाता है। जब पौधे हमारे 4 से 6 इंच के हो जाएं तो उनको उठाकर हम पैकेट से सीधे जहां गड्ढे हमने तैयार किए उन गड्ढों में रोपित करें। रोपित करने के बाद उनको चारों तरफ अच्छे से मिट्टी से दबा दें, और कोशिश करें कि यदि आपके पास ड्रिप सिंचाई की व्यवस्था है तो उसमें ड्रिप सिंचाई की लाइनें बिछवा दें उसमें, और यदि पानी नहीं गिर रहा है बारिश के मौसम में भी तो पानी अवश्य दें
1: जी।
0: और कोशिश ये करें कि जैसे ही हमारा पौधा 2 से 3 फीट का होता है तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण काम यह है कि 3 फीट ऊपर होने के साथ ही उसको किसी तेज धार वाले कैची से या उसको जो मेन तना ऊपर जा रहा है उसको काट दें
1: जी।
0: उससे क्या होगा कि जो पत्ते में अच्छी ब्रांचिंग होगी और पौधा घना होगा। घना होने से क्या होगा कि जब ब्रांचिंग अच्छी होगी तो फल भी अच्छे आएंगे
1: जी।
0: तो प्रथम साल तो उसका लगभग 6 से 8 महीने में फलन शुरू होता है, और साल में 2 बार हम इसकी फसल ले सकते हैं
1: जी।
0: और एक पौधे से लगभग जब उत्पादन 2 साल बाद शुरू होता है अच्छा, तो प्रति पौधे से 200 से 300 किलो फलियां हम ले सकते हैं
1: जी,
0: प्रति पौधे के हिसाब से। और यदि हम 5-6 साल बाद अच्छा का उत्पादन लेना चाहें तो 500 किलोग्राम प्रति पौधे तक फलियां आ सकती हैं
1: जी।
0: तो ये मान के चलिए कि जो हमारी आर्थिक यदि उसका विश्लेषण करें हम तो लगभग 4 से 6 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हम किसान भाई हमारे इससे उत्पादन प्राप्त करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं
1: जी।
0: इसमें खास बात यह भी है कि इसके पौधे में एक खास बात यह है कि ये इसकी पत्तियां भी काम आती हैं, इसके फल भी काम आते हैं
1: जी,
0: इसकी जड़ भी काम आती है, इसके फूल भी काम आते हैं, और इसके तने भी काम आते हैं
1: जी।
0: तो ये ऐसा पौधा है कि जिसकी हर अंग उपयोगी है। तो जैसे पत्तियों की जहां तक बात करें, जिन किसान भाइयों को पत्तियों का उपयोग करके खेती करना है कि पत्तियां बेचना है उन्हें, तो 70 से 80 रुपए किलो पत्तियां उनकी सुखाने के बाद बिक जाती हैं। बसरते सुखाने में हमें ये ध्यान रखना है कि दूसरे पौधों की पत्तियां उसमें मिक्स ना हो जाएं और उसमें गंदगी या धूल आदि ना हो। और यदि आप चाहो कि हम खेती भी करें और उसकी प्रोसेसिंग भी करें तो पल्पलाइजर आते हैं मुनगा के पाउडर बनाने के लिए, उन पल्पलाइजर को घर पे लगा के आप उससे पाउडर तैयार करके बेच सकते हैं। और पाउडर की जो बिक्री हो रही है वर्तमान में उसकी काफ़ी डिमांड है। USA या अरब कंट्रीज में ऐसे मुनगे का पाउडर लगभग 800 रुपए से 1000 रुपए किलो तक बिक्री हो रहा है। तो यदि चाहते हैं कि हम घर के सदस्यों को रोजगार दें
1: जी,
0: तो वो मुनगा की खेती करके और खुद भी उगाएं और फलियां भी उगाएं, पत्तियां भी उगाएं, जड़ फूल सब उसको बिक्रय करके आप अपने परिवार की आमदनी बढ़ा सकते हैं, किसान भाई अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं, और लगभग 10 से 12 साल तक आप ये आमदनी लगातार प्राप्त कर सकते हैं
1: जी।
0: इसके बाद यदि आपको लगता है कि नहीं हमें इस फसल को बदल देना है तो आप उसको अलग करके दूसरी फसल फिर लगा सकते हैं
1: जी।
0: और इंटरक्रॉपिंग के रूप में जहां बीच में जो जगह है 3 मीटर की बताई हमने आपको, इसके बीच में हम पपीता लगा दो आप, या किसी प्रकार की सब्जियां लगाना चाहते हैं, अभी जैसे मुनगा के साथ साथ आप हल्दी की खेती कर दीजिए, हल्दी भी बढ़िया आराम से इसमें हो जाती है क्योंकि हल्दी के पौधे ज्यादा बड़े नहीं होते हैं
1: जी,
0: उनको छाया की आवश्यकता होती है तो मुनगा की छाया भी पर्याप्त है। तो कहने का आशय है एक पौधा अनेक गुणों के साथ, इसमें विटामिन सी भी होता है, प्रोटीन भी सबसे ज्यादा पाया जाता है, 2 से 7 गुना प्रोटीन पाया जाता है। तो ऐसे जो मतलब स्वास्थ्य की दृष्टि से भी देखें, और इसकी आजकल बहुत सारी संस्थाएं इसकी बिक्री करके इसके पराठे बना रही हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी प्रति सप्ताह हफ्ते में 2 बार मुनगा के पराठों का उपयोग कर रहे हैं, इसके पापड़ बनाए जा रहे हैं, इसकी चाय बनाई जाती है, इसका पाउडर तैयार किया जाता है, इसका अचार बनाया जाता है, इसकी बड़ी बनाई जाती है
1: जी।
0: तो ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो इससे हम उपयोग न कर सकें। और एक और हमारे मध्य प्रदेश शासन ने कुछ जिलों को चिन्हित किया है जहाँ कुपोषित जो बच्चे हैं उनको मुनगे का सूप बना के या मुनगे का लिक्विड बना के उन पर प्रयोग किया जा रहा है। यदि वो प्रयोग सफल रहता है तो पूरे मध्य प्रदेश में आगामी वर्षों में मुनगा के जो पेय पदार्थ हैं उनके बारे में काफी अच्छा काम होगा
1: जी। चौबे जी, मुनगा की खेती के बारे में आपने विस्तार से जानकारी दी, एक बारे में किसान भैयाओं को जाओ और बताए कि एक विपणन भी कैसे करें कि जिसे ज्यादा से ज्यादा लाभ उनके लाने हो, ये बारे में भी जानकारी दे।
0: जैसे हमने बताया कि यदि आप पत्तियों का विक्रय करना चाहते हैं तो पत्तियों की विक्रय करने के लिए आपको करना ये है कि साल में 5 बार उसकी आप पत्तियां तोड़ सकते हैं। हर 2 महीने में आप 1 बार उसकी पत्तियां तोड़ के, और पत्तियों की कैसे तोड़ना है, उनकी जो शाखाएं हैं उनको किसी तेज धार वाले चाकू से या कैची से या सिकेटगर से काट के लाएं और उनको ऐसी जगह पर जैसे तार बांध दिया अपन ने, उनकी जो डंठल तोड़ के लाएं।

0: जाएंगे हम, उनको वहां टांग दें और टांगने के बाद उस कमरे में ऐसी जगह रखें जहां धूप भी आती हो और छाया भी रहती हो। तो पत्तियां सूख जाएंगी, पत्तियां सूखने के बाद उनको इकट्ठा कर लीजिए। इकट्ठा करने के बाद यदि आप पत्तियां सीधी बेचना चाहते हैं तो पत्तियां आपकी 70 से 80 रुपए किलो आपकी पत्तियां बिक जाएंगी। और इसके अलावा यदि आप फल बेचना चाहते हैं तो 70 से 80 रुपए किलो यदि देखा जाए तो फल भी काफी अच्छे, यदि अपने यहाँ बिक्री नहीं हो पाती है जिनको बड़ी बड़ी, जैसे आपके पास ज्यादा मात्रा में आता है तो आजादपुर की मंडी में आप बेच सकते हैं,
1: नीमच
0: की मंडी में भी आप इसकी पत्तियां बेच सकते हैं, सूखे फल बेच सकते हैं, ताजे फल बेच सकते हैं, फूलों को सुखा के फूल भी बेच सकते हैं आप, इसका तना यदि आप निकालना चाहें तना भी बेच सकते हैं
1: जी।
0: तो पत्तियां मतलब आप जिस क्षेत्र में जाना चाहें उस क्षेत्र को, इसको पत्तियां विक्रय करना चाहते हैं, फल बिक्री करना चाहते हैं तो एक बहुत अच्छी फसल है। तो विपणन के लिए आपको करना यह होगा कि पत्तियों को सुखा के, और आजकल तो बहुत सारी मशीनें आ गई हैं, ड्रायर आ गए हैं जिनमें आप बटन दबा के इलेक्ट्रिक ड्रायर से आप 2 से 3 घंटे में पत्तियां सुखा के उसका पाउडर बना सकते हैं। और यदि आप पत्तियों को सीधे बेचना चाहते हैं तो हमने बताया आपको कम से कम 1 हेक्टेयर में लगभग 20 से 30 क्विंटल पत्तियां निकलती हैं। तो यदि किसी को, किसान भाइयों को बेचना है तो उसके लिए भी हम आपसे संपर्क कर सकते हैं, हम उनकी पत्तियों की बिक्री करवाने की व्यवस्था कर सकते हैं
1: जी।
0: या वो पाउडर बना के बेचना चाहते हैं तो उनको शासन से जो है FSSAI का लाइसेंस लेना होता है, वो लाइसेंस लेके अपना खुद का व्यवसाय भी शुरू कर सकते हैं
1: जी।
0: और मुनगा एक ऐसी फसल है, कई प्रकार के व्यंजन बना के जैसे पापड़ बना के आप बेच सकते हैं। इसकी चाय बन रही है, मुनगा की चाय जो काफी स्वास्थ्यवर्धक भी है, तो चाय बना के उसमें करना ये होता है कि 1 कप गर्म पानी में आप मुनगे का 1 चम्मच पाउडर डालिए, उसमें थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा डाल दीजिए, थोड़ा सा आप उसमें शहद डाल सकते हैं यदि आपको ऐसा करना चाहते हैं, तो उसको आप प्रतिदिन यदि सेवन करेंगे तो आपको उसके स्वास्थ्य लाभ 1 महीने 1.5 महीने में आपको पता लग जाएंगे
1: जी।
0: तो विपणन के हिसाब से वर्तमान समय में काफी मांग भी आ रही है, बाहरी देशों में हमारे जो उपयोगकर्ता हैं या जो नागरिक हैं वहाँ के, उनमें हर साल मुनगे की डिमांड बढ़ रही है। और जैसे जैसे इसका उत्पादन बढ़ेगा वैसे वैसे कई प्रकार की चीजें बना के हम उनके माध्यम से भी अपना विक्रय कर सकते हैं, अपना स्टॉल खोल सकते हैं, अपनी शॉप खोल सकते हैं, लाइसेंस प्राप्त करके खाद्य विभाग से आप उसका स्वयं बिक्री भी कर सकते हैं
1: जी।
0: तो रोजगार भी मिलेगा आपको, आपकी फसल भी उगेगी और आप घर में उपयोग भी करिए। और कोशिश करिए कि आजकल मुर्गे का आटा आना लगा है, यदि आप रोटी बना के उसकी खाएंगी तो उसके जो लाभ हैं वो आपके पूरे परिवार को मिलेंगे। तो इस तरह से मुनगा एक फल अनेक गुण वाली जो है, एक फसल अनेक उपयोग इसकी मुनगा के हो रहे हैं। और विपणन में किसी भी किसान को कोई नुकसान नहीं होता इस फसल में, क्योंकि ये आसानी से उग जाने वाली फसल है, इसमें ज्यादा कीट बीमारी भी नहीं लगते हैं, और पर्याप्त देखभाल से यदि आप अच्छे तरीके से वैज्ञानिक तरीके से इसकी खेती करते हैं तो आपको अच्छी तरह से उसके उत्पादन से अच्छा लाभ भी होगा, जो दूसरी फसलें हैं उनकी अपेक्षा हमें इसमें ज्यादा आर्थिक लाभ प्राप्त होगा
1: जी। तो चौबे जी, आज आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे किसान भैयारों के लाने मोरिंगा यानी मुनगा की उन्नत खेती के बारे में इतनी उम्दा जानकारी दी, एक लाने आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
2: रज्जू भैया, बहुत उम्दा वार्ता रही, आपने बड़ी बारीकी से चर्चा करी RD चौबे साहब से। मुनगा जा कहो चज्जे के महिलाओं के लाने तो विशेष फायदेमंद है, अगर देखो जाए तो पूरे परिवार के लाने एक छोटी सी चम्मच बड़े काम की कहाई। और अगर अपन देखियो कोसे खाते तो कोसे में तो बहुत ही बढ़िया पेट भी साफ होते, अच्छो भी लगा थे, पेट हल्को हो जाते। अब देखो कार्यक्रम खुआगे बड़ा दे थे
3: बिल्कुल भैया,
2: और बहुत उमदा से एक लोकगीत सुनवा रहे हैं, सुरेश चंद्र तिवारी ने गाओ एक।
3: चलो सुनाते हैं।
4: मायके घरों को

0: सारी जिए देख गंगा गिर रो जाई मुझसे क्या है भैया होते रात के लेकिन हम की खा सुनाए
1: भैया। ओ सुनील भैया जो कैसो नौनो लोकगीत हास्य गीत अपन ने सुनो जिको गाके सुना रहे थे सुरेश चंद्र तिवारी।
2: बिल्कुल जो भैया और हम देख रहे हैं कहा से समय हो थे बलवान हम आपके हाथ में देख रहे हैं कि मौसम की जानकारी और मंडी भाव दो ही रखे हों आप।
1: बिल्कुल भैया तो मंडी के भाव बताए दे रहे हैं गेहूं रहो 2300 से 2650 रुपया प्रति क्विंटल, चना 4700 से 5800 रुपया प्रति क्विंटल, मसूर 5500 से 9340 रुपया प्रति क्विंटल, सोयाबीन 5800 से 7600 रुपया प्रति क्विंटल, राई सरसों 6050 से 7150 रुपया प्रति क्विंटल, तेवड़ा 2950 से 3200 रुपया प्रति क्विंटल, बटरी 3400 से 4370 रुपया प्रति क्विंटल और मटर 3200 से 3900 रुपया प्रति क्विंटल।
2: बिल्कुल रज्जू भैया आपने जो है सागर कृषि उपज मंडी से जो आज भाव प्राप्त हुए भी आपने बता दें। अब हम बता देते कि दिन को अधिकतम तापमान रहा 44.0 डिग्री सेंटीग्रेड जो कि सामान्य से 2 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा हतो और रात को न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड जो भी सामान्य से 3 डिग्री ज़्यादा हतो। आर्द्रता भुंसरा की रही 32% और संजा ब्रिया को 15% माने नमी बिल्कुल न कहानी और हवा की गति हती 8 से 23 किलोमीटर प्रति घंटा उत्तर से पश्चिम की दिशा में।
1: तो ये उत्तर पश्चिमी हवाएं चल रही हैं भैया 8 से 23 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से यानी लू चल रही है। तो लू से अपनों बचाव जरूर करें भैया, अपने परिवार के लोगों को भी बचाव करें, बच्चों को भी बचाएं और अपने जो पालतू पशु हैं उनको भी बचाव अपन को लू से करने हैं।
2: बिल्कुल और घड़ी कह रही है रज्जू भैया चलवे की हो रही है बेरा तो हम सुनील रहा है
1: और हम रज्जू भैया
2: अपनी वाणी को देते विराम और सभी किसान पंचों से करते हैं
1: राम राम, राम।

अभी आपने सुना कार्यक्रम किसान वाणी। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के सागर केंद्र से FM 102.6 MHz पर। रात्रि के 8 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रपट संगीत।

0: बीवी हो तो ऐसी। इस फिल्म का ये गाना भी आपने सुना, मोहम्मद अजीज और अलका याग्निक की आवाजें थीं। हसन कमाल के बोल थे, धुन बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। और अब आइए सुनते हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की ही धुन। बोल हैं SH बिहारी के, आवाजें लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की हैं। फिल्म का नाम है प्यार झुकता नहीं।
1: ए दिल इधर भी है

0: जब हर सेकंड जरूरी हो, हम हैं तैयार। बंसल हॉस्पिटल सागर में 24/7 क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट, अत्याधुनिक ICU, एडवांस वेंटिलेटर और लाइफ सपोर्ट इमरजेंसी रिस्पांस टीम। हर सांस की सुरक्षा हमारे साथ। संपर्क करें 07582472000।
1: सागर की साप्ताहिक गतिविधियों पर केंद्रित रेडियो पत्रिका गागर में सागर सुनिएगा प्रति रविवार सुबह 7:20 से, जिसमें आप जानेंगे सागर की समसामयिक हलचल के बारे में और मिलेंगे कुछ उभरती और कुछ अनसुनी प्रतिभाओं से, और माटी की महक बिखेरते हुए होगा सिलसिला कुछ मनोरंजन का। तो सुनना ना भूलिएगा हमारी रेडियो पत्रिका गागर में सागर प्रति रविवार सुबह 7:20 से।
2: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी सागर का प्रसारण FM 102.6 MHz पर। रात्रि के 8:15 हुए हैं। पेश है कार्यक्रम संगीत सरिता, ये पहली पेशकश हरिहरन की आवाज में।

हरिहरन को अभी आपने सुना। और अब कार्यक्रम संगीत सरिता की अगली पेशकश है गुलाम अली की आवाज में।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी सागर का प्रसारण कार्यक्रम है संगीत सरिता, जिसमें गुलाम अली की आवाज में ये गजल अभी आपने सुनी।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: और अब आइए सुनते हैं काव्य पाठ गंगा दशहरा पर केंद्रित या विशेष अवसर पर ये काव्य पाठ हम सुनते हैं। रचनाकार हैं चंद्रशेखर नामदेव।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: गंगा दशहरा पर्व मना रहे हैं, इसी उपलक्ष्य में कुछ पंक्तियां यहाँ पर प्रस्तुत हैं। निर्मल निश्चल कल कल बहती, निर्मल निश्चल

माता से अब इन कष्टों का, माता से अब इन कष्टों का भार सहा ना जाता।

0: यह जग अंधकार टिक ना पाएगा, यहाँ प्रकाश रहेगा जब तक सूरज चंद्र सितारे दीपक करते सदा प्रकाशित। यह जग अंधकार टिक ना पाएगा, यहाँ प्रकाश रहेगा जब तक, यहाँ प्रकाश रहेगा जब तक, यहाँ प्रकाश रहेगा जब तक।
1: अभी आपने सुना स्वरचित काव्य पाठ चंद्रशेखर नामदेव से।
2: आपके सवाल, आपके विचार, सुनिए सागर संवाद, जहां हर नागरिक बनता है अपने शहर की आवाज। आप भी बोलिए, क्योंकि आपकी बात ही बनेगी सागर की बात। सागर संवाद, अपनी बात आकाशवाणी के साथ। सुनिए सागर संवाद आकाशवाणी सागर से महीने के पहले और पांचवें शुक्रवार को रात्रि 8:30 बजे से। अब बढ़ेगा आपका व्यापार, आकाशवाणी सागर से करिए प्रचार, हर घर तक अपनी सेवा और सामान का करें प्रसार। आकाशवाणी सागर से विज्ञापन देने के लिए व्हाट्सएप करें 9770432297 पर। नंबर एक बार फिर सुने 9770 43

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी सागर का प्रसारण FM 102.6 MHz पर रात्रि के 8:45 होने को हैं। समाचार संध्या रिले करेंगे दिल्ली से बस कुछ ही देर में, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से उत्पन्न जनसांख्यिकी परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी रोकने के लिए 6 महीने के भीतर ड्रोन रोधी प्रणालियां स्थापित कर दी जाएंगी। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत समुद्री निगरानी सहयोग की शुरुआत की। आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की निंदा की। सरकार ने प्याज का न्यूनतम सुनिश्चित खरीद मूल्य प्रति क्विंटल 1,270 रुपए से बढ़ाकर 1,580 रुपए किया। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने भविष्य में ओलंपिक खेलों के लिए योगासन का समर्थन किया। पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप अगले महीने अहमदाबाद में होगी और एशियाई अंडर-23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान मोहित कुमार और चंद्र मोहन ने पुरुषों की फ्री स्टाइल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकी बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। जनगणना आयुक्त के साथ साथ पूर्व IAS अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्रा, पूर्व IPS अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव और अर्थशास्त्री डॉ. शमिका रवि को इस समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये समिति अवैध प्रवासन और अन्य अस्वाभाविक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकी बदलावों का व्यापक मूल्यांकन करेगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: ये उच्च स्तरीय समिति अवैध अप्रवासन और अन्य अप्राकृतिक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का व्यापक आकलन करेगी। ये धार्मिक और सामाजिक समुदायों के स्तर पर असामान्य जनसंख्या स्थानांतरण का भी विश्लेषण करेगी और इसके लिए एक योजनाबद्ध और समयबद्ध समाधान प्रस्तुत करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष लाल किले से अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण में जनसांख्यिकीय परिवर्तन पर उच्च स्तरीय समिति की घोषणा की थी।
2: मैं आज देश के सामने एक चिंता चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूं। षड्यंत्र के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठी मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा और इसलिए एक हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया है।
1: समिति एक वर्ष के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। वहीं आवश्यकता पड़ने पर समिति का कार्यकाल 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। अनुपम मिश्र के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए अगले 6 महीने के भीतर ड्रोन रोधी प्रणाली लगाने की प्रक्रिया में है। राजस्थान के बीकानेर जिले में सांचू सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने ये घोषणा की।
3: ड्रोन और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार ड्रोन रोधी संयंत्र लगाने की शुरुआत अगले 6 माह में ही कर लेगी, परंतु ड्रोन उतरता तो भारत की भूमि में है, कौन इसके अंदर के मटेरियल को देश विरोधी कार्यों के लिए उपयोग करता है, इस पर हमारी पैनी नजर होनी चाहिए और इसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए सिविल अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से हमारा जीवंत संपर्क होना चाहिए और परिणाम लक्षी कार्यवाही भी हमने करनी पड़ेगी।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की अध्यक्षता में आज क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठक में हिस्सा लिया। सदस्य देश वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में निगरानी से जुड़ी पहल तथा दृश्यों के माध्यम से समुद्री गतिविधियों की साझा जानकारी उपलब्ध कराने पर भी सहमति व्यक्त की। बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता में डॉ. जयशंकर ने कहा कि क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत किया जाएगा।
4: इकोनॉमिक रेजिलियंस शुड बी प्रमोटेड।
5: बैठक में आर्थिक मजबूती बनाए रखने, आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने, विश्वसनीय और सुरक्षित तकनीकों का प्रसार करने तथा उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने पर चर्चा हुई। हमारा लक्ष्य आपसी सहयोग को मजबूत करना तथा दूसरों की सहायता करना है। हम क्वाड देश आदान प्रदान से विकास और समृद्धि की खोज में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं।
4: Undertake more exchanges as we intend to do.
0: बाद में विदेश मंत्रालय में अपर सचिव के नागराज नायडू ने

0: संवाददाताओं को बताया कि क्वाड देशों ने पहलगाम आतंकवादी हमले की भी निंदा की।
1: काउंटर टेररिज्म इज अ सिग्निफिकेंट पिलर ऑफ
2: आतंकवाद से सख्ती से निपटना क्वाड सहयोग का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बना हुआ है। विदेश मंत्रियों ने सीमा पार आतंकवाद और आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। संयुक्त बयान में विशेष रूप से पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की गई और आतंकवादी गुटों, उनके वित्त पोषण और प्रायोजकों के खिलाफ निर्णायक अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया गया।
1: टेररिस्ट एंटिटीज, फाइनेंसेस एंड स्पॉन्सर्स।
0: विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत की व्यापक रणनीतिक साझेदारी ने नई गति पकड़ी है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग के साथ बैठक के दौरान ये टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए यूरेनियम की आपूर्ति सहित ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ रहा है। इस बीच ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस दौरान रक्षा, व्यापार, प्रौद्योगिकी और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती सुनिश्चित करने जैसे क्षेत्रों में दोनों देशों की व्यापक रणनीतिक साझेदारी के विस्तार पर चर्चा हुई। जापान की विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी ने भी प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। उन्होंने हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने में भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी की महत्वपूर्ण भूमिका की पुष्टि की। भारत ने चीन और पाकिस्तान के संयुक्त बयान में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के अवांछित संदर्भों को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत का रुख स्वयं सुसंगत है और संबंधित पक्षों को इसकी जानकारी है। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न तथा अविभाज्य अंग थे, हैं और हमेशा रहेंगे। प्रवक्ता ने कहा कि किसी अन्य देश को इस टिप्पणी पर करने का अधिकार नहीं है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने प्याज के भंडार का न्यूनतम सुनिश्चित खरीद मूल्य 1,270 रुपए से बढ़ाकर 1,580 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। ये बढ़ोतरी राज्य सरकारों के अनुरोध पर की गई है। नई दरें आज से लागू हो गई हैं। इस संबंध में उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में उपभोक्ता मामलों के विभाग, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ के अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग 83 के नागपट्टनम तंजावुर खंड पर 14 किलोमीटर से अधिक लंबे 4 लेन वाले तिरुवरूर बाईपास के निर्माण के लिए 1000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि को मंजूरी दे दी है। राष्ट्रीय राजमार्ग 129 और राष्ट्रीय राजमार्ग 134A पर 2 अतिरिक्त ओवरब्रिज भी बनाए जाएंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि ये मार्ग तिरुचिरापल्ली और कोयम्बटूर जैसे औद्योगिक केंद्रों को राईकाल और नागपट्टनम जैसे बंदरगाह शहरों से जोड़ेंगे। श्री गडकरी ने आज पंजाब में 4000 किलोमीटर से अधिक और दिल्ली तथा हरियाणा में 3000 किलोमीटर से अधिक की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की गुणवत्ता और रखरखाव की प्रगति की समीक्षा की। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE की पेमेंट गेटवे प्रणाली में सुधार के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के 4 प्रमुख बैंकों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की है। बैठक के दौरान श्री प्रधान ने विद्यार्थी

0: बनाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने पद पर 12 वर्ष पूरे कर लिए हैं। 2014 में आज ही के दिन श्री मोदी ने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली सरकार ने पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर अनेक जन कल्याणकारी पहलें की है, जिनका उद्देश्य नागरिकों का उत्थान करना रहा है। गरीबों और मध्यम वर्ग के कल्याण से लेकर महिलाओं, किसानों और युवाओं के सशक्तिकरण तक मोदी सरकार ने समाज के सभी वर्गों का ध्यान रखा है। इसी तरह मोदी सरकार ने आर्थिक विकास, बुनियादी ढांचे का विस्तार और नागरिकों के जीवन को आसान बनाने पर भी विशेष ध्यान दिया है। मोदी सरकार ने वस्तु और सेवा कर GST और डिजिटल भुगतान जैसे संरचनात्मक सुधार भी लागू किए हैं। सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया है। इसके अलावा मोदी सरकार ने विरासत संरक्षण, संस्कृति पर भी अपना ध्यान केंद्रित किया है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि वर्ष 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी के भारत के दावे को ध्यान में रखते हुए योगासन को भविष्य के ओलंपिक खेलों की सूची में शामिल करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। डॉक्टर मांडविया ने आज नई दिल्ली में कहा कि अहमदाबाद में 4 से 8 जून तक पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी। भारतीय पहलवानों ने वियतनाम में एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में आज भी शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए पुरुषों की फ्रीस्टाइल वर्ग में 2 स्वर्ण 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीते। मोहित कुमार ने 65 किलोग्राम और चंद्र मोहन ने 79 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। आईपीएल क्रिकेट का पहला क्वालिफायर मुकाबला गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच जारी है। ताज़ा समाचार मिलने तक बेंगलुरु ने 16 ओवर में 3 विकेट पर 189 रन बना लिए हैं। इससे पहले गुजरात ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिन तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, उड़ीसा, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी भीषण गर्मी की आशंका है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से उत्पन्न जनसांख्यिकी परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी रोकने के लिए 6 महीने के भीतर ड्रोन रोधी प्रणालियां स्थापित की जाएंगी। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत समुद्री निगरानी सहयोग की शुरुआत की। आतंकवाद के सभी रूपों की निंदा की। सरकार ने प्याज का न्यूनतम सुनिश्चित खरीद मूल्य प्रति क्विंटल 1,270 रुपए से बढ़ाकर 1,580 रुपए किया। और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने भविष्य के ओलंपिक खेलों के लिए योगासन का समर्थन किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज पर रात्रि के 9 बजे हैं। पेश है कार्यक्रम मन चाहे गीत।

कार्यक्रम मंचा है गीत की ये पहली पेशकश थी जो आवरू फिल्म से हमने ली थी, आवाज मोहम्मद रफी की, जी एल रावल के बोल थे, धुन बनाई थी सोनिक ओमी ने। और इस गीत को सुनने के लिए हमें व्हाट्सएप संदेश भेजा था हमारे इन सभी श्रोताओं ने, मेन बाजार कुंडलवाड़ी महाराष्ट्र से गंगाधर येमेकर, प्रमोद येमेकर, प्रदीप येमेकर ने। और एक और संदेश हमें मिला था इसी गीत के लिए भेजने वाले बन्ने बुजुर्ग पलेरा टीकमगढ़ से, ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारादेवी विश्वकर्मा, सोनाली विश्वकर्मा, सोनम विश्वकर्मा और आशीष विश्वकर्मा ने। गांव चोहल्ला बागपत से संदेश भेजा था संजय ढिंगिया और नमन ढिंगिया ने।

एक और संदेश इसी गीत को सुनने के लिए हमें मिला। भेजने वाले हैं ग्राम पीपर लोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा। ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंडी बुलंद शहर से भी हमें संदेश भेजा था मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज सरफराज, फरदीन सुहान अरजान और अबान अब्बासी ने। और अब अगला गीत जो फरमाइश है हमारे इन सभी श्रोताओं की, बडिंगखेड़ा पंजाब से लिखते हैं मिंटू टॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा। ग्राम पनारी पोस्ट महाराजपुर तहसील देवरी जिला सागर से लिखते हैं परमलाल विश्वकर्मा, दशरथ विश्वकर्मा, मनोज विश्वकर्मा, पूना विश्वकर्मा, आरती विश्वकर्मा, दीपेश विश्वकर्मा, जागृति विश्वकर्मा, मानवी विश्वकर्मा, हर्षिता विश्वकर्मा और इनका पूरा परिवार। कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से संदेश भेजने वाले हैं ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय। दुबिहा नेवादा जिला गाजीपुर से हमें व्हाट्सएप संदेश भेजा इसी गीत को सुनने के लिए प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और प्रांजल राय ने। संबलपुर कांकेर से यही गीत सुनना चाहते हैं फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव। तो आइए आप सभी की पसंद पर हम सुनते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में झुक गया आसमान फिल्म का गाना, हसरत जयपुरी के बोल हैं, धुन बनाई है शंकर जयकिशन ने।

और मनचाहे गीत का अगला नगमा लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में है। फिल्म का नाम है वापस।

वापस फिल्म का ये गाना था, मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ें थीं। मजरूह सुल्तानपुरी ने ये गीत लिखा था और धुन तैयार की थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। और इस गीत को सुनने के लिए हमें व्हाट्सएप संदेश भेजा था हमारे इन सभी श्रोताओं ने। अस्तुपुरा जिला मऊ से संदेश भेजा था मजहर अली अंसारी, रजिया बेगम अंसारी और मोहम्मद सादिक अंसारी ने। इसी गीत को सुनने के लिए संदेश भेजा बहादुरगंज गाजीपुर से आज़ाद अली अनवर, रिजवाना परवीन और अब्दुल्ला आज़ाद ने। एक और संदेश हमें मिला था इसी गीत के लिए जिला नांदेड़ एताला महाराष्ट्र से, भेजने वाले शंकरलाल जायसवाल, गणेश लाल जायसवाल, शुभम प्रसाद जायसवाल और दुर्गेश्वरी जायसवाल ने। शास्त्री नगर बीड शहर से किशन सपकाल, आशा सपकाल, सोनिया सपकाल और विषय सपकाल, विशाल सपकाल। और अब कार्यक्रम का अगला गाना जिसको सुनने के लिए हमें संदेश भेजे हैं हमारे इन सभी श्रोताओं ने, मुंडा टोला डोंडी लोहारा जिला बालोद छत्तीसगढ़ से संदेश भेजने वाले हैं डोमेंद्र नेताम, गंगेश्वरी नेताम, चंचल नेताम, कामेश नेताम और माहिर नेताम। पोटिया कला दुर्ग से संजय साहू, सुजाता साहू, शशांक साहू। मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला सुरलकर, आरती गौरी और ओम कुमार सुरलकर। ग्राम बिटोरा तहसील से बड़ा जिला दतिया से, तहसील सेवड़ा जिला दतिया से लोकेंद्र सिंह गुर्जर, सूर्यांश गुर्जर। और गुमला झारखंड से एस एम जावेद, शगुफ्ता अंजुम और नजमुल होदा। आप सभी सोतन फिल्म का गाना सुनना चाहते हैं जिसकी धुन तैयार की है उषा खन्ना ने, सावन कुमार ने गीत लिखा है और आवाज़ दी है लता मंगेशकर ने।

लता मंगेशकर की आवाज में साउथर्न फिल्म का ये गाना भी आपने सुना। और अब आज के इस कार्यक्रम की आखिरी पेशकश, जो सुनने के लिए संदेश हमें भेजने वाले हैं, खेल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा नीटू, लक्ष्य मल्होत्रा और कोयल मल्होत्रा और नानक चंद मल्होत्रा। शिवाजी कॉलोनी रोहतक से संदेश भेजने वाले हैं पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का और भाविक सिक्का। जैन मंदिर वाली गली कुरावली से लिखते हैं राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन अंसारी, नवरीन अंसारी, आसना अंसारी और मोहम्मद कैफ अंसारी। पाकुड़ झारखंड से संदेश भेजा है उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किसु, तासु, अर्णव आनंद और सत्यमानंद ने। बोहड़ा गाछी पश्चिम बंगाल से संदेश भेजने वाले हैं मुन्ना भगत और गुड्डी भगत।

इसी के साथ साथ एक और संदेश हमें मिला है इसी गीत के लिए। गणेश फैक्ट्री श्रीरामपुर से लिखते हैं डी अशोक कुंभार, अविका जीविका सानु कुंभार और अर्चना कुंभार, आप सभी की पसंद पर आइए हम सुनते हैं मनमोजी फिल्म का गाना, जिसे आवाज दी है लता मंगेशकर ने, राजेंद्र कृष्ण के बोल हैं, धुन बनाई है मदन मोहन ने।

0: और इसी गीत के साथ कार्यक्रम मंच है गीत अब समाप्त हुआ। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के सागर केंद्र से एफएम 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 9:30 होने को हैं। विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम मुंबई से रिले किए जाएंगे बस कुछ ही देर में।
1: आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती। आज के फनकार इस कार्यक्रम के लिए बस कुछ ही पलों का इंतजार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग

0: कर रहे थे ऊंची सी दीवार थी,
1: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
0: और बीच में एक गैप था। लिटरली जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जंप कर जाती। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
1: ऐसी बेमिसाल कहानियां आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।
2: आज फिर जीने की तमन्ना है।
3: श्रोताओं नमस्कार।
4: इन्ना सोना इन्ना कूल मुंडा इन्ना वंडरफुल, एनु वेख जे कुड़िया तो कहंदी ओ माय गॉड ओ माय गॉड।
3: जी हाँ, आज बातें एक ऐसे निर्माता निर्देशक की जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से बढ़ा दी लाखों दिलों की धड़कन, जिन्होंने सिखाए युवाओं को प्यार के नए मायने, जिन्होंने नई पीढ़ी को ये विश्वास दिलाया कि उलझे रिश्तों में भी खिलते हैं चाहत के फूल, उन्हें पाकर बरबस ही लोगों के होंठों पर ये नगमा गूंज उठता है।
5: कोई

25 मई 1972 के दिन मशहूर फिल्म निर्माता यश जौहर और उनकी पत्नी हीरू जौहर के घर जन्मे करण जौहर। बचपन में फिल्मी दुनिया से वो दूर ही रहना चाहते थे। आज के सफल फिल्मकार करण जौहर जब स्कूल में पढ़ा करते थे तो अपने सभी दोस्तों से कहा करते कि उनके पिता एक व्यापारी हैं। लेकिन बड़े होते होते उन्होंने अपनी मंजिल की तलाश में फिल्मी दुनिया की राहों में ही चलने का निर्णय लिया।

पिता यश जौहर की ख्वाहिश थी कि उनका बेटा फिल्मी पर्दे पर चमके और लोगों के बीच एक अभिनेता की तरह नाम कमाए। ये तो पता नहीं कि पिता की इच्छा के लिए या अपनी मंजिल को परखने के लिए, पर करण जौहर ने अपने करियर की शुरुआत बतौर अभिनेता ही की। मात्र 17 साल की उम्र में वो नजर आए दूरदर्शन के एक सीरियल इंद्रधनुष में, लेकिन उनके हुनर में कई ऐसे रंग मौजूद थे जिन्हें वो सभी के सामने लाना चाहते थे, और इसके लिए उन्होंने चुनी पर्दे के पीछे की जिंदगी। अब उन्हें मिल चुकी थी उनकी राह।

बचपन से राज कपूर, यश चोपड़ा और सूरज बड़जात्या को अपना आइडल मानने वाले करण ने निर्देशन की दुनिया में कदम रखने के लिए साथ लिया निर्माता निर्देशक आदित्य चोपड़ा का। बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर करण ने जिस फिल्म से शुरुआत की वो फिल्म थी सुपर डुपर हिट फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे।

करण ने शाहरुख खान के दोस्त का किरदार भी निभाया था। पर्दे पर निभाई गई ये दोस्ती निजी जिंदगी में आज तक बरकरार है। जब करण ने फिल्म निर्देशन में कदम रखा तो उन्होंने अपनी फिल्म में शाहरुख खान को मुख्य भूमिका दी और उनके साथ साइन किया फिल्मी दुनिया से ही अपनी एक और दोस्त काजोल को। इन दोनों कलाकारों के साथ इस फिल्म में थी रानी मुखर्जी। सभी के दिलों को भाने वाली 1998 में आई करण जौहर की पहली निर्देशित फिल्म थी कुछ कुछ होता है।

0: कुछ।
1: करण जौहर की इस पहली निर्देशित फिल्म ने अपार सफलता हासिल की। फिल्म कुछ कुछ होता है ने न सिर्फ अलग अलग फिल्मी पुरस्कारों को समेटा बल्कि एक संपूर्ण मनोरंजन करने वाली फिल्म के तौर पर राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित हुई। इसके बाद मानो करण जौहर को मिल गई उनकी राह, जहां वो अपनी मंजिल को पाने के लिए आगे बढ़ चले। 2001 में उन्होंने निर्देशित की अपनी दूसरी फिल्म कभी खुशी कभी गम, जहां एक ओर करण के जीवन में खुशियों के रंग बिखर रहे थे, वहीं गम ने जिंदगी में दस्तक दी। साल 2004 में पिता यश जौहर करण को मां हीरू जौहर की जिम्मेदारी सौंपकर इस दुनिया के रंगमंच को छोड़ गए। करण दुख के इस समय में अपनी मां हीरू जौहर के सहारे बने और बाद में उन्होंने पिता की फिल्म कंपनी धर्मा प्रोडक्शन को भी संभाला। करण जौहर ने अब तक जितनी भी फिल्म निर्देशित की उन सभी की कहानी उन्होंने खुद लिखी और साल 2006 में आई एक ऐसी फिल्म जिस फिल्म को उन्होंने न सिर्फ लिखा और निर्देशित किया बल्कि इस फिल्म के निर्माता भी वही थे। ये फिल्म थी वैवाहिक रिश्ते के उलझन को दर्शाती फिल्म कभी अलविदा ना कहना।

करण जौहर को ऑलराउंडर कहना गलत नहीं होगा। वो निर्माता, निर्देशक, लेखक, अभिनेता तो हैं ही, साथ ही बतौर कॉस्ट्यूम डिजाइनर भी फिल्मों में काम कर चुके हैं। ऐसी कुछ फिल्में हैं, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, दिल तो पागल है, डुप्लीकेट, मोहब्बतें, वीर जारा और मैं हूं ना। ज्यादातर उन्होंने शाहरुख खान के लिए कॉस्ट्यूम डिजाइन किए और साथ ही अमिताभ बच्चन के लिए भी।

साल 2009 में एक बार फिर करण जौहर अपनी पसंदीदा जोड़ी शाहरुख और काजोल के साथ लेकर आए एक ऐसी फिल्म जो सामाजिक मुद्दों की बात करते हुए सभी के दिलों को छू गई। करण के करियर की बेहतरीन फिल्मों में से एक मानी जाने वाली ये फिल्म थी माय नेम इज खान।

करण जौहर न्यूमरोलॉजी में काफी विश्वास रखते थे और इसलिए उनकी फिल्मों के नाम शुरू होते थे अंग्रेजी के अक्षर से। लेकिन जब 2006 में उन्होंने फिल्म लगे रहो मुन्ना भाई देखी तो उन्हें लगा कि वो भी अब इन बातों में विश्वास नहीं करेंगे। इसके बाद उन्होंने कई अलग अलग अक्षरों से शुरू होने वाली फिल्मों का निर्माण किया। यहाँ हम आपको बताते चलते हैं उन फिल्मों के बारे में जिनसे करण जौहर बतौर निर्माता जुड़े हैं। ऐसी कुछ फिल्में हैं कल हो ना हो, दोस्ताना, वेक अप सिड, आई हेट लव स्टोरीज, वी आर फैमिली, अग्निपथ और ये जवानी है दीवानी।

0: मानेना।
1: साल 2012 में करण जौहर फिल्मी दुनिया में लेकर आए अपने तीन नए स्टूडेंट्स आलिया भट्ट, वरुण धवन और सिद्धार्थ मल्होत्रा। तीन नए चेहरों को सामने लाने वाली उनकी ये फिल्म थी स्टूडेंट ऑफ द ईयर।

फिल्मी सितारों के बच्चों को लॉन्च करने में माहिर हैं। उन्होंने ऐसे कई नए सितारों को रुपहले पर्दे तक पहुंचाया है। हाल ही में उन्होंने कुछ फिल्मी सितारों के बच्चों को अपने द्वारा निर्मित फिल्म के जरिए लोगों से रूबरू करवाया है। ये फिल्में हैं धड़क, जिसमें उन्होंने ईशान खट्टर और जाह्नवी कपूर को लॉन्च किया।

यूं तो कई फिल्मों में गेस्ट अपीयरेंस करते नजर आए, लेकिन उन्होंने 2015 में अनुराग कश्यप की फिल्म बॉम्बे वेलवेट में एक ऐसा किरदार निभाया जो लोगों के मन पर छाप छोड़ गया। करण जौहर ने पहली बार एक नेगेटिव किरदार निभाया जिसका नाम था कैजात खंबाटा। इस नेगेटिव किरदार ने फिल्म को मिले नेगेटिव रिस्पांस के बीच न सिर्फ दर्शकों के बल्कि आलोचकों के भी पॉजिटिव कमेंट हासिल किए। इस किरदार के लिए करण जौहर ने अनुराग कश्यप से सिर्फ 11 रुपए लिए।

0: मोहब्बत गुरीब बीमारी।
1: कई सालों तक सिर्फ फिल्म निर्माण से जुड़े रहने के बाद करण जौहर एक बार फिर तैयार थे एक नई फिल्म के साथ, जिसकी कहानी उन्होंने सिर्फ 30 दिनों में लिखी थी। ये फिल्म एक बार फिर करण जौहर के लिए बेहतरीन सक्सेस लेकर आई। साल 2016 में आई ये फिल्म थी ए दिल है मुश्किल।

और फिल्मों के अलावा कई टेलीविजन शो में जज और एंकर आदि भूमिकाओं में नजर आते रहे हैं। फरवरी 2017 में उन्हें निजी जीवन में एक नई भूमिका हासिल हुई। ये भूमिका थी एक पिता की। करण जौहर सैरोगेसी के जरिए बन बैठे जुड़वां बच्चों के पिता। उन्होंने अपने बेटे का नाम पिता के नाम पर यश रखा है और बेटी को उन्होंने अपनी माँ हीरू जौहर के नाम से मिलता जुलता नाम रूही दिया।

करण जौहर की बतौर निर्माता कई फिल्में आई जिन्हें दर्शकों ने सराहा। इनमें शामिल हैं मीनाक्षी सुंदरेश्वर, सूर्यवंशी, गहराइयां, ब्रह्मास्त्र पार्ट वन, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी और जुग जुग जियो।

0: करण जौहर ने देशभक्ति से जुड़ी कई फिल्मों का भी निर्माण किया जिन्हें काफी सराहा गया। इनमें नाम शामिल हैं गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल, ए वतन मेरे वतन और कैप्टन विक्रम बत्रा के जीवन पर बनी फिल्म शेरशाह, जिसे दर्शकों का भरपूर प्यार मिला। केसरी 2 द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ जलियांवाला बाग सभी को पसंद आ रही है।
1: ओ शेरा

साल 2020 में सिनेमा से जुड़े बेहतरीन काम के लिए करण जौहर को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। फ्रेंच में मास्टर डिग्री रखने वाले करण जौहर प्रेम और रिश्तों की भाषा समझने और समझाने में भी मास्टर हैं। वो आगे दर्शकों तक प्रेम का ये संदेश अपनी फिल्मों के जरिए पहुंचाते रहेंगे, इसकी पूरी उम्मीद है।

0: आज के फनकार। ये कार्यक्रम आज केंद्रित था निर्माता निर्देशक करण जौहर पर, शोध आलेख और स्वर नेहा शर्मा का। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जय। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

छोटे होते हैं, उन लम्हों को अपनी मुट्ठी में कैद कर लेने को जी चाहता है, उन लम्हों को जीना चाहते हैं हम, कुछ यूं कि ये मुलाकात फिर हो न हो। चलो इन्हें संजो लें अपनी जिंदगी के दामन में, कुछ यूं कि छोटी सी जिंदगी में कई सदियों का प्यार समा जाए।

प्यारा सा साथ, भला सा साथ, भला सा एहसास, भली सी आवाज, भली सी सूरत, भला किसे नहीं भली लगती है। मिलता है ऐसा सलूना सा साथ तो जीवन की बगिया महक उठती है। हर शाख की कोपलें हरी हो उठती हैं, मन में खिल उठते हैं रंग बिरंगे फूल।

रात भर झरती रही चांदनी आसमान से, रात भर सितारे खेलते रहे अटखेलियां चांद से, रात भर हवा गाती रही उदास गीत, पत्तियां सरसराती रहीं और कानाफूसी करती रहीं पेड़ों से, रात भर जुगनू भटकते रहे किसी की खोज में, रात भर यादों के दिए झिलमिलाते रहे मन के आंगन में, रात भर इंतजार करते रहे किसी के आने का।

यादों के रंग से सजाए हैं ख्वाब, मालूम है कुछ ख्वाब कभी पूरे नहीं होते, कुछ ख्वाबों का ताल्लुक हकीकत से नहीं होता। ये ऐसे ख्वाब हैं जिन्हें हम देखते हैं और अपने दिल के करीब रखना चाहते हैं, ये ख्वाब सिर्फ इंतज़ार होते हैं।

वही रात होगी, वही चांद, वही सितारे, वही आसमान, ये हवाएं, लेकिन मंजर सूना सूना सा होगा। कहीं कुछ कमी महसूस होगी, यूं लगेगा ये चांद नहीं है रोशन, मध्यम है सितारे, खामोश है हवा, उदास है आसमान। कहीं कुछ कम होगा, कहीं कुछ नम होगा, होगा सिर्फ यादों का मंजर।

0: जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
3: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मिथुन प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
4: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
3: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी।
6: सुनिए,
7: कहिए,
0: सुनिए एक खुशखबरी।
7: कहिए ना।
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकीय बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यह समिति अवैध प्रवासन और अन्य अस्वाभाविक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकी बदलावों का व्यापक मूल्यांकन करेगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए अगले 6 महीने के भीतर ड्रोन रोधी प्रणाली लगाने की प्रक्रिया में है। राजस्थान के बीकानेर जिले में साचू सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने ये बात कही।
1: ड्रोन और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार ड्रोन रोधी संयंत्र लगाने की शुरुआत अगले 6 माह में ही कर लेगी, परंतु ड्रोन उतरता तो भारत की भूमि में है, कौन इसके अंदर के मटेरियल को देश विरोधी कार्यों के लिए उपयोग करता है, इस पर हमारी पैनी नजर होनी चाहिए और इसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए सिविल अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से हमारा जीवंत संपर्क होना चाहिए और परिणाम लक्षी कार्यवाही भी हमने करनी पड़ेगी।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की अध्यक्षता में आज क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई। ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के विदेश मंत्री ने बैठक में हिस्सा लिया। सदस्य देश वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में निगरानी से जुड़ी पहल तथा दृश्यों के माध्यम से

0: समुद्री गतिविधियों की साझा जानकारी उपलब्ध कराने पर भी सहमति व्यक्त की। बैठक के बाद संयुक्त प्रेसवार्ता में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत किया जाएगा। विदेश मंत्रालय में अपर सचिव के नागराज नायडू ने बताया कि क्वाड देशों ने पहलगाम आतंकवादी हमले की भी निंदा की। पश्चिम बंगाल में एक विशेष अदालत ने मालदा के मोथाबाड़ी में न्यायिक अधिकारियों पर हमले के सिलसिले में 15 और लोगों को 5 जून तक राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की हिरासत में भेज दिया है। आरोपियों को सोमवार देर रात मोथाबाड़ी और उसके आसपास के इलाकों में केंद्रीय एजेंसी द्वारा की गई छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया गया था। NIA के सूत्रों के अनुसार सोशल मीडिया पर वायरल विभिन्न वीडियो क्लिप के साथ घटना के दिन के CCTV फुटेज का विश्लेषण करके संदिग्धों की पहचान की गई। सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार में 1983 में 5 लोगों की हत्या के मामले में कई दोषियों की सजा को बरकरार रखते हुए कहा है कि अपराध की क्रूरता झकझोर देने वाली है। न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि निचली अदालत और पटना उच्च न्यायालय ने इस मामले में अनुचित सहानुभूति या नरमी बरते जाने की किसी भी गुंजाइश से इनकार करके सटीक फैसले दिए। शीर्ष न्यायालय ने पटना उच्च न्यायालय के अगस्त 2017 के फैसले को चुनौती देने वाली दोषियों की अपील पर आज अपना फैसला सुनाया। सरकार ने प्याज के भंडार का न्यूनतम सुनिश्चित खरीद मूल्य 1,270 रुपए से बढ़ाकर 1,580 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। ये बढ़ोतरी राज्य सरकारों के अनुरोध पर की गई है। नई दरें आज से लागू हो गई। इस संबंध में उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में उपभोक्ता मामलों के विभाग, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ के अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि वर्ष 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी के भारत के दावे को ध्यान में रखते हुए योगासन को भविष्य के ओलंपिक खेलों की सूची में शामिल करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। डॉक्टर मांडविया ने आज नई दिल्ली में कहा कि अहमदाबाद में 4 से 8 जून तक पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप आयोजित होगी। भारतीय पहलवानों ने वियतनाम में एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में आज भी शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए पुरुषों की फ्रीस्टाइल वर्ग में 2 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीते। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय किरण झा। The center has constituted a high-level committee to address the challenges of demographic change caused by infiltration and other reasons. In a social media post, Union Home Minister Amit Shah today said that the committee will be chaired by former Supreme Court Judge Justice Prakash Prabhakar Nilokar. Census Commissioner, along with the former IAS officer Durga Shankar Mishra, former IPS officer Balaji Srivastav and economist Dr. Shamika Ravi have been appointed as members of the committee. The Joint Secretary, Foreigners 1, in the Home Ministry will serve as the member secretary in the committee. Mr. Shah said infiltration and other reasons are causing unnatural demographic change, which poses a very significant challenge to the present and future of any nation. He said demographic change is a serious issue linked not only to the sovereignty but also to national security, law and order, profound changes in social structure and the preservation of tribal society. Union Home Minister Amit Shah today said that the government is in a process of installing anti-drone system within the next 6 months to curb the smuggling of narcotics and weapons through drones. Addressing BSF personnel at the Sanshu border outpost in Rajasthan's Bikaner district, the Home Minister said, while threats originating across the border remains crucial, equal attention must be paid to internal elements aiding such threats within the country.
2: ड्रोन और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार
3: द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज प्रिपेयरिंग टू रोल आउट एंटी ड्रोन सिस्टम फॉर ड्रोन्स एंड सिमिलर एरियल थ्रेट विद इन द नेक्स्ट 6 months. However, since these drones eventually land on Indian territories, we must remain highly vigilant about those who may use the materials carried by them for anti-national activities. Effective neutralization will require strong coordination with civil authorities and district police, along with prompt and result-oriented action at every level.
2: परिणामलक्षी कार्यवाही भी हमने करनी पड़ेगी.
1: Mr. Shah said strict legal action should be taken against those involved. He stressed that since the drones land in the Indian territory, close coordination with the local police and civil administration is essential to identify those receiving such consignments and to neutralize the threats effectively. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar chaired the Quad Foreign Ministers meeting in New Delhi today. Foreign Minister of Australia Penny Wong, Foreign Minister of Japan Toshimitsu Motegi and U.S. Secretary of the State Marco Rubio attended the meeting. Addressing a joint press conference after the meeting, Dr. S. Jaishankar emphasized on further strengthening cooperation among the Quad nations in addition to assisting others. He said that the Quad nations are open societies who foster innovation and creativity in the quest of growth for prosperity. He also laid emphasis on zero tolerance for terrorism. Foreign Affairs Minister of Australia Penny Wong today called on Prime Minister Modi in New Delhi. In a social media post, Mr. Modi discussed the growing India-Australia comprehensive strategic partnership in areas such as defence, trade, technology and ensuring supply chain resilience. The Prime Minister said India and Australia will work together to continue for the work for free, open, secure and prosperous Indo-Pacific. The Ministry of Railway has given its nod to start operations of the country's first hydrogen-powered 10-coach demo train. It will run at a maximum speed of 75 km per hour between Jind and Sonipat under the Northern Railway Zone. The train will use hydrogen fuel cells to generate power instead of diesel or electricity-based traction. The government has revised the minimum assured procurement price MAPP of onion stocks from 1,270 rupees to 1,580 rupees per quintal. In IPL cricket, Royal Challengers Bangalore have set a target of 255 runs against Gujarat Titans in qualifier 1 in Dharamshala. In reply, Gujarat Titans were 106 for 8 in 12.4 overs when reports last came in. And Gujarat Titans won the toss and elected to bat. And that's the end of the news bulletin.
4: हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं. फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर. रात्रि के 11:10 हुए हैं. अब हमारा आज का प्रसारण समाप्त होता है. कल प्रातः 5:55 पर हम पुनः उपस्थित होंगे.

हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 11:10 हुए हैं। अब हमारा आज का प्रसारण समाप्त होता है। कल प्रातः 5:55 पर हम पुनः उपस्थित होंगे।